0: उन पर हर तरफ से लानत की बौछार होगी, जहां कहीं पाए जाएंगे पकड़े जाएंगे और बुरी तरह मारे जाएंगे। ये अल्लाह की सुन्नत है जो ऐसे लोगों के मामले में पहले से चली आ रही है, और तुम अल्लाह की सुन्नत में कोई तब्दीली न पाओगे। लोग तुमसे पूछते हैं कि कयामत की घड़ी कब आएगी, कहो इसका इल्म तो अल्लाह ही को है, तुम्हें क्या खबर, शायद कि वो करीब ही आ लगी हो। बहरहाल ये अमर यकीनी है कि अल्लाह ने काफिरों पर लानत की है और उनके लिए भड़कती हुई आग मुहैया करती है, जिसमें वो हमेशा रहेंगे, कोई हामी और मददगार न पा सकेंगे। जिस रोज उनके चेहरे आग पर उलट पुलट किए जाएंगे, उस वक्त वो कहेंगे कि काश हमने अल्लाह और रसूल की इताअत की होती, और कहेंगे ऐ रब हमारे, हमने अपने सरदारों और अपने बड़ों की इताअत की और उन्होंने हमें राह रास्त से बेराह कर दिया। ऐ रब उनको दोहरा अजाब दे और उन पर सख्त लानत कर। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, उन लोगों की तरह न बन जाओ जिन्होंने मूसा को अजियतें दी थीं, फिर अल्लाह ने उनकी बनाई हुई बातों से उसकी बराअत फरमाई और वो अल्लाह के नजदीक बाइज्जत था। ऐ ईमान लाने वालों, अल्लाह से डरो और ठीक बात किया करो, अल्लाह तुम्हारे आमाल दुरुस्त कर देगा और तुम्हारे कसूरों से दरगुजर फरमाएगा। जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे, उसने बड़ी कामयाबी हासिल की। हमने इस अमानत को आसमानों और जमीन और पहाड़ों के सामने पेश किया तो वो उसे उठाने के लिए तैयार न हुए और उससे डर गए, मगर इंसान ने उसे उठा लिया, बेशक वो बड़ा जालिम और जाहिल है। इस बारे अमानत को उठाने का लाजमी नतीजा है ताकि अल्लाह मुनाफिक मर्दों और औरतों और मुशरिक मर्दों और औरतों को सजा दे और मोमिन मर्दों और औरतों की तौबा कबूल करे। अल्लाह दरगुजर फरमाने वाला और रहीम है। सदकल्लाहुल अज़ीम।
1: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामीन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में फजर की अजान का वक्त हो गया है। अल्लाह

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 पर पैगाम।
2: इस दुनिया में इंसान जब गुनाहों को छोड़कर नेकी को अपना लेता है और नेक जिंदगी बसर करने लगता है तो अल्लाह सुभान व तआला उसका निगरान और निगहबान बन जाता है, उसके कामों को सीधा कर देता है, उसकी परेशानियों में से निकलने का रास्ता हमवार कर देता है, उसकी उलझनें दूर कर देता है और उसकी हर तरह से हिफाजत फरमाता है। अल्लाह सुभान व तआला से मोहब्बत कीजिए और उसकी बताई हुई राह पर चलने की कोशिश कीजिए। अल्लाह सुभान व तआला आपकी तमाम मुश्किलें दूर करेगा और आपके लिए आसानियां पैदा फरमाएगा।
1: पैगाम ऑन FM 107।
3: FM 107 पर रेडियो कतर की उर्दू सर्विस आपसे मुखातिब है। समीन, अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए फरमाया कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदे अगर तुमसे मेरे मुतालिक पूछें तो मैं तो उनसे करीब ही हूँ, पुकारने वाला जब मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार सुनता हूँ और जवाब देता हूँ, इसलिए उन्हें चाहिए कि मेरी दावत पर लब्बैक कहें और मुझ पर ईमान लाएं। ये बात तुम उन्हें सुना दो, शायद कि वो राह रास्त पा लें। सामीन, मौलाना इदरीस अबकर साहब दुआगो है अल्लाह ताला के हुजूर, आइए हम भी इन दुआओं में शरीक हो जाएं। ऐ अल्लाह, तू हमारी सब दुआएं कबूल फरमा ले।

ولا تعرض بوجهك الكريم عنا ولا تفضحنا بسرائر.

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهد

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: Qatar National Health Strategy. Health for all. Suniye Dr. Fauzia Shafiq ke saath. FM 107. Dil se desi.
2: Assalamu alaikum listeners. Aaj hum baat karenge ki sweets ki zarurat aur nuksan ke bare mein. Chocolates hain, mithaiyan hain, cold drinks hain. जो कि खाते हुए में बहुत खुशी महसूस होती है या खुशी देती हैं, मगर ज़रूरत से ज़्यादा स्वीट्स डायबिटीज़, मोटापे और दांतों के मसाइल पैदा कर सकता है। क्या आप ये जानते हैं कि एक जो बॉटल है कोल्ड ड्रिंक स्वीट, उसमें 8 से 10 चम्मच चीनी होती है और एक दिन की ज़रूरत से कई गुना ज़्यादा है। शुगर सिर्फ तवानाई देती है मगर विटामिंस और मादनियात फ्राहम नहीं करती। ज्यादा चीनी खाने से यानी या ज्यादा स्वीट्स अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो डायबिटीज होने का यानी टाइप 2 होने का खतरा ज्यादा है, मोटापा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो सकता है, आपके दांत खराब हो सकते हैं, जिल्द के मसाइल जो हैं वो सामने आ सकते हैं। बच्चे और नौजवान सबसे ज्यादा मुतासिर होते हैं क्योंकि वो ज्यादा स्वीट पसंद करते हैं और ज्यादा वक्त मोबाइल और टीवी के साथ या डिफरेंट डिवाइसेस के साथ गुजारते हैं। इस तरह वो आहिस्ता आहिस्ता जो चीज उन्हें पसंद है यानी स्वीट पसंद है तो उसे लेते रहते हैं। और अगर कोई बच्चा रोजाना 2 से 3 चम्मच इजाफी चीनी खाता है तो साल के आखिर तक वो तकरीबन 7 से 8 किलो इजाफी चीनी इस्तेमाल कर चुका होता है जो कि फिर सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। जो एडल्ट्स हैं वो रोजाना 6 चम्मच से ज्यादा चीनी ना खाएं। शक्कर की जगह शहद, गुड़ या खजूर एक बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। मीठा खाने के बाद पानी जरूर पी लीजिए और दांत साफ रखिए। कोल्ड ड्रिंक की जगह अगर आप ताज़ा जूस या फिर लस्सी इस्तेमाल करते हैं तो ज्यादा सेहतमंद है। बच्चों को फल और खुश्क मेवेजात की आदत डाल दीजिए। अगर मीठा खाने की आदत कम करना चाहते हैं तो रोजाना थोड़ी मिकदार में खा लीजिए और ज्यादा ना खाइए। याद रखिए मीठा जिंदगी में खुशी लाता है मगर एतदाल के साथ। कम शुगर ज्यादा सेहत। हेल्थ फॉर ऑल
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी। हेल्थ फॉर ऑल FM 107 दिल से देसी।
3: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

जिसका नाम था बनी। बनी का रंग सफेद था और उसके लंबे लंबे और निहायत ही खूबसूरत कान थे। बजाहिर उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कान रहती थी, लेकिन अंदर से उसका दिल बहुत सैड था। बनी का एक ख्वाब था कि वो अपने बहुत टाइम से खोई हुई फैमिली को मिल सके, लेकिन बनी को जंगल में दूसरे जानवरों का बहुत डर रहता था, जो उसे नुकसान पहुंचा सकते थे या उसे मार भी सकते थे। उसे लगता था कि वो कभी भी अपनी फैमिली को ढूंढ नहीं सकेगा। इसी डर की वजह से, जिसे वो काबू ही नहीं कर पाता था, उसने कभी कोशिश ही नहीं की कि वो अपनी फैमिली को ढूंढे। एक दिन जंगल के एक गहरे कोने में एक अकलमंद जीब्रा रहता था। उसका नाम था जायद जीब्रा। जायद बनी को अक्सर देखा करता था और जायद को बनी के चेहरे पर अक्सर गम और डर का असर नजर आता था। एक दिन जायद ने बनी को अपने पास बुलाया और पूछा, बनी भाई, मुझे क्यों ऐसा लगता है कि तुम बहुत गमजदा हो, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कोई तो बात है जिसकी वजह से तुम हमेशा डरे डरे से रहते हो। इस बात की क्या वजह है? आखिर ऐसा क्यों है? बनी ने जायद की तरफ देखा और थोड़ा सोच कर जवाब दिया, जायद, मुझे अपनी फैमिली से मिलना है, लेकिन जंगलात में इतनी सारी मुश्किलें हैं और दूसरे जानवर मुझे नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। मुझे उनसे बहुत डर लगता है। जायद ने बनी की बात बहुत ध्यान से सुनी और फिर उसे कहा, देखो बनी भाई, मेरा तो यही मानना है कि हर बड़ी सक्सेस हमें हमेशा छोटी छोटी कोशिशें कर मिलती है। तुम्हें अपने डर को पीछे छोड़ना पड़ेगा और अपनी जिंदगी में कुछ नया करना होगा। अगर तुम अपने अंदर के इस डर को काबू कर सको तो याद रखना, तुम अपने इस सपने को जरूर पूरा कर सकते हो। तुम्हें बस इस डर से बाहर निकलना होगा और अपने इस ख्वाब की तरफ कदम बढ़ाना होगा, तभी जाकर तुम अपनी फैमिली से मिल सकोगे। बनी ने जायद की बात बहुत ध्यान से सुनी। जायद की बात उसके दिल में घंटी की तरह गूंजने लगी और फिर बनी को लगा कि शायद वो वक्त आ गया है कि जब बनी अपना डर पीछे छोड़ दे। उसने जायद की बात समझ ली थी और उसने ये सोच लिया था कि अगर वो अपने इस ख्वाब को पूरा करना चाहता है तो उसे अपने डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होगा। अगले दिन जायद ने बनी को फिर मशवरा दिया, तुम पहले अपनी छोटी छोटी हिम्मत दिखाना शुरू करो भाई। अगर तुम थोड़ा थोड़ा करके अपना हौसला बढ़ाओगे तो एक दिन तुम्हें अपनी फैमिली से मिलने का मौका मिल ही जाएगा। बनी ने जायद के कहने पर अपनी सोच बदल ली और अगले दिन से बनी ने हर दिन प्रैक्टिस करना शुरू कर दी। पहले दिन बनी ने जंगल के सबसे बड़े दरख्त पर पहुंचने की कोशिश की। उसने सोचा कि अगर वो इस दरख्त तक पहुंच सकता है तो वो जरूर अपने इस ख्वाब को भी पूरा कर सकता है कि वो दूर दराज जाकर अपनी फैमिली को ढूंढे। लेकिन पहले दिन बनी को काफी मुश्किल हुई। वो दरख्त के पास तो गया लेकिन गिर गया। उसे लगा कि वो कभी भी अपने गोल तक पहुंच नहीं पाएगा। फिर दूसरे दिन बनी ने फिर से कोशिश की और इस दफा वो थोड़ी ज्यादा हिम्मत करके गया और दरख्त के ऊपर तक पहुंच गया। उसने दिल में सोचा कि आज तो मैं बहुत कुछ सीख गया हूँ, लेकिन मुझे अभी भी बहुत सारी हिम्मत चाहिए। फिर अगले दिन बनी ने अपनी ट्रेनिंग का दोबारा आगाज किया। वो सिर्फ जंगल के दरख्त तक नहीं बल्कि जंगल की अगली वाली पहाड़ी तक गया। वो हर रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर होता गया। कभी वो इधर गिरता, कभी वो उधर गिरता, कभी उसको किसी बात से मुश्किल पेश आती, लेकिन बनी ने कभी हिम्मत नहीं हारी। हर दिन वो अपनी पूरी कोशिश करता गया और उसका हौसला और हिम्मत ज्यादा से ज्यादा मजबूत होते चले गए। जायद ने एक दिन बनी को देखा और कहा, अरे वाह बनी, तुम्हारी मेहनत दिख रही है, तुमने अपने डर पर काबू कर लिया है, ये हुई ना बात। याद रखो, अब तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो तुम्हें तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करने तक ले जाएगी। बनी का हौसला और बढ़ गया। अब उसका डर बिल्कुल खत्म हो गया था। फिर एक दिन सुबह सुबह उठकर बनी ने ये फैसला किया कि वो अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए उस पहाड़ी तक जाएगा जिस पे वो पहले कभी नहीं गया और वहां जाने का उसने कभी सोचा भी नहीं था। वो पहाड़ी जो बनी के लिए पहले एक बहुत डरावना ख्वाब थी, अब उसकी तरफ बनी ने अपना सफर शुरू कर दिया था। हाँ, बनी के दिल में थोड़ी उलझनें जरूर थीं, लेकिन उसने अपने अंदर की ताकत को पहचान लिया था। जब बनी फाइनली उस पहाड़ी तक पहुंच गया तो उसका दिल खुशी से भर गया। वो समझ गया था कि उसका असली डर तो सिर्फ उसके दिमाग में था
और जब उसने उस डर को अपने अंदर से काबू कर लिया

वो अपने ख्वाबों तक पहुंच गया। उसने अपनी फैमिली को वहां ढूंढा और उनसे मिलकर बहुत खुशी महसूस की। उस दिन बनी को सबसे ज्यादा ये बात समझ आई कि अगर हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपने डर को अपने रास्ते की रुकावट ना बनने दें, तो हम अपनी असली ताकत और पोटेंशियल को समझकर अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, असली सक्सेस कंफर्ट जोन से बाहर होती है। अगर हम अपने डर से जीत कर एक कदम आगे बढ़ें, तो हम अपनी असली ताकत को पहचान सकते हैं। हम जितनी मेहनत और हिम्मत दिखाएंगे, उतनी ही हमारी जिंदगी बेहतर होती चली जाएगी। मेरे नन्हे मुन्ने साथियों, हमेशा अपने ख्वाबों का पीछा करते रहें और हर कदम पर अपने डर को पीछे छोड़ते रहें।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: जिंदगी की दुश्मन भूख है और इसके हलाल बहुत मुश्किल है। एक मजबूत इकोनॉमिक सिस्टम के बगैर कोई भी तरक्की हासिल नहीं कर सकता। सवाल ये है कि इन हालातों में इकोनॉमी कैसे काम करती है और उसका हमारी रोजमर्रा जिंदगी से क्या ताल्लुक है। किस तरह इकोनॉमी बेरोजगारी, महंगाई, शेयर बाजार और दीगर अहम इक्तिसादी मसाइल से मुतासिर होती है। इकॉनमी के बुनियादी तसव्वुरात और वैल्यूज से मुतालिक जरूरी मालूमात जानने के लिए समाप्त कीजिए स्पेशल सेगमेंट इकॉनमिक कॉन्सेप्ट्स।
2: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं नासी एफएम 107 से एंड वेलकम टू द शो कॉल्ड इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं बात करने वाली हूं एक बहुत ही धांसू से इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट टर्म की, जिसका नाम है फिस्कल पॉलिसी, जिसे कह सकते हैं एक तरह का जायजा। जी हाँ, फिस्कल पॉलिसी का असल मतलब क्या है, ये कैसे काम करती है, कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो इम्पोर्टेंट है और ये किस तरह से हमारी डे टू डे लाइफ को भी अफेक्ट करती है, ये सारी बात आज के इस एपिसोड में होने वाली है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फिस्कल पॉलिसी के बारे में। दोस्तों, फिस्कल पॉलिसी का मतलब है वो पॉलिसीज जो सरकारी खर्च और टैक्स लागू करने के तरीकों से मुतालिक होती है। ये पॉलिसीज सरकार की माली उमूर को बेहतर बनाने और मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशन को बेहतर करने के लिए डिजाइन की जाती है। फिस्कल पॉलिसी का असल मकसद मुल्क की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना, रोजगार के मौके फराहम करना और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है। वैसे देखा जाए तो फिस्कल पॉलिसी के दो अहम पहलू हैं और फिस्कल पॉलिसी इन दो अहम पहलुओं पर मबनी होती है। पहला पहलू है एक्सपेंडिचर और दूसरा पहलू है टैक्सेशन। जी हाँ, सरकार का खर्च जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर और सोशल सर्विसेज पर होता है कहलाता है एक्सपेंडिचर। वहीं सरकार का टैक्स लागू करना जो आमदनी को इकट्ठा करने का जरिया बनता है कहलाता है टैक्सेशन। वैसे फिस्कल पॉलिसी का इस्तेमाल मुख्तलिफ मकसद के लिए किया जाता है। जब मुल्क की इकोनॉमिक हालत खराब होती है तो सरकार अपनी फिस्कल पॉलिसी को इस तरह बदलती है कि वो खर्च बढ़ाए और टैक्स कम करे। इसका मकसद है कि लोग ज्यादा खर्चे करें और इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ें। मिसाल के तौर पर अगर एक मुल्क रिसेशन का शिकार है तो सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे कि रोड्स, ब्रिजेस और स्कूल बनाने का फैसला कर सकती है। इससे लोगों को रोजगार मिलेगा और वो अपनी आमदनी से खर्च करने लग जाते हैं जो कि इकोनॉमी को बेहतर बनाते हैं। तो हुई ना ये साइकिल। वैसे फिस्कल पॉलिसी का असर लोगों की जिंदगी पर बहुत गहरा होता है। जब सरकार खर्च बढ़ाती है तो इससे रोजगार के मौके बढ़ते हैं, इससे लोगों की आमदनी में इजाफा होता है और वो अपने खर्चों को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अगर सरकार टैक्स कम करती है तो लोगों के पास ज्यादा पैसा होता है जिससे वो खर्च करते हैं और इससे इकोनॉमी को फिर से फायदा मिलता है। इस तरह फिस्कल पॉलिसी लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने में मददगार साबित होती है। वैसे देखा जाए तो फिस्कल पॉलिसी की अपनी अलग अहमियत है। फिस्कल पॉलिसी की अहमियत को समझना बड़ा जरूरी है। ये ना सिर्फ मुल्क के इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बरकरार रखती है बल्कि लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने में भी यूजफुल होती है। जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ, फिस्कल पॉलिसी के जरिए सरकार इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और सोशल सर्विसेज पर खर्च करने से लोगों को रोजगार मिलते हैं। वहीं पर इन्फ्लेशन भी कंट्रोल होता है। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो सरकार टैक्स बढ़ाकर और खर्च कम करके इसे कंट्रोल कर सकती है। वहीं पर सोशल वेलफेयर भी होता है। फिस्कल पॉलिसी के जरिए सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे कि हेल्थ केयर और एजुकेशन, जो कि लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। वहीं पर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आती है। फिस्कल पॉलिसी मुल्क की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बरकरार रखने में भी मददगार है। जब इकोनॉमी टफ टाइम से गुजर रही होती है तो सरकार फिस्कल पॉलिसी के जरिए इसे सुधार सकती है। वैसे फिस्कल पॉलिसी को दो मुख्तलिफ किस्मों में तकसीम भी किया जाता है। पहली किस्म है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी और दूसरी किस्म है कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी क्या है दोस्तों? जब सरकार खर्च बढ़ाती है या टैक्स कम करती है तो इसे एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी कहा जाता है। इसका मकसद इकोनॉमी को बढ़ावा देना होता है। वहीं कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, जब सरकार खर्च कम करती है या टैक्स बढ़ाती है तो इसे कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी कहा जाता है। इसका मकसद इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है। वैसे फिस्कल पॉलिसी के तरीके कार भी हैं, या यूं कह सकते हैं कि कुछ फैक्टर्स भी इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे बजटिंग। सरकार अपने खर्चों और आमदनी का एक बजट तैयार करती है। ये साल के शुरू में ही तैयार हो जाता है। ये बजट फिस्कल पॉलिसी का बुनियादी हिस्सा होता है। जी हाँ, वहीं पर इसे इम्प्लीमेंट करना, लागू करना, बजट को इम्प्लीमेंट करना होता है। जब सरकार खर्च करती है तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ावा देते हैं। वहीं पर इसे मॉनिटर भी किया जाता है। सरकार को फिस्कल पॉलिसी के असरात को मॉनिटर करना होता है ताकि वो समझ सकें कि क्या उनकी पॉलिसीज का असर ठीक तरह से हो भी रहा है कि नहीं। वहीं कई बार जरूरत पड़ने पर सरकार अपनी फिस्कल पॉलिसी में तब्दीली भी ला सकती है। वैसे देखा जाए तो फिस्कल पॉलिसीज के कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, जैसे पॉलिटिकल फैक्टर्स। जी हाँ, कभी कभी सरकारी पॉलिसीज पॉलिटिकल प्रेशर्स की वजह से बदली और बदलवाई जाती हैं। वहीं पर पब्लिक डेट का खतरा भी होता है। अगर सरकार ज्यादा खर्च करे तो उसे पब्लिक डेट का सामना करना पड़ता है, जो कि आगे चलकर इकोनॉमी के लिए खतरनाक हो सकता है। तो यहाँ भी एक प्रॉपर चेक रखने की जरूरत होती है, और ये चेक कई बार टाइम इश्यूज भी क्रिएट करता है। जी हाँ, फाइनेंशियल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में वक्त लगता है, और अगर वक्त पर सही फैसला ना किया जाए तो वो फैसला बेमायने हो जाता है। जी हाँ, जाते जाते बस मैं यही कहना चाहूंगी कि फिस्कल पॉलिसी एक अहम इकोनॉमिक टूल है जो कि सरकार को मुल्क के इकोनॉमिक सिचुएशन को बेहतर बनाने में यूजफुल होता है। ये लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है, क्योंकि इससे रोजगार के मौके मिलते हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है। इसीलिए फिस्कल पॉलिसी को समझना हर फर्द के लिए जरूरी है, ताकि वो अपनी जिंदगी और अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस को बेहतर बना सकें। वेल, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि कुछ हद तक मैं आपको इस टर्म से रूबरू करवा पाई हूँ। बाकी डिटेल में फिर कभी बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपकी हमारी मुलाकात होगी इसी शो में, जिसका नाम है इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट नेक्स्ट टर्म के साथ, नेक्स्ट इकोनॉमिक टर्म या कॉन्सेप्ट के साथ। वेल, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए और सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: आपने सुना इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स। इकोनॉमी के उसूलों और स्ट्रेटेजी को समझने से हम ना सिर्फ अपनी जाती या कौमी माशी हालत को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि आलमी सतह पर भी मुस्बत असरात मुरतब कर सकते हैं। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स के आज के इस सेगमेंट से आरजे नाजिया को दीजिए इजाजत। दोबारा मुलाकात होगी इकोनॉमी के किसी खास और नए जाविये से। फी अमानिल्ला।
0: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: सामईन किराम, जिस तरह अहकाम खुदाबंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती, उसी तरह उस्वाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत से बेपरवाही इख्तियार नहीं की जा सकती। सुन्नत रसूलुल्लाह की इताअत भी ऐसी ही जरूरी है जैसी किताबुल्लाह की, इसलिए कि दोनों की पैरवी हुक्म इलाही की पैरवी है। इरशाद बारी ताला है, वमन युति الرسول فقد اطاع الله, यानी जो रसूल की इताअत करे उसने दरअसल अल्लाह ही की इताअत की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत को मजबूती से थामने और उस पर अमल करने की अशद ताकीद फरमाई है और उससे गफलत बरतने पर सख्त नाराजगी का इजहार फरमाया। सामईन किराम, इन्हीं हिदायत की रोशनी में पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रूह परवर सुन्नतें। इस प्रोग्राम के हर किस्त में हम एक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, उसके मानी पर गौर करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह ये सुन्नत हमारी रोजमर्रा जिंदगी में रोशनी और सुकून का जरिया बन सकती है। सामईन किराम, प्रोग्राम रूह परवर सुन्नत में आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद। इस प्रोग्राम में हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से सबक हासिल करते हैं, उन्हें अपनी जिंदगी में नाफिज करने की कोशिश करते हैं। इस्लाम हमें कमजोरी नहीं बल्कि कुव्वत और अजीमत सिखाता है। ये कुव्वत महज जिस्मानी ताकत नहीं बल्कि असल कुव्वत है, ईमान की ताकत, इरादे की मजबूती, सब्र और अमल की इस्तकामत। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताकतवर मोमिन कमजोर मोमिन से बेहतर है और अल्लाह को ज्यादा महबूब है और दोनों ही में खैर है। ऐसी चीज की हिर्स करो जो तुम्हें नफा दे, अल्लाह से मदद मांगो और आजिज न बनो। दोस्तों, यहाँ ताकत से मुराद जिस्मानी ताकत नहीं बल्कि ईमान की मजबूती, इरादे की ताकत, इबादत पर इस्तकामत, बुराई के खिलाफ सबर और मुजाहमत और भलाई के कामों में हिम्मत और शौक, यानी एक मोमिन अपनी जिंदगी के हर शोबे में कुव्वत इरादी और अज़्म के साथ आगे बढ़े। नमाज, रोजा और जिक्र अज़कार पर पाबंदी, अमर बिल मारूफ और नहीं अल मुनकर पर साबित कदमी, मुश्किलात और आजमाइशों के मुकाबले में सबर और हौसला, जो चीज फायदा मंद है उस पर मेहनत, अल्लाह पर भरोसा और सिर्फ आगे बढ़ना। सभी ये थी आज की सुन्नत, कुव्वत ईमान और इरादा। आइए हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़े हिम्मत, इस्तकामत और अल्लाह पर भरोसे के साथ।
0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
2: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस

पूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर।

0: आरजे सफा के साथ, हर मंडे दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
1: FM 107 पर हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट।

वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड में अवार मबील की मौजूदगी एक इंस्पायरिंग स्टोरी था। ये बात है साल 1995 की। नॉर्थ वेस्टर्न कीनिया के काकुमा में मबील एक रिफ्यूजी कैंप में पैदा हुए थे। उनके वालदैन जनूबी सूडान से सियासी बहरान की वजह से केनिया में मुंतकिल हो गए थे और जब वो महज 10 साल के थे तब उनके पेरेंट्स ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड शहर में शिफ्ट हुए। काकुमा कैंप में मबील को 2 दिन में एक वक्त का खाना मिलता था और बाकी बच्चों के साथ नंगे पांव से फुटबॉल खेलते थे। खौफनाक हालात में सीखी गई ये टैलेंट उस वक्त चमक उठी जब ऑस्ट्रेलिया ने 2006 में मबील के खानदान को पनाह दी। उस दिन के बाद से मबील को एक दूसरी जिंदगी मिली और ये जिंदगी फुटबॉल के जरिए मिली। 29 साल मबील विंगर पोजीशन में माहिर है एंड ही इज नोन टू बी एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर ऑन द विंग्स ऑफ द गेम। उन्होंने एडिलेड में अपनी टीनेज ईयर्स के दौरान सेंट कोलंबा कॉलेज में तालीम हासिल की और 2013 में ग्रेजुएशन मुकम्मल किया। कई छोटे लो प्रोफाइल क्लब्स में खेलने के बाद मबील ने एडिलेड यूनाइटेड में जगह बना ली। यानी जिस शहर में वो पले बड़े उसी क्लब को उन्होंने अपना क्लब माना और दैट क्लब गेव हिम अ राइट प्लेटफॉर्म। मुसलसल बेहतरीन परफॉर्मेंस के जरिए मबील को पहले ऑस्ट्रेलिया की यूथ टीम्स में जगह मिली और फिर 2014 में फीफा ने मबील को ऑस्ट्रेलिया की कौमी टीम में खेलने के लिए इजाज़त दे दी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: आप सुन रहे हैं लाइफ हैक्स अपनी ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी. अस्सलाम वालेकुम, मरहबा मरहबा. मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता और लेकर आई हूं लाइफ को इजी करने के लिए लाइफ हैक्स. तो आज का नंबर वन लाइफ हैक है, हार्ड बटर को सॉफ्टन कैसे करें, वो भी एक मिनट में. यस, तो बेकिंग करनी है और बटर एकदम पत्थर जैसा हार्ड है क्योंकि हमने उसको फ्रिज में रखा है, तो कोई बात नहीं है. एक चीज ग्रेटर लो और बटर को उसमें ग्रेट कर लो, यानी कि कद्दूकस कर लो. फिर बस वो फटाक से सॉफ्ट हो जाएगा और आपके यूज के लिए तैयार हो जाएगा. और दूसरा हैक है बचे हुए पिज्जा को रीहीट करने का बेस्ट तरीका. वैसे जब भी हम माइक्रोवेव में पिज्जा रीहीट करते हैं तो वो थोड़ा सा ना सॉगी हो जाता है. तो हम क्या करेंगे, सीधा एक फ्राइंग पैन लेंगे, उसे अच्छा तेज गरम करेंगे, उसमें पिज्जा स्लाइस रखेंगे और साइड में एक दो चम्मच पानी डाल देंगे और ऊपर से

0: जरूर बताएं. फॉर मोर लाइफ हैक्स टिप्स स्टे ट्यून्ड टू एफएम 107 दिल से देसी.
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन एफएम 107 दिल से देसी.
2: कानून हमें तहफ्फुज़ देता है और वज़ारत दाखला के तमाम इदारे हर वक्त हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए मसरूफ हैं. MOI के इदारों की सर्विसेज जानने और नए कवानीन से वाकफियत के लिए हम हर हफ्ते पीर के दिन रात 8 बजे लेकर आते हैं प्रोग्राम पुलिस और आवाम, जहां आपकी मुलाकात होती है पुलिस अफसरान के साथ.
3: पुलिस और आवाम एवरी मंडे 8 PM लाइव ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी. दिल से देसी.
4: हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए.
5: कुछ लोगों को पुराने जमाने के गाने पसंद है, कुछ लोगों को नए जमाने के गाने पसंद है. और कुछ लोगों को सिर्फ हिट गाने ही सुनने हैं. इसीलिए मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा शो जहाँ पर आपके मर्जी के गाने प्ले होंगे, जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो.
6: द रिक्वेस्ट शो
5: हर शाम 4 to 5 फजील के साथ संडे से थर्सडे ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी.
6: दिल से देसी.
1: आपने सुना हमें ऑन एयर. नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @ FM 107 कतर. दिल से देसी.
7: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं ग्रीन पाथ, एक ऐसी जर्नी जहां हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की बेहतरी, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल और कतर के विजन 2030 के गोल्स की रोशनी में. हर रोज एक नई बात, एक नई सोच और छोटे छोटे हैबिट्स जो बना सकते हैं एक बड़ा फर्क. तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड.

आज हम सस्टेनेबल फैशन के बारे में बात करेंगे फैशन का ट्रेंड चल रहा है लेकिन अगर हम अपनी क्लोथिंग चॉइस को सस्टेनेबल बनाएं तो हम अपने प्लैनेट को मदद दे सकते हैं ऑर्गेनिक कॉटन हैम्प और बैम्बू जैसे फैब्रिक्स का इस्तेमाल करें जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है थ्रिफ्ट स्टोर से सेकेंड हैंड क्लोथिंग खरीदने से आप एक सस्टेनेबल फैशन चॉइसेस बना रहे हैं ज्यादा क्लोथ्स खरीदने से बेटर है कि हम क्वालिटी गारमेंट्स खरीदें जो ज्यादा टाइम तक चले अगर आपके कपड़े खत्म हो जाते हैं तो आप उन्हें रिपेयर करें ताकि आपको नया कपड़ा खरीदने की जरूरत ना हो ग्रीन फैशन से ना सिर्फ आप स्टाइलिश रहते हैं बल्कि आपके कार्बन फुटप्रिंट को भी कम करता है तो लिसनर्स ये था आज का सफर ग्रीन पाथ पे अगर आपको हमारी बात मीनिंगफुल लगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें कल एक नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी तब तक याद रखिए हर छोटी सी ग्रीन चॉइस बन सकती है एक बड़ा पॉजिटिव चेंज खुद भी बदलें औरों को भी इंस्पायर करें अल्लाह हाफिज़

0: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है। अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। प्रोग्राम तहफीम कुरान के आज के इस मुबारक हलके में आप सबका खैर मकदम है। समय कराम तलहा अशरफुज़्ज़मान की जानिब से कबूल कीजिए सलाम और तहियात। कुरान मजीद दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है, लेकिन सवाल ये है क्या हर दौर में, खुसूसन आज के दौर में, क्या इफ़हाम और तफहीम के हवाले से भी लोगों ने इसका हक अदा किया है या नहीं। ख़ास तौर पर मगरबी दुनिया में बहुत से लोगों ने कुरान को पढ़ने की कोशिश तो की, लेकिन वो उसके उसलूब, उसकी ज़ुबान और उसके अंदाज़े बयान को पूरी तरह समझ न सके। 19वीं सदी में ब्रिटानिया के मशहूर मुफक्किर और मौर्रख थॉमस कार्लाइल ने हीरो एंड हीरोज वर्शिप के उन्वान से मशहूर लेक्चर्स दिए। इन लेक्चर्स में उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक अजीम पैगंबर और गैर मामूली शख्सियत के तौर पर पेश किया। उस जमाने में ये बात बरतानवी माशरे के लिए गैर मामूली बल्कि बाज़ हलकों के नज़दीक हैरान कुन थी, क्योंकि उस दौर में बरतानिया की मुस्लिम दुनिया के कई इलाकों में सियासी और फौजी मौजूदगी थी और इस्लाम के बारे में गलत फहमियाँ आम थी। उसी माहौल में कुछ ऐसे इंसाफ पसंद मगरबी अहले इल्म भी थे जिन्होंने महसूस किया कि इस्लाम और यूरोप के दरमियान असल मसला जंग नहीं बल्कि एक दूसरे को न समझना है। उन्हीं में से एक नाम सर एडविन अर्नॉल्ड का भी है जो मशहूर अखबार डेली टेलीग्राफ के मुदीर थे। उन्होंने पहले बुद्धमत के तारुफ के लिए अपनी मारूफ किताब द लाइट ऑफ एशिया की लिखी ताकि अंग्रेज़ अवाम बुद्धमत को सही अंदाज में समझ सकें।

0: बाद में उन्होंने इस्लाम के बारे में भी एक किताब द पर्ल्स ऑफ फेथ तसनीफ की, क्योंकि वो चाहते थे कि मग़रिबी दुनिया इस्लाम को तासुब के बजाय इल्म और तहकीक की बुनियाद पर समझे। थॉमस कार्लाइल ने कुरान के बारे में एक दिलचस्प बात भी लिखी। उन्होंने कहा कि कुरान उन मुश्किल तरीन किताबों में से है जिन्हें उन्होंने पढ़ा। उनके जहन में सवाल पैदा हुआ कि अगर अरब मुसलमान कुरान को बलागत और फसाहत का शाहकार कहते हैं तो फिर शेक्सपियर और दुनिया के दूसरे अजीम अदीबों का मकाम कहाँ होगा। सामने किराम, यहाँ एक बुनियादी नुक्ता समझने की ज़रूरत है, वो ये कि जब हम कुरान का तर्जुमा पढ़ रहे होते हैं तो हम कुरान की ज़बान नहीं पढ़ते, बल्कि कुरान की ज़बान तो अरबी में है, हम उस तर्जुमे की ज़बान में कुरान को पढ़ रहे होते हैं। अगर कोई शख्स अरबी ज़बान से वाकिफ ना हो तो वो कुरान के पैगाम का बड़ा हिस्सा तो समझ सकता है, लेकिन उसकी असल फसाहत, उसकी सौती खूबसूरती, उसके अल्फाज की गहराई और उसके बयान की लताफत को मुकम्मल तौर पर महसूस नहीं कर सकता। यहाँ एक और नहायत अहम हकीकत भी सामने आती है, वो ये कि कुरान यकीनन अरबी ज़बान में नाजिल हुआ। अल्लाह फरमाता है कुरआनन अरबियन लअल्लकुम तअक़िलून, हमने इस कुरान को अरबी ज़बान में नाजिल किया ताकि तुम उसे समझ सको, लेकिन उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि कुरान सिर्फ अरबों की किताब है। ये फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है, कुरान अरबी ज़बान में है लेकिन सिर्फ अरबों के लिए नहीं। ये अरबी ज़बान का शाहकार ज़रूर है मगर उसका पैगाम पूरी इंसानियत के लिए है। इसीलिए कुरान बार बार या अय्युहल्लज़ीना आमनू ही नहीं कहता बल्कि या अय्युहन्नास कहकर पूरी इंसानियत को मुखातब करता है, यानी ज़बान अरबी है मगर दावत आलमी है। नुज़ूल मक्का और मदीने में हुआ मगर पैगाम मशरिक़ व मग़रिब, शुमाल व जुनूब हर इंसान के लिए है। तो इस तरह सामिन इकराम, आज की नशिस्त में हम इसी पहलू पर मज़ीद गुफ्तगु करेंगे कि कुरान का उसलूब क्यों मुनफरिद है, उसकी तरतीब को समझने के लिए किन उसूलों की ज़रूरत है और क्यों दुनिया के बड़े बड़े मुफक्किरीन भी इस किताब के सामने हैरान रह गए। आइए कुरान मजीद को समझने की नीयत के साथ अपने इस इल्मी सफ़र का आगाज़ करते हैं। एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होगी, जुड़े रहिए हमारे साथ।
1: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
0: वेलकम बैक सामिन, एक मरतबा फिर आप सबको खुश आमदीद प्रोग्राम तहफीमुल कुरान के आज के इस नहायत अहम और बाबरकत हलके में। प्रोग्राम के इब्तिदा में हमने ये अर्ज़ किया कि कुरान मजीद अगर अरबी ज़बान में नाजिल हुआ है लेकिन उसका पैगाम पूरी इंसानियत के लिए है। अब एक और अहम सवाल सामने आता है, वो ये कि कई गैर मुस्लिम महक्कीन और मगरबी कारीन कहते हैं कि जब वो कुरान पढ़ते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि इसकी तरतीब आम किताबों जैसी नहीं है, एक मौजू से दूसरा मौजू, एक वाक़े से दूसरी नसीहत, एक हुक्म से दूसरी मिसाल की तरफ अचानक मुंतकिल हो जाता है। बाज़ लोगों को यही बात कुरान को समझने में मुश्किल महसूस होती है, लेकिन क्या वाकई ये बेतरतीबी है या फिर ये कुरान का एक ऐसा उसलूब है जिसके अंदर एक गहरी हिकमत पोशीदा है। सामिन किराम, अगर हम आम किताबों को देखें तो अक्सर उनमें एक सीधी तरतीब होती है, इब्तिदा, फिर दरमियानी हिस्सा और फिर इख्तिताम। अब कारी जब कुरान पढ़ता है तो उसे सिर्फ पूरे कुरान में एक सूरत ऐसी महसूस होती है जो मुकम्मल दास्तान की सूरत में मुसलसल आगे बढ़ती है और वो है सूरह यूसुफ। इस सूरत में यूसुफ अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी का वाक़या इब्तिदा से इख्तिताम तक मुसलसल बयान किया है, लेकिन कुरान की बाकी सूरतों का अंदाज़ इससे मुख्तलिफ है। कुरान

सिर्फ वाकयात सुनाने के लिए नहीं आया बल्कि इंसान के दिल की तरबियत करने के लिए आया है। इसलिए कभी एक वाकया बयान करता है, फिर अचानक अकीदे की बात करता है, फिर आखिरत की याद दिलाता है, फिर अखलाक की तालीम देता है और फिर दोबारा उसी वाकये की तरफ लौट आता है। ये अंदाज बज़ाहिर मुख्तलिफ ज़रूर है मगर इसके अंदर एक नहायत मजबूत रब्त मौजूद है। कुरान के उसलूब की एक बड़ी खसूसियत अरबी बलागत का एक फ़न है जिसे इल्तिफात कहा जाता है। इल्तिफात का मतलब यह है कि कलाम के दौरान अचानक खिताब का अंदाज बदल जाए। मसलन पहले अल्लाह ताला के बारे में तीसरे सिगे में गुफ्तगू हो रही हो, फिर अचानक बराह रास्त अल्लाह ताला से खिताब शुरू हो जाए, या पहले वो कहा जाए फिर तुम फिर मैं, यानी पहले इस तरह कहा जाए कि उसने ऐसा ऐसा ऐसा किया, फिर अचानक खिताब का अंदाज इस तरह बदल जाए कि फिर या रब मैं तेरे ही दरबार में ये इल्तिजा करता हूँ, फिर अचानक अंदाज का ये खिताब आ जाए कि मैंने तुम पर ये नेमतें की हैं। उर्दू और अंग्रेज़ी में ये अंदाज बहुत कम पाया जाता है, यानी अचानक मुंतकिली। अरबी अदब में ये नहायत मौसर बलागी उसलूब है। बाज़ लोगों को ये तब्दीली गैर मुतवक्का महसूस होती है लेकिन हकीकत में यही तब्दीली इंसान की तवज्जो को ताज़ा कर देती है। गोया कुरान हर चंद आयात के बाद कारी को झंझोड़ता है कि सिर्फ अल्फाज न पढ़ो बल्कि पूरी तवज्जो के साथ सुनो कि अब खिताब किस तरफ हो रहा है। ये उसलूब दिल को बेदार रखने का जरिया बनता है। इसकी सबसे खूबसूरत मिसाल हमें सूरह फातिहा में मिलती है। सूरह फातिहा के आगाज में बंदा अल्लाह ताला की हम्द बयान करता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन। तो यहाँ तक अल्लाह ताला का जिक्र गायब के सिगे में है कि तमाम तारीफ उस अल्लाह ताला के लिए है जो तमाम जहानों का रब है, रब्बिल आलमीन। तो यहाँ गायब के सिगे में है लेकिन अचानक अंदाज बदल जाता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ए अल्लाह, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। यहाँ बंदा बराह रास्त अल्लाह से गुफ्तगू कर रहा है। मुफस्सिरीन

0: RJ Mehvish Khan ke saath sirf FM 107 par Dil Se Desi.
1: FM 107 Time Check.

Assalamualaikum and good morning Qatar. आप सुन रहे हैं Summer Morning with RJ Mavish Khan और मैं आ गई हूँ. वक्त हुआ है इस वक्त 6 बज के 2 मिनट और आपका मेरा साथ आप जानते हैं कि 9 बजे तक रहने वाला है. खैर जी, सुबह का आगाज हो गया एक और नई और आज 9 जुलाई है और उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे, सब कुछ एकदम से सेट चल रहा होगा. और आज चूँकि थर्सडे भी है तो आप सब लोगों को हैप्पी हैप्पी हैप्पी वाला वीकेंड और उम्मीद है कि कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर सोचा होगा. मौसम थोड़ा सा गर्म है, आउटडोर प्लान्स नहीं होंगे तो कुछ इंडोर कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ सोचा होगा आपने, या फिर घर पे बैठ के कोई मूवी इन्जॉय करने का या फिर कुछ भी, कोई किताब पढ़ने का, कोई भी चीज़ हो सकती है. तो खैर जो भी आपके प्लान्स हैं, उम्मीद यही है कि वो प्लान्स आपके बिल्कुल सक्सेसफुल हों, आराम से आप उन्हीं चीज़ों को फॉलो करें और वही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हों जिस तरह से आपने प्लान किया है. खैर जी, और हम क्या करने वाले हैं आज के दिन? तो आज वही एज यूजुअल हमारा सिलसिला अपडेट्स वगैरह का रहेगा, आपसे शेयर होंगी, एक टॉपिक मैं आपको बताऊंगी, उसके ऊपर हम एक सवाल होगा बेसिकली उस पर हम बात करेंगे और आप मुझे कॉल कर सकेंगे 4434377 पे, साथ ही साथ 6622107 पे आप हमें मैसेज कर सकेंगे. और आज भी हमारा सिलसिला होगा अंताक्षरी का और कल बड़ा अच्छा लगा कि नए लोग आए थे, तो मैं यही चाहूंगी कि आज भी कुछ नए नए लोग आए और जो जो पार्टिसिपेट करना चाहता है वो अपना इंटरेस्ट शो करें और हम शामिल करेंगे. ज़्यादा जितने लोग आएंगे इतना मज़ा आएगा. तो देखते हैं कि आज क्या रहता है सिलसिला. और इसके साथ ही साथ हम अपनी तहरीर की तरफ आ जाते हैं, उसके बाद फिर असकार सुन के फिर हम वापस आएंगे तो फिर मज़ीद चीज़ें करेंगे. तो खैर जी, आज की तहरीर जो है वो बहुत ही ख़ास है, बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये आप सभी जानते हैं कि अल्लाह ताला के 99 असमाए हुस्ना हैं और अल्लाह ताला ने अपने इन मुबारक नामों में से जो 98 नेम है कुरान मजीद में मुख्तलिफ मकामात पर अपनी सफात बयान करने के लिए इस्तेमाल किए. लेकिन एक ऐसा नाम है जो पूरे कुरान में सिर्फ एक ही मरतबा आया है और यही नाम बेचैनी, इस्तराब और दिल के खौफ के ख़िलाफ़ नाजिल होने वाला सबसे ताकतवर सहारा है. कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए वो अल्लाह एक है. और ये नाम है अल अहद. अक्सर लोग अल वाहिद और अल अहद के दरमियान जो फ़र्क है उसको पूरी तरह से नहीं समझते, हालांकि दोनों के मायने एक जैसे नहीं हैं. अल वाहिद का मतलब है वो जो अपनी नौयत में एक हो, जिसकी कोई मिसाल ना हो, जो अपनी किस्म में मुनफरद हो. लेकिन अल अहद इससे कई ज़्यादा गहरा और अजीम मफहूम रखता है. इसका मतलब है वो ज़ात जो मुकम्मल यकता, गैर मुनकसम, बेमिसाल और मतलक है. ऐसी हस्ती जिसे हिस्सों में तकसीम नहीं किया जा सकता, जिसका कोई तसव्वुर या खाका मुकम्मल तौर पर जहन में नहीं आ सकता और जिसकी कोई नकल या मिसल मुमकिन ही नहीं है. ये नाम कुरान पाक में सिर्फ एक बार क्यों आया? क्योंकि तौहीद किसी लफ्ज़ के बार बार तकरार का नाम नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी की बुनियाद है. जब आप दुआ करते हैं तो आप अल्लाह ताला की किसी सिफ्त के एक हिस्से को नहीं पुकारते बल्कि उस कामिल, मुतलक और गैर मुनकसम ज़ात को पुकारते हैं जो हर चीज़ पर कादिर है. अल्लाह ताला की ज़ात में कोई तकसीम, कोई कमी, कोई टुकड़ापन नहीं. वो मुकम्मल है, हर एतबार से कामिल है और हर ज़रूरत पूरी करने वाला है. लेकिन आजकल की एक तल्ख हकीकत भी है, हमारी ज़िंदगी के ज़्यादातर दुख, परेशानियाँ और मायूसियाँ इसलिए पैदा होती हैं कि हम मखलूक के साथ वो ताल्लुक कायम कर लेते हैं जो सिर्फ खालिक के साथ होना चाहिए. हम अक्सर अनजाने में एक निजात दहिंदा, सेवियर तलाश करने की नफसियात में मुब्तला हो जाते हैं. हम इंसानों, नौकरियों, रिश्तों और दुनियावी कामयाबियों से वो तवक्कात वाबस्ता कर लेते हैं जो सिर्फ अल्लाह ताला ही पूरी कर सकते हैं. हम चाहते हैं कि यही चीज़ें हमें मुकम्मल कर दें, हमारे सारे ज़ख्म भर दें, हमारी असल पहचान बन जाएं और हमें हमेशा के लिए महफूज और मुतमईन कर दें. हालांकि ये सब काम सिर्फ अल्लाह ताला के ही इख्तियार में हैं. शादी के बारे में देखा जाए तो हम में से बहुत से लोग शादी के बारे में ये सोचते हैं कि जब मुझे मेरी ज़िंदगी का सही साथी मिल जाएगा तब मेरी तन्हाई हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी. लेकिन हकीकत यह है कि शादी दो महदूद, कमज़ोर और ख़ता करने वाले इंसानों की शराकत है. अगर आप अपने शरीक हयात को अपना शिफा देने वाला बना दें तो आप नादानिस्ता तौर पे उसे उस मकाम पर बिठा देते हैं जो सिर्फ़ अल्लाह ताला का हक है.
پھر آپ اپنے شریک حیات سے وہ خلا پر کرنے کی امید رکھتے ہیں جسے صرف اللہ تعالیٰ کی قربت ہی بھر سکتی ہے. یہی غلطی ہم اپنے کریئر کے ساتھ بھی کرتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ اگر مجھے یہ پروموشن مل جائے, یہ ڈیزگنیشن حاصل ہو جائے, یہ سیلری مل جائے, تب میں واقعی اہم انسان بن جاؤں گا, تب میں اپنے آپ کو محفوظ سیکیور محسوس کروں گا. لیکن ایک جاب, ملازمت صرف ذمہ داری فنکشن ہے, شناخت آپ کی نہیں بن سکتی, آپ کی کبھی آئیڈینٹی نہیں ہو سکتی. جب آپ اپنی پہچان کسی بھی ٹیمپرری چیز سے جوڑ دیتے ہیں تو آپ ایک فانی چیز سے ہمیشہ کی قدر مانگ رہے ہوتے ہیں, اور دنیا کی کوئی کامیابی آپ کے دل کو ہمیشہ کے لیے مطمئن نہیں کر سکتی. ہم اپنے دوستوں سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمارے جذبات سنبھالیں, ہر مشکل کا حل بن جائیں, ہماری ہر بات کی تصدیق کر دیں اور ہر وقت ہمیں خوش رکھیں. اور جب وہ ایسا نہیں کر پاتے تو ہمیں لگتا ہے کہ انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا یا دھوکہ دے دیا. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے انہیں اس بوجھ کے لیے پیدا ہی نہیں کیا تھا, وہ صرف انسان ہیں. اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے حضرت بلال کی زندگی پر غور کریں. مکہ کی جلتی ہوئی رویت پر انہیں لٹایا جاتا تھا, ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تھا, انہیں شدید اذیت دی جاتی تھی تاکہ وہ ایمان چھوڑ دیں, لیکن ان کی زبان پر صرف ایک ہی لفظ تھا, آہت آہت. وہ صرف ایک لفظ نہیں کہہ رہے تھے, وہ اعلان کر رہے تھے, میرا نجات دہندہ کوئی انسان نہیں, میرا سہارا صرف اللہ الآہد ہے. وہی بلال رضی اللہ عنہ جو کبھی مکے کی تپتی ریت پر آہد کہتے ہوئے ظلم برداشت کر رہے تھے, بعد میں مدینے کی بلند چھتوں پر کھڑے ہو کر اذان دینے کے لیے منتخب کیے گئے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت اور سربلندی کا وہ مقام تھا جو صرف اسی بھروسے پر صرف اسی پر بھروسہ کرنے والوں کو عطا ہوتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ محدود چیزیں لامحدود خواہشات کو کبھی بھی پورا نہیں کر سکتی. آپ کے اندر ایک ایسی روح ہے جو صرف لامحدود ذات یعنی الآہد کی طالب ہے. اسی لیے دنیا کی ہر کامیابی, ہر رشتہ, ہر آسائش مل جانے کے باوجود انسان کے دل میں پھر بھی ایک خلا باقی رہ سکتا ہے, وہ خلا جسے صرف اللہ تعالیٰ کی یاد, اس کی محبت اور اس پر کامل بھروسہ ہی بھر سکتا ہے. جب دل میں واقعی یقین

0: बैठ जाए कि अल्लाह ही आहत है, तो ये यकीन इंसान को इन बहुत सी जंजीरों से आज़ाद कर देता है। लोगों पर हद से ज़्यादा डिपेंडेंट होना, रूहानी वाबस्तगी जो सिर्फ अल्लाह के साथ होनी चाहिए, जज्बाती बुत जिन्हें हम अपने दिल में अल्लाह की जगह दे देते हैं, ये सोच करके मैं इस चीज़ के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। क्योंकि जब अल्लाह अल आहद है तो उसके अलावा हर चीज़ आर्जी, फ़ानी और बदल जाने वाली है। मखलूक को उस मकाम से नीचे उतार दीजिए जो सिर्फ खालिक का हक है। आपका स्पाउस, शरीके हयात, आपका साथी है, माबूत नहीं। आपकी मुलाजमत आपका रिस्क हासिल करने का ज़रिया है, आपकी असल शनाख्त नहीं। आपके दोस्त आपकी रफाकत हैं, आपकी निजात नहीं। तौहीद सिर्फ एक अकीदा नहीं बल्कि ज़िंदगी गुजारने का एक मुकम्मल अंदाज है। इसीलिए शायद अल्लाह ताला ने अल आहद का लफ्ज़ पूरे कुरान में एक मरतबा इस्तेमाल फरमाया, क्योंकि बाज़ औक़ात एक ही बार कही गई हकीकत पूरी ज़िंदगी को बदल देने के लिए काफ़ी होती है। उसके बाद बाकी हर आवाज़, हर सहारा, हर दावा सिर्फ शोर रह जाता है और कुछ नहीं। बहुत ही मतलब ज़बरदस्त और सीरियसली मतलब इसको जब मैंने पहली दफ़ा पढ़ा तो मैं ये सोच रही थी कि ये वाली गलती ना हमारी सबकी ज़िंदगी में होती है। कम से कम मैं अपना तो कह सकती हूँ कि मैं इससे बहुत ही रिलेट कर सकती हूँ, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में होता ये है कि आप देखो तो वाकई ऐसे ही कभी हम अपने माँ बाप को अपना मुकम्मल तौर पे सहारा समझते हैं और ये दावा करते हैं उनके बगैर हम नहीं रह सकते। कभी फिर हमें अपना शौहर या फिर बीवी इसी तरह की जगह पर नज़र आता है और फिर हम अपनी औलाद से भी इसी तरह का सहारा बनने की जो है ना तवक्को रख रहे होते हैं, बुढ़ापे का सहारा और ये सब कुछ। लेकिन हकीकतन सहारा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, हमें उसमें किसी को भी शरीक करने का किसी तनह का कोई हक नहीं। खैर जी, इसी के साथ हम बढ़ेंगे असकार की जानिब और असकार सुन के वापस आते हैं। सुनते रहे एफएम 107 दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग आरजे महविश खान के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
2: एक पुरसुकून और खामोश सुबह फजर की रोशनी से शुरू होती है। इन्हीं पाकीज़ा लम्हों में दुआएं कबूल होती हैं, बरकतों का नुज़ूल होता है और अल्लाह की रहमतें उनकी तरफ मुतवज्जे होती हैं जो उसे याद रखते हैं। इरशादे खुदावंदी है, वज़कुर इस्मा रब्बिका बुकरतन व असीला, और सुबह शाम अपने परवरदिगार के नाम का जिक्र किया करो। और अब समाज फरमाइए सुबह के अजगार एफ एम 107 पर।

الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله.

0: हुआ कुछ थोड़ा बहुत, कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो उसकी वजह से जो है ना हमारी वाली जगह पे जहाँ से मैं आ रही होती हूँ उस रूट पर थोड़ा सा ट्रैफिक था। फिर अंदाज़ा भी हो गया था, आगे कुछ गाड़ियाँ वाड़ियाँ खड़ी हुई थी तो उससे अंदाज़ा हो गया था कि भाई कुछ ना कुछ तो हुआ है, तो यही हुआ होगा कि कोई एक्सीडेंट हो गया होगा। सुबह में लोग जल्दी में निकल रहे होते हैं ना काफ़ी, तो उसमें होता ये है कि आप देखते नहीं हैं और बस आपको जल्दी होती है निकलने की, तो उस चक्कर में टकराव कराव हो जाते हैं, ये वाला सीन है। और अमूमन सिग्नल्स वगैरह पे इस तरह की जो ना चीज़ होती है, अब भाई सिग्नल अगर सडनली बंद हो गया है तो आपको रुक जाना चाहिए ना। अभी मेरे साथ कल परसों ही हुआ था बेसिकली ये, कि मैं जा रही थी राउंड अबाउट पे और सिग्नल बंद हुआ, मैं रुक गई, पीछे वाला आया टच करके उसने मारा। खैर गाड़ी को कुछ हुआ नहीं तो मैंने कुछ मतलब हंगामा नहीं किया, वरना मुझे गुस्सा ठीक ठाक आ गया था कि ये क्या तरीका है कि मतलब आप जो है भाई सिग्नल बंद हो रहा है, फिर बाद में कह रहे नहीं आप सडनली रुक गई थी, तो बस सडनली जो है सिग्नल भी तो बंद हुआ था ना, तो फिर बंदा सडनली ही रुकेगा। तो खैर थोड़ा ख्याल करना चाहिए आपको, थोड़े हमेशा आगे वाली गाड़ी से इसलिए कहते हैं एक फासला बरकरार रखने की ज़रूरत होती है, आगे वाली गाड़ी से फासला रखें ताकि अगर वो सडन ब्रेक लगाए किसी भी वजह से, कोई बंदा सामने आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आप भी सडन ब्रेक लगा सकें। मतलब ये इतनी गुंजाइश रखा करें अपने पास, बिल्कुल एकदम से अगर इस तरह से गाड़ी चलाएंगे और पता नहीं खलाओं में देखते हुए चलाएंगे तो इसी तरह से होगा, मतलब यही वाले मामलात होंगे। खैर मुझे उस दिन का थोड़ा थोड़ा गुस्सा था जो मैंने अभी निकाला है, लेकिन वाकई मतलब बाज़ औक़ात ये होता है, अच्छा जहाँ पे ना आपको गाड़ी में कुछ अफराद बैठे हुए नज़र आए ना, चार पाँच लोग, तो वो आपस में बातों में मशगूल हो जाते हैं, उनको पता नहीं चलता कि आप कहीं मतलब कहाँ पर जा रहे हैं, भूल जाते हैं, मतलब एकदम से ना ब्लैंक हो जाता है कि रोड पर हैं। उस वक्त लग रहा होता है कि खुशगप्पियाँ मारने के लिए बैठे हुए, मुझे अंदाज़ा हो गया था देखकर। खैर जी हम कहाँ पढ़ने वाले हैं, मैं आपको बताने वाली हूँ कि 9 जुलाई को दुनिया भर में होता है क्या क्या। तो हर साल 9 जुलाई को दुनिया भर में मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल आर्म्स। और ये क्या है, इस दिन का मकसद होता है गैर कानूनी छोटे जो हथियार होते हैं ना उनको तबाह करना और उनकी ट्रैफिकिंग को रोकना। और यूनाइटेड नेशंस और मुख्तलिफ मुल्कों की गवर्नमेंट्स इस दिन अवेयरनेस कैंपेन्स चलाती हैं ताकि अमन को फ़रोग दिया जा सके और आर्म्ड वायलेंस को कम किया जा सके। और बहुत से मुल्कों में पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज इलीगल वेपन्स को पब्लिकली डिस्ट्रॉय करती हैं, जो इस बात की निशानी होती है कि सोसाइटी को ज़्यादा महफूज बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही नेशनल शुगर कुकी डे मनाया जाता है और ये यूनाइटेड स्टेट्स में मनाया जाता है। अमेरिका में 9 जुलाई को नेशनल शुगर कुकी डे मनाया जाता है और शुगर कुकीज़ अपनी मीठे टेस्ट और कलरफुल डेकोरेशन की वजह से बच्चों बड़ों दोनों में काफ़ी मकबूल हैं। तो बेकरीज इस दिन स्पेशल ऑफर रखती हैं और लोग घरों में भी कुकीज़ बेक करके फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करते हैं और सोशल मीडिया पे अपनी क्रिएटिव कुकी डिज़ाइन शेयर करते हैं। वैसे मैं सोचती हूँ कि रोज़ाना उठ के देखते होंगे कि आज ये वाला दिन मनाया जा रहा है, फिर उसके हिसाब से मतलब वो करते होंगे, प्लान करते होंगे कि आज हमने कुकी बनानी है, आज हमने कुकी खानी है। मतलब काफ़ी अजीब है ना, हमारी ज़िंदगी में वैसे इतने काम होते हैं कि बंदा जो है ना वही काम कर ले, काफ़ी है। यहाँ पर अलग अलग दिन सेलिब्रेट करने के लिए भी घरों पर बकायदा माहौल बनाया जा रहा है इस तरह का कि कुकी डे मनाएंगे आज, स्ट्रेंज। खैर जी मतलब वो कहते हैं आप जब, ये बात मैंने कहीं पढ़ी थी कि जब आप सर्वाइवल से निकल जाते हैं ना तो फिर इसी तरह के मामलात होते हैं। बंदे की ज़िंदगी में जब सर्वाइवल का मतलब जो है ना दूर दूर तक कोई निशान ना, तो फिर बंदे की क्या लग्जरी आ जाती है, लग्जरी और पता नहीं और क्या क्या, तो ये वाले सीन है। मतलब वो चीज़ें जिनकी कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है लेकिन फिर भी हो रही हैं, वो वाला सीन है। खैर जी इसके साथ ही कहना चाहिए टेरिटरी नोनावुट में 9 जुलाई को नोनावुट डे मनाया जाता है। और ये जो दिन है ये नोनावुट लैंड क्लेम्स एग्रीमेंट की याद में सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा जी, जिसने इस रीजन के इंडिजिनस लोगों के हुकूक को तस्लीम किया था। ओके, तो ये वाला सीन है, ये कनाडा में मनाया जाता है। और इसके अलावा जो है वो है 9 जुलाई को, कोई इंटरनेशनली तो नहीं लेकिन बहुत सी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मनाती हैं एक डे जिसको कहा जाता है इंटरनेशनल वेलनेस डे। और गर्मियों के मौसम में हाइड्रेशन और हीट सेफ्टी पर अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाती है और डॉक्टर्स मशवरा देते हैं कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। मैं भी अपने आप को आधा डॉक्टर तो तस्लीम कर सकती हूँ, मतलब कह सकती हूँ इसमें क्या है, मैं भी आपको रोज़ बोलती हूँ पानी ज़्यादा करें, है ना। तो खैर जी धूप से बचने के लिए सनस्क्रीन और कैप इस्तेमाल की जाए और पीक आफ्टरनून आवर्स में अननेसेसरी आउटडोर एक्टिविटीज से परहेज किया जाए। और ये पूरी बात पढ़ने के बाद मुझे अंदाजा हुआ है कि मैं आधा नहीं पूरा डॉक्टर कह सकती हूँ, सारी बातें मैं करती हूँ आपसे रोजाना। फिर जी आ जाते हैं अब आज के सवाल की तरफ. मैं आपको बताती चलूं पहले सवाल, फिर उसके बाद ब्रेक पे चले जाएंगे. और सवाल है आज का ये, हाँ मैंने पिछले दिनों ये बात भी की थी और अभी देखें मैं आपको बता रही थी 9 जुलाई को कौन कौन से दिन मनाए जाते हैं. ठीक है, कुकी डे, आइसक्रीम डे, ये डे वो डे, मतलब मनाया जाता है पूरी दुनिया में, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ. ठीक है, तो अगर आपको मौका मिले कि आप क्रिएट कर सकें ऐसा ही कोई हॉलीडे या फिर कोई डे इसी तरह का जो रोज़ाना हम आपको बताते हैं, ठीक है, तो कौन सा दिन मनाएंगे और क्यों? ठीक है, क्यों मतलब ऐसा क्या दिन होगा कि आप चाहते हैं कि उस चीज़ को लोग सेलिब्रेट करें? ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मतलब बहुत कुछ हो सकता है. मेरे दिमाग में एक चीज़ आ गई लेकिन मैं भी बोल नहीं रही कि पहले आप लोग बोलें फिर उसके बाद फिर मैं मतलब जो है ना इस चीज़ के बारे में बोलूँगी. मतलब ये डे का मैं आपको बता दूँ कि क्या है. देखिए, आप कुकी डे है ना, तो किसी बंदे ने सोचा, जिसने ये कुकी डे का आइडिया दिया होगा उसने सोचा कुकीज़ जो है ना बहुत अच्छे होते हैं, बेहतरीन होते हैं, इसको दुनिया भर को टेस्ट करना चाहिए, इसको एक ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वराइटीज़ आनी चाहिए, इसको सेलिब्रेट करना चाहिए. तो उस बंदे ने इंटरनेशनल कुकी डे रख दिया इस दिन. ठीक है, इसी तरीके से किसी और बंदे को कोई और चीज़ फैसिनेट कर गई बहुत ज़्यादा, उसके दिल को लग गई, तो उसने इस किस्म का एक दिन रख दिया. ठीक है, तो आपकी ज़िंदगी में जिस चीज़ की है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस, जो आपकी चॉइस पे बिल्कुल प्रायोरिटी पे आता है नंबर वन, ठीक है, तो उस चीज़ को आप उस चीज़ के रिलेटेड कोई दिन मना सकते हैं. सही है कि कोई फूड, क्योंकि अमूमन देखें मैं आपको रोज़ाना बता रही होती हूँ कि आज जो है वो चिप्स डे है, आज फ्रेंच फ्राइज डे है, आज ये डे है, आज वो चॉकलेट डे है, तो खाना पीना हो सकता है और इसके साथ ही कुछ और भी हो सकता है. तो अब देखते हैं कि आप फूडी हैं या फिर आपको किसी और चीज़ की अवेयरनेस आपने फैलानी है. तो अच्छा सवाल है, मज़े का सवाल है, अब देखते हैं कि क्या आप जवाब देते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह.
0: जी कौन बात कर रहे हैं?
1: नफीस बात कर रहा
0: हूं. नफीस साहब बात कर रहे हैं, कैसे हैं? गुड गुड गुड मॉर्निंग. और गुड मॉर्निंग हो गई होगी भाई आज. हां
1: मैंने कहा आज जरा पहले नंबर पे आ जाते हैं.
0: हां अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया.
1: अरे यार कैसी, सबको खुश रखे जी.
0: जी जी बिल्कुल.
1: एक बात शेयर करना चाह रहा था, हर दिन मेरा दिल करता है कि ना ज्ञान बांट दूं.
0: अच्छा किस चीज का?
1: थोड़ी बड़ी
0: हमारा ना इस ज्ञान पे आप बात कंप्लीट कीजिएगा, फिर मैं बाद में बात करती हूँ. मतलब फिर मतलब आप बात कीजिएगा. हमारा जैसे आपने कहा ना मैं ज्ञान बांट दूँ, तो हमारा कबीर बोलता है कि मुझे ज्ञान बांटने की कोई मतलब इतना कोई शौक नहीं है मुझे ज्ञान बांटने का. और अगर आप बात सुन रहे हो ना तो वो ज्ञान ही बांट रहा होता है.
1: यही वो बात है
0: ना
1: कोई बंदा. मैं ये कहना चाहता था कि थैंक्स टू यू कि कल आपने मेरी जिंदगी बना दी. यकीन माने कि मैं काफी वैसे जिंदगी बनी है ना, लेकिन कल जो जिंदगी बनी है ना उसने एंड कर दी है.
0: अरे आपकी तो कॉल ही ड्रॉप हो गई थी बाद में, जब मैंने आपकी कॉल ली है मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा था क्योंकि मैं चाह रही थी आपको सुनना.
1: थोड़ा सा वो हो पता क्या बैड लक से गई. अच्छा मुझे आइडिया भी नहीं था कि रेडियो भी साथ में ऐसे रखता ना सुन के, क्योंकि आपने क्वेश्चन किया जी बताएं आखिरी वर्ड क्या आया तो उससे गाना गाएं, तो वो इंशाल्लाह मैं उसके लिए सॉरी करता हूँ. लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ था, 8:30 में कॉल करने में बहुत बड़ा हाथ था. और स्टार्ट वही से करता हूँ कि आपने जिंदगी बनाई, ये आपने इस ईयर की सबसे बड़ी जिंदगी बना दी.
0: अच्छा कैसे ये बताएं?
1: क्योंकि जावेद साहब की मुझे कॉल आ गई डायरेक्ट, जिनकी आवाज का मैं फैन हूँ. आप बताएं.
0: बिल्कुल बिल्कुल.
1: इसलिए तो आपको क्या होगी. अच्छा मेरा नाम नफीस है और वो क्या नफीस आदमी बेटी करेगी.
0: हाँ बिल्कुल.
1: इतना ज्यादा मजा है थोड़ी देर कहते. लेकिन मैं इंसिस्ट करता हूँ कि आप प्लीज आए, जरा मैं आपका गाना सुनना चाहता हूँ.
0: जावेद साहब का.
1: जावेद साहब कहते मुझे कि मैं आपका गाना सुनना चाहता हूँ.
0: अच्छा अच्छा आपको कहा उन्होंने? ओके ओके ग्रेट जबरदस्त.
1: तो मैंने कहा बेफिक्र हो जी, वन ऑफ द बेस्ट सिंगर इन द वर्ल्ड आप भी आती हैं सुनिए और बैड लक देखिए यार कॉल ड्रॉप होगी.
0: हाय हाय हाय. लेकिन आज भी है, फिक्र ना करें. और अगर लोग कहेंगे ना अगला हफ्ता मेरा मतलब लास्ट वेकेशन से पहले का है, तो अगर लोग कहेंगे तो हम नेक्स्ट वीक भी अंताक्षरी रखेंगे, तो मसला नहीं है. आज भी है 8:30 आप आज भी आ सकते हैं.
1: आज तो अच्छा आपकी वेकेशन स्टार्ट हो रही है.
0: हाँ मतलब अगला हफ्ता है, फिर उसके बाद फिर मेरी वेकेशन स्टार्ट हो रही है.
1: अच्छा, 19 से.
0: जी जी अगला हफ्ता है अभी. अगला हफ्ता
1: अभी तो जिंदगी पड़ी है
0: पूरी. तो ये हफ्ता भी है और अगला भी है.
1: ये हफ्ता तो समझे ना आज वीकेंड.
0: आज वीकेंड है. हाँ फिर उसके बाद अगला हफ्ता है, पूरा हफ्ता है, तो कोई

0: मसला नहीं है, आपसे हम आराम से गाने सुनेंगे, पूरा कॉन्सर्ट करवाएंगे आपका
1: इंशाल्लाह। मुझे बड़ा अच्छा लगा, बस मैं ये दिल की बात शेयर करना चाहता था कि कल से ना बड़ा दिल अच्छा गुजरा। अब देखिए मैं यकीन माने मैं बड़ी चीजों से छोटी छोटी चीजों की बड़ी केयर करता हूँ, प्रॉपर सही फील करता हूँ।
0: हाँ, और ये वाली आदत ना आपकी बहुत सारे, जैसे जावेद साहब ने आपसे कांटेक्ट किया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको आपकी ये पॉजिटिविटी, मतलब देखें पता है आजकल नफीस इतनी ना जिंदगी में वैसे ही परेशानियां तलखियां दुनिया भर में आप देख लें, ऐसे ऐसे मसाइल हैं, वहां पे अगर कोई बंदा ना पॉजिटिव होता है और ये इस तरह का एटीट्यूड रखता है ना, उसको हर इंसान पसंद करता है।
1: जज़ाकअल्लाह, और यकीन मानने की जरूरत भी इसी चीज की है।
0: हाँ बिल्कुल,
1: हुक्म भी इसी चीज का है।
0: एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही।
1: आई थिंक आपको स्टार्टगा मेरी पहली कॉल से ये था, और उससे पहले मेरी लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बता। अच्छा, परेशानियां शुरू करूंगा ना ऐसे लगेगा आपको कि दुनिया का यार ये तो सागर सदीकी से भी परेशान ये बनता है। मैं क्यों, सबके साथ है,
0: सबके साथ है,
1: किसी को
0: भी ऐसे ही। आप
1: मैं दुनिया को हमने क्या देना है, दुनिया में आए हैं तो कोई दे के जाए ना, तो एटलीस्ट पॉजिटिव एनर्जी दे के चले जाए भाई, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा।
0: बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल सही बात है जी। अच्छा ये बताएं, हाँ नहीं बड़ी अच्छी बात है, मुझे भी अच्छा लगा क्योंकि मैं दिया तो था लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि उन्होंने फौरन कांटेक्ट कर लिया होगा आपसे।
1: नहीं नहीं नहीं, नहीं। अच्छा मैं एक बात बताऊं, उनकी आवाज मैंने इधर रिकॉग्नाइज किया था ना आपको कि यार ये जो जब बोलते हैं ना तो हाँ। बड़ी एक अजीब सुकूनत छा जाती है, एक आवाज होती है, क्योंकि देखिए रेडियो पे मैं आपको देख नहीं रहा, मुझे नहीं देख रही, लोग आवाज सुन रहे हैं, इसी आवाज ने सब जादू बिखेरना है कि यार भाई बंदा कहता है ये क्या कहना चाहता है, तो वो जावेद साहब के पास क्वालिटी है आप माने।
0: हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बताएं जब उनकी कॉल आई तो आप उनको पहचाने थे क्या आवाज से?
1: कॉल आती गई पूछ लीजिएगा, कभी उनकी कॉल आई ना और बड़े दिलचस्प उनकी आवाज आई, और वैसे एक मिनट है ना,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: अस्सलाम वालेकुम, अभी अस्सलाम वालेकुम हुआ ना, मैंने कहा यार रेडियो ऑन हो गया लगता है, जावेद साहब आ गए, लेकिन फिर भी मैंने कहा यार कंफर्म कर लो, ऑफिस टाइम था। तो कहती है अस्सलाम वालेकुम, क्या मैं दुनिया के खूबसूरत इंसान से बात कर रहा हूँ? मैं क्या जावेद भाई क्या सीन है यार कहते कैसे है मेरे का बहुत अच्छे, मैं अगर आपका अस्सलाम वालेकुम होता है मैं अपने साथ दोस्त को कह रहा होता हूँ कि ये जब सब आ गया
0: मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। और ये बताएं भाई कि नफीस साहब के अगर दुनिया में एक कोई डे आपने सजेस्ट करना होगा भाई आज से सब लोग ये दिन मनाएंगे तो वो कौन सा दिन होगा? छुट्टी देनी है आपने,
1: नहाना डे मनाना चाहिए,
0: नहाना डे
1: शावर डे यार ये क्या इससे अच्छा दिन हो सकता है? आप सोच के रखा दिन का यार, मतलब डेली बना सकते हो, सुबह उठो नमाज से पहले शावर लो, शावर डे
0: अच्छा दिन है वैसे
1: पूरा दिन आप मतलब मजा आ जाएगा, फिर शाम को रात को नाइट भी मना लो, शावर नाइट।
0: हाँ गुड, दिन तो आपने अच्छा सजेस्ट किया, और उन लोगों के लिए भी कि कम से कम जो मतलब कुछ होते हैं वैसे बड़े शाज़े ना नादिर होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको नहाने से बहुत घबराहट होती है, तो उनके लिए एक अच्छा दिन है। ओह कॉल कट गई एकदम से। चलें जी, तो भाई नफीस साहब हमारे साथ थे और हमारा इन्होंने पहली कॉल करके दिन ही बना दिया, मतलब जबरदस्त दिन हो गया मेरा ख्याल है। वापस आए हैं तो ले लेते हैं हम जी। हेलो,
2: अस्सलामुअलैकुम।
0: वालेकुम सलाम, अच्छा कोई और है जी, कौन है भाई हमारे साथ?
2: जी मेरा नाम है फैजान।
0: फैजान क्या हाल है भाई फैजान आपके?
2: मैं ठीक हूँ बहुत अच्छा हूँ, आप बताएं कैसे?
0: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं क्या हाल चाल है, कैसा है सब कुछ? कल तो भाई मतलब आपका कॉन्फिडेंस देखने वाले था, और क्या आपने जबरदस्त आवाज में गाने गाए, और बेहतरीन इंतखाब था गानों का।
2: जी जी, मैंने आपको बताया था ना कि वो जावेद साहब की शायद आप लोग पहले बात कर रहे थे, उनके बाद अच्छी, पर मैंने आपको टेक्स्ट किया था, मेरे भी अच्छी है।
0: हाँ आपने कहा था लेकिन हमने इतना एतबार नहीं किया था सुन के भरोसा हुआ, हमने कहा चलो भाई वाकई मतलब आवाज बहुत अच्छी है।
2: तो मैंने मैं था अपने स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में, यूनिवर्सिटी में भी मतलब अक्सर होते थे, मतलब हमारे ना कंपटीशन वगैरह, नाच करते थे, गाने वगैरह, मेरी नगमे, तो ये इस तरह मैं ना पार्टिसिपेट करता था बहुत ज्यादा।
0: हाँ नहीं बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी, बहुत अच्छी है, बहुत मज़ा आया, और मुझे खास तौर पे मज़ा इसलिए आया क्योंकि हमारे अपने पाकिस्तानी बैंड्स के और कुछ ऐसे गाने गाए जो

0: यूजली मतलब जो है ना यहाँ पे सुनने को नहीं मिलते. मैं लगाती तो हूँ अपने शो में लेकिन फिर भी बड़ा सा कम कम होता है क्योंकि उस तरह का जौक यहाँ पे थोड़ा सा कम है. तो मेरा वो वाला है तो मुझे अच्छा लगा आरओ की आवाज़ सुन, आरओ का जब आपने गाना गाया और उसके अलावा और कुछ गाने और ऐसे थे तो मुझे बड़ा मजा आया.
1: ऐसे ही अच्छा. जो आज का आपका सवाल है ना दिन के हवाले से, अभी तो खैर ये बहुत ही साल के बाद पाकिस्तान में मनाया गया. मैं ये चाहूंगा कि बसंत मनाई जाए.
0: बसंत, सही सही.
1: हाँ, कतर के अंदर अगर ये अलाउ करें तो सब लोग एक दिन ना पतंगबाजी करें. और वही वाले जो पाकिस्तान में मिलती है पतंग, वही लोग यहाँ पर मतलब मिले, यहाँ पे अवेलेबल हो, डोर हो,
0: बस वो मांझे ना हो. उस तरह के मांझे ना हो, खतरनाक वाले, लेकिन बाकी जो है ना हाँ होना चाहिए.
1: और यहाँ पे ये है कि भाई सेफ्टी भी है क्योंकि जो बंदा भी मतलब बाइक वाला भी है एटलीस्ट तो वो हेलमेट पहन के जा रहा है. तो मेरा नहीं है कि भाई कुछ होगा और इतने इनके मतलब रोज वगैरह हैं, अगर कभी ऐसा हो जाए तो क्योंकि अभी तो हम कतर में रह रहे हैं तो मैं यही चाहूंगा कि जो है ना बसंत मनाई जाए.
0: हाँ अच्छा, वैसे बसंत के बहुत सारे लोग इसलिए फैजान खिलाफ हैं क्योंकि वो ये जो मांझा तेज कर लेते हैं और ये सब कुछ होता है, लोगों की गर्दनें कट जाती हैं. लेकिन उससे हटकर मुझे भी ऐसा लगता है कि बसंत होनी चाहिए क्योंकि हर जगह का ना कल्चर होता है. तो अगर हम देखें तो हमारे यहाँ का खासतौर पर लाहौर साइड का कल्चर है ये और उसको प्रिजर्व करना चाहिए. तो मैं भी बिल्कुल हिमायत में इस बात के कि होनी चाहिए. अभी पिछले दिनों जब हुआ था बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी मची थी ना इसके ऊपर कि नहीं होना नहीं चाहिए ये वो. तो मैं बड़ी सपोर्टर हूँ उस बात की कि नहीं, बसंत हमारा एक तरह का हमें रिप्रेजेंट करता है दुनिया में तो होना चाहिए. दिन उस पर रूल्स लगाएं सही तरीके से.
1: और आप देखें ये जो पिछला साल अभी बसंत हुई है पाकिस्तान में, एक भी ऐसा वाकया नहीं हुआ कि जिसमें कोई हादसा हुआ. क्योंकि जब उन्होंने बता दिया था कि आपने बाइक के ऊपर वो फ्रॉड लगा कर जाना है तो सेफ्टी कर लेंगे, तो मसला ही नहीं है ना.
0: हाँ बिल्कुल ऐसा ही है.
1: ये तो ऐसे ही है कि मतलब ना आप जो है स्विमिंग भी छोड़ दें कि डूबने का खतरा है.
0: हाँ, बिल्कुल.
1: जब आप सेफ्टी मेजर्स लेकर चलते हैं तो फिर वो बहुत अच्छा रहता है.
0: और हमारे बचपन में वो जब ये बसंत मनाई जाती थी तो उस वक्त बसंत के गाने आते थे. मुझे भी वो आपकी बात पे ना वो फरिया परवेज का दिल हुआ बू काटा याद आ रहा है. तो वो बड़ा मजा आता था उस जमाने में. मतलब वो एक फेस्टिवल चलता था तो पूरा जो है ना गाने लोग रिलीज करते थे और सब कुछ होता था. तो वो खुशियां थी वही छोटी छोटी जो अब मुझे लगता है बिछड़ गई हैं हमसे.
1: जी ऐसे ही है. ये जो कॉलर हैं नफीस साहब, ये मेरे नेबर भी हैं. तो
0: अच्छा,
1: ये भी अपने छत पे पतंग उड़ाया करते थे अक्सर. हम लोग ग्राउंड में होते तो ना बहुत ही मजा आता था कि हम दूर दूर मतलब ना अपनी छतों पे. इनका घर मेरे से आप समझ लें कि 8 घर या 10 घर छोड़ के होगा.
0: अच्छा वाओ, जबरदस्त, ग्रेट.
1: तो बड़ा मजा आता था. हर बंदा अपनी छतों पे खड़ा होता था और बारबेक्यू हो रहे होते थे. बहुत पुरानी बात है, अभी तो 10-15 साल के बाद पतंग जो है वो मनाई गई है पाकिस्तान में.
0: बिल्कुल, बिल्कुल.
1: बहुत ही हम इस चीज को एंजॉय करते थे. डेक लगे होते थे छतों के ऊपर, भाई क्या बात, यकीन करें. हाँ,
0: सही है सही, गुड, जबरदस्त. अच्छा ये भी बड़े मजे की बात है कि भाई आप लोग यहाँ पे इतने माशाल्लाह से वो जॉली इंसान है तो बड़ा मजा आता होगा आप लोगों को.
1: हाँ जी,
0: अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजा आता है. बड़ी अच्छी बात है. तो फैजान आज नफीस को भी मैंने बोला है कि वो भी आए और आप भी जरूर आने की कोशिश कीजिएगा, मजा आएगा इंशाल्लाह अंताक्षरी में.
1: जी ठीक है इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगा. आज जरा कंस्ट्रक्शन पे कंक्रीट आनी है.
0: अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं कोई मसला नहीं है फिर. अगर बिजी है तो कोई मसला नहीं है, अगर इजीली कर सकते हैं तो फिर ठीक है.
1: जी जी, अगर फ्री हुआ तो मैं जरूर जाऊंगा.
0: चलें सही है. और कुछ कहना चाहेंगे फैजान?
1: नहीं नहीं कुछ नहीं.
0: चलें, बहुत बहुत शुक्रिया. हाँ। बहुत अच्छा. जी जी हाँ बोलिए.
1: एक आप ना गाना प्ले कर दीजिएगा ये. हाँ। जैसे ही आपकी ब्रेक आए ना 7 बजे के बाद में भी आप प्ले करते हैं तो जी खुदा जी। और मोहब्बत जो पुराने वाला गाना है ना वो अहमद जहांजेब का.
0: खुदा और मोहब्बत वाला अहमद जहांजेब का. अच्छा मैं देख लेती हूँ. अगर आपने सुना है हमारे यहाँ कभी?
1: मैंने शायद जो है वो सुना हुआ.
0: अच्छा अच्छा, अगर है तो मैं कंफर्म चला देती हूँ. खुदा और मोहब्बत का ना तो मैं चला देती हूँ. ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह. चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का. थैंक यू, ख्याल रखिएगा. रही जी, तो हमारे साथ फैजान और नफीस दोनों ने अभी बात कर ली है और फिर अब हम ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं. ब्रेक से वापस आते हैं फिर हम इंशाल्लाह ताला आपकी और कॉल्स लेंगे. सवाल मैंने ये किया है कि अगर आपको इख्तियार दिया जाए क्या आप कोई हॉलीडे मनाएं. ठीक है, हॉलीडे कोई सा भी, कोई भी चीज़ हो सकती है. जैसे अभी बसंत की बात हो गई, इससे पहले जो है नफीस ने बड़े मजे की बात की थी शावर डे मनाया जाए. तो आप जिस तरह का दिन जो आपको अच्छा लगता है आप बताएं हमें कि क्यों मनाया जाए. ठीक है, और ज़रूर कॉल कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा. और इसी के साथ हम बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ.
2: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग आरजे महविश खान के साथ सिर्फ FM 107 पर दिल से

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर। दोस्तों, समंदरी सफर के दौरान ऑयल प्लेटफॉर्म से दूर रहना कानून की पाबंदी और सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आवाम को याद दिलाती है कि वो समंदर में मौजूद ऑयल प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो बड़े हों या छोटे, उनके करीब जाने से परहेज करें ताकि आप किसी भी कानूनी कार्रवाई का शिकार ना हों। 2004 के कानून नंबर 8 के तहत, जो कि मैरीटाइम पेट्रोलियम और गैस इंस्टॉलेशंस की हिफाजत से मुताल्लिक हैं, आर्टिकल नंबर 3 के मुताबिक कोई भी अनऑथराइज्ड शख्स किसी भी समुद्री फैसिलिटी के 500 मीटर के दायरे के अंदर नहीं जा सकता है। और इसी कानून के आर्टिकल नंबर 4 में कहा गया है, समुद्री फैसिलिटीज के 500 मीटर के अंदर मछलियां पकड़ना या फिशिंग गियर छोड़ना मना है। मिनिस्ट्री ने अपनी रिपोर्ट में वाजे किया है कि इस कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों पर सख्त जुर्माने और कैद की सजाएं दी जा सकती हैं। आपका ऑफशोर पेट्रोलियम इंस्टॉलेशंस के मुख्तलिफ ऑक्सिलरी यूनिट्स के करीब ना जाना आपको कानूनी कार्रवाइयों से महफूज रखता है। FM 107 आपसे कहता है कि अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए हमेशा होशियार रहिए। दोस्तों, मेट्रो स्टेशन में सेफ्टी और सिक्योरिटी गाइडलाइंस पर अमल करना बहुत जरूरी है ताकि आपका सफर और दूसरों का सफर भी पुरसुकून और महफूज हो। कुछ अहम बातें जो हर मुसाफिर को याद रखनी चाहिए वो ये हैं कि अपनी पर्सनल चीजें हमेशा अपने साथ महफूज रखें। सामान खो जाने से बचने के लिए अपने बैग्स और सामान पर नजर रखें। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में फौरन मदद तलब करें। स्टेशन स्टाफ या सिक्योरिटी पर्सनल से राब्ता करें ताकि आपको जरूरी मदद मिल सके। दरवाजों के करीब खड़े ना हों, खुसूसन जब दरवाजे खुल रहे हों या बंद हो रहे हों। दरवाजों से सेफ डिस्टेंस बनाए रखना जरूरी है ताकि चोट लगने का खतरा ना हो। स्टेशन के अंदर दिए गए इंस्ट्रक्शंस और साइन को ध्यान से पढ़ें और उन पर अमल करें। ये आपकी सेफ्टी के लिए होते हैं। स्टेशन के अंदर स्मोकिंग करना सख्ती से मना है। स्मोकिंग ना करें ताकि सबके लिए सेफ और सेहतमंद माहौल बना रहे। एस्केलेटर या चलती सीढ़ी पर बच्चों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। हमेशा उनका हाथ पकड़ कर रखिए। इन गाइडलाइंस को फॉलो करके आप अपना और दूसरों का सफर बेहतरीन और महफूज बना सकते हैं। सेफ्टी सबकी जिम्मेदारी है, इसलिए हमेशा एहतियात और तवज्जो के साथ मेट्रो स्टेशंस का इस्तेमाल करें। FM 107 आपको याद दिलाता है कि सेफ्टी सबसे पहले है।
3: सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन की राय पर। माहिरीन की राय पर लीजिए, हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड। हेल्थ गाइड, जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात। स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई। बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक, इलाज और एहतियात तक। सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। दिल से देसी, याद रखिए सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत।
4: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग RJ महविश खान के।

0: ये होता है ना, हम कहते हैं कि ये चलो टाइम मिलेगा तो कर लेंगे, टाइम होगा तो कर लेंगे, इस वक्त कर लेंगे, कभी सुबह कर रहे होते हैं, कभी शाम कर रहे होते हैं, तो उस तरह से ना चीज़ें नहीं होती हैं। आपको कोई भी काम करना है तो उसके लिए एक रूटीन बनाना बहुत ज़रूरी है कि आपने ये काम इसी वक्त करना है, रोज़ाना करना है, ठीक है, 7 बजे ये काम होगा। तो ये वाला सीन है ना, तो अगर आप ये कर लेंगे तो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में रूटीन भी पैदा हो जाएगी और साथ ही मतलब जो ना आपका डिसिप्लिन की वजह से वो रोज़ आना चलेगा मामला, ठीक है, ये नहीं होगा कि आज किया और कल नहीं किया। इसके अलावा लोगों को जो अपने इर्द गिर्द लोग हो ना, पॉजिटिव लोग रखें, ऐसे जो कि आपको मोटिवेट करें, आपको भी पॉजिटिविटी दें जो आप काम करना चाहते हैं, और इन्फ्लुएंस कर सकें, रिमाइंडर्स भी दे सकें आपको जो भी आप अपनी चीज़ अचीव करना चाहते हैं ज़िंदगी में, और साथ इसके आप चलते जाएं आराम आराम से, कंसिस्टेंसी के साथ जो भी आपका काम है उसमें एक अपने अंदर खुद से एक तहरीक पैदा कीजिए, मोटिवेटेड कीजिए अपने आप को, और उसमें एक्टिवली काम करते रहें। ये नहीं कि बस मतलब जो ना, अगर ख़ुद से एक हौसला, ख़ुद से एक लगन पैदा नहीं करेंगे ना, पैशन नहीं होगा आपके अंदर किसी भी चीज़ को पा लेने का, कर लेने का, तो फिर वो चीज़ ज़रा मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए अपने आप को मोटिवेटेड रखें खुद, जितना आप अपने आप को मोटिवेशन दे सकते हैं, दुनिया को कोई फ़र्क नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी उसके बाद भी आपने पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है ताकि वो भी आपके ऊपर अच्छा इन्फ्लुएंस डाल सकें, ये ना हो कि आप पैसिमिस्टिक बन जाएं, ठीक है। चलें जी, कॉल कीजिएगा मुझे, और मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग परेशान हो गए हैं, सोच में पड़ गए हैं भाई कि कौन सा दिन सेलिब्रेट करना है, तो ठीक है नहीं समझ में आ रहा फिर भी कॉल करें, कुछ और बात कर लेंगे। खैर जी, इस वक्त हम ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, सुनते रहे FM 107 दिल से देसी।
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107। Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
2: गर्मी का सीजन और स्पोर्ट्स का एक्शन,
3: लाइव अपडेट्स, बिग मैचेस और नॉनस्टॉप एक्साइटमेंट,
2: गेम ऑन,
3: वॉल्यूम अप,
2: एवरी संडे और ट्यूजडे दोपहर 1 बजे से
3: समर स्पोर्ट्स विद आरजे फजील,
2: ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी। दोस्तों, लिफ्ट में फंस जाने की सूरत हाल में इन हिदायत पर अमल करें। सबसे पहले तो पुरसुकून रहिए और अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कीजिए। गहरी सांस लें और अपने आप को याद दिलाएं कि मदद रास्ते में है, क्योंकि परेशान होने से आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। इमरजेंसी बटन या इंटरकॉम का यूज करें। हर लिफ्ट में एक सिस्टम होता है जो डायरेक्टली सिक्योरिटी या बिल्डिंग मैनेजमेंट से कनेक्ट करता है। बटन को प्रेस करें और जवाब का इंतजार करें। इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। दरवाजों को फोर्स ना करें। ऑटोमेटिक डोर्स को हाथों से खोलना खतरनाक हो सकता है। ओपन या क्लोज बटन को 5 सेकंड प्रेस करके चेक करें, लेकिन दरवाजों को फोर्स ना करें। हरकत कम करें और मोबाइल का सिग्नल चेक करते रहें। ज्यादा मूवमेंट से हवा और एनर्जी पर असर पड़ता है। पुरसुकून होकर बैठें या खड़े रहें। अगर मोबाइल सिग्नल है तो 999 पर कॉल करें और अपनी लोकेशन बताएं। रेस्क्यू टीम का सब्र से इंतजार करें। सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें और रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार करें। घबराहट या परेशानी से बचने की कोशिश करें और जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी नंबर 999 पर कॉल करें। FM 107 आपके सेफ और खुशहाल दिन की दुआ करता है।
4: क्या आपने कभी खुद से पूछा है, अगर आज मुझे किसी की जरूरत ना हो तो मैं कौन हूं? अक्सर औरतें दूसरों की खुशी में अपनी आइडेंटिटी भूल जाती हैं, मगर अब वक्त है खुद से मिलने का। आरजे एफ और अमिता लेकर आ रही हैं एक नया सफर, मेरी पहचान। बर्नआउट से लेकर नए बिजनेसेस तक, सेहत से लेकर सुकून तक, ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्रीज तय करना चाहती है। आप सिलसिले की एक कड़ी नहीं, आप खुद एक

तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह

0: FM 107. Time check. Time check.
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग विद आरजे मावरिश खान और मैं आ गई हूँ एक दफ़ा फिर से आप लोगों के साथ और आपके लिए। मेरे पास एक बहुत ही अच्छी सी खबर है तो वो शेयर करते चलें आपसे, और ये है कि अच्छा कॉल आ गई, पहले मैं कॉल ले लेती हूँ, ठीक है, फिर मैं ये खबर शेयर करती हूँ। खबर वैसे बहुत अच्छी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
1: जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। जावेद साहब अपनी बताएं, कैसे हैं, कैसी सुबह हुई? इंशाल्लाह हस्ब मामूल और हस्ब जायका हुई होगी।
2: हस्बे मामूल, हस्बे जायका, हस्बे इबादत, हस्बे चाय।
1: माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत सारे जो ना हस्बे हैं आपकी जिंदगी में। गुड है, गुड है।
2: खाली हस्बे नहीं है, ऐसे हैं जो हसाते भी हैं, हस्बे हसाने वाले भी हैं।
1: अच्छी बात है, जबरदस्त जबरदस्त। तो भाई आपने तो जिंदगी बना दी कुछ लोगों की।
2: देखें जिंदगी हमने क्या बनानी है, माशाल्लाह जिंदगी उनकी पहले ही बनी है। मतलब मैं ये सोच रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं आपको मशकूर और ममनून हूँ कि ये आपके तवस्सुत से, आपकी वजह से हमारे पास ये राबते की नौबत आई, तो मैं ये हिम्मत और ये जुरत मैं कर पाया, नंबर वन। नंबर टू, ये जो आप म्यूजिक प्ले करती है ना अपने बैकग्राउंड का, मुझे लगता है कि माशाल्लाह आप खुद बहुत, आपकी आवाज में एक टेस्ट है और बड़ा सुर है आपकी आवाज।
1: आई है, अच्छा
2: पूछे क्यों?
1: क्यों?
2: आई गेस के जिस तरह ये ट्यून बनी है ना, मुझे लगता है कि इसमें आपकी आवाज भी है।
1: नहीं नहीं, मेरी आवाज नहीं है, मेरी आवाज नहीं है, कबीर ने खुद ही बनाया ये। जी जी,
2: गौर से सुनिएगा, मुझे लगता है कि आपकी आवाज का भी इसमें कुछ मैच है इसके अंदर।
1: अच्छा, मैं चलें गौर से सुनूंगी। बिल्कुल बिल्कुल सुनूंगी,
2: क्योंकि जिस वक्त वो लफ्ज आते हैं ना रेडियो, मतलब जो जब आते हैं तो वो लगता है कि वो आप ही गुनगुना रही हैं।
1: अच्छा, मैं चले अब नोट करूंगी, आपने कहा है तो हो सकता है मुझसे मिलती जुलती कुछ आवाज हो। ये भी हो सकता है।
2: तीसरी बात ये है कि माशाल्लाह कल फैजान भाई और इमरान भाई ने,
1: इमरान
2: हाँ जी, पहले मैसेज में मैंने इमरान करके फिर उसको एडिट किया, मैंने निमरान लिखा,
1: निमरान। जी जी,
2: बहुत अच्छे तरीके से, और बड़ा मजा आया मुझे सुन के, पता लगा कि यार कितना मजा आया है। हाँ। और जिस तरीके से उन्होंने गीतों को चुना, बड़ा अच्छा किया, क्योंकि मेरे पास जो किताब या डिक्शनरी है वो जो मैं गाता हूँ ये दिए जाते हैं वही है, इतना फिर मेरे पास वक्त होते नहीं कि मैं गीतों को सुन
1: पाऊँ। आपकी सिलेक्शन भी बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त सिलेक्शन है आपकी भी, मजा आता है।
2: वहाँ पर हमने, मतलब उस मौके की मुनासिबत से हमने चिल करना होता है, इसलिए जो भी आता है वो हम निकाल देते हैं।
1: हाँ। नहीं, बहुत अच्छा, आपने भी बहुत अच्छा, और फिर सुन के मैं फैजान से जैसे यही कह रही थी, जब उन्होंने आपकी आवाज सुनी ना तो वो उस पे कह रहे थे मेरी आवाज भी अच्छी है, तो मैंने कहा अच्छा, लेकिन मतलब इतना एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन वाकई उनकी आवाज बड़ी अच्छी है।
2: बहुत अच्छी यार, बहुत, मतलब है कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि बिल्कुल मैं आना ही बंद कर दूं, बल्कि ब्लॉक कर दूं।
1: भाई नहीं नहीं, जावेद साहब आपकी माशाल्लाह से आवाज एक अलग ही, भाई वो वाला नहीं होता, वो जो आपकी आवाज के अंदर ना वो वाली फील है, कुमार सानू वाली, और उस तरह की फील है, तो वो सुन के मजा आता है, वो हमेशा जो है ना, जाहिर सी बात है, वो सुनना चाहेंगे सब लोग।
2: बहुत शुक्रिया। और इससे सबसे हटके जो सबसे अहम बात है, नफीस भाई का मैं शुक्र गुजार हूँ। नफीस भाई कल जब फोन पे मुझसे बात उनकी हुई, मुझे लग रहा था कि मेरे रूबरू बैठे हुए हैं और हम दोनों बात कर रहे हैं, बहुत चिल, बड़ा कूल माइंड और बड़ा हसमुख बंदा है।
1: हाँ,
2: और यकीन करें कि उन्होंने बल्कि मेरी जिंदगी बना दी, और उनके मुताबिक सुबह मैंने दो दफा शावर लिया।
1: सही।
2: बस हम, मैं ज्यादा बोल नहीं पाता, मेरे पास लफ्जों का तो अंबार नहीं है, लेकिन ये कि मैं शुक्र गुजार हूँ सबकी मोहब्बतों का, और सबसे ज्यादा आपका, क्योंकि ये आपकी वजह से आपको कहा।
1: नहीं नहीं जावेद साहब, आप माशाल्लाह से, मतलब एक बहुत बड़ी बात होती है कि एक तो होता है भाई हमने कॉल कर ली, सब हो गया सब कुछ ना, लेकिन लोगों से कनेक्ट होना, उनके साथ मिलना, और अच्छे जो हमें लोग लग रहे हैं उनसे बाकायदा, मतलब आप मिलना भी चाह रहे हैं, तो ये आपकी अंदर की अच्छाई है बेसिकली।
2: शुक्रिया बहुत, मेरी खुश नसीबी है कि मतलब मैं के जुड़ा, मैं FM 107 के साथ, और मुझे ऐसे ऐसे यूनिक हीरे मिले माशाल्लाह, और मैं फिर आपका शुक्र गुजार इस मामले में। तो आज की बात पे आता हूँ मैं, जो आपका सवाल था, क्योंकि सवाल उससे पहले वही था कि मेरे साथ साथी थे और मैं मगरमच्छ की तरह तड़प रहा था, गाड़ी ड्राइव कर रहा था। लेकिन रेडियो मैंने ऑन रखा हुआ था, मैंने कहा भाई एक्सक्यूज मी मैं रेडियो को जरा ऑन कर रहा हूँ ठीक है, तो उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम यार जो आपका दिल करे आप करें, वो सीनियर भी है मेरे से।
1: अच्छा अच्छा
2: तो बात यह है कि अगर मुझे अपनी जिंदगी का एक दिन खास तौर पर सेलिब्रेट करने का मौका मिले,
1: अब आप तो दिन एक दिन तो सेलिब्रेट करने का मौका मिले, और दूसरा उसको आप चाहते हो कि नेशनल हॉलीडे बना दिया जाए, वो इतना इम्पोर्टेंट है आपके लिए।
2: मैं तो इतना तो खैर वो फिर उसमें तो बहुत सी चीजें आती हैं कि नेशनल पे बहुत सी चीजें आती हैं जो मेरे कुछ
1: जैसे ये हम फन डेज नहीं बताते, चॉकलेट डे है आज, कुकी डे है, इस तरह का, तो वो तो बना ही देते हैं डे कोई ना कोई इस तरह का डे।
2: इस तरह का डे बनाना है तो फिर मैं यही कर सकता हूँ कि जो भी मेरे जानने वाले हैं शावर के, मैं उनके शावर बंद कर दूं
1: क्योंकि
2: पानी को जाया करना गुनाह है।
1: अच्छा एक शावर डे मना रहा है, दूसरा जो ना शावर डे नहीं मना रहा। आप ड्राई बाथ इंट्रोड्यूस करवाएंगे।
2: मैं बस मैं मतलब है कि अभी इतने दिन बन गए हैं, मैं इसके वो बड़े अच्छी उन्होंने बात की है नफीस भाई ने शावर डे, अब उससे हटके मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन मेरे जहन में जो कुछ और चल रहा था
1: पता नहीं, वो बताएं जो आपके दिमाग में कुछ और चल रहा था।
2: मैं अपनी तबीयत के मुताबिक जो मैं उसकी मेरी उतनी सोच है बस।
1: हाँ नहीं बताएं
2: तो मेरी सोच में ये था कि जिंदगी का खूबसूरत और सबसे खूबसूरत दिन तो वो नहीं जो मुझे सब कुछ मिला, बल्कि वो है कि मेरी वजह से किसी को मिला। देता तो रब है, देना तो रब का है, देने वाला वही जात है, लेकिन जरिए बनते हैं, जरिए है ना, उसी सूरत में मिलते हैं, जरिए ही जरिए बनते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही।
2: तो हाँ, तो बाकी मैं उस बंदे को भी सैल्यूट पेश करूंगा जिन्होंने चॉकलेट डे बनाया, क्योंकि चॉकलेट माय फेवरेट, वो कोई भी फ्लेवर हो उसमें चॉकलेट का टच जरूर होना चाहिए।
1: हाँ मुझे भी, मेरे साथ भी ऐसे ही, मतलब कोई चीज भी हो चॉकलेट होनी चाहिए उसके साथ।
2: और ये जितने भी मेरे दोस्त वगैरह है बाबे, ये मुझे मतलब चॉकलेट दे सकते हैं, मैं मोहब्बत में खा लूंगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो सही, तो ये दिन आपने मतलब आपने बनाना है खुशियां बांटने वाला दिन, राइट? बेसिकली
2: मेरे लिए सबसे बड़ा, मैंने एक मैं ड्रीम लेके चल रहा हूँ, बस दुआ, मैंने कहा भी था कि
1: जी जी जी दुआ कीजिए जी जी जी जी बिल्कुल,
2: मैं ड्रीम को मैं पूरा कर पाऊँ
1: इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
2: कुछ हद तक मैं करता भी हूँ, लेकिन मैं प्रॉपर चाहता हूँ कि मेरे साथ मैं उसको मंजर यहाँ पे लेके आऊँ मैं
1: इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला। आपने कुछ ओल्ड होम और इसका जिक्र किया था ना, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है।
2: हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि रिसेंटली मैं एक दिन पूरा माशाल्लाह गुजार के भी आया उनके साथ, और बहुत एक जिंदगी का मकसद समझ आया और जिंदगी की अहमियत क्या है ये वहां पर जाके दिखता है। हम अपनी जिंदगी में इतने मसरूफ हैं, हमें आसपास के लोगों का पता नहीं है बेचारे किन मसाइल से गुजर रहे हैं। हम बोल देते हैं, यहाँ से बोल दिया वहां से भूल गए, क्योंकि हमको वो तकलीफ नहीं है।
1: सही कह रहे हैं,
2: तकलीफ वो है जो आप किसी को देख के खुद के अंदर फील करें कि यार ये तकलीफ अल्लाह ना करे किसी को भी हो, लेकिन हो सकती है, और इसके एहसासात क्या होंगे।
1: सही बात है बिल्कुल ऐसे ही।
2: बहरहाल
1: मैं कहते हैं जावेद साहब कि जिस चीज से आपको खौफ होना कि ये आपके साथ ना हो, तो वो आप दूसरों के साथ करना शुरू कर दो, मतलब वो दूसरों की ज़िंदगी में आसानी पैदा करना शुरू कर दो, तो अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में खुद ही आसानी पैदा कर देता है। तो कोई भी मतलब जैसे हमें होता है ना बहुत सारी चीज़ों का कि ये ना हो जाए वो ना हो जाए, तो उस चीज़ से बचने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जिसके साथ हो चुका है उसके साथ अच्छे तरीके से आप बिहेव करें, उसको खुशियाँ बांटने की, उसको खुशियाँ देने की कोशिश करें। तो ज़बरदस्त, ग्रेट, बहुत आला।
2: दिन का आगाज अपने देखे परवरदिगार की इबादत से, उसके नाम से, तो क्योंकि जब सुबह सो के उठते हैं ना, तो सबसे पहले तो जुबान पे ये अल्फाज होते हैं कि ये अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने जिंदगी और सांस दी, नंबर वन पे ये है। क्योंकि इंसान सो के उठा है तो जिंदगी नहीं मिली से, क्या पता उठना भी है नहीं उठना। तो एक और ऐसा भी होना चाहिए डे के हर बंदा सिर्फ दूसरे को मुस्कुरा के देखे, सिर्फ खालिसन मुस्कुराहट हो। आप यकीन कीजिए जब रास्ते में जाते हुए जो ये लेबर वगैरह ये दूसरे लोग हैं, मैं हल्फन ये बात करता हूँ, जब आप इनको ہائے گڈ مارننگ السلام علیکم یا مسکرا کے آپ یقین اتنی ذہنی تسکین ملتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کچھ کمائی کی ہے
1: exactly بالکل ایسے ہی ہے اور مطلب آپ دیکھو کہ کچھ نا جیسے اگر سیکیورٹی گارڈز ہیں کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ان کا ہر وقت ایک بڑا نا موم قسم کا وہ ایک جسچر ہوتا ہے وہ ہمیشہ مسکرا کے دیکھتے ہیں آپ کو تو خود بخود آپ کو وہ آپ کے دل میں نا پسندیدگی بڑھ جاتی ہے ان لوگوں کے لیے جو بھی آپ کو مسکرا کے دیکھ رہے ہوں ویسے آج کل جاوید صاحب مطلب میں تھوڑا سا یہ نوٹ کر رہی ہوں کہ آج کل لوگوں کے اندر یہ والا جو ہے نا بہت کم ہو گیا ہے وہ جان بوجھ کے پتہ نہیں کچھ ایسی شکل بنا کے رکھتے ہیں مسکرا کے کسی کو دیکھتے ہی نہیں ہے تو یہ والی جو چیز ہے نا واقعی ہونی چاہیے کہ آپ کسی کی طرف دیکھو آپ کچھ اور نہیں کر سکتے آپ کم از کم ایک اچھی جو ہے نا مسکراہٹ چہرے کے اوپر لے کر آ جاؤ کہ دوسرے کو اچھا لگے دیکھ کر
2: بالکل ایسی ہے آپ نے بجا فرمایا ہے بہرحال میں نہیں چاہتا کہ آج کل میری کال تھوڑی لمبی ہو رہی ہے معذرت اور میں امید کرتا ہوں کہ آج بھی ہمارے دوست اور بھائی آئیں گے اور ہمیں سننے کا موقع ملے گا کیونکہ
1: آپ کوشش کیجیے گا کہ آپ بھی آئیں آپ کے ساتھ اچھے اچھے اور سنگرز آئیں تو مزہ آئے گا
2: میں آ سکتا ہوں مطلب ہے کہ اس وقت تو میں آ سکتا ہوں لیکن میری پتہ کیا ہوتا ہے مہوش اگر میں ڈیلی بھی آؤں نا دوسرے پھر کال بھی نہیں ملتی ہم بھی مزہ کرنا چاہتے
1: ہیں تو ایسا کرتے نا چار مطلب تھوڑا تھوڑا ٹائم دے دیتے ہیں مطلب جو بھی آنا چاہتا ہے تھوڑا تھوڑا ٹائم رکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر دوسرے آ جائیں گے لیکن آپ بھی آئیے بہت بہت شکریہ ہیپی ویکینڈ ان شاء اللہ بہت اچھے سے اپنا ویکینڈ سیلیبریٹ کیجیے گا ان شاء اللہ اور پھر آپ سے بات ہوتی ہے پھر دوبارہ چلیں جی تھینک یو جاوید صاحب بہت بہت خیال رکھیے گا اپنا اللہ حافظ ری جی تو ہمارے ساتھ تھے جاوید صاحب اور اس کے ساتھ ہی میں جو نیوز آپ سے شیئر کر رہی تھی جو میں کہہ رہی تھی کہ اچھی خبر ہے اس کی طرف میں آ جاتی ہوں تو قطر کی طرف سے ایک اور مطلب شاندار خبر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ منسٹری آف ایجوکیشن اینڈ ہائر ایجوکیشن نے گورنمنٹ اسکالرشپ پروگرام کے اندر ایک نیا اسپورٹس اسکالرشپ ٹریک لانچ کیا ہے اور یہ پروگرام خاص طور پہ ان ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹس کے لیے ان ٹیلنٹڈ آپ کہہ سکتے ہیں اسٹوڈنٹ ایتھلیٹس کے لیے تیار کیا گیا ہے جو اپنی یونیورسٹی کی ٹیم تعلیم کے ساتھ پروفیشنل لیول پر اسپورٹس بھی کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو اس انیشیٹو کو منسٹری آف اسپورٹس اینڈ یوتھ کی کوآپریشن سے شروع کیا گیا اور اس سلسلے میں گفٹڈ اسٹوڈنٹ ایتھلیٹس اور ان کے والدین کے لیے ایک اورینٹیشن سیشن بھی آرگنائز کیا گیا جہاں پروگرام کے آبجیکٹیوز اسکالرشپ کے بینیفٹس اور ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا اور اپلیکیشن پروسیس کی تفصیل سے معلومات دی گئی اور اس اسکالرشپ کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ٹیلنٹڈ پلیئرس کو اپنی ایجوکیشن اور اسپورٹس میں سے کسی ایک کو چوز نہ کرنا پڑے اب وہ یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے اپنی جو اسپورٹنگ کیریئر ہے اس کو بھی جاری رکھ سکیں گے اور اسکالرشپ حاصل کرنے کے لیے اسٹوڈنٹس کا منسٹری آف اسپورٹس اینڈ یوتھ اور اولمپک کمیٹی کی طرف سے نامنیٹ ہونا ضروری ہوگا اس کے ساتھ گورنمنٹ اسکالرشپ پروگرام کی تمام جو جنرل کنڈیشنز ہیں ان کو پورا کرنا قطر کے ڈومیسٹک اسکالرشپ پروگرام میں شامل کسی یونیورسٹی سے انکنڈیشنل ایڈمیشن حاصل کرنا اور یونیورسٹی کے دوران اپنی پروفیشنل اسپورٹس کریئر کنٹینیو رکھنے کا کمٹمنٹ بھی دینا ہوگا اور منسٹری کے مطابق یہ انیشیٹو قطر کے نیشنل ٹیلنٹ کو ڈیولپ کرنے کی اسٹریٹجی کا حصہ ہے جہاں اسٹوڈنٹس اکیڈیمک اور اسپورٹس دونوں میں ایکسلنس حاصل کر سکیں گے تو یہ پروگرام جو ہے وہ قطر نیشنل ویژن 2030 کے ہیومن ڈیولپمنٹ گولز کو سپورٹ کرے گا اور مستقبل میں قطر کی انٹرنیشنل اسپورٹنگ ایونٹس میں پرفارمنس کو بھی مضبوط بنائے گا تو یہ زبردست نیوز تھی جو کہ آپ سے شیئر کی اور اسی کے ساتھ اچھا اب فیضان نے کہا تھا کہ ایک گانا چلانے کی بات کی تھی انہوں نے کہ وہ گانا چلا دیں تو اس میں تھوڑا سا مسئلہ یہ

हुआ है कि वो वाला नहीं है मेरे पास खुदा और मोहब्बत का तो है लेकिन उन्होंने कहा था अहमद जहांजेब वाला चलाएं तो अहमद जहांजेब का नहीं है बल्कि मेरे पास है राहत अली खान का तो इससे गुजारा कर लेते हैं अभी ठीक है फैजान वो वाला है ही नहीं अहमद जहांजेब वाला ना तो वो मैं करवाऊंगी इंशाल्लाह बोल के कि वो वाला गाना हो जाए तो फिर उसके बाद में आपके लिए वो भी चलाएंगे लेकिन अभी आप ये वाला सुनिए।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी,
1: आर यू रेडी? फ्राइडे 9 PM लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको। टॉप 10 काउंटडाउन। सबसे जबरदस्त गाने, लेटेस्ट हिट्स और आप

0: हर हफ्ते नए सरप्राइजेज और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग। तो याद रखिए फ्राइडे 9 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे कबीर ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: समर्स का टेम्परेचर तो गिरता बढ़ता रहेगा, फिर चाहे मौसम कितना भी सनी क्यों ना हो जाए, रेडियो की वॉल्यूम हम गिरने नहीं देंगे। सन और हमारी साउंड आपके लिए मुफीद साबित होंगी। तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं सन एंड साउंड आरजे सफा के साथ संडे से थर्सडे सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग। आरजे महविश खान के साथ सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
3: राइट, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग और समर मॉर्निंग में एक दफा फिर मैं आ गई हूँ और आपके लिए लेकर आई हूँ एक और न्यूज़। तो आपको बताते चलें कि कतर चैम्बर ने रीजनल नेटवर्क कंसल्टेंसी, जो रीजनल नेटवर्क फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का हिस्सा है, और एस डी जी एम्बेसडर सेंटर्स के साथ मिलकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एम्बेसडर्स फोरम ऑर्गेनाइज किया। और इस फोरम में एस डी जी एम्बेसडर्स प्रोग्राम के तकरीबन 40 स्टूडेंट्स ने शिरकत की। ओपनिंग सेशन में कतर चैम्बर और मुख्तलिफ इदारों के सीनियर ऑफिशल्स ने हिस्सा लिया। फोरम का मकसद स्टूडेंट्स में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट की हिफाजत और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से अवेयरनेस पैदा करनी थी। और पार्टिसिपेंट्स को बताया गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है और कतर चैम्बर किस तरह प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को इन्वायरमेंटली फ्रेंडली और रिस्पॉन्स

0: बाल साहब ये सब मतलब रेगुलर कॉलर थे।
1: हाँ।
0: मैं भी कॉल करता था, बस बहुत कम करता था मैं, लेकिन सुनता था बराबर जरूर।
1: हाँ।
0: थोड़ा अच्छा लगता था। और
1: सही।
0: ओ, और लोग जो इतने पुराने थे कुछ, शायद वो एक नूर नूर करके भाई।
1: हाँ,
0: थे
1: शेख नूर, शेख नूर को भी मैंने पिछले दिनों देखा। वो शेख नूर तो कहीं कहाँ पे चले गए, कहीं देखा मैंने, पता नहीं पोलैंड चले गए ऐसे कहीं चले गए। तो शेख नूर होते थे, आरिफ अब्दुल्ला और आपका तवाब और आफ्ताब शाहिद, मतलब बहुत सारे लोग थे ना जो सारे
0: रहेंगे। हम जहाँ भी रहेंगे तो इंशाल्लाह यादें रहेंगी। और हम हमारे पास मतलब अभी तो इंटरनेट के जराए हैं तो इंशाल्लाह सुनते भी रहेंगे और वक्तन फोक्तन बात भी। आजकल जो ये मैंने एक बार कहा था कि ये एक अल्लाह की नेमत है, ये जो सोशल मीडिया है ना, ये इसके जरिए अगर हम इस्तेमाल करें तो ये अल्लाह की नेमत ही है।
1: सही बात है, सही तरह से करें तो बिल्कुल सही बात है।
0: तो हम कनेक्ट हो सकते हैं कहीं भी रहें, किसी जगह पे भी रहें। तो फौरी तौर पे हमने तो हमें महीनों लग जाते थे उनसे बात करने के लिए और खत खतूत पहुँचने के लिए। एक वक्त था कि मतलब हमको इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अल्लाह ताला ने इतना सेकंडों में हमें मतलब फौरन हम उनको देख भी सकते हैं, बातें भी कर सकते हैं।
1: बिल्कुल ऐसे मतलब अच्छा है ये सिलसिला। बाकी हमें भी सारे क्लास फेलोज वगैरह सोशल मीडिया फेसबुक से ही मिले थे पहले, कि जो सारे क्लास फेलोज दोबारा से शामिल हुए हैं स्कूल के खास तौर पे, तो पता नहीं कौन कहाँ था कौन कहाँ नहीं था। फिर बाद में सब लोगों से मुलाकातें हुई, पता चला अच्छा भाई शादी इसकी यहाँ हो गई, वो हो गई, तस्वीरें शेयर हुई, फिर ये मजा आता है। अच्छा भाई रईस भाई, ये बताएं कि दिन मनाना है आपने कोई अच्छा सा, तो कौन सा दिन मनाएंगे?
0: अब दिन मनाने के हिसाब से तो मैं तो ज्यादा खेल कूद की तरफ मतलब मेरा ये है कि अगर एक दिन एक्सरसाइज डे मनाने का, ये तो हाला कतर ने उसको ये करके रखा हुआ है,
1: तो वो तो है ऑलरेडी। कोई और बताएं, कोई और बताएं।
0: हम
1: मैं सोचती हूँ मतलब देखे ना, दुनिया भर में मनाया जाता है
0: अलग
1: शाउडे।
0: एक दिन हम अपने नानी ननिहाल और ददिया ननिहाल जाने का एक दिन हमें वो बड़ा अपने नानी अपनी नानी और नाना के यहाँ जाते थे, वो कुछ बहुत मतलब अलग सा होता था, इतना अच्छा लगता था। मतलब बचपन में जाते थे तो बड़ा अच्छा लगता था। नानी हमारी मतलब कुछ ऐसी ऐसी चीजें रखी रहती थी छुपा के, और लाके चुपके से देती थी कि मतलब चुपके से खा लेना और लोगों को मत दिखाना।
1: अच्छा।
0: मतलब वो बड़ा अच्छा लगता था। मतलब वो बैर, वो उधर बैर होता थी, बैर बैर बैर आप समझती कि नहीं?
1: बैर हाँ मैं समझती, बिल्कुल बिल्कुल समझती।
0: बेरी बेरी जो मतलब होते छोटे छोटे, तो उसकी रोटी हमारी नानी बना के रखती थी और बड़ा अच्छा लगता था। थोड़ा सा थोड़ा खट्टा और मीठा होता था उसमें, बड़ा अच्छा लगता था। तो वहाँ पे जाने के लिए उसके हाथ का वो खाने को मिलता था। और बाकी उस टाइम क्या था कि ये मिट्टी के बर्तन में ज्यादातर पानी भर के रखे थे और ये करने का रहता था। तो इतना वो दिन मुझे मतलब है बहुत जाके वहाँ पे मतलब इतना खुशी मिलता था जब हमारे मतलब या हमारी नानी कभी कभी हमारे घर पे आती थी तो वो कुछ ना कुछ ऐसे खाने पीने के सामान लेके आती थी कि मतलब बड़ा अच्छा लगता था। हम लोग इंतजार करते थे कि कोई मेहमान आए और कुछ ना कुछ समझ लो हम लोगों को कुछ नया चीज खाने को मिले, मीठे मतलब रोटी बना के लेके आती थी। तो ये सब चीजें बहुत मतलब हम लोग ये करते हैं कि मतलब अपने रिश्तेदारों के यहाँ एक दिन मौका मिले तो हम जो अपने करीब के हैं उनके यहाँ जाके और उनसे मिले जुले और उनके साथ में अपना जो भी दुख सुख है उनसे बांटें और उनके साथ में मतलब मिलके और थोड़ा सा अपना खुशी और वो शेयर करें। मैं तो यही कहूँ कि जिस दिन मौका मिले तो उनसे थोड़ा सा अपने
1: बिल्कुल जी। और अल्लाह ताला सब लोगों के वाकई ननियाल बरकरार रखे, क्योंकि ननियाल जो है ना मतलब बड़ा जरूरी होता है।
0: हमारे नहीं रह गए, बहुत मिस कर रहे हैं हम, बहुत
1: हमारा तो वही ना, हमारा तो मतलब मेरे नाना तो पहले नहीं थे, फिर बाद में नानी भी नहीं रही, अब मेरे बच्चों का भी यही वाला मामला है। तो वाकई ननियाल होना चाहिए, जितना भी मतलब वो वक्त आपको ननियाल वाला याद आता है ना तो बहुत अच्छा वक्त होता है। तो बिल्कुल सही, अल्लाह ताला जो है ना बरकरार रखे, सब लोगों को महफूज रखे हमेशा इंशाल्लाह ताला, और ये दिन भी अच्छा दिन है। चले रईस भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। एक कॉलर और है हमारे साथ।
0: हम शॉर्टकट में ये कहेंगे कि जो अपने करीब के रिश्तेदार हैं उनसे थोड़ा सा मतलब
1: बिल्कुल
0: मेल मिलाप रखें और वो मतलब कायम रखें, ये बहुत अहम है।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल। चले जी रईस भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट, ख्याल रखिएगा, हैप्पी वीकेंड। थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज जी। जी वालेकुम अस्सलाम रईस जी। तो एक कॉलर और है, इसके बाद फिर हम ब्रेक पे चलेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग,
1: गुड मॉर्निंग, हैप्पी वीकेंड।
2: पांच दिनों की कुर्बानी के बाद मिल रहा है।
1: पांच दिनों की कुर्बानी के बाद, और कहाँ थे जुल्कनैन साहब आप?
2: यार मैं यहीं पर हूँ क्योंकि ड्यूटी मेरी 10 बजे हो रही है, तो जब मैं अक्सर ना 8 बजे के करीब उठता हूँ तो ये कॉलर या फिर आपका वो जो गाने वाने या प्रोग्राम है तो वो मैं तो उसमें वो फिर मैं उसमें नाहेल हूँ. मेरा ये जो है ना ज़ौक और शौक नहीं है, मैं बस बातें बना सकता हूँ.
1: सही सही, कोई मसला नहीं.
2: तो मैं फिर एंजॉय कर रहा होता हूँ. तो अब ये टाइम था, मैं बल्कि काफी देर से ही सुन रहा हूँ, हाफ एन आवर से, तो मजे मजे की बातें. और जो मुझे लगी ना वो पिकनिक वाली, अच्छा पिकनिक में सिर्फ मैं ये शॉर्ट में शेयर, हम लोग सारे पड़ोसी मिल के गए उस वक्त कराची में, बुद्ध कोना गार्डन में सिर्फ लेडीज होता था.
1: अच्छा.
2: तो सिर्फ खवातीन और बच्चे अलाउड. तो रिश्तेदारों के साथ जाना तो चलो आप मौके पर मौका चले जाते हैं, लेकिन आप जो अपने पड़ोसियों के साथ जाएंगे ना, ये एक यूनिक होता है. आजकल तो इतने पड़ोसी मिलते भी नहीं है जो आपके साथ या आप किसी के साथ चलने पे तैयार हो जाए. और काफी 4-6 फैमिलियां सारे बच्चे और इस तरह, और ये आपकी जो बॉन्डिंग डेवलप करते हैं ना उन बच्चों में, रिश्ते तो रिश्ते रहते हैं कहीं भी आप चले जाएं हो जाते हैं. बल्कि यहाँ कतर में भी हमारे कोलीग्स भी थे एंड वी लिव टुगेदर 4 फैमिलियाँ. और ऐसे ही अच्छा उनके जाने से हमें बहुत फर्क पड़ा है कि एक तो मेरी मिसिस की सहेलियां निकल गई, बच्चों के दोस्त निकल गए, मेरे अपने भी निकल गए. तो हम लोग ना रहते भी एक ही बिल्डिंग में थे, तो ऐसे ही वीकेंड में ना रखा हुआ था कि आपने इनके घर चले जाना. अच्छा खवातीन अगर ए के घर गई हैं तो बंदे बी के घर, तो बच्चे बस जहाँ मर्जी घूमते फिर रहे हैं खेल रहे हैं. फिर इसी तरह ही कोई मिल के हम लोग पिकनिक पे भी चले जाते, और वो यानी हमें फील नहीं हुआ. वी लिव टुगेदर ऑलमोस्ट 18-19 साल. तो लोग कहते थे ना परदेश, देयर इज नो परदेश, हमें लगा ही नहीं. हाँ अब लग रहा है, अब वी आर अलोन. वो अर्ली रिटायरमेंट हो गए, कुछ चले गए, तो अब हम लोग अलोन. तो बाकी दिन मनाना है तो आप सबसे ज्यादा जो लोग कह रहे हैं ना एंगेज रहते हैं, आप ना मोबाइल फ्री, मोबाइल फ्री मनाए यानी मोबाइल डिटॉक्सिवेशन. अच्छा हम लोगों ने यहाँ घर में भी मनाने की कोशिश की कि ना मिसिस को आराम देते हैं, हम काम करेंगे, लेकिन उनकी सबर का पैमाना लबरेज हो गया. उन्होंने कहा तुम लोग के काम के बाद जो मुझे काम करना पड़ेगा ना.
1: सही.
2: तो जितना तुम लोग फैलावा किचन में या उसमें कर रहे हो यूज टू, तो
1: उन्होंने इनकार कर दिया आपकी हेल्प लेने का.
2: इनकार कर दिया, आप लोग निकल जाओ यहाँ से, खुद ही कर लूंगी.
1: हाँ ये भी होता है.
2: इस पे जज्बा रहना चाहिए, शौक रहना चाहिए, मौके मिलते रहते हैं. और वाकई हमें एक दूसरे से कनेक्शन, अच्छा हद से ज्यादा कनेक्शन भी, जैसे आप देख रही है ना मोबाइल या इंटरनेट के थ्रू, अब हम लोग एक तरह से फ्री एक दूसरे से कनेक्टेड हैं 24/7. और एक जमाने में आप कॉल करते थे या पाकिस्तान या लोकली ट्रंक कॉल सिटी टू सिटी, तो लोग कहते थे भाई इसकी कॉल आई है सुन लो 1-2-3 मिनट बड़ी तवज्जो से, और उसने भी सुननी. अब उसमें बात ही नहीं रही, हर वक्त कहते हैं ना हर वक्त का आना जाना कदर खो देता है. तो ये भी नौबत हो गई है.
1: हाँ, ये तो है.
2: सबसे ज्यादा रिलैक्सेशन, अपने आप को पीसफुल, और ये जो पार्क का आइडिया है द बेस्ट. कितनी हीट वेव चल रही है, इसमें भी आप जाएं देखें. और कोई अल्लाह ताला या नेचर, अगर आप कहीं आपके साथ किसी कोलीग के बच्चे हैं या वहाँ जिसमें बच्चे हैं और जिसमें अलाव भी है, क्योंकि बाज़ का फैमिली वालों में ना वो अलाव भी नहीं करते कि आप ना उसके जाएं, तो आप जाएं देखें और नेचर को. आजकल कितनी हीट वेव चल रही है, शदीद हीट.
1: बिल्कुल
2: तो
1: बिल्कुल.
2: इसमें तो इंडोर एक्टिविटीज ही हैं, बाकी
1: अच्छा
2: आप ग्रुप बना रही हैं.
1: अमीन भाई ने बताया था मुझे, मैं मेरा अभी तक तुर्की जाना नहीं हुआ है, लेकिन वो जाते रहते हैं वहाँ पे, तकरीबन समर्स गुजारते हैं. तो उन्होंने बताया था कि समर्स में वहाँ पे एक तो छुट्टी दे देते हैं उनको ऑफिशियली, ज़्यादातर लोगों की जो है ना ऑफ पे होते हैं वो लोग, और उन लोगों का मामूल है कि शाम 4 बजे से सारे के सारे, मतलब लोग घर पे मिलेंगे ही नहीं, सारे लोग पार्क्स वगैरह में ही आपको नजर आएंगे. तो कुछ जगहों का कल्चर होता है सारा, और मुझे लगता है मैं अक्सर कॉर्निश पे देख रही होती ना सुबह सुबह के वक्त, अब तो खैर कॉर्निश से आना नहीं होता, पहले आना होता था, तो मैं देख के हैरान हो रही होती थी कौन लोग हैं भाई जो सुबह सुबह जॉगिंग करें, इनको कोई काम काज नहीं करना क्या. अब देखिए कितने लोग आपको सुबह सुबह नजर आ रहे होते हैं. तो लेकिन अच्छी एक्टिविटी है, मतलब अगर फ्लेक्सिबिलिटी हो ना आपके पास, थोड़ा सा मतलब ईजी रूटीन हो आपकी, वर्क लाइफ बैलेंस हो, तो उस वक्त पे आपके पास ये वाली अपॉर्चुनिटी कि जॉगिंग पे जा रहे हैं कहीं पे, मतलब बिल के शाम को 4 बजे पार्क्स में बैठे हुए हैं, तो अच्छा होता है, मजे का होता है.
2: सुबह की जॉगिंग और सुबह की मूवमेंट और जब सनराइज है द बेस्ट ब्लेसिंग है
1: लेकिन मैं ये सोचती हूँ कॉर्निश वगैरह कैसे पहुंच जाते हैं लोग मतलब हम तो अपने घर के कंपाउंड में नहीं कर सकते लोग जो है ना कॉर्निश पहुंच जाते हैं

0: तो हमारा लेजीनेस है, लेकिन हमारा जो पहले घर था ना वो इतना ही था कि बस दो सिग्नल क्रॉस करो, और हम बच्चे छोटे थे तो कई दफा हम लोग जाते थे, आज तभी बाहर कर लिया और वहाँ एक डेढ़ घंटा बस थोड़ा सा हमने चक्कर शक्कर लगाया। मकसद ये होता था कि सुबह का जो हवा है और ये जो सनशाइन है ये ले, इससे ज्यादा नहीं, एक डेढ़ घंटा सफिशिएंट होता है। तो बस उसमें आप फजर की नमाज के बाद जैसे ही जरा सा सफेदा निकले उसके बाद निकले, हाँ उठना। उठने वाला कौन है ये इम्पोर्टेंट चीज है। हाँ। और जो सराउंडिंग में है ऐसे हैं, रोड क्रॉस करते हैं सामने आ जाते हैं, दैट्स फाइन। तो जो दूर वाले हैं फिर वो उनको तो अपने आप को मनाना पड़ता है, फिर गाड़ी में बिठाना पड़ता है, तो फिर वहीं जाना पड़ता है।
1: वही
0: ये तो है। तो बाकी आपने जो ग्रुप के बीच में बात चल रही थी, यू आर द ग्रुप लीडर।
1: नहीं, मैं यही सोच रही हूँ कि अभी बीच में मैंने कितने शोज किए उसमें ऐसा नहीं हुआ, लेकिन पहले मैं गुड मॉर्निंग करती थी उस वक्त में भी सब लोगों की ग्रुप्स बन गए थे और बहुत सब लोग मिलना जुलना और सब कुछ था उस वक्त सिलसिला था। अब दोबारा इतने अरसे के बाद मैंने मॉर्निंग शो करना शुरू किया तो फिर दोबारा ग्रुपिंग हो रही है। तो मुझे देख के अच्छा लग रहा है।
0: तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा जो बिफोर प्रोग्राम? हाँ,
1: नहीं सीरियसली मैं फिक्रमंद थी,
0: इकबाल साहब की बल्कि आवाज नहीं आ रही काफी।
1: हाँ, काफी दिनों से वो बल्कि मैसेज करते हैं, उनकी खैरियत पूछो तो फिर वो जवाब नहीं देते, पता नहीं कहीं गुम है आजकल। तो हाँ जी जी बिल्कुल। तो अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा, मुझे काफी डाउट्स थे। एक तो बहुत अरसे के बाद 3 घंटे का शो, तो एक था कि इतने अरसा हो गया मैं 1-1 घंटे का ही शो कर रही हूँ तो मुश्किल हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल पता नहीं चला और बहुत इंजॉय किया मैंने सीरियसली। और सबसे बढ़कर सुल्कनैन साहब हर वक्त में ना जब आप जाते हो, जिसमें शाम का शो करी थी कुछ नए लोग मिले उस वक्त में, अब मैं सुबह में आई हूँ तो माशाल्लाह इतने अच्छे अच्छे लोग इंक्लूड हुए हैं कि मैं तो मिस करूंगी अगर ये लोग मुझे वहाँ शो पे कॉल नहीं करेंगे, जहाँ पे भी मैं अब जाने वाली हूँ तो मुझे पता नहीं है। तो मैं सीरियसली बहुत सारे लोगों को मिस करूंगी।
0: लेकिन ये भी मैटर करते हैं ना, यहाँ आपके पास जो 3 घंटे की फ्लेक्सिबिलिटी है वहाँ 1 घंटे में तो
1: नहीं हो पाएगा।
0: तो उसमें भी चले। हाँ। आप देखें अल्लाह ताला आपके लिए बेहतर करे, अगर आप जाने वाली हैं तो रुक जाए, नहीं रुकना तो चली जाए।
1: नहीं, वेकेशंस तो वो हो गई है ना, डिसाइडेड है, तो इंशाल्लाह भी नेक्स्ट वीक है मेरा, फिर उसके बाद में चली जाऊंगी। फिर इंशाल्लाह मेरा और नाजिया के 2 शोज होंगे साथ में, क्योंकि मैं आ जाऊंगी, मतलब कोई मेरा ख्याल 30 अगस्त को मैं आऊंगी, 30 अगस्त 30 और 31 हम लोग साथ करेंगे। फिर देखें, हो सकता है कि मुमकिन है कि हम सुबह में ही हो, हम में से कोई एक सुबह में ही रह जाए, और हो सकता है हम किसी और वक्त चले जाएं, अभी कुछ कह नहीं सकते।
0: अच्छा अच्छा, तो आम वगैरह खाएंगी जाके? पाकिस्तान ही जा रही
1: हैं? पाकिस्तान नहीं जा रही मैं।
0: नहीं जा रही हमारे पाकिस्तान में भी जा रही। था कि जाएं तो कहते हैं यार कहीं और ट्राई करें।
1: हाँ,
0: तो
1: exactly.
0: इस वक्त डिसाइड कर रहे हैं,
1: अभी बच्चे तो थोड़े से बड़े हो रहे हैं ना, तो अब उन लोगों के थोड़े से मतलब उनकी चॉइसेस थोड़ी चेंज हुई हुई है, और हमारा तो सीन ये है कि पाकिस्तान में अभी वैसे मतलब भाई बहन है, लेकिन वो भी जाहिर सी बात आपको पता है सब अपनी अपनी जिंदगी में बिजी होते हैं। तो हमारा यही होता है कि सब मुझसे पूछते हैं, कुछ कॉलेज हैं वो हर दफ़ा मुझसे पूछते हैं पाकिस्तान जा रही है, लेकिन मैं हर दफ़ा यही जवाब देती हूँ, पेरेंट्स नहीं होते ना तो फिर वो वाली अट्रैक्शन नहीं रहती आपके लिए जाने की।
0: बोलो, आपने सही कहा, पेरेंट्स होते हैं। मुझे याद है कि ईद की टिकट ना ऑलमोस्ट डबल प्राइस पे लेके कि मैंने माँ बाप के साथ जाके
1: ईद करनी, बिल्कुल,
0: जब वहाँ कोई इंतजार करने वाला ही नहीं, कोई पूछने वाला ही नहीं, तो फिर तो
1: ये फर्क आ जाता है ना। हाँ बिल्कुल, ये बहुत फर्क आ जाता है, सबकी अपनी जिंदगियाँ शुरू हो जाती हैं, माँ बाप होते हैं, बाकी बहन भाई बहुत मोहब्बत करते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन वो वाला जो एक जो चीज़ है ना उसको फिल नहीं कर सकता कोई, तो वो एक एक्साइटमेंट और सब कुछ दिन गिने जा रहे होते थे। अम्मी तो जब तक थी तो खास तौर पर एक एक दिन गिन रही होती थी, अब तुम्हारे आने में इतना टाइम रह गया, और फिर जाने के बाद थोड़े दिनों के बाद हो जाती थी कि अब तुम वापस जाने वाली हो, तो वो जो ना चीज़ पर आप मिस करते हो। और मुझे तो सच बात है कराची, वो कराची लगता ही नहीं जब से अम्मी नहीं है ना, तो मुझे बस मतलब उधर देख के ऐसा लगता है कि वो नहीं है तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, तो ये वाला सिलसिला होता है। खैर जी, इंशाल्लाह ताला अच्छा ही होगा इंशाल्लाह, और फिर आपसे दोबारा बात भी होगी, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक हूँ मैं।
0: चलें ठीक है, लेकिन जाएं किसी मुल्क में, अच्छा है बच्चों को
1: लेकर। जी जी जी, इरादा है, इरादा है,
0: डेवलप हो जाएगी।
1: बिल्कुल इरादा है,
0: सोच रहा हूँ, क्योंकि बेटी तो मेरी आई है ऑलमोस्ट नाउ 1 वीक।
1: अच्छा अच्छा,
0: तो अभी मोर देन 2 मंथ है, तो अभी हम सोचें।
1: हाँ।
0: बस बेटा मेरे के एडमिशन का हो जाए, उसने अभी काफी टेंशन दी हुई है। वो उसका एडमिशन कन्फर्म हो जाए। वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहा था, इस सिलसिले में उसने 1 साल अपना टाइम किया, बहुत प्रिपरेशन की उसने,
1: माशाल्लाह।
0: लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ पॉलिसी अपडेट हो गई है, हम आपको एडमिशन दे देंगे और स्कॉलरशिप नहीं देंगे, और फीस $1,00,000 $80,000।
1: मैंने कहाँ की बात करें?
0: USA।
1: अच्छा अच्छा, सही सही। हाँ। सही, हाँ हाँ,
0: तो सही, उसके माशाल्लाह रिजल्ट बड़े टॉप, उसने टॉप किया।

0: कि वो था तो वो बड़ा एक्साइटेड था कि मुझे तो मिलनी चाहिए उसके साथ, लेकिन उन्होंने कहा पॉलिसीज अपडेट, हम आपको फीस देनी पड़ेगी। मैंने कहा भाई हम इतना तो कमाते ही नहीं है, सारा कुछ
1: नहीं, इंशाल्लाह ताला अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा इंशाल्लाह ताला। बच्चा काबिल है ना तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बहुत अच्छा करेगा। हाँ दुआएं हैं इंशाल्लाह ताला, सबके बच्चों के लिए दुआएं हैं, तो इंशाल्लाह ताला अच्छा ही होगा कुछ ना कुछ।
0: ओके जी,
1: थैंक यू, ख्याल रखिएगा ज़ुल्कर्नैन साहब, फिर बात होती है, हैप्पी वीकेंड एक दफ़ा फिर से आपको, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। रही जी, तो अभी शहजादा सलीम आए थे तो उन्होंने कहा था कि आओ वहाँ चले, मतलब ये बात कर रहे थे कि एक दिन हो जब सब लोग बोलें कि कहाँ है लोग, कहाँ गायब हो गए, चलो आओ वहाँ चले। तो मेरे दिमाग में वाला गाना आया था शहजादा सलीम, खास तौर पे आपके लिए, इंजॉय कीजिए।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक। राइट राइट 8 बज के हो गए 3 मिनट और एक दफा फिर मैं आप लोगों के साथ आ गई हूँ और एक अच्छी सी खबर आपसे और शेयर करते चले। आज मेरे पास काफी अच्छी अच्छी सी खबरें हैं और अच्छी बात है, वीकेंड भी है ना। खैर जी, तो कतर के लिए स्पोर्ट्स के मैदान से एक और फखर की खबर सामने आ गई और वो ये है कि कतर पैडल फेडरेशन ने ऐलान किया है कि इंटरनेशनल पैडल फेडरेशन ने दोहा को 2026 और 2028 FIP पैडल वर्ल्ड कप्स की होस्टिंग राइट दे दिए हैं और ये टूर्नामेंट खलीफा इंटरनेशनल टेनिस एंड स्क्वाश कॉम्प्लेक्स में होगा ऑर्गेनाइज और जो दुनिया के बेहतरीन पैडल वेन्यूज में से शुमार होता है और पहले भी कई इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स की मेजबानी कर चुका है। तो 2026 का वर्ल्ड कप 2 नवंबर से 7 नवंबर 2026 तक होगा जहां 16 मैंस और 16 विमेंस नेशनल टीम्स वर्ल्ड टाइटल के लिए मुकाबला करेंगी। तो ये जबरदस्त ही न्यूज भाई, मतलब यहाँ पे FIP होने वाला है जबरदस्त और इसके साथ ही और क्या है और क्या। हाँ, आपके मैसेज शामिल कर लेती हूँ। आप मुझे बता सकते हैं कि अगर कोई दिन आपने सेलिब्रेट करना हो तो वो कौन सा दिन होगा और क्यों। ठीक है, सलाम मैडम, हाउ आर यू, योर प्रोग्राम इज गोइंग गुड माशाल्लाह। खलील पराचा, कहाँ है खलील भाई, आपसे तो बात ही नहीं हुई है। हैप्पी वीकेंड आपको। और निमरान खान का मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी वीकेंड निमरान खान, आपको भी हैप्पी वीकेंड, क्या हाल चाल है आपके। इसके साथ ही जफरा खान ने मुझे मिस कॉल दी थी, अस्सलाम वालेकुम कह के। वालेकुम अस्सलाम। गजनफर जट हैं और ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम गजनफर जट, क्या हाल चाल है। जसविंदर सिंह कहते हैं कि मैडम जी वेरी गुड प्रोग्राम, और जसविंदर सिंह काला दिल से देसी, प्लीज पानी दा बुलबुला। रब्बी शेरगिल ने कब गाया है पानी दा बुलबुला। रब्बी शेरगिल का ना मैं कोई और गाना लगा देती हूँ आपके लिए, मतलब आज देख लेते हैं कोई गाना अगर मिल जाता है। अच्छा, आपने नाम लिखा है क्योंकि मैं उस दिन ढूंढ रही थी ना, तो मैं लिख रही थी 1 बी, आपने 2 बी लिखे हैं, तो हाँ मैं आपके लिए ये वाला चलाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है वाला गाना। ठीक है, रब्बी शेरगिल का चलेगा आपके लिए इसके बाद। ठीक है, और जी बुल्ला की जाना मैं कौन, मेरी ख्वाहिश ही नहीं पूरी होने दी आपने, चलेंगे वाला लगा देती हूँ। बुलिया है मेरे पास, बुलिया और बुल्ला के जाना मैं कौन एक ही है क्या, अगर एक है तो ये वाला लगा देती हूँ, वरना है देखिए 3 गाने हैं, बुलिया तेरे बिन जो कि मैं लगाने वाली थी, और तीसरा है बंदिया तू। अब इसमें से कौन सा लगाऊँ मुझे बता दें लिख के, और ये सेम है कि नहीं है, फिर मैं चला दूंगी आपके लिए। शहजादा सलीम कहते हैं मैम थैंक्स फॉर सॉन्ग डेडिकेशन, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका। सुरजीत ने कहा सलाम माही मैम, हैप्पी वीकेंड एंड वेरी नाइस योर शो मैम, मैं तो वीकेंड पर न्यू पंजाबी फिल्म सत

0: तुझ देखूंगा और ना तमन्ना है सितारों की ना चाहत है नजारों की, जब तुम जैसे दोस्त मिले तो क्या जरूरत है हजारों की। ओए होए होए क्या बात है सुरजीत। इसके साथ ही अस्मिता अफरीदी का मैसेज है और ये कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, मुझे तो अगर एक दिन सेलिब्रेट करने का मौका मिले ना तो वो दिन होगा वर्ल्ड क्लास फेलो डे। अच्छा ओके, जिसमें आपके स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी के वो क्लास फेलोज उसी स्कूल या कॉलेज की उसी क्लास रूम्स में वैसे ही बैठे हैं जब एक ज़माने में बैठा करते थे, और अगर जिंदा हो तो टीचर्स भी, अच्छा जिंदा हो के जिंदा हो तो टीचर्स भी वहाँ वही आए जिन्होंने हम सबको पढ़ाया हो। ओए होए मैं कहता हूँ कि बस नफीस भाई की तरह हमारी जिंदगियाँ बन जाएंगी। ओके काश ऐसा मुमकिन हो। और मुझे लगता है कि बहन के अगर आपका कोई फेवरेट दिन होगा तो वो होगा इंटरनेशनल स्लीप डे। वो तो मैं रोज़ मनाती हूँ, उसके लिए क्या है, जिसमें उस दिन पूरी दुनिया और कुछ भी ना करे सिर्फ और सिर्फ सोते रहे। नहीं हमारे घर पर ना ये दिन ना सबका फेवरेट है, मतलब ये सबका है, ये सिर्फ मेरा वाला मामला नहीं है, हम सारे के सारे सोते लोग हैं, मतलब ये हमारा सबका कॉमन चीज़ है। तो सोते हैं भाई, अच्छी बात है, सोना चाहिए, सोना ज़रूर चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं सुन रही थी कल, इत्तेफाक की बात है, कल मैं बाहर थी तो सफ़ा का सुन रही थी, तो सफ़ा ने भी मेरी तरह सेम बात बोली। उसने कहा कि अगर मैं 100 साल मुझे कुछ सुलाना चाहेगा ना तो मैं 100 साल सोने के लिए तैयार हूँ। तो ये हमारा होता है भाई, बहुत सारे लोग इस किस्म की कैटेगरी में हैं, सिर्फ मैं नहीं हूँ जिसकी ख्वाहिश सीरियसली। एक वक्त आया था जिस वक्त मैं सोच रही होती थी अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, मुझे लगता था मेरी नींद तो मरने के बाद ही पूरी होगी, इतनी लंबी नींद है कि वो नींद जो है ना मतलब ख़त्म ही नहीं होती, जितना भी सोकर उठ जाओ लगता है अभी तो सोए नहीं थे, अभी अभी से आंख खुल गई थी, ये वाला सीन है। खैर हमारे साथ कॉलर है, हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर।
0: वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं?
1: अज्जू विद यू।
0: अज्जू कैसे हैं आप, हैप्पी वीकेंड?
1: या हैप्पी वीकेंड।
0: कोई डे
1: सॉरी
0: आज बताना है, कोई डे, कोई भी दिन आप सेलिब्रेट करना चाहें दुनिया के साथ।
1: दुनिया का साथ न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर।
0: न्यू ईयर ओके, यानी आपने इन्वेंट करना एक डे, आपने मनाना है, आपके लिए कोई चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है दुनिया की कि आप चाहते हैं पूरी दुनिया इस चीज़ को सेलिब्रेट करे, आपको इतनी पसंद है। अच्छा मैं अगर अपने तौर पे करूँ ना तो मैं कड़ी पकौड़ा डे मना लूँगी, क्योंकि मुझे कड़ी बहुत अच्छी लगती है, तो मैं चाहूँगी कड़ी पकौड़ा डे होना चाहिए, बिरयानी डे तो है, कड़ी पकौड़ा डे हो ताकि सब लोग उस दिन जो है ना सिर्फ और सिर्फ कड़ी चावल खाएँ।
1: मैं तो बनाएगा वर्ल्ड रेस्ट डे।
0: वर्ल्ड
1: रेस्ट डे,
0: रेस्ट डे ओके सही है।
1: एवरीवन गेटिंग वन डे ऑफ, राइट?
0: वन डे ऑफ एंड रेस्ट,
1: बट दिस इज या बट दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल।
0: व्हाई?
1: इट्स लाइक अ सेलिब्रेशन, यू नो दिस what can I say? Sunday is off for everyone.
0: Yeah, exactly.
1: What about the other truck drivers and daily wages, daily workers? They don't have any holidays. They don't have nothing. They are working continuous.
0: Point.
1: So
0: exactly.
1: Everyone take rest one day. I will celebrate World Rest Day.
0: Say.
1: So this one like every month one day
0: every month one day for every month and for everyone including drivers and other persons,
1: include only those working in critical departments like medical and firefighters and some critical departments only, no need to just go for work. Others take rest, world rest day. No, even if you went outside, you cannot see even a single bike, single car, single truck, you cannot see.
0: सही सही.
1: There, इसके लिए एक फायदा भी है ना. हमारा ग्लोबल एनवायरनमेंट का पोल्यूशन कम होता ना. आजकल कितना गाड़ी, कितना डीजल इंजिन बर्निंग हाइड्रोकार्बन.
0: एग्जैक्टली.
1: एक दिन आप घर में बैठ को आपका वेकेशन एंजॉय करो, आपका एक दिन छुट्टी है वो एंजॉय करो.
0: सही सही, वाकई बहुत जरूरी दिन है, मतलब आपने बड़ा डीपली सोच के ये दिन बताया, ऐसे ही नहीं कि ऐसे ही बता दिया, अब वाकई मतलब जबरदस्त
1: एक एक दिन। अभी देखो कोविड टाइम में जा

0: आदमी ने नहीं चलाया था, विच मीन्स वी आर नॉट कमिंग the environment department, they are saying our global, our ocean layer and our global warm little bit increase, little bit decrease. So, आप एक दिन जैसे एक दिन बनाओ, आपका दोनों साइड फायदा है, क्योंकि ये गॉड गिव अस अ मैसिव गिफ्ट लाइक अर्थ. आपको जितना सारा प्लैनेट है, आपको कोई अर्थ जैसे देखने के लिए नहीं मिलेगा. सो सेव अवर अर्थ एंड टेक वन डे हॉलीडे लाइक वर्ल्ड रेस्ट डे.
1: सही हो गया, जबरदस्त. बहुत अच्छा दिन है, बहुत अच्छा दिन और बड़ा जरूरी दिन, जिस तरह से आपने पूरा डिस्क्राइब किया. तो वेरी नाइस, ग्रेट.
0: थैंक यू मैरिज.
1: थैंक यू अजू. कुछ और कहना है? हैप्पी वीकेंड आपको.
0: हैप्पी वीकेंड.
1: ख्याल रखिएगा अपना. थैंक यू जी, बाय बाय, टेक केयर. रोही जी, तो अज्जू हमारे साथ. और भाई, मतलब सबसे रिसर्च के साथ अज्जू की कॉल आई और अज्जू ने बताया कि भाई ये वाला दिन मनाना चाहिए. और उसके पीछे जो रीजंस थे वो भी उन्होंने बताया कि कार्बन इमिशन कम होगा, बाकी मतलब एक दिन गाड़ी वाड़ियाँ ना चलें. और ये भी सही बात है कि वैसे जब छुट्टी होती है, सब लोगों को मिलती भी है, तो उस दिन भी ड्राइवर्स को, बहुत सारे ऐसे लोग हैं डेली वेजेस के ऊपर जो काम करते हैं, जिनको नहीं ऑफ मिल रहा होता, तो इंक्लूडिंग देम इन्होंने, अज्जू ने सजेस्ट किया कि भाई छुट्टी होनी चाहिए, सब लोग रेस्ट करें, सब लोग आराम से पड़े रहें यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो ये वाला दिन होना चाहिए. अच्छी बात है, ग्रेट, जबरदस्त. और इसके साथ ही जी, मेरे पास कुछ मैसेजेस और हैं तो वो मैं देख लेती हूँ. और ये है, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, इंशाल्लाह वन डे वी विल सी द सक्सेस एज अ रिजल्ट ऑफ डिफिकल्टी. ग्रेट. अच्छा, ये जो मैसेज आता ना, ये एक तो नाम नहीं होता इसके ऊपर, और फिर उसमें बहुत सारे इमोजीज के बीच में लिखा हुआ होता है, तो मुझे कन्फ्यूजन हो रही होती है कि कहाँ से कौन सी चीज़ है, कहाँ पर पढ़नी है, कहाँ पर नहीं पढ़नी, कहाँ पर बीच में घड़ियाँ, हार्ट, फूल, बहुत कुछ आ जाता है. कौन भाई है? ये रोज़ाना आते हैं ना, नाम लिखते हैं और इनका एक ही स्टाइल है लिखने का. सैयद खादिम हुसैन कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, माविश खान ढेर सारी दुआओं के साथ आदाब, और बहुत इंतज़ार किया कॉल करने के लिए लेकिन मसरूफ रही लाइन. अच्छा, तो अभी फ्री हैं क्या? अगर फ्री हैं तो बताएं, मैं आपको खुद कॉल कर लेती हूँ, बताइएगा. और इसके साथ ही जी, मोहम्मद यूसुफ खान कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, गुड मॉर्निंग माविश जी, कैसी हैं आप? होप वेल, वेलकम टू समर मॉर्निंग, दिल से देसी, और हैप्पी थर्सडे मॉर्निंग, हैप्पी वीक. और मावा जी, अभी तो हर इवेंट हेयर कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन होती ही रहती है, बाकी रही क्या गया है. मेरे ख्याल से साइलेंस डे होना चाहिए ताकि एक दिन सारी दुनिया खामोश रहे. आई थिंक ये डे है शायद. मतलब ऐसा कैसे होगा मोहम्मद यूसुफ, मतलब मेरा सोचें, मैं ऐसा नहीं हो सकता भाई. अब तो मैं नोट करती हूँ, मैं बहुत ही बोलने लगी हूँ, मैं तो बहुत बोलने लगी हूँ, मैं सीरियसली ड्राइव करते हुए अकेले भी मैं बोलने लगी हूँ. वैसे भी मतलब नहीं रहा जा सकता, इतना नहीं हो सकता कि हम जो है ना खामोश रहें, ये नहीं हो सकता. और जी, बुल्ला की जाना में कौन, ये रब्बी शेरगिल. अच्छा, मैंने आपको बताया ना, मेरे पास तीन गानों की चॉइस है, रब्बी शेरगिल के तीन ही. अब मुझे इसमें से नहीं पता बुल्ला की जाना कौन है, मैं बुलिया चला देती हूँ, ठीक है. अच्छा जी, इसके साथ हैं कोई कॉलर. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू.
1: जी, नूर मोहम्मद मंसूर साहब, क्या हाल है आपके?
2: अल्हम्दुलिल्लाह.
1: जबरदस्त, ग्रेट.
2: सारे पिकनिक वाले लोग गांव में, कोई नजदीक नहीं आते.
1: हाँ, सॉरी, फिर से बोलिएगा, आवाज नहीं आ रही.
2: किधर रह गए सारे पिकनिक वाले लोग, गांव में कोई नजर ही नहीं आता.
1: अभी से नजर नहीं आ रहा.
2: किधर किधर घूमने जाऊँ,
1: वहाँ जाना है ना, वहाँ. सब लोगों को वहाँ पे पहुँचना है तो पिकनिक मनाने के लिए.
2: जी
1: जी, और बताएं नूर मोहम्मद मंसूर, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, सब सेट है?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, बस मेरा भी आज की वजह से दो छुट्टी स्टार्ट हो गया.
1: वाओ, जबरदस्त, ग्रेट ग्रेट, बहुत आला, बहुत जबरदस्त.
2: एंजॉय कर रहा हूं आपके प्रोग्राम से. सुबह सुबह जो टॉपिक से स्टार्ट किया आपने, चलो कुछ सीखने को लेकर मिला.
1: हां हां,
2: इसका मतलब ये होता है.
1: हाँ
2: हाँ, हम तो बस सिर्फ कह ही रहे थे कि अल्लाह वो समझ ला, मेरी तो बोला मेरा ला मेरे लोग ऊपर वाले सब बता दे, मालूम होगा काम.
1: नहीं, मैं, मुझे भी अभी पता चला कि मतलब ये फर्क है इसमें, मैंने जब ये चीज देखी और बहुत रिलेटेबल है ना.
2: खास कर शुरू का प्रोग्राम से, ये प्रोग्राम से लेकर मैं सुबह के अस्पताल तक इतने मिस नहीं करता, मैं डाटा ही बंद कर देता मोबाइल का, डिस्टर्ब ना करें. बाकी तो मिस हो जाता है. पर जो कॉल जो आया ना कल, मैं मैनेजर के साथ था गाड़ी में, तो मुझे तो अंदाजा हो गया कि बस कुछ फेमस इंसान ही कॉल किया होगा. मेरा नंबर आया तो उसका बोलने, यहाँ पर तो थोड़ा कंट्री, यहाँ पे तो थोड़ा बोलने का अंदाज उसका अलग है, लेकिन जो प्राइवेट कॉल कर रहे उसमें तो और ही अलग है.
1: अच्छा सही सही सही.
2: मैं दुनिया का खूबसूरत इंसान कैसे हो सकता हूँ. चलो भाई बकर पहचान बोला. हाँ 107. जी जी जी
1: गुड. जबरदस्त
2: जबरदस्त. जो हुआ लंबी चौड़ी कुछ नहीं हुआ. मैं भी हाँ यहाँ बस मिला के रख दिया. मेरा मैनेजर सब बोलता है कौन है, मतलब बस हाँ कोई मुझे चाहने वाला.
1: ये अच्छा
2: है.
1: बिल्कुल
2: ऐसा ही.
1: चलें जी गुड हो गया. और ये बताएं नूर मोहम्मद मंसूर खान कि आपने मनाना है दुनिया में कोई दिन, इंट्रोड्यूस करवाना है कोई नया दिन, तो वो कौन सा दिन होगा? सॉरी
2: मेरे लिए बोल रहे हैं पूरा ऑल.
1: नहीं आपको वो चीज इतनी पसंद है कि आप चाहते हैं पूरी दुनिया वो काम करे.
2: जहाँ तक मैं मेहनत कर रहा हूँ अब मुझे वक्त नहीं मिल रहा है, तो अगर मुझे एक दिन अगर टाइम मिले तो मैं उन सारे दोस्तों के साथ में गप्पे सब लगाना चाहता हूँ. बस मुझे दिल से चाहता है ताकि मुझे बस अच्छी और बुरी बात बताए कि हाँ तुम ये गलत करते हो और ये सही करते हो. एडवाइस देने वाला.
1: एडवाइस देने वाला. सही सही. तो एडवाइस डे मनाना चाहेंगे आप, वर्ल्ड एडवाइस डे. सही सही.
2: आपका जाते जाते नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह अपना भी दिल का इजहार में करूँगा. और मुझे इतना यकीन है इतना बुरा आवाज भी मेरा भी नहीं रहेगा जितना बुरा मैं अपने आप को सोच रहा हूँ. पर यहाँ पर अभी तो मैं बोलता हूँ थोड़ा हकला के, और जब मैं कोई गीत या कोई ना सिर्फ पढ़ता हूँ ना तो जुमे बगैर इंसान रहता है.
1: अच्छा अच्छा सही से. नहीं बिल्कुल हम इंतजार करेंगे. आप आज बिजी हैं कोई मसला नहीं, नेक्स्ट वीक में आप कॉल जरूर कीजिएगा, हम आपको सुनना चाहेंगे.
2: आज ही मैं जाने वाला था.
1: अच्छा अच्छा.
2: कुछ काम ज्यादा बिजी है.
1: अच्छा अच्छा. नेक्स्ट जरूर आइएगा, सुनिएगा बिल्कुल, और नेक्स्ट वीक में जरूर आइएगा. ठीक है ना नूर मोहम्मद मंसूर. चलो ख्याल रखिएगा. हैप्पी वीकेंड आपको. दो दिन की छुट्टी इंजॉय कीजिए. इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं आपसे. ठीक है. ओके जी ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज. रही जी तो बुलिया बुलिया मैं चला रही हूँ जसविंदर सिंह काला आपके लिए. ये इंजॉय कीजिए, सुनते रहें FM 107 दिल से देसी.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन की राय पर। माहिरीन की राय पर लीजिए, हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड। हेल्थ गाइड, जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात। स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई, बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक। इलाज और एहतियात तक सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ, ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी। दिल से देसी, याद रखिए सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत।
2: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
3: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
2: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360। कतर बिजनेस 360, जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में।
3: हर मंडे सुबह 10 बजे से आप जनाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107।
2: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग आरजे महविश खान के साथ सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
4: Right, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग FM 107 पे। मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे माविश और अब वक्त हो गया अंताक्षरी शुरू करने का। तो कॉल आप लोग मुझे कर सकते हैं, मैं कॉल का वेट कर रही हूँ। मुमताज अहमद कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, कैसी हैं आप, गुड मॉर्निंग, मेरे लिए भी एक सॉन्ग लगा दो, ये मेरे लिए सेलिब्रेशन का दिन है। ओके और मैम मसाइद में सिग्नल कल से ख़राब चल रहा था, क्या हो गया वहाँ पे ऐसा? खैर जी, ये मेरे लिए सेलिब्रेशन का दिन है वो तो ठीक है, कौन सा वाला गाना चलाना है? प्यार में दिल तो सब देते हैं छुपा रुस्तम। अच्छा चले मैं ये ढूंढती हूँ गाना और फिर उसके बाद चलाती हूँ। वैसे सेलिब्रेशन कौन सी है आपकी, ये आपने नहीं बताया, तो सेलिब्रेशन भी बताएं कि क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हम गाना जो है ये ढूंढ के रख लेते हैं छुपा रुस्तम का, प्यार में सब दिल देते हैं, प्यार में दिल तो है, दिल तो ये वाला लगा दूंगी, ठीक है ये वाला है, चले देखते हैं थोड़ी देर के बाद। ओके और इसके साथ ही मेरे पास है अनवर एच यूके और कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम मैडम, आई साइड इन इस वन डे ओनली लीविंग डे। ओके ओके, लीविंग डे मींस लीविंग डे, ये कौन सा दिन है मैं समझी नहीं। और इसके अलावा है मोहम्मद यूसुफ खान और ये कहते हैं कि जी तभी तो कहा कि एक दिन सभी आराम मिलेगा ये मुश्किल तो है लेकिन हो सकता है, ठीक है ठीक है। और आराम मिलेगा सब लोगों को, या अल्लाह मतलब आप मेरे बोलने से इतने परेशान हो गए कि आप ये बात कर रहे हैं। रईस कहते हैं कि लोगों को हैंडल करना और आपको बेहतरीन तरीके से आता है। ओके अच्छा जी, हमारे साथ हैं कॉलर, हेलो अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।
4: जी जावेद साहब क्या हाल चाल है?
5: अल्लाह का शुक्र, बस अभी धूप से आया हूँ मैं साए में, तो मैंने कहा सिर्फ दो मिनट की मैं कॉल करूंगा ताकि कोई और भी आए।
4: अभी तक कोई आया नहीं था। जी जी
5: ये बताऊं कि रईस भाई और शहजादा सलीम भाई का भी शुक्र गुजार हूँ, इनसे भी मेरी कल बात हुई थी। मैंने सबकी जान को वक्त डाल कर रखा हुआ है, मिला कर रखा हुआ है, खून को जोश में रखा हुआ है ताकि हलचल हो जिंदगी में।
4: हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और सब माशाल्लाह से बहुत खुश हैं, एक तो सब आपकी आवाज़ एक थोड़ी सी अलग है ना, तो सब लोग आवाज़ सुन के ही पहचान गए, उनको अंदाज़ा हो गया, तो सभी माशाल्लाह माशाल्लाह खुश हैं। अच्छा जी भाई, तो आ गए हैं जावेद साहब, अब कौन आने वाला है, कौन ज्वाइन करने वाला है, जल्दी से आ जाएं ताकि हम अंताक्षरी का आगाज कर दें, फिर वक्त की कमी भी हो जाती है, तो देखते हैं कि कौन आता है हमारे साथ। जी जावेद साहब,
5: मैं विश में एक और अच्छी आवाज निकाल सकता हूँ?
4: बिल्कुल निकाल के बताइए।
6: लो जी सामिन प्लीज सब जल्दी जल्दी आ जाइए अंताक्षरी के लिए।
4: मैं समझ गई थी वैसे। मुझे आइडिया हो गया था।
5: यार ये कैसे कैसे हरकतें करवा रहे हैं मुझे।
4: अच्छा एक बात बताएं जावेद साहब, आपने कभी आवाज बदल के किसी को कॉल की, मतलब ऐसी लड़कियों लड़कियों की कोई आवाज या कुछ इस तरह का? जब
5: बहुत बहुत बहुत कसम खुदा की खा रहा हूँ, कसम खुदा की खा रहा हूँ मैं, या अल्लाह मुझे माफ करना और मुझे माफ करना और माफ करना। वो हमारे एक सरदार भाई थे, उन्होंने अपनी मूछें भी करवा दी थी।
4: अच्छा इस चक्कर में
5: और मेरे सामने इसी चक्कर में, इश्क के चक्कर में, और मुझे सामने आके रो रहे हैं कि बाजवा भाई मैं क्या करूं, मैं दीवाना हो गया, मतलब मैं उनसे बात करता हूं, मेरे सामने रो रहे हैं, मुझे बता रहे हैं।
4: अच्छा मेरे साथ भी ये चीज हुई, मतलब एक वक्त था बहुत मजा आता था रॉन्ग कॉल्स करने में, और हम बड़ा मतलब होता है बेवकूफ बनाते हैं लोगों को, तो खैर वो हुआ है मेरे साथ भी इसी तरह का एक सीन। खैर जी ये ऐसा वाला नहीं हुआ, ऐसा वाला नहीं हुआ, दूसरी तरह का हुआ बेवकूफ बनाने वाला, लेकिन बताऊंगी कभी। फिर चले जी, तो कॉलर आ गए हमारे साथ और देखते हैं कि कौन है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम
7: अस्सलाम
4: जी, कौन?
7: हमजा बात कर रहा हूँ।
4: हमजा बात कर रहे हैं, क्या है, क्या हाल चाल है हमजा आपके? अल्हम्दुलिल्लाह
7: अल्हम्दुलिल्लाह
4: बिल्कुल ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र। चले जी हमजा, तो अंताक्षरी का वक्त शुरू हो चुका है और पहला गाना कौन गाएगा?
7: चले आपसे खेलते हैं, लेकिन जावेद भाई ने एक पुराना किस्सा याद करा दिया। तो इसी तरह हमारे मोहल्ले में एक नया लड़का है, वो इसमें शरारते करता था। उसने ना एक अंकल को ना बड़े टाइम तक, बहुत टाइम तक, यानी ये तकरीबन समझेंगे 6 मंथ से अबव इतना पागल बनाया और उनसे पैसे खाए
4: अल्लाह लड़की बन के
7: हाँ जी
4: अल्लाह माफ करे
5: तकरीबन भाई मैंने तो नहीं किया कुछ
7: एक लाख से ऊपर अमाउंट थी जावेद भाई एक लाख से ऊपर अमाउंट थी और जिस तरह से केस खुला था ना तो हमारे जो इलाके का चेयरमैन था उसके पास सिंह गया और यकीन करे हम लोग सारे उधर जो खड़े हुए जब हाजिर थे ना चाचा जना मुंह नीचे देख के यार इस उम्र में यार मैं क्या बोलूं किसी को चाचा ने वो बोला था कि ऐंदा यार इसको बोलो सिर्फ ऐंदा किसी के साथ ना करे मुझे पैसे नहीं चाहिए उनको दुख भी हो रहा था कि
4: हाय हाय हाय हाय क्या गिर सकते हैं खैर जी तो चलें भाई गाने की तरफ आ जाते हैं और पहला गाना कौन गाएगा
7: पहला गाना
5: अच्छा चले मैं कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा टाइम लूंगा बस मैं

0: की वजह तुम हो, पिया जाए ना जाए ना जाए ना हो रे पिया रे,
1: क्या बात है,
0: पिया जाए ना जाए ना जाए ना हो रे पिया रे पिया रे,
1: क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त पिया रे। ये हमजा,
0: ये दुनिया ये महल किसी काम की नहीं, किसी काम की नहीं,
1: किसी काम की नहीं, सही किसी काम की नहीं, नून
0: नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने।

0: जबरदस्त जबरदस्त, बहुत आला। वो हो तुम मीम, एम
1: मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। बस इतना ही, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है।
0: अच्छा अच्छा, ये
1: हेलो
0: जी, ये
1: जी जी
0: जावेद साहब, ये
1: आया
0: जी जी
1: जी शाम मस्तानी मदहोश के जा, तुझे डोर कोई खींचे मेरी ओ दिए जा।
0: ये फिर से अगेन हमजा
1: जा अलिफ में
0: लिए जाए, जाए होता है या जाए है,
1: लिए
0: जा है। अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, अलिफ पर अलिफ
1: अलिफ है। अच्छा जी,
0: अलिफ
1: इसमें तो मुझे वो याद आ रहा है। बच्चों
0: सुना दे, सुना दे, कोई मसला नहीं है। सुना दे मजे का।
1: दिल किसी की याद में रहता है बेकरार को, जिसने भुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों।
0: जबरदस्त जबरदस्त, उसका है इंतजार क्यों, मेरा बड़ा फेवरेट गाना हुआ करता था ये। नून
1: नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए हमको तरसाए, ये आ गया
0: ये
1: यार ये ही दोस्ती है, किस्मत से जो मिली है। अच्छा मुझे ना पुराने गानों के कुछ जरा कोर्स याद है सिर्फ,
0: और पूरे सब संग चले, सब रंग चले, चलते रहे हम सदा। बहुत पसंद है मुझे वाला गाना, बहुत अच्छा है, जबरदस्त। सदा अलिफ
2: हमजा भाई चले घर चले, हम दोनों जिनको गाने देते हैं।
1: मैं तो अभी ड्यूटी पे निकला।
0: लोग बाथरूम सिंगर होते हैं ना, मैं किचन सिंगर हूँ।
2: मैं बाथरूम के बाहर जो दीवार है वो सिंगर हूँ।
1: मुझे भी किचन में ही,
0: किचन में ही गाने गाते हैं आप भी हमजा।
1: अच्छा खामोशी के साथ।
0: अच्छा अच्छा जी जी जावेद साहब अलिफ
2: से।
0: जी जी अलिफ।
1: मैं जाना चाहूंगा, मेरी ड्यूटी का टाइम हो गया।
0: अच्छा अच्छा, थैंक यू हमजा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, बहुत बहुत अच्छा लगा। और हमजा चले गए हैं। थैंक यू हमजा, थैंक यू, हैप्पी वीकेंड। राइट जी, तो हमजा चले गए हैं और अभी जावेद साहब हमारे साथ हैं। अगर कोई ज्वाइन करना चाहते हैं जल्दी से आ जाए और जल्दी से शामिल हो जाए फटाफट।

0: हमारे पास, मैं इंतजार कर रही हूँ, कॉल करने का मेरे पास टाइम नहीं होता, इसलिए आपको कॉल करना पड़ेगी, जल्दी से शामिल हो जाए। अच्छा नफीस, नफीस जो है वो कॉल करना चाह रहे हैं या मैं कॉल करूँ? नफीस जल्दी से बताएं, मैं कर लेती हूँ। हाँ चलिए मैं कर लेती हूँ, कॉल मिला लेते हैं हम।
1: मैं आज नहीं आ रहा था, मुझे मतलब है कि रईस भाई का भी मैसेज आया।
0: हाँ हाँ नहीं नहीं, वो आपका ना वो कल लोग कह भी रहे ना कि जब तक जावेद साहब नहीं आते मजा नहीं आता तो ये वाला सिलसिला हो गया भाई, मतलब आपके फैंस हैं भाई बेशुमार जी आ गए भाई नफीस भाई। अच्छा नफीस भाई,
2: सलाम नमस्ते।
0: अच्छा नफीस भाई, थोड़ा सा ना मोबाइल को पीछे रखिएगा आपका, माशाल्लाह से आपकी पिच बहुत हाई है तो मुझे कम करना पड़ेगी, फिर जावेद साहब की आवाज कम आएगी, तो थोड़ा सा मोबाइल को पीछे करके आप गाइए, ठीक है?
2: जी बिल्कुल ठीक हो गया।
0: चले ठीक है जी, तो अलिफ, अलिफ नफीस,
1: अलिफ से मैं गा रहा था।
0: हाँ आप गा रहे थे।
2: आप जा, अच्छा जावेद साहब है दूसरी तरफ
0: जी, कंपटीशन बहुत टफ है
2: ना, ऑस्ट्रेलिया और भाई ऑस्ट्रेलिया और कीनिया का मैच हो गया ये तो, ऑस्ट्रेलिया
1: अच्छा अलिफ से गाता हूँ मैं, ठीक
0: जी जी बिल्कुल
2: जी जी

0: हैं नून नफीस
1: नून
0: जी नून
1: न जाने मेरे
2: वाह वाह
1: दिल को क्या हो गया अभी तो यहीं था कहीं खो गया
0: खो गया अलिफ
1: एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब जैसे शायर का ख्वाब जैसे उजली किरण जैसे वन में हिरन जैसे चांदनी रात जैसे बस इतने काफी
0: जैसे ओके ये
1: जैसे रात ते आया एंड पे रात
0: जैसे जैसे
1: रात पे रुके हैं वो
0: रात पे रुके हैं चलो ठीक है ते ते ते
2: शावर ले ते
0: ते
1: मैं फिर आपको यूनिक आइटम भी देने लगा हूँ जावेद साहब
0: बिल्कुल जी बिल्कुल सुनना चाहेंगे हम
1: तमल्ली माक बोलो हद ताबईद अन्नी फियल भी हवा तमल्ली बाली उम्री ली बला बंसाक तमल्ली वहिसनी लो हद तबकून वया
0: क्या बात है
1: तमल्ली माक
0: वेरी नाइस अच्छा ये कहाँ खत्म हुआ है ये बताएं हमें
1: तमल्ली माक काफ
0: काफ पे खत्म हुआ है जी काफ
2: मेरा दिमाग ही माफ हो गया
0: एकदम से लोगों को लगा होगा अरबिक रेडियो लग गया है बहुत जबरदस्त भाई बहुत जबरदस्त जी तो काफ
1: बड़ा मैच हो तो थोड़ा सा देख के चलना पड़ता है
2: कहो ना कहो
0: ओए होए होए
2: बोलती है सनम ओ मेरे सनम मोहब्बत के चले ये भी आ जाए क्योंकि लंबा हो जाएगा टाइम खत्म हो गया
0: जी ये जी
1: यारो यही दोस्ती सुना दी है किसी ने
0: हाँ अभी सुनाया
1: अच्छा ये तो नहीं कोई बता
0: कोई और जल्दी से जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी बहुत सारे हैं यारों से ही बहुत सारे हैं नफीस
1: यारों से बहुत सारे सॉन्ग
0: हैं हाँ ना जल्दी जल्दी जल्दी
2: बोल करते हैं आप कल आकर सुना दीजिएगा
0: जी अच्छा मैं दूसरा
1: हल्का हल
0: ओए होए हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल
1: हल्का हल्का सुरूर है ये तेरी नजर का कुसूर है जो शराब पीना सिखा दिया
0: सिखा दिया ये अलिफ
1: अलिफ
0: अलिफ
1: आबी जा सुबह भी जा रात

0: क्या बात है।
1: दिल रुबा आबिजा अलिफ आ गया,
0: अलिफ अगेन।
1: अब तेरे बिन जी लेंगे हम जहर जिंदगी का, पी लेंगे हम मीम
0: मीम।
1: मेरे अश्क कह रहे मेरी कहानी,
0: ओए क्या बात है।
1: इन्हें समझो ना तुम सिर्फ वाटर। मेरे अश्क कह रहे मेरी कहानी, इन्हें समझो ना तुम सिर्फ पानी। हाँ जी
0: पानी, ये
1: पानी, ये यार ये पे फसा रहे हैं।
0: ये याद है, याद से भी इतने सारे गाने आते हैं।
1: पंजाबी भी चलेगा ना?
0: हाँ हाँ चलेगा चलेगा, जल्दी से नफीस भाई फटाफट। अभी मैं वो वन टू ओके जबरदस्त।
1: दिल पर देसी हो गया।
0: ग्रेट।
1: मैं अपने आप को बड़ा समझाया पर दिल पर देसी हो गया। यार जावेद सर मैं आपका फैन हूँ, आपको पता है, ये से हटाए जरा।
2: यार मेरी जान आप मेरे फैन है, मैं आपकी पक्षी हूँ।
0: अंजू जी एक दो गानों का और वक्त है हमारे पास, हो गया। अलिफ
1: अलिफ
2: एक प्यार का नगमा है मौजों की रफा।

0: Yeah, again, yeah, na fees vai.
1: Or again, after yet.
0: Yeah. अच्छा जावेद साहब, इतनी देर में जब तक वो ये से गाना सोच रहे हैं, नफीस भाई ने कुर्बानी दी थी, ऑडिशन देने जाना था इन्होंने, लेकिन इन्होंने उसके बदले में अपने दोस्तों को खाना खिला दिया था, ऑडिशन नहीं हो सका था, अब आप इनको ऑडिशन दिलवाएं।
1: मेरे लिए तो ये सारे बहुत लेजेंड्स हैं, बहुत बड़े लेजेंड्स हैं मेरे लिए।
0: बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। नफीस भाई, याद आ गया?
1: ये याद से कोई गाना बनता तो है।
0: बिल्कुल। जी,
1: याद तो आती होगी।
0: क्या बात है, मेरे दिमाग में यही था।
1: होगी मेरी तस्वीर तुझे रोज रुलाती होगी। आइए तो जी सब, ये
0: क्या बात, जबरदस्त। ये
1: याद आ रहा है,
0: वाओ,
1: मेरा प्यार,
0: जबरदस्त।
1: कहाँ हम, कहाँ तुम, हुए तुम कहाँ गुम, अभी जाए अभी जाए के बाद।
0: ओहो, जबरदस्त जबरदस्त। और इसी के साथ हमारा वक्त भी हो गया है तमाम, तो बहुत जबरदस्त भाई, जावेद भाई, नफीस, आप दोनों, और इससे पहले हमारे साथ जो कॉलर थे, जबरदस्त हमजा, तो सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे पहले मैंने सोचा था कुछ जीत हार का चक्कर रखेंगे, लेकिन अब सुनने में मजा आ रहा है आप लोगों को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मजा आ रहा है सुनने में।
1: मैं जहाँ पे ऐड करता चलूंगा, माविश और जावेद सर, यकीन माने इनके मुकाबले में तो आपने सुन ही लिया है, इसमें कोई वो दूसरी राय ही नहीं है।
0: हाँ।
1: कि अगर मुकाबले की आप आएंगे तो इनसे मुकाबला आई थिंक यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, किसी की बात नहीं है।
0: हाँ, लेकिन हम एंजॉय कर रहे
1: हैं, मतलब ऐसे मोहब्बत और रिस्पेक्ट और सब में मिला के, और अच्छा लगने में, बड़ा अच्छा लगा।
0: बिल्कुल।
1: और आया हूँ इन्हीं की वजह से मुकाबले से भी आया, मतलब ये सॉरी इस प्रोग्राम में आया हूँ गाने वाले में।
0: जी जी जी जी,
1: तो मुकाबला तो इनसे बनते ही नहीं है, यकीन माने।
0: ये बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त।
1: अच्छा, एक गाना, एक एक दो लाइनें मुझे चाहिए, मेरी जिंदगी का वो था जिस ऑडिशन की आपने बात की ना, वो जो गाना तैयार किया था, जो वहाँ पे सुनाना है, जो मेरे दोस्तों ने खाने में उड़ा दिया, मेरी जिंदगी का कैरियर, मतलब कैरियर मेरा खाने में उड़ा दिया। ये जावेद साहब पाकिस्तान से हैं, तो वो चने बड़े मशहूर हैं, भोला चने वाला जावेद साहब।

0: उसके चने खा के यार मेरे दोस्तों ने ना वो किराया शराया लगवा दिया मेरा
1: हाय
0: तो वो लाइनें दो सुना देता हूं
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
0: मैं कहता हूं कि रहनी नहीं चाहिए कोई ख्वाहिश
1: हां हां बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सुना दे नफीस भाई
0: प्लीज थैंक यू तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया कैसे जिया तेरे बिन

तेरे बिन लेकर यादें तेरी रातें मेरी कटी मुझ

0: है मन तन्हा भर रू मेरी प्यासी रहे आ जा मेरे अब रूबरू जीना नहीं बिन तेरे तेरे बिन मैं यूं
1: जी शुक्रिया
2: जबरदस्त भाई जबरदस्त बहुत आला और हम जो है ना एक और आतिफ असलम से महरूम रह गए नफीस भाई
0: यकीन माने कसम से
2: ऐसे ही मुझे लग रहा है ये गलत हो गया आपके दोस्तों ने बड़ा गलत किया आपके साथ
0: अच्छा नहीं लगा तब भी मुझे बता दे लेकिन मेरी जिंदगी का
2: नहीं नहीं नहीं जबरदस्त
0: बहुत आला
2: नहीं बहुत जबरदस्त
1: नफीस भाई सर ना बोलिएगा भाई बोलना है हम भाई हैं
2: चले जी मैं दोनों से इजाजत लूंगी अब क्योंकि खबरों वाले हमारे सामने आ गए तो हमें इजाजत लेनी
0: है तो खबरें क्या हो गया
2: चले जी इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे हैप्पी वीकेंड आप दोनों को बहुत बहुत खुश रहें थैंक यू जी अल्लाह हाफिज रे जी इसी के साथ मुझे आपसे इजाजत लेनी है बस आखिर के जल्दी जल्दी से मैसेज पढ़ती चलूं मैं जो मेरे पास आए मोहम्मद यूसुफ खान कह रहे हैं आज तो अंताक्षरी बहुत ही जबरदस्त रहा मुमताज अहमद ने कहा कुमार सानू सोनू निगम सब आ गए यहाँ पे तो ग्रेट और इसके साथ ही अच्छा हुआ खाना खा लिया ओके जी इसके साथ ही जी भाई मैं आपसे लूंगी इजाजत इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है आपसे संडे को अपना बहुत बहुत बहुत ख्याल रखिएगा अपने से वाबस्ता लोगों का ख्याल रखिएगा संडे को दोबारा मिलते हैं फिर एक दफा जबरदस्त शो के साथ आप लोगों की आवाजों आप लोगों के मैसेजेस और कॉल्स के साथ अपना ख्याल रखें हैप्पी वीकेंड टू ऑल ऑफ यू अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय

0: करते हैं।
1: सर्विक्राम, आज हम आपको बताएंगे दूसरों के दिलों तक अपनी बात सही अंदाज में पहुंचाने की सुन्नत। सुन्नत का मौजू है साफ, वाज़े और मुख्तसर गुफ्तगु करना। अल्लाह ताला ने इंसान को जो सबसे बड़ी नेमतें अता फरमाई हैं, इनमें एक नेमत जबान भी है। इसी जबान से इंसान अल्लाह का जिक्र करता है, इसी जबान से कुरान पढ़ता है और इसी जबान से लोगों की रहनुमाई करता है। लेकिन यही जबान अगर बेहतियाती से इस्तेमाल हो तो रिश्ते भी तोड़ देती है, दिल भी जख्मी कर देती है और मुआशरे में गलत फहमियाँ भी पैदा करती है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कैसे बोलना है ये भी सिखाया। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू ऐसी वाज़े, अलग अलग और साफ होती थी कि हर सुनने वाला उसे आसानी से समझ लेता था। उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवामिउल कलिम अता फरमाए थे। इसका मतलब यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत कम अल्फाज में बहुत बड़ी बात बयान फरमा देते थे। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा मज़ीद फरमाती हैं कि अगर कोई शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज गिनना चाहता तो गिन सकता था। यानी आप इतनी ठहराव के साथ गुफ्तगू फरमाते थे। क्यों? क्योंकि आप चाहते थे कि हर शख्स बात को समझे। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और सुन्नत ये भी थी कि अगर कोई अहम बात होती या महसूस होता कि सुनने वाले ने सही तरह नहीं समझी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे दोबारा भी बयान फरमाते। सामिन, ये था प्रोग्राम आज की सुन्नत। याद रखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत में खैर, बरकत, सुकून और कामयाबी पोशीदा है। और जब हम मोहब्बत के साथ किसी सुन्नत को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो वो सिर्फ एक अमल नहीं रहती बल्कि हमारे ईमान की खूबसूरती बन जाती है। प्रोग्राम सुन्ना ऑफ द डे के आज के इस हलके से साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी और मुझे तलहा अशरफ उज़्ज़मान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाजत। मा सलामा।
2: Anytime, anywhere.
3: Yes, anytime, anywhere.
2: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.
4: दोस्तों, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर आम हिफाजत के तरीकों की पाबंदी करना आपके शऊर का इजहार करती है और सिक्योरिटी में इजाफा करती है। कौमी हदूद और रेगुलेशन की पाबंदी करें और अदब का ख्याल रखें। पेडेस्ट्रियन रोड पर धीरे चलें और होशियारी से ड्राइव करें। बच्चों की हिफाजत के लिए उन्हें अपनी नजर में रखें। आसपास जो इमरजेंसी एग्जिट्स हैं उनसे फैमिलियर रहिए। दूसरे अशखास को धक्का देने या भीड़ भाड़ करने से बचिए। ये इकदामात आपको और दूसरों को खुद को सेफ रखने में मदद देते हैं और किसी भी अनहोनी से बचने के लिए आपको तैयार रखते हैं। अगर हर शख्स इन रूल्स पर अमल करे तो हम सब मिलकर अपनी और दूसरों की हिफाजत कर सकते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
5: Gen Z की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है FOMO, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है। पर हम है ना, 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे। सो नो FOMO एवर अगेन। सुनिए कतर 2026 मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ। रहिए अपडेटेड हर मंडे शाम 7:15 से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
2: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। आज हम बात करेंगे अहमद अलादीन के बारे में। अहमद अलादीन कतर के उभरते हुए फुटबॉल सितारों में से एक हैं, जो अपनी रफ्तार, ड्रिबलिंग और अटैकिंग स्टाइल की वजह से मशहूर हैं। अहमद अलादीन कतर के वेरियस एज ग्रुप्स को क्रॉस करते करते आज वो सीनियर टीम के एक अहम मेंबर हैं। उन्होंने कम उम्र से ही फुटबॉल में दिलचस्पी दिखाई और लगातार मेहनत के जरिए प्रोफेशनल सतह तक अपना सफर तय किया। विंगर के तौर पर वो मैदान में दोनों किनारों से खतरनाक हमले करने की सलाहियत रखते हैं और अपनी टीम के लिए स्कोरिंग चांसेस पैदा करते हैं। अहमद की सबसे बड़ी खूबी उनकी स्पीड और डिफेंडर्स को वन ऑन वन सिचुएशन में बीट करने की सलाहियत है। अच्छा, वो तेज़ काउंटर अटैक्स में भी अहम किरदार अदा करते हैं और अपनी एक्यूरेट क्रॉसिंग और फिनिशिंग से मैच का रुख तब्दील कर सकते हैं।

0: क्लब फुटबॉल के साथ साथ उन्होंने कतर की कौमी टीम की नुमाइंदगी भी की और मुख्तलिफ इंटरनेशनल इवेंट्स मैचेस में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। यंग फुटबॉलर्स के लिए अहमद एक मिसाल हैं कि मेहनत, डिसिप्लिन और मुसलसल प्रैक्टिस से बुलंद मकाम हासिल किया जा सकता है। उनका जज्बा और परफॉर्मेंस कतर में फुटबॉल की बढ़ती हुई मकबूलियत को मजबूत बनाने में मददगार साबित हो रही है। आने वाले सालों में भी उनसे मजीद बेहतरीन खेल और यादगार परफॉर्मेंसेस की उम्मीद की जाती है। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शाकिब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: दोस्तों, हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ई गेट सर्विस सफर करने वालों के लिए एक मॉडर्न और फास्ट फैसिलिटी फराहम करती है। इस सिस्टम के जरिए आपको लंबी लाइंस में वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप अपने पासपोर्ट, आईडी कार्ड या कतर डिजिटल आईडी एप्लीकेशन से यूज करके ट्रैवल प्रोसीजर्स कुछ ही सेकंड्स में कंप्लीट कर सकते हैं। ये फैसिलिटी सिर्फ सिटीजन्स और रेसिडेंट्स ही नहीं, बल्कि उन बच्चों के लिए भी अवेलेबल है जिनकी हाइट 130 सेंटीमीटर से ज्यादा है। साथ ही व्हीलचेयर्स यूजर्स, सीनियर सिटीजन्स और पर्सन विद डिसेबिलिटीज भी इस सर्विस का आसानी से फायदा उठा सकते हैं। इस सर्विस का मकसद सफर करने वालों के लिए प्रोसेस को ज्यादा कन्वीनियंट, क्विक और यूजर फ्रेंडली बनाना है। वजारत दाखिला का कहना है कि ई गेट सर्विस की वजह से एयरपोर्ट पर भीड़ कम होती है, क्यूज छोटी होती हैं और हर एक मुसाफिर का एक्सपीरियंस स्मूथ और स्ट्रेस फ्री बन जाता है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।
2: आप सुन रहे हैं FM 107,
0: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
3: अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह लिसनर्स, आज हम एक नहायत अहम मौजू पर बात करेंगे और वो है वैक्सीनेशन की अहमियत और वैक्सीनेशन कैसे बीमारियों से हमारी हिफाजत करती है। वैक्सीन जो जदीद तिब की एक बहुत बड़ी कामयाबी है, ये हमें मीजल्स, पोलियो, हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा और टीबी जैसी खतरनाक बीमारियों से बचाने में अहम किरदार अदा करती है। लेकिन सवाल ये है कि वैक्सीन काम कैसे करती है। हमारे जिस्म में एक कुदरती दिफाही निज़ाम मौजूद है जिसे इम्यून सिस्टम कहा जाता है। जब वायरस या बैक्टीरिया जिस्म में दाखिल होते हैं तो ये निज़ाम उन जरासीम के खिलाफ लड़ता है। वैक्सीन में बीमारी पैदा करने वाले जरासीम का कमज़ोर और गैर फाल या बेज़र हिस्सा शामिल किया होता है और जब ये जिस्म में दाखिल किया जाता है तो हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो इसे पहचानता है और इसके खिलाफ जो दिफाई कुव्वत है वो पैदा करना सीख लेता है, बगैर इसके कि कोई इंसान बीमार हो उस बीमारी की वजह से। इस अमल के नतीजे में जिस्म में बीमारी के खिलाफ इम्यूनिटी पैदा हो जाती है और बाद में अगर असल बीमारी का जो जरासीम है वो जिस्म में दाखिल हो तो फिर हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है फौरी तौर पर उसका मुकाबला करता है और बीमारी को संगीन होने से रोकता है। वैक्सीन खास तौर पर शीरखार बच्चों और कम उम्र बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम अभी मुकम्मल तौर पर मजबूत नहीं होता। वैक्सीन सिर्फ एक फर्द को ही नहीं बल्कि पूरे मुआशरे को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। जब ज्यादा अफराद वैक्सीन लगवाते हैं तो बीमारियों के फैलने के इम्कानात कम हो जाते हैं। कुछ अफराद वैक्सीन के बारे में बहुत से खदशात रखते हैं लेकिन हकीकत

जिनकी जबान सच्ची हो, जिनका दिल साफ हो और जिनका वादा मजबूत हो, क्योंकि एक मजबूत माशरा मजबूत किरदार वाले लोगों से बनता है। आज के शो में यकीनन हम अहदीस की रोशनी में भी जानेंगे कि वादा पूरा करना क्यों जरूरी है, हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इस आदत को कैसे अपना सकते हैं और किस तरह छोटे छोटे अमाल हमारी जिंदगी को, हमारे ताल्लुकात और ईमान को बेहतर बना सकते हैं। आज की पहली हदीस बहुत मशहूर और निहायत अहम है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की तीन निशानियां हैं, जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे, और जब उसके पास अमानत रखी जाए तो खयानत करे। लिस्टर्स, जरा गौर कीजिए, इस हदीस में वादा तोड़ने को कितनी सख्त बात के साथ बयान किया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मुनाफिक की निशानियों में शामिल फरमाया। इसका मतलब ये नहीं कि जो शख्स एक बार वादा पूरा ना कर सके वो लाजमन मुनाफिक हो जाएगा, बल्कि इसका मतलब ये है कि वादा खिलाफी ऐसी बुरी आदत है जो इंसान को मुनाफकत के करीब ले जाती है। इस्लाम सिर्फ जाहिरी इबादत का नाम नहीं, अगर कोई शख्स कुरान भी पढ़ता हो, नमाज भी पढ़ता हो, लेकिन लोगों के साथ झूठ बोलता हो, धोखा देता हो, वादे तोड़ता हो, तो उसके अखलाक में बड़ी कमी है। दीन हमें सिर्फ मस्जिद तक महदूद नहीं करता, बल्कि हमारे मामलात, गुफ्तगू और किरदार को भी बेहतर बनाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी वादा पूरा करने की बेहतरीन मिसाल थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया, हत्ता के दुश्मन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई के मुतारिफ थे। एक वाकया बहुत मशहूर है, नबूवत से पहले भी लोग अपनी अमानतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी तो बहुत से लोग मुखालफत करने लगे, लेकिन फिर भी वो अपनी कीमती चीजें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अमानत रखते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी खयानत नहीं करेंगे। यही असल मुसलमान का किरदार है। लोग उसकी इबादत से पहले उसकी सच्चाई और दयानत को देखते हैं। रिसर्च आज के दौर में वादा खिलाफी बहुत आम हो गई है। लोग समझते हैं कि छोटी बात है, कोई मसला नहीं, बाद में देख लेंगे, लेकिन इस्लाम छोटी बात को भी अहम समझता है, क्योंकि यही छोटी आदतें मिलकर इंसान की शख्सियत बनाती है। फर्ज करें एक बाप अपने बच्चे से वादा करता है कि मैं शाम को तुम्हें पार्क लेके जाऊंगा, लेकिन फिर बगैर किसी वजह के नहीं लेके जाता। शायद बाप के नजदीक ये मामूली बात हो, लेकिन बच्चे के दिल में इसका असर रह जाता है। बच्चा आहिस्ता आहिस्ता ये सीखता है कि वादा करना और तोड़ देना आम सी बात है। इसी तरह अगर उस्ताद तालबा से, स्टूडेंट से वादा करे और पूरा ना करे, अगर दोस्त दोस्त से वादा करे और भूल जाए, अगर कारोबारी शख्स वक्त पे काम ना दे, तो माशरे में एतमाद कमजोर होने लगता है। इस्लाम चाहता है कि मुसलमान ऐसा हो जिसकी जबान और जिसके अमल एक जैसे हों। एक और खूबसूरत हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारे पास अमानत रखी जाए तो उसे अदा करो, और जो तुम्हारे साथ खयानत करे तुम उसके साथ खयानत ना करो। यह हदीस हमें एक बहुत बड़ा इखलाकी सबक देती है। अगर कोई शख्स हमारे साथ गलती करे, फिर भी हमें अपना किरदार खराब नहीं करना चाहिए। आजकल लोग कहते हैं, उसने मेरे साथ वादा नहीं निभाया तो मैं क्यों निभाऊं, उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया तो मैं क्यों अच्छा करूं। लेकिन इस्लाम हमें लोगों के रवैयों के मुताबिक नहीं, बल्कि अल्लाह की रजा के मुताबिक जीना सिखाता है।

से ज्यादा इस बात से दुखी होते हैं कि उन्हें बताया ही नहीं गया। अपनी रूहानी जिंदगी पे तवज्जो देंगे। क्या कभी आपने अपने दिल में नियत की थी, रोज कुरान पढ़ूंगा, फजर वक्त पे अदा करूंगा, रोजाना अज़कार करूंगा, गुस्सा कम करूंगा? इनमें से कोई एक वादा चुन लीजिए और पूरा कीजिए। सबसे अहम ताल्लुक हमारा अल्लाह ताला के साथ है। जब इंसान अल्लाह से किए गए वादे पूरे करता है तो उसके दिल में सुकून और बरकत आती है। छोटे अमाल भी बहुत कीमती होते हैं अगर मुस्तकिल मिजाजी से किए जाएं। आज कुछ वक्त तन्हाई में बैठ के सोचिए, क्या लोग मुझ पर एतमाद करते हैं? क्या मैं अक्सर चीजें भूल जाता हूँ? क्या मैं जल्दी में वादे कर लेता हूँ? क्या मैं दूसरों को इंतजार करवाता हूँ? मेरी एक कमजोरी क्या है जिसे मुझे बेहतर बनाना चाहिए? अपने आप को बुरा महसूस करवाने के लिए नहीं, बल्कि बेहतरी के लिए सोचें। एक अच्छा मुसलमान वो है जो अपनी इसलाह करता रहता है। अगर आप महसूस करें कि आप माजी में कुछ वादे पूरे नहीं कर सके तो दिल छोटा ना करें। आज नई नियत करें। अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला है। फिर पूरे हफ्ते का जायजा लीजिएगा। क्या फर्क महसूस हुआ? क्या आप खुद को ज्यादा जिम्मेदार महसूस कर रहे हैं? क्या आपके ताल्लुकात में बेहतरी आई? अच्छी आदतें बार बार दोहराए गए छोटे अमल से बनती हैं। अगर आप मुसलसल सच्चाई और जिम्मेदारी इख्तियार करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वादा पूरा करना आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाएगा। लोग आपके बारे में कहेंगे, अगर उन्होंने कहा है तो जरूर करेंगे, और इससे बड़ी इज्जत क्या हो सकती है? हमेशा याद रखिए, इंशाल्लाह सिर्फ आदतन ना कहें। जब इंशाल्लाह कहें तो दिल में सच्ची नियत करें क्या वाकई कोशिश करेंगे। और अगर आपको मालूम है कि आप काम नहीं कर सकेंगे तो साफ और सॉफ्टली अगले से माजरत कर लें। ये झूठे वादे से बहुत बेहतर है। इस हफ्ते हम कामिल बनने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि सिर्फ एक कदम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही छोटे छोटे कदम इंसान को अल्लाह के करीब ले जाते हैं। तो आइए नियत करते हैं कि हमारी जबान सच्ची होगी, हमारा किरदार मजबूत होगा और हमारे वादे काबिले एतमाद होंगे, ऐसे कि लोग हम पे भरोसा करने लगे। जब इंसान बार बार अपने ही वादे तोड़ता है तो खुद अपनी नजर में भी कमजोर होने लगता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई कहे कि मैं कल से जल्दी उठूंगा, रोज कुरान पढ़ूंगा, मैं गुस्सा कम करूंगा, अगर हम हर बार खुद से किया वादा तोड़ दें तो आहिस्ता आहिस्ता हमारा अपने आप पर भी एतमाद कम हो सकता है। इसलिए छोटे वादों से आगाज करें, छोटे लेकिन मुस्तकिल कदम। अगर आप रोज एक घंटा नहीं दे सकते तो 10 मिनट दे दें। अगर आप हर काम नहीं कर सकते तो एक काम जिम्मेदारी से करें, लेकिन जो कहें सच कहें। दुनिया में लोग जहानत से मुतासर होते हैं, लेकिन दिल से एहतराम उस शख्स को देते हैं जिस पर एतमाद किया जा सके। आपने देखा होगा कि बास लोग बहुत सादा होते हैं, लेकिन सब उन पे भरोसा करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जबान सच्ची होती है, उनके वादे मजबूत होते हैं, और यही असल इज्जत है। आज के दौर में जहां हर चीज तेजी से बदल रही है, वहां एक काबिले एतमाद इंसान बहुत कीमती बन गया है। ऐसे लोग खानदान को मजबूत करते हैं, दोस्तियों को खूबसूरत बनाते हैं और माशरे में सुकून पैदा करते हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि अल्लाह ताला भी सच्चे और ईमानदार लोगों को पसंद करते हैं। डियर लिसनर्स, अब वक्त आ गया है कि आपसे इजाजत लेनी है, लेकिन उससे पहले एक दफा हम फिर से चीजों की एक तरह से याद दहानी करते हैं कि हमने क्या क्या करना है, हमने आज के शो में क्या क्या सीखा। सबसे पहले तो हम ये याद रखेंगे कि अब से हमने कोई झूठे वादे नहीं करने, किसी के भी इमोशनल ब्लैकमेल करने पे, या फिर खुद से आदतन जो हम कह दिया करते थे कि हाँ ये काम हो जाएगा,
भाई पे यकीन रखो। हाँ हाँ मैं कह रहा हूँ ना, तो फिर फिक्र किस बात।

0: हर हफ्ते नए सरप्राइजेज और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग. तो याद रखिए फ्राइडे 9 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे कबीर ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी.
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू साथियों, आपको अगर टाइम बताऊं तो इस वक्त हो रहे हैं 11:01 FM 107 की घड़ी में और टाइम हो चला है सफा के साथ एंजॉय करने का। सन एंड साउंड है शो का नाम।
0: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सफा के साथ सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
1: जी हाँ, दिल से देसी। तो साथियों, आज जुम्मे का दिन है, नहीं जुम्मे का नहीं, सॉरी जुम्मे का दिन तो कल है, आज थर्सडे। कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी ना, तो भाई वीकेंड होता है ना, वीकेंड का मसला यही होता है कि बस जल्दी जल्दी आए, इसकी हमें खुशी होती है, खुशी। तो भाई आज थर्सडे का दिन है, डबल ट्रिपल खुशी हो रही है और खुशी का आलम यह है कि बस क्या ही बताया जाए, जिसको फ्राइडे और सैटरडे ऑफ मिलता है ना, वो सिर्फ वही समझ सकता है। खैर साथियों, आपको ढेर सारी खुश आमदीद है सन एंड साउंड में सफा के साथ। आपका और मेरा साथ रहेगा 11 बजे से लेकर 1 बजे तक, और इस 11 बजे से लेकर 1 बजे तक के दरमियान हम अच्छी अच्छी बातें भी करेंगे, कुछ मुद्दों पर डिस्कशन भी करेंगे, कुछ हल्की फुल्की बातें करेंगे, और हम जो है वो 12 बजे के बाद अपना बॉलीवुड ट्रिविया का गेम भी खेलेंगे। अब ये सब कुछ होगा ऐसे कि हम जो हैं वो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे साथ बने रहें। कैसे बने रहेंगे? आप हमें मैसेज कर सकते हैं 6622107 पर। मैसेजिंग के लिए नंबर है 6622107, और चाहें तो हमें कॉल भी कर सकते हैं 4434377 पर। कॉल करने के लिए नंबर है 4434377। और भाई जो साइलेंट लिसनर्स हैं ना, जिनको कुछ अच्छा, ये जो साइलेंट लिसनर्स वाला मामला ना, इसके ऊपर मैंने बड़ा ध्यान दिया भाई, ये जो साइलेंट लिसनर्स होते हैं ना, ये दो किस्म के होते हैं। मुझे अभी जाकर मैंने बहुत ऑब्जर्वेशन के बाद, ये साइलेंट लिसनर दो किस्म के होते हैं। एक वो जिनको आप आपकी आवाज़ और आपका कॉन्टेंट पसंद होता है, लेकिन उनके अंदर हिम्मत नहीं हो रही होती कि वो आगे बढ़कर कॉन्ट्रीब्यूट करें और वो आपसे बातचीत करें। और फिर दूसरे किस्म के साइलेंट लिसनर्स वो होते हैं जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, आपके किसी पोस्ट पे लाइक नहीं करते, लेकिन आपको फॉलो जरूर करते हैं। इन द सेंस फॉलो नहीं करते, लेकिन ध्यान जरूर रखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं आप क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो। खैर मुझे नहीं पता आप किस में से हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप हमें मैसेजेस भेज सकते हैं 6622107 पर। अच्छे अच्छे मैसेजेस भेजिएगा, चाहे आप दोनों में से किसी भी किस्म के। लेकिन क्योंकि थर्सडे है, तो इस बात को मायने रखते हुए कि मेरा वीकेंड ख़राब ना हो, कुछ अच्छे से मैसेज ही भेज दो, कोई एक आधा अच्छा सा जोक ही भेज दो भाई। अच्छा, जोक से याद आया कि जोक तो बाद में भेजते रहना, कोई बात नहीं, खिलखिलाहट तो चलती रहेगी। ज़रा ये बताएं कौन कौन कहाँ कहाँ से सुन रहा है हमें, कहाँ कहाँ तक ट्रांसमिशन बिल्कुल अच्छी अच्छी आ रही है। ज़रा एड्रेस नहीं लेकिन एरिया तो बता दो ना, कौन कौन कहाँ कहाँ से सुन रहा है, ताकि पता चले हाँ भाई मेरी आवाज़ पहुँच रही है। वैसे तो मेरी आवाज़ ऐसी है कि हर कोई कहता है कि सफा तुम्हें माइक की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी इतनी आवाज़ है, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर देंगे तो अच्छी बात हो जाएगी। 6622107 इज द नंबर टू मैसेज एंड 4434377 इज द नंबर टू कॉल। अच्छा भाई, हम शुरुआत कहाँ से करें? देखिए, शुरुआत मैं चाह रही हूँ कि मौसम से कर ली जाए, क्या कहते हैं? अच्छा लगता ना, थोड़ा मौसम से शुरुआत करते हैं, फिर 1, 2, 3 आगे करके चलते हैं, ठीक है? तो देखिए, इस वक्त जो टेम्परेचर, मुझे नहीं पता आपकी गाड़ी में कितना बता रहा है, लेकिन मुझे जो बता रहा है, गाड़ी में नहीं ऑफिस में, इस वक्त मुझे जो वेदर अपडेट मिल रही है वो है कि भाई 43 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो रहा है, 43-44 डिग्री सेल्सियस का हो रहा है, सनी वेदर है और फील्स लाइक 44, ये मुझे दिखा रहा है। ये कितनी सच है बात, ये ज़रा मुझे बताना, टेली करना, ज़रा मैसेज वैसेज करो, मुझे बताओ, क्योंकि अक्सर औकात ऐसा होता है कि हमें वेदर फॉरकास्ट में दिखा रहा होता है 44 और गाड़ी जैसे ही ऑन करो तो दिखा रहा होता है 47। मैंने कहा ये क्या हुआ, वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, ऐसे कैसे भाई? तो मुझे बता दो एक दफ़ा मैसेज करके कि ये सही बता रही है कि मैं ऐप अपनी चेंज करूं। अच्छा भाई, अगर हवाओं के बारे में बात की जाए तो आज हवाएं बड़ी रफ्तार से चल रही हैं, थर्सडे है, खुशी है हवाओं को, उड़ता फिरूं पंछी बना मस्त गगन में, वो वाली हवाएं चल रही हैं। तो भाई 31 किलोमीटर पर आर की स्पीड से हवाएं चल रही हैं नॉर्थ वेस्ट की तरफ, ह्यूमिडिटी 18% पर है, फिर भी बर्दाश्त के अंदर है, खैर है, इससे भी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हमने देखी है तो चल जाएगा, अपना काम चल जाएगा, निकाल लेंगे अपना काम, करते पत्थर हम लोग हैं हम। अच्छा भाई अगर यूवी इंडेक्स देखा जाए तो एक्सट्रीम है, इसका मतलब जानते हैं क्या? इसका मतलब ये है कि ज़्यादा डेढ़ होशियारी नहीं करनी थर्सडे, इसका मतलब ये नहीं है कि वही वाला सीन कर लो, उड़ता फिरूं पंछी बना मस्त गगन में, ना ना ना ना ना, पंछी बन के उड़ना है ना तो शाम के बाद उड़ना जितना उड़ना है, मतलब ये कि ये जो 11 बजे लेकर 3 बजे की धूप है ना इसके अंदर उड़ते ना फिरना, जब तक ज़रूरी ना हो मेहरबानी करके बाहर ना निकलना, और अगर निकल भी रहे हैं तो सन ब्लॉक और पानी की बोतल हाथ में, सन ब्लॉक हाथ में नहीं पकड़ना, सन ब्लॉक लगाना है खुद को और पानी की बोतल हाथ में रखनी है अगर आप तिक्का फ्राई नहीं होना चाहते तो। मेरा काम था बताना, आपका काम था समझना, ठीक है? अच्छा गर्मी की जहां बात हो रही है ना, वहां मेरे दिमाग में एक और चीज, मैं कल से सोच रही हूँ पता नहीं क्यों, कल से मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, एक चीज आ रही, गर्मियों की जब बात की जाती है ना तो जुगनू आते हैं दिमाग में, किस किस ने जुगनू देखे? अच्छा मैंने कभी जुगनू देखे नहीं, मुझे बे इंतहा शौक है जुगनू देखने का, और मेरा दिल करता है इन जुगनुओं की वजह से ही मेरा दिल करता है कि मैं जो ना जापान जाऊं। आप कहेंगे जुगनुओं का जापान से क्या ताल्लुक है, मैं आपको एक हकीकत बात बताऊं, जापान में ना नई जगह पढ़ रही थी कि जापान में जुगनुओं को कहा जाता है कि वो लोग ना वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो नेशनल्स हैं, वो उसे खुशकिस्मती का एक वो सिंबल समझते हैं, कुदरती हुसन की निशानी मानते हैं उसे। गर्मियों में ना लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा कसरत से जुगनू देखते हैं, ख़ास तौर पे जुगनू देखने के लिए अलग से वहाँ पे फेस्टिवल्स लगाए जाते हैं और नाइट वॉक्स भी वहाँ पर शामिल होती हैं। जापान तो भाई वैसे ही 2050 में जी रहा है, लेकिन जुगनुओं का जो मामला है ना मुझे उसके लिए जाना है। अच्छा एक और कंट्री है

0: मैं होकर आ गई, लेकिन मुझे मुझे अभी वहाँ का मौसम ना वो वाला एग्जैक्टली जुगनू वाला मिला नहीं, मेरी हार्ड लगती. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहाँ पर खास तौर पर ग्रेट स्मोकी माउंटेन्स जो होते हैं ना नेशनल पार्क में, वहाँ पर हजारों जुगनू को ना आप ब्लिंक करते हुए एक साथ दुनिया भर में ये चीज़ मशहूर है कि आप देख सकते हैं. अच्छा, हमारा इंडिया पाकिस्तान में मशहूर है, लेकिन कहा जाता है जैसे इंडिया पाकिस्तान श्रीलंका यहाँ पर कहा जाता है कि जुगनू नज़र आते हैं, लेकिन कौन से वाले इलाकों में, वो जो देहाती इलाके होते हैं ना वहाँ पर लोगों को देखने को मिलते हैं. इत्तेफाक ये मुझे, मैंने लोगों से सुना है उन एरियाज में रहते हुए कभी हुई हो मुलाकात, तो वो कहते हैं कि वहाँ पर होते हैं, उन्होंने देखे हैं, लेकिन हार्ड लक मेरी मुझे नहीं नज़र आया कभी. अच्छा, इसके अलावा मलेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, यहाँ पर भी लोग कहते हैं रेन फॉरेस्ट वाला मौसम है ना, तो वहाँ बहुत कसरत से जुगनू पाए जाते हैं. क्या आप जानते हैं कि भाई जुगनू जो होते हैं ना, जुगनू असल में छोटे से लिविंग बल्ब्स होते हैं. अच्छा, मज़े की बात ये कि इनकी रोशनी की एफिशिएंसी तो 100% होती है, लेकिन ये बल्ब की तरह गर्म नहीं होते. अगर कोई इन्हें हाथ में पकड़े ना तो इनकी बड़ी कूल लाइट होती है, तो इनको इसलिए उन्हें कूल लाइट भी कहा जाता है. ये बल्ब की तरह गर्म नहीं होते, लोगों ने इन्हें पकड़ा है तो लोग कहते हैं भाई ये गर्म नहीं होते. हम समझते थे अगर इनको पकड़ेंगे ये तो बत्ती जलती है ना इनके अंदर से, तो ये गर्म होंगे, लेकिन वो गर्म नहीं होते. और एक और मज़े की बात ये कि गर्मियों की शामों में जुगनू ज़्यादा नज़र आते हैं, तभी मैंने कहा गर्मियों से बड़ा इनका क्लोज रिलेशन है. गर्म और ये जो नमी वाली फिजाएँ होती हैं ना, ये इनके लिए बेहतरीन तरीन होती हैं. तो अक्सर औकात ये कहा जाता है कि बरसात के मौसम में भी ना जुगनू नज़र आते हैं. जुगनू की लाइट जो है ना समर में बड़ी खूबसूरत सी चमकती हुई नज़र आती हैं. तो भाई आप में से किस किस ने जुगनू देखे हैं ज़रा मुझे बताइएगा. मुझे मुझे बड़ा शौक है, मुझे आप लोगों का एक्सपीरियंस, मुझे एक्सपीरियंस जानना है भाई. किसी ने जुगनू देखे ना असल में रियल लाइफ में, तो मुझे एक्सपीरियंस जानना है. अच्छा, मज़े की एक बात बताऊँ क्या, कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं. अच्छा, ये जो जुगनू है ना, ये असल में भंवरों की एक किस्म में से एक है. ये रोशन भंवरा है भाई. और मज़े की बात ये है कि ये कुदरती साफ माहौल पसंद करता है. तो जहाँ पर जुगनू नज़र आते हैं ना, जिस जगह पर, उस जगह के बारे में मुहावरतन ये भी कहा जाता है कि भाई वो जगह इंतहाई साफ होगी और नेचर के करीब होगी, क्योंकि जुगनू होने की निशानी मतलब ये बताती है कि ये जगह साफ सुथरी है और बहुत नेचुरल है. सुभान अल्लाह. तो भाई आप मुझे बता सकते हैं कि आप हमें कहाँ कहाँ से सुन रहे हैं, और आप चाहें तो मुझे मैसेज करके ये बता सकते हैं भाई जुगनू देखा है कभी. जुगनू मुझे एक्सपीरियंस जानना है, मुझे ना बड़ा मज़ा आता है भाई. लोग जब अपने एक्सपीरियंस बताते हैं ना कि भाई मैंने जुगनू देखा, फलानी जगह पे देखा, क्या फील किया, क्या था, कैसा था, या बचपन का कोई एक्सपीरियंस होता है. मुझे याद है एक दफ़ा मेरे भाई ने, छोटे थे हम लोग, वो अपने किसी दोस्तों वगैरह के साथ गया था, उसने जार में बंद कर लाने की कोशिश की थी मेरे लिए जुगनू, लेकिन वो जुगनू मर गया. तो मुझे उस दिन से बड़ा शौक था कि मैं जिंदा जुगनू देखूं. किसने देखा है भाई. 4434377 इज़ द नंबर टू कॉल, और हमें कॉल्स आ रही हैं. देखते हैं हमारे साथ कॉल पे कौन है. अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम सलाम सफा, हाउ आर यू?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ऑल गुड. कौन है हमारे साथ?
1: अहमद.
0: ओ अहमद भाई, कैसे हो अहमद भाई? बेटा कितनी तो उम्र हो गई है अहमद, माशाल्लाह से.
1: अभी तक तो 12 ही है अल्हम्दुलिल्लाह.
0: अभी तक 12 ही है ना बेटा, तो ऐसे बोल रहे हो कि अभी तक, मैंने कहा पता नहीं 55-60 तक पहुंच गए. अच्छा एक बात बताओ अहमद, ये क्या कोइंसिडेंस है कि क्या है, हमारी जब भी बात होती है ना फुटबॉल के महा मुकाबलों में ही बात होती है हमारी, क्या कहते हो, है कि नहीं? कि कुछ हमारा वायरलेस है, कुछ
1: है. मैं आजकल तो हमारा भी, क्योंकि एक बात तो ये है सफा की, सॉरी आप बहुत टाइम से, कितने यानी टाइम आपका हुआ है इस प्रोग्राम में?
0: देखें ये कुछ दिन ही हुए हैं, खुदा ना खास्ता भी एक हफ्ता ही हुआ है छुट्टी के बाद आए हुए.
1: मैंने कोई इतना ज्यादा तो नहीं हो, क्योंकि मोस्टली तो मैं कर तो रहा था, सर्वर के साथ भी था वो गया, मैं उसको कॉल करता रहा, तो मोस्टली सर्वर के साथ यानी मेरा इतना ज्यादा वो मिलना जुलना नहीं था. वो कभी ऐसे वो क्वेश्चन कह देता था मेरे दिमाग में, तो जैसे रिडल्स कह लेता था या फिर क्या कहते हैं कि उल्टी गिनती कर लेता, तो आई कुडंट
0: फॉलो अप विद इट.
1: हाँ, इट वॉज ऑल ऑपोजिट फॉर मी. क्योंकि मोस्टली तो ज्यादातर तो एक बात तो ये कि गर्मी की छुट्टियां भी शुरू हो गई हैं,
0: सही
1: बच चुकी हैं, मोस्टली अब तैयारियां भी हो रही हैं, अब लोग अब छुट्टियों पे जा रहे हैं। अब आप जैसे छुट्टी पे गई थी तो आपकी बहुत सारी तो बेशक तैयारी तो होती है ना मोस्टली,
0: तो आप छुट्टियों पे नहीं गए?
1: अभी तो इंशाल्लाह है हमारा प्लान, बस हम इसलिए हम बस यानी सबको नहीं बता रहे ना, बस
0: अरे भाई जिस जिसने सुना है रेडियो पे वो जो ना इसे अनसुना कर दे, प्लीज ऑमिट कर दे इस बात को। अहमद ने कुछ नहीं बताया आपको अपनी छुट्टियों के बारे में। अच्छा अहमद एक बात तो बताओ, जाने से पहले ना हमारी एक दफ़ा बात हुई थी, आई एम क्यूरियस टू नो अबाउट इट, जाने से पहले हमारी एक दफ़ा बात हुई थी कि यू आर हैविंग सम एग्जाम्स एंड समथिंग विच यू आर वेरी वेरी वेरी मच सीरियस अबाउट, बस मुझे ये बता दो वो मैटर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह से सॉर्ट आउट हो गया है, something positive
1: alhamdulillah wo hamara theek ho gaya tha, because after that jab maine aapko bataya tha bhi tha ki I have passed that exam
0: alhamdulillah,
1: I have passed and abhi alhamdulillah I have also graduated from my school
0: mashallah, acha acha
1: it has yeah takriban ek mahina to hone wala hai usko,
0: chalo alhamdulillah alhamdulillah allah ka karam hai. Acha ye batao kisko support kar rahe ho, France ko ke Morocco ko? Morocco क्या कहते हो?
1: लेकिन बात ये है कि मैं भी इजिप्ट को सपोर्ट कर रहा था, मैं जब से मैंने इजिप्ट के मैच के बाद लोग कह रहे हैं कि ये अच्छा नहीं था वर्ल्ड कप, पता नहीं लोग आजकल लोग इतना बुरा कह रहे सफर इस वर्ल्ड कप के बारे में।
0: वो कुछ कुछ मामले ऐसे हुए कि मैंने भी वो मैच देखा था, तो वो कुछ मामले ऐसे हुए थे कि जिसको देख कर ना तो वो थोड़ा सा इट वाज समथिंग बिटर, इट वाज अ बिटर ट्रूथ,
1: इट वाज एन इवन राइट। एक बात तो ये था कि देयर वर सम पीपल कंप्लेनिंग कि टिकट्स भी महंगे थे, एवरीथिंग वाज टू एक्सपेंसिव, इवन स्टेडियम्स विद नॉन ईयर, एवरीवन वाज प्रेजिंग कि ये वर्ल्ड कप यहाँ जो वाटर इट वाज नाइस देन दिस वर्ल्ड कप जो अभी हो रहा है।
0: अहमद इस बात की तो मैं गवाह हूँ भाई, इस बात की मैं गवाह हूँ। मैं अभी रिसेंटली छुट्टी पर गई थी, मैं यूएस गई थी, और मैं कहती हूँ कतर ने बेंचमार्क ऐसा सेट किया है ना, ऐसा सेट किया है कि अब कोई उस तक पहुंच कर दिखाया। मैं कहती हूँ कल भी मेरी यही बात हो रही थी घर में, तो मैंने कहा अब अगर कोई उससे ज़्यादा अच्छा कर सकता है ना तो वो या तो फिर जापान होगा, या तो फिर चाइना होगा, या तो फिर कोरिया टाइप की कोई कंट्री होगी जो उसको और ज़्यादा बेहतर शायद कर सके। कतर ने इतना हाई स्टैंडर्ड सेट कर दिया है ना, मैं भी यूएसए से होकर आ रही हूँ, इट वॉज नोवेयर नेक्स्ट टू कतर, और ये मैं सॉलिड सबको मुंह पे बोलने को तैयार हूँ। कतर ने बहुत हाई बेंचमार्क सेट किया है, इतना खूबसूरत वर्ल्ड कप माशाल्लाह जो हुआ था 2022 का, वो मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि क्या फर्क है।
1: क्योंकि सब द रीज़न इज कि मोस्टली यहाँ सेफ्टी इज नंबर वन, सिक्योरिटी भी यहाँ अच्छा है, क्योंकि कतर इट टेक्स एवरीथिंग एट द राइट टाइम, लाइक फॉर एग्जांपल
0: अगर किसी ने दोनों जगहों को देख लिया हो ना एक साथ, मैंने तो देख लिया, मैंने तो लाइव देख लिया, तो मैं उसके बाद मैं कहती हूँ अब 36 का आंकड़ा हो जाएगा कि अगर आप आकर कोई कहे कि फलाने ने बेहतर कर दिया था, फलाने ने बेहतर कर दिया था, मैं उनकी साइड नहीं ले सकूंगी, मैं कहूँगी नहीं भाई कतर ने बेस्ट किया था माशाल्लाह।
1: लेकिन इंशाल्लाह सऊदीया का भी एकदम एक चांस है, वो भी अरब कंट्री टू होस्ट
0: मोस्ट प्रॉब्ली 2030 के बाद होना है ना,
1: 2034
0: में, हाँ 2030 के बाद ही होना है, सही सही सही सही, अभी उसमें देर है, देखते हैं क्या होता है। अच्छा ये तो बताएं किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं?
1: आज तो मोरक्को है,
0: आज मोरक्को और फाइनल्स,
1: फाइनल्स में मुझे ऐसा लग रहा है इट इज लाइक डेजा वू, अर्जेंटीना और फ्रांस फिर से, क्योंकि सफर लास्ट टाइम पोर्चुगल वाज आउट, इवन ब्राजील वाज आउट एट दैट टाइम जब राउंड ऑफ 16 में या फिर 32 में, दिस टाइम ऐसे ही लग रहा है क्योंकि इजिप्ट भी निकल गया, वो कनाडा भी निकल गया,
0: मेरा दिल कर रहा है नॉर्वे आ जाए, नॉर्वे
1: नॉर्वे तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अच्छा, बट स्पेन एंड

0: हाँ स्पेन भी अभी बाकी है, स्पेन को मैं कैसे भूलूँ, स्पेन भी बाकी है
1: बट उन दोनों में से भी यानी थोड़ा मुकाबला होता है ना स्पेन और नॉर्वे, तो बहुत बहुत टाइम है तो पहले गए उन्हें फिर गए
0: तो देखते हैं, लेट्स होप फॉर द मे द बेस्ट प्लेयर्स विन। अच्छा ये बताओ कभी जुगनू देखे हैं? जुगनू
1: मैंने देखा है, जुनून अपने जिंदगी में, यानी जुनून का मतलब क्या?
0: जुनून नहीं, जुगनू
1: क्या?
0: अरे भाई जुगनू वो जो बत्ती वाला होता है इंसेक्ट।
1: अच्छा वो मैंने देखा होगा। अच्छा,
0: अंग्रेजी विच दसा मैं तेनू, ठीक है भाई हम अंग्रेजी में बता देते हैं आपको कि जुगनू को क्या कहते हैं। जुगनू जो होता है वो लाइटनिंग बग नहीं होता, फायरफ्लाई। हाँ
1: अच्छा, मैंने पढ़ा तो था बट कहीं मैंने शायद देखा नहीं।
0: देखा नहीं है?
1: देखा, हाँ, लेकिन आई हैव लर्न्ड अबाउट दिस, एक बार तो कहीं ना कहीं पढ़ा था ये।
0: चलो हम दोनों बेचारे ऐसे हैं जिन्होंने जुगनुओं का सिर्फ सुना ही है, देखा नहीं है, हमारे लिए फेरी टेल में एग्जिस्ट करते हैं वो।
1: साइंस के लिए होता है।
0: अच्छा अहमद एक सवाल करूं आपसे?
1: जी।
0: एक हाइपोथेटिकल सवाल करती हूं, ठीक है? जरा okay. सोचिए आप अपना स्मार्टफोन पूरे एक मंथ के लिए छोड़ दें, ना सोशल मीडिया, ना मीम्स, ना कॉल्स, बस जिंदगी सीधी सीधी यू लाइन में चल रही हो, वापस हो जाए जिंदगी जैसे 2000 से पहले थी, ठीक है? या दूसरा ऑप्शन ये है कि आप एक हफ्ते तक नहाने धोने को बाय बाय कर दें, मतलब ये कि आपका फ्रेशनेस का मोड जो है ना वो एरोप्लेन मोड पे चला जाए और परफ्यूम कंपनी की जबरदस्ती सेल हो जाए, तो आप क्या प्रेफर करेंगे? नो स्मार्टफोन या नो नहाना? बताए बताए
1: एक बात, एक सेकंड, चलो
0: हाँ हाँ अरे भाई नहाने बगैर लोग कैसे ही लगेंगे। अब लोग जो है ना बस मास्क पहन कर आएंगे, मास्क
1: जाना। मैंने आज ख्याल रखा कि मैं 2 बजे नहाने जाऊंगा आज,
0: लेकिन मोबाइल या नहाना, तो इन्होंने चूज किया मैं नहाऊंगा नहीं, मुझे मंजूर है एक हफ्ते तक नहीं नहाना
1: क्योंकि मोबाइल। अच्छा आप रह सकती
0: हैं? अरे भाई मैं पूरा 10 से 15 दिन मोबाइल के बगैर रह कर आई हूँ, मेरा बस चले तो मैं मोबाइल दुनिया से खत्म कर दूँ, मैं वापस 2000 से पहले वाले एरा में चली जाऊँ, मेरा बस चले तो। आई एम वेरी कूल विद इट, आई एम द मोस्ट, आई विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन। चलो भाई अहमद बात लंबी हो गई है, इंशाल्लाह फिर आपसे वापस से इंशाल्लाह
1: बात तो लंबी होगी, इंशाल्लाह मैं अगले घंटे भी आऊंगा बॉलीवुड।
0: चलो ठीक है डन
1: उसमें क्या होगा, लेकिन
0: उसमें ये मैं आपको गाना सुनाऊंगी और गाने में आपने मुझे बताना है कि कौन सी मूवी का है और टाइटल क्या है गाने का, ठीक है?
1: टाइटल
0: और गाने, मूवी का नाम और गाने का टाइटल। अगर आपने कॉल ना की तो हम आपको कॉल कर लेंगे फिर, ठीक है?
1: मैंने तो एक बार सर्वर को पूछा तो उसने पता नहीं कुछ और ही कट गया था, तो अच्छा है कि मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ।

0: वरहमतुल्लाह वबरकातु। अरे भाई मेरा ऑफिस वाला जो मोबाइल था ना एक अदद, वो बरामद नहीं हो रहा कहीं से। मैं आपसे बात तो कर रही हूँ लेकिन मैं जो हूँ ना मैसेजेस पढ़ने के लिए भी इधर उधर देख रही हूँ लेकिन मुझे कब से मोबाइल नहीं नजर आ रहा। तो जो मैसेजेस वाले हैं वो इंतजार करें लेकिन ये बताएं कि हमारे साथ कॉल पे इस वक्त कौन है।
1: आरिफ
0: भाई कैसे हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह आप बताइए।
0: अल्लाह का करम है। आरिफ भाई ये बताएं कि ये आपने 6 का स्कोर किया था लास्ट टाइम की 8 का?
1: मैंने 2 का किया था।
0: 2 का किया था? अच्छा 2 का स्कोर करने के बाद छुट्टी कर ली आपने? आपने कहा कि 2 का स्कोर करने के बाद मुझसे और ना हो पाएगा?
1: उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा मेरे से, वो भी आपके हेल्प से 2 किया था।
0: अरे कोई नहीं कोई नहीं, देखिए ऐसी बातें ना बताते नहीं किसी को कि हिंट की वैसे किया था। ऑन एयर नहीं बताते आरिफ भाई, ऑन एयर नहीं बताते। अच्छा आरिफ भाई जुगनू देखे हैं कभी आपने?
1: जुगनू हाँ बचपन में बहुत खेले उसके साथ।
0: अरे भाई तो कोई एक अच्छी सी याद बताए ना जुगनू वाली, अच्छी सी जो ऑन एयर बताई जा सके।
1: जुगनू कोई जैसे रात को हम लोग मदरसे या मस्जिद में पढ़ने के लिए जाते थे ना, तो उसको पकड़ के और उसका लाइट बना के लेके जाते थे।
0: वाह मतलब वो किसी जार के अंदर डालते थे किसी
1: कहीं कहीं रास्ते पे अंधेरे होते हैं ना, थोड़ा किधर अंधेरा हो जाए गली हो गई तो।
0: अच्छा ये
1: उस टाइम पे बहुत मिलते, अभी तो नहीं मिलते हमारे यहाँ भी, बहुत कम से कभी कभी।
0: हाँ अब तो मिल, अब तो नजर ही नहीं आते ना।
1: बहुत ज्यादा एकदम कि वो खुद से आके आपके शरीर के ऊपर बैठ जाते थे, साथ साथ चलते थे चारों तरफ, तो हम लोग तो एकदम थोड़ा ज्यादा पकड़ के उसको गुच्छा की तरह बना के और उसको हम लोग लाइट की तरह यूज करते
0: थे। अरे भाई ये अच्छी बात है, मतलब वो जो कार्टूनों में दिखाते हैं कि भाई वो एक प्रिंसेस होती है वो जुगनू बोतल के अंदर बंद करती है और जंगल में लेकर जाती है तो उसको पूरी बत्ती नजर आ रही होती है, तो ये वाकई में हकीकत है? इतनी इतनी रोशनी होती है जुगनू की के उजाला नजर आए इतना, या हम सिर्फ पढ़ने के?
1: मतलब भी नहीं पर कह सकते हैं
0: इतना कि आपको रास्ता समझ में आ जाए, वो जैसे जीरो बल्ब होता है
1: खेलने के हिसाब से। अभी बचपन में तो उतना नहीं था, वो खेलने के हिसाब से आप कह सकते हैं।
0: हां सही सही, मुझे बड़ा शौक है जुगनू। चले आप लकी इंसान, माशाल्लाह माशाल्लाह की कुदरत आपने देखी है। अच्छा एक बात बताएं, एक सवाल एक और।
1: ओके
0: देखें सवाल ये चल रहा है, मुद्दा आज का ये चल रहा है कि आपसे आपका स्मार्टफोन एक महीने के लिए ले लिया जाए,
1: छीन लिया जाए।
0: दूसरा ऑप्शन ही नहीं चाहिए, ले लो छीन लो। अच्छा
1: छीन लिया जाए,
0: कॉल शॉल भी नहीं कर सकते? कॉल शॉल भी नहीं कर सकते,
1: कोई मुश्किल नहीं है, छीन लिया जाए,
0: छीन लिया जाए।
1: चिट्ठी का जमाना आ जाए, वो लैंडलाइन का जमाना आ जाए, बहुत अच्छा था। क्यों इसकी वजह से पूरी लाइफ की ऐसी की तैसी पड़ी हुई लगी पड़ी।
0: अरे अरे भाई आपका और मेरा एक ही हिसाब चल रहा है, तेरा गम
1: मेरा।
0: अरे भाई तेरा गम मेरा गम एक जैसा, अरे भाई पूरी जिंदगी की झंड हो गई है इन शॉर्ट। ना ये मोबाइल
1: भी आपका, वो शायद मेरे को लग रहा है आपका जो विश था वो पूरा होगा, अर्जेंटीना वर्सेस नॉर्वे,
0: नॉर्वे वाला मैच मुझे देखना है। और मैंने पता है क्या देखना है नॉर्वे के मैच में, मैंने उस बड़े सारे हैलैंड को लोगों को उड़ाते हुए देखना है बस। वो एक ऐसा प्लेयर है जो ऐसा जैसे वो कहते ना, वो
1: अकेला पूरी टीम को यहाँ तक लेके आया।
0: हाँ वो ऐसा प्लेयर है जिस ऐसा लगता है जैसे वो बुल फाइट नहीं होती, बुल फाइट वो स्पेन में होती है ना बुल फाइट, जिसके अंदर वो बैल को छोड़ देते हैं और वो लगता फिरता है किसी को, वो हेलेंड का वो वाला मजा है, वो अजीब मस्करा है वो। तो मुझे वो मजा देखना है, मुझे उस मैच का मजा देखना है कि अर्जेंटीना वर्सेस नॉर्वे।
1: मेरे को लग रहा है वैसे होगा, मैं वैसे आज एक मैच है कल देख कर और 12 को 2 मैच। ओके मैं आपको प्रिडिक्शन बता दे रहा हूँ मैं अपना
0: बोले फाइनल।
1: ओके आज फ्रांस वर्सेस मोरक्को है ना?
0: हाँ जी,
1: मैं फ्रांस को 51 बोलूंगा और मोरक्को 49। क्यों? मेरे को एम्बापे का जो मेहनत था 2022 का उसको रन आते हुए उस पर दिख रहा है मेरे को।
0: अच्छा ये एक फैक्ट है, ये एक प्रूवन गिवन फैक्ट है कि फ्रांस के पास अच्छे प्लेयर हैं।
1: वो बंदा जितना मेहनत किया था फाइनल के मैच में आपने भी देखा होगा, सबने देखा।
0: लेकिन मोरक्को भी ना टक्कर की बन गई है, टक्कर की बन गई जो राउंड ऑफ 16 में आ

0: है ना, उसको आप हल्का ले नहीं सकते ना,
1: इसलिए तो मैंने उसको 49 दिया और उसको बस 51 दिया है।
0: मैं तो कहूंगी 50-50, मेरा मानना ही है।
1: इस तरह मैं माफी को एक पॉइंट ज्यादा दूंगा, क्यों वो
0: उनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है, एक्सपीरियंस ज्यादा।
1: 2022 की फाइनल अकेला हैट्रिक मार के गोल बराबर किया उसने,
0: वैसे एक हकीकत बात है, फ्रांस के पास ना एक्सपीरियंस भी ज्यादा है, एक्सपोजर और एक्सपीरियंस। फ्रांस एक मैच्योर टीम है और मोरक्को की एक बड़ी यंग सी टीम है, तो ये भी एक बेनिफिट है, बेनिफिट ऑफ डाउट इनको दिया जा सकता है। हाँ ये एक है, ये एक फैक्ट है।
1: दूसरा मैच हो गया स्पेन बेल्जियम, स्पेन इटली मेरे को लग रहा है जीतेगा। इंग्लैंड और नॉर्वे का मैच एकदम टक्कर की मैच होगी, पर मेरे को लग रहा है नॉर्वे आगे आ जाएगा इंग्लैंड।
0: आई होप, क्योंकि मुझे मैच देखना है अर्जेंटीना और नॉर्वे का, आई होप।
1: क्यों, अगर इंग्लैंड और नॉर्वे में से जो जीता वो अर्जेंटीना या स्विट्जरलैंड जो जीतेगा उनसे खेलेगा।
0: अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड का जो मैच होना ना, उसका तो मुझे लग रहा है कि अर्जेंटीना ही आएगा आगे, जो हालात चल रहे हैं ना
1: उसको, जो मैं क्या बोलूंगा
0: बस अब उस बात को छोड़ देते हैं हम उसको उस साइड पर रख लेते हैं। मैंने कहा ना जो हालात चल रहे हैं, ढगी छुपी बात है, जो हालात चल रहे हैं उसके लग रहा है अर्जेंटीना। लेकिन कहते हैं ना मेरे करण अर्जुन आएंगे तो वो नॉर्वे हिसाब पूरा करेगा।
1: अगर नॉर्वे ने इंग्लैंड को हरा दिया तो अर्जेंटीना को वही उसका करण अर्जुन वही होंगे।
0: एग्जैक्टली, मुझे वो करण अर्जुन वाला सीन याद देखना है।
1: या अगर नहीं हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह फ्रांस फाइनल और अर्जेंटीना, फ्रांस 2-0 से जीत जाए, बस यही चाहूंगा मैं।
0: सही, मेरा और आपका हिसाब दोनों का एक ही जैसा चल रहा है। चले भाई, ये सुनकर अच्छा लगा कि कोई मेरी ऐसी सोच रखता है। चले अब हम देखते हैं कि मैच में क्या होना है और अगले कॉलर की तरफ चलेंगे। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, ये बताएं बॉलीवुड ट्रिविया खेलेंगे अभी नहीं, 12 बजे के बाद थोड़ी देर में?
1: बहुत मुश्किल है, पर मैं 3 दिन आके मैं अपना वो करके चल जा चुका हूँ।
0: अरे भाई आज अच्छे अच्छे गाने और पूछ लेंगे ना। अच्छा आज थर्सडे है तो मैं काम करूंगी, आज ना मेरा दिल कर रहा है कि कुछ एक्स्ट्रा किया जाए, तो आज हम मूवी का नाम नहीं बताएंगे, ठीक है? आज हमें सिर्फ गाने का टाइटल बताना है, ठीक है? ऐसा कर लेते हैं। तो 12 बजे के बाद इंशाल्लाह मुलाकात होती है, आज हमने सिर्फ गानों के नाम बताने, ठीक है?
1: मैंने एक गाने का रिक्वेस्ट भी डाला है।
0: चलें ठीक है,
1: अच्छा गाने। नहीं, आप पहले मैसेज देखिए, बहुत अच्छा गाने।
0: मसला ये कि मेरा मोबाइल गुम हो गया है ऑफिस का, पता नहीं कहाँ है यहाँ पर। मैं देखती हूँ जब तक, तो जो है ना जो लोग कह रहे हैं ना कि हमने मैसेजेस किए और आपने देखे नहीं अभी तक, मुझे पता है ऐसी धमाकेदार मैसेजेस आए हुए होंगे ना, मुझे ताने आए हुए होंगे कि आपने अभी तक हमारा एक मैसेज भी नहीं पढ़ा। अरे भाई रुको, जरा सबर करो। चले आपकी कॉल बंद करती हूँ और फिर मोबाइल ढूंढती हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफिज। अरे भाई ये क्या चल रहा है, मैंने कुछ ज्यादा मांग लिया क्या? मैं कह रही थी मोबाइल गुम हो जाए। अब मुझे क्या पता था कि ये बात ऐसे पूरी हो जाएगी। एक काम करती हूँ, आप लोगों की कॉल्स आ रही हैं, ठीक है? एक काम करते हैं, एक छोटे से ब्रेक पर चलते हैं और ब्रेक से आने के बाद इंशाल्लाह आपसे होती है मुलाकात। भाई इससे मैं कुछ और भी मांग लेती तो शायद वो भी मिल जाता, क्या कहते हो? मतलब ये कि मैं ढूंढ रही हूँ मोबाइल कहाँ गया। अभी ऑप्शन आप लोगों को ये दे रही थी। चले ब्रेक के उस पार आप लोगों से सवाल ये है आज का, मुद्दा ये है आज का पार्टी के, गोविंद पुल्लो ये बताओ कि अगर एक महीने के लिए मोबाइल गुम हो जाए, यानी कि नो सोशल मीडिया, नो मीम्स, जिंदगी आसान हो जाए, कॉलें भी नहीं, कुछ भी नहीं, कता ताल्लुक सोशल मीडिया से, कता ताल्लुक कॉलों से, कता ताल्लुक हर टेंशन से, मोबाइल एक महीने के लिए गुम, या एक हफ्ते के लिए नहाए बगैर रहना, क्या मंजूर है? बताओ बताओ, ओले ओ मुकाबला है दोनों चीजों का, नहाने का या ना मोबाइल होने का। आप सुन रहे हैं सपा के साथ सन एंड साउंड ऑन FM 107।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सफा के साथ सिर्फ FM 107 पर। दिल से

0: इस शो में आपका मेरा साथ रहेगा एक बजे तक. इस वक्त एफएम 107 की घड़ी बज रहे हैं 11:48. आप चाहें तो हमें मैसेज कर सकते हैं 666-22-107 पर और कॉल कर सकते हैं 443-443-77 पर. और भाई मोबाइल बरामद हो गया है. अब कहते हैं ना बगल में बच्चा शहर में ढिंढोरा. अब काले रंग की चीज़ें पड़ी हुई हैं सामने, उसके अंदर काले रंग का मोबाइल गुम हो गया. मैं क्या करूँ, मैंने सोचा कि मेरी विश पूरी हो गई कि मोबाइल गुम हो जाए. अब मैं स्पेसिफाई करना भूल गई थी कि मेरा वाला मोबाइल कि ऑफिस का मोबाइल. चलो कोई बात नहीं. तो भाई आप लोगों के मैसेजेस मैं थोड़े बहुत शामिल कर लेती हूँ. अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम अस्सलाम. ये भेजा है जुनेद भाई ने. और जसविंदर सिंह कह रहे हैं मैडम जी जुगनू कतर शुमाल में भी होते हैं. अरे भाई मुझे बताइएगा शुमाल में कहाँ आपने देखे. मैं बता रही हूँ, मैं नॉस लगा कर जाऊँगी उस जगह पर. अच्छा भाई और कौन है हमारे साथ. मैसेज भेजा है जीशान भाई ने. कहते हैं कि भाई हमारी बता रहे थे कि नानी पता नहीं दादी का बता रहे थे कि उनके घर के पास जो है होम कंट्री में तालाब हुआ करता था, वहाँ पे हम हाथों में जुगनू पकड़ा करते थे और बड़ा जो है ना इमोशनल होकर बता रहे थे कि बड़ा मज़ा आता था उस वक्त. और उनकी बात सुनकर मुझे भी थोड़े सा ना दिल में होने लगा, हाय मेरी नानी दादी के घर के पास तालाब क्यों ना था ऐसा वाला. और भाई आरिफ भाई का मैसेज आया. आरिफ भाई से तो बात भी हो गई. यूसुफ भाई कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मैंने देखे हैं जुगनू अपने बचपन में. हम पकड़ के ग्लास की बॉटल में रखा करते थे. ग्लास में इसकी रोशनी ऐसी लगती है जैसे लाइट बल्ब हो. जलाओ मुझे जलाओ जलाओ बोल बोल के क्या ही जाता है. मैंने नहीं देखी ना अभी तक, मैंने तो सिर्फ कार्टूनों में देखी है. और भाई यूसुफ भाई बता रहे हैं कि आर्ट का स्कोर उन्होंने किया था. यूसुफ भाई हाँ यूसुफ भाई मुझे याद आ गया आ गया. और कह रहे हैं कि मैंने मैं आपके साथ हूँ. मोबाइल एक महीना ना मिले कोई बात नहीं, आराम से रह सकता हूँ मैं. यूसुफ खान देखिए भाई. अच्छा और किस किस का मैसेज आया हुआ है. तौफीक भाई का मैसेज. तौफीक भाई आप जो है ना मुझे बस पराठों की तस्वीरें भेज करना मुझे. आप जो है ना भूखा कर दें बस. मैं फिर लोग कहेंगे कि सवा खाने के बारे में बात करती है. खाती कुछ नहीं लेकिन खाने के बारे में बात ज़रूर करती है. अब क्या करें ऐसा ही मामला है. और ये कोई गाबा भाई हैं जिन्होंने मुझे फायरफ्लाई का नाम भेजा है जो मैं ढूंढ रही थी इंग्लिश में, भूल गई थी. स्लिप ऑफ टंग हो गया था, नहीं स्लिप ऑफ माइंड हो गया था कि याद नहीं आ रहा था, उन्होंने फ़ौरन भेज दिया मुझे. और अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. नहीं नहीं आज फ्राइडे ही है. शुरू में जब मैंने गलती छोटी छोटी बातें पकड़ने लगा है छोटे. कौन है ये फ्राइडे. आदिल भाई. आदिल आदिल भाई. अच्छा जी ऐसा है क्या. अच्छा भाई अस्सलाम वालेकुम. हैं अच्छा ये कौन है हमारे साथ. मलिक भाई हैं. मलिक भाई देखें ये जो आपने सवाल किया ना इसका मुझे भी अंदाज़ा नहीं है. मैं पूछ कर बता दूंगी, अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे पास इसकी कोई वैलिड इन्फॉर्मेशन नहीं है. अच्छा भाई साथियों मैंने जाने से पहले ब्रेक के उस पार आपसे सवाल किया था कि एक महीना आपको मोबाइल ना दिया जाए. देखिए आपको इससे ना वो दौर याद आता है. हम जो मोबाइल के दौर के बगैर वाले बच्चे थे ना 90s के बच्चे, उनको ये तक याद है कि उनके मोबाइल उनके बाथरूम में कितनी टाइलें थीं. और उसकी वजह ये थी कि हमारे ज़माने में मोबाइल नहीं होता था तो हमें ये तक याद था कि बाथरूम में टाइलें कितनी हैं. आपको वो वाला दौर वापस चाहिए तो मैं कहती हूँ एक महीने के लिए मोबाइल गुम, सोशल मीडिया गुम, कॉलें गुम, ठीक है. या आपको ये वाला ऑप्शन चाहिए ज़िंदगी में कि मैं एक हफ्ता नहाऊँगा नहीं लेकिन मोबाइल की जान ना छोड़ूंगा. मम्मी कहती ना बेटा हर मर्ज़ इसी से शुरू होता है. आपका वो वाला हाल तो नहीं है कि हर मर्ज मोबाइल से ही शुरू होता है. तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 443-443-77 पर और बता सकते हैं एक हफ्ता नहाए बगैर रह लेंगे या एक महीना मोबाइल के बगैर रह लेंगे. 666-22-107 इज द नंबर टू मैसेज. और देखते हैं हमारे साथ कॉल पे कौन है. अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू. कैसे हैं आप. ठीक हैं
0: अल्हम्दुलिल्लाह. मैं बिल्कुल ठीक ठाक. कौन है हमारे साथ.
1: मैं जावेद बाजवा जेबी बात कर रहा
0: हूं. जावेद भाई आपने अपना नाम माशाल्लाह से इतना पूरा लिया, नाम रोबदार किस्म का नाम लगा मुझे. मुझे सिर्फ पहला वाला नाम समझ में आया लेकिन बाकी के दो लोग कहाँ हैं.
1: बाकी के लोग भी मेरे अंदर ही बसते हैं वो.
0: बाकी के लोग तो वो जो है ना माशाल्लाह इतना लंबा चौड़ा नाम ना. तो
1: नहीं जावेद बाजवा अगर आप सुबह का मतलब है कि ये पहली दफा एक दफा पहले मेरी आपसे बात हो चुकी है काफी अर्सा पहले.
0: नहीं, एक और नाम भी था बाजवा तक तो समझ. एक और नाम भी आपने आगे लगाया था.
1: JB शॉर्ट नेम.
0: अच्छा अच्छा ये एक ही साथ. ओके ओके मैं समझी के पूरा वो एक सरनेम भी साथ में आता है तो वो है. ठीक है जावेद बाजवा मतलब, ओके
1: जेबी
0: एक ए जेबी
1: मतलब जावेद से जे जे जावेद से जे एंड बाजवा से बी.
0: ओह माय गॉड हम कूल जेबी इज कूल.
1: दिस इज व्हाट आई मीन टू से
0: एके ए जेबी.

0: Yeah, exactly. You can call me JB.
1: चले भाई, अल्लाह ताला आपको खुश रखे. ये बताएं कि जावेद भाई, हम तो देसी लोग हैं, हम तो पहला नाम ही लेंगे. ये
0: थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं दे दूं कि मतलब है कि दिल्ली में सुबह मॉर्निंग में कॉल करता हूं और उसमें जो अंताक्षरी वगैरह भी होती है उसमें भी मैं पार्टिसिपेट मैं ही करता हूं.
1: चलें भाई. हाँ, मैंने आज महावेश का शो सुना था और मजे का लग रहा था. अब देखें, सबके पास अपने हिडन टैलेंट्स होते हैं. कुछ लोग अच्छे बाथरूम सिंगर्स होते हैं और कुछ लोग वाकई में अच्छे सिंगर्स होते हैं. तो दोनों किस्म के सिंगर्स वहां पे पाए जाते हैं उनके शो में. उनके पास ना टैलेंट हंट चल रहा है ऐसा लगता है.
0: Exactly. बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है. बड़ा दिल मतलब खुश भी होता है.
1: मैंने फर्स्ट टाइम सुना लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा. मैंने महावीर से ना आधा घंटा उसके बारे में खड़े हुए गुफ्तगू भी की, बड़े मजे की. अच्छा भाई, ये बताएं कि आपने कभी जुगनू देखे?
0: जुगनू मतलब जुगनू देखा भी है, जुगनू को पकड़ा भी है हथेली पे. शाम के वक्त अपनी हथेली पे रखे, ऊपर कपड़ा रखे, खास तौर पर जहाँ पर पंजाबी में कहते हैं पहलियाँ, जहाँ पर वहाँ पर वो बैठे होते, उनको पकड़ ले आप, पॉकेट में तालियां करते थे तो एक अजीब सी लाइट निकलती है कुदरती.
1: सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. अब मुझे ना हर उस शख्स से जेलसी है जिसने जुगनुओं के साथ खेला है. ओपन जेलसी है मेरी.
0: और मैं हर उस शख्स को कहूंगा जिसने जुगनू को पकड़ा भी नहीं है, देखा भी नहीं है, फिर भी आके झूठ बोले कि हमारे पास जुगनू है, हमने पाले हुए.
1: अरे भाई, अच्छा जुगनू एक एक बहुत फैक्चुअल बात है कि आजकल के दौर में जुगनू बड़े कम हो गए. क्योंकि मैंने अपने मामू और चाचुओं को ये कहते हुए सुना है, जो वो होते हैं ना सबके पास नानी और दादियों के खानदानी घर और हवेलियां होती हैं, हमारी भी थी. तो वो जो है, हमने अपने मामू को ये बात करते हुए सुना है कि उनकी हवेलियों के आसपास होती थी. क्योंकि उस जमाने में वाकई में शायद जैसा मैंने कहा कि एनवायरमेंट में ना चेंज था, जुगनू साफ जगहों पे रहते हैं, नेचुरल हैबिटेट पसंद करते हैं. तो आजकल वो चीज भी खत्म हो गई है.
0: नहीं, आजकल उसकी वजह भी है. आप देखिए कि पॉपुलेशन के हिसाब से इतनी ज्यादा खलकत हो गई है कि दुनिया कहां से कहां तक बसेरा हो गया.
1: बिल्कुल, जगह नहीं मिलती. बिल्कुल.
0: और अगर आज भी आप गांव की सूरत हाल को देखिए, जाके गांव की तरफ जाइए तो आपको ये चीजें मिल सकती हैं.
1: अच्छा,
0: और एक और भी फैक्टर है, क्योंकि आजकल दौर मतलब सब्जियों को और जो फ्रूट्स वगैरह को बचाने के लिए जो केमिकल का इस्तेमाल होता है,
1: एग्जैक्टली
0: उसकी वजह भी हो सकती है.
1: एग्जैक्टली, पेस्टिसाइड्स जो लगाए जाते हैं. अच्छा, पंजाब साइड पे हमारे पास, पाकिस्तान में पंजाब साइड पर आप जब एग्रीकल्चरल वाली साइड पे जाते हैं तो लोग, वो हम कहते हैं गोठ वाली साइड पर जब आप जाए ना, तो वहाँ पे लोग बोलते हैं हाँ हमारे पास होते हैं, मौसम आता है जुगनुओं का. सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की कुदरत है. मैं, मुझे बड़ा शौक है. मेरे लिए दुआ करें, मतलब इज्तमाई सब मिलकर दुआ करें कि मुझे अल्लाह ताला नसीब करे इस हयाती में कि मैं जिंदगी में जुगनू देख लूं. नहीं तो फिर ऊपर तो इंशाल्लाह जाके डिमांड होगी कि देख लूं.
0: वैसे आप तो मतलब मैं आपके फोन तो मैं डेली सुनता हूं और प्रोग्राम भी कोशिश करता हूं सुनने के लिए, क्योंकि कॉल्स माशाल्लाह इतने हमारे भाई कॉल करते हैं, लाइन बिजी रहती है, फिर वो चांस नहीं मिलता. बिल्कुल
1: सही, सही.
0: तो लेकिन ये है कि जिस तरह परसों आई गेस आप सिंध के हवाले से बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से उस, क्योंकि वहाँ पर बहुत एरिया खुला अभी भी है.
1: सही है,
0: सिटी में आपको नहीं मिलेगा, वहाँ पर मिलेगा जहाँ पर लोगों ने अपने मतलब पौधे लगाए हैं या सब्जियां उगाई हैं या कोई उनके जमीन है, वहाँ पर मिल सकते हैं आपको.
1: मैं कह रही हूँ ना, वो जो गोठ वाले इलाके होते हैं, हम लोग कहते हैं बिल्कुल खेती बाड़ी वाले जो इलाके होते हैं ना, गाँव टाइप के, उसके अंदर होंगे, अभी भी होंगे, लेकिन उस जगह पे हमारा जाना नहीं होता ना अब.
0: हाँ, सभा एक और हल भी है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको नहीं मिलता जुगनू, तो हम जितने भी कॉल करने वाले हैं आप सबको बोले जुगनू भाई
1: ये दिल बहलाने को ये ख्याल अच्छा है. नहीं भाई, मुझे असली वाले जुगनू देखने हैं भाई, ये बहुत हो गया जिंदगी में ना, बहुत धोखे खा लिया, अभी ये वाला नहीं खाना.
0: अल्लाह करेगा, इंशाल्लाह अल्लाह करेगा.
1: अच्छा भाई, अब सवाल पर आते हैं. मुद्दा हमारा ये चल रहा है आज का कि आपको अगर एक ऑप्शन दिया जाए कि एक महीने के लिए आपके हाथ से मोबाइल छीन लिया जाए, स्मार्टफोन पूरी तरह से गुम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कर दिया जाए कि है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो आपको बिल्कुल वो 99 के दौर में लेकर चला जाए, तो वो मंजूर है आपको? या आप कहेंगे कि एक हफ्ते तक मैं शावर नहीं लूंगा, ना ना मैं ऐसे ही घूमूंगा, मेरा क्या जाता है, मोबाइल ना छोड़ूंगा.
0: आप सवाल

0: माल वो उठा के लेके आती है, ना बंदा यहाँ का तो ना वहाँ का,
1: यही तो मजा है।
0: नहीं मजा ना ना ले, हमारा मतलब आप हमें वो मतलब आपने हमें वो फांसी पे लटका दिया मलेरिया।
1: जरा सोचे, गर्मियों के शदीद दिन और कोई नहाने से इनकार कर दे, उस शख्स से हम मिलने से इनकार कर देंगे, दुनिया से कदा ताल्लुक कर देंगे उसे।
0: बिल्कुल सही कह रही है। हाँ रही बात, एक वैसे एक चीज है कि जिस जमाने में सोशल मीडिया ना था और मोबाइल का भी इतना ज्यादा मतलब नहीं था मोबाइल, लेकिन जिंदगी बड़ी सुकून में थी, लोगों के अंदर मोहब्बतें भी थी, वो हमने देखी हैं।
1: मैंने कहा ना बिल्कुल वो वाला दौर कि जिसके अंदर आपको ये तक पता हो कि आपके बाथरूम में टाइलें कितनी लगी हुई हैं।
0: एग्जैक्टली खाली टाइलों की बात नहीं, हर इंसान को पता था कि मेरे इलाके में कौन कौन रहता है, क्या क्या करता है, ये भी जानते थे।
1: एग्जैक्टली
0: वेरी नेक्स्ट हाउस में कौन है नोबडी नोस, कौन आया कौन क्या नहीं पता चलता,
1: ये एक हकीकत बात है, ये एक बिल्कुल हकीकत बात है। लेकिन आप ये बताएं आप क्या करेंगे?
0: मैं तो फिर मजबूरन मुझे क्योंकि मेरा काम इस हवाले से है कि मैं नहाने छोड़ूंगा ये।
1: ये तो सब मैंने कहा ना, आजकल जो है ना मामला ये हुआ है कि इंसान कहेगा भाई मैं आखिर तक मोबाइल नहीं छोड़ सकता, ये जान जाए पर मोबाइल ना जाए।
0: नहीं देखिए उसके बगैर हल नहीं ना, देखिए आपके जॉब के हवाले से आप उसका या तो आप मतलब आपने एनुअल लीव ली हो तो फिर तो आई डू एग्री विद यू,
1: एक महीने के लिए फिर छोड़ दूंगा। अच्छा ये है कि एनुअल लीव अगर लेंगे तो छोड़ देंगे,
0: फिर पॉसिबिलिटी है क्योंकि अच्छा। फिर आपने टच भी नहीं होगा। हाँ भाई एक तो सबा बहन का ऑर्डर भी है, वो मानना भी है हमारे लिए काबिल एहतराम, हमें ये भी देखनी चीज कि आपने कहा तो फिर मुझे पता है कि आप इतना जुल्म भी नहीं ढाएंगी, कम से कम एक दो दिन के बाद आप कहेंगे भाइयों जाओ ले।
1: नहीं, मैं मोबाइल के मामले में मैं आपको अंदाजा नहीं है मेरी, मैं उन लोगों में से हूँ जो कहती हैं कि मोबाइल ना होता ना तो जिंदगी आसान। अगर आज मुझे कोई कहे ना सफा चाहे ऑफिस चाहे कुछ भी मुझसे मोबाइल ले लो, मैं दुनिया के खुश नसीब तरीन इंसानों में अपने आप को काउंट करूंगी। मोबाइल ले लो मैनेज कर लूंगी।
0: अच्छा मैं एज ए आरजी अभी थोड़ा अमिताभ बच्चन की आवाज में पूछेगा मालूम। अच्छा मुझे ये बताइए अगर फॉर एग्जांपल ये मोबाइल ना होता तो हम सबा बहन की आवाज को कैसे सुन पाते और आप हमें कैसे सुन
1: रेडियो
0: पाते?
1: रेडियो
0: तो था लेकिन आप किसको कहते कि मुझे कॉल करो, कहाँ पर करते टकरे मारते दीवारों
1: को, वो डायल अप वाला फोन, वो टिडिंग टिडिंग, वो गोल गोल होते थे ना उसके अंदर, फोन घुमाएंगे फोन खेलेंगे। अरे मैंने अपने बच्चों को कुछ दिनों पहले कहा कि ये फोन इस्तेमाल करो, हमारे घर में ना वो एक पैकेज लगता है ना इसके इंटरनेट भी आता है फोन भी आता है, फोन तो हमने कभी जिंदगी में लगाया ही नहीं था, पता नहीं कहाँ से फोन एक नुमाया हुआ हमने उसको प्लग इन कर दिया। अब हमारे बच्चे ऐसे देखे उस फोन को जैसे कि कोई म्यूजियम की चीज है भाई, उनको वो फोन इस्तेमाल करना ना आए।
0: बिल्कुल सही बात है,
1: बटन वाला मोबाइल इस्तेमाल करना नहीं आता बच्चों को।
0: एक एग्जैक्टली फरमा रही है, बिल्कुल सच बजा फरमा रही है। एक वक्त ऐसा भी था कि जब नई नई ब्लिप्स आई थी, ब्लिप्स
1: एग्जैक्टली
0: उसको बड़े शौक से लोग उसको रखते थे, अगर कोई घर से उसको नंबर मिलता था तो उसको मैसेज
1: यूं बेल्ट पे बांध के घूमते थे।
0: हाँ ऐसी है। उसके बाद आपने फिर टेलीफोन बूथ के कार्ड रखे होते थे, गाड़ी खड़ी की है पार्क की है जाके कार्ड डाला तो कॉल कर रहे हैं।
1: मुझे याद है वो पुराने बिदा पार्क में ना एक स्लाइडिंग वाला हुआ करता था, उसके बिल्कुल सामने एक बूथ होता था।
0: कई जगह पे थे मतलब वहाँ पर स्लाइडिंग वाला भी था, कई जगह पे थे। देखिए हाँ। उस जमाने में वो वक्त वक्त के साथ हर चीज है। अब ये वक्त आ गया कि यहाँ पर इम्पॉसिबल है कि इन चीजों को आप,
1: हमने अपने आप को एडिक्टेड कर लिया इन चीजों का और उसके ड्रॉबैक भी बहुत ज्यादा है। हमने पता है क्या किया, हमने ऐसे एक सिंपल वर्ड में कहूंगी कि किसी भी चीज का ज्यादा एक्सेस आपको मिल जाए ना तो वो मेडिसिन भी हो ना अगर, तो उसे हम कहते हैं ये अब्यूज हो गया इस चीज का। तो मोबाइल का भी ना हमने अपने आप को उसके अंदर इतना उलझा लिया है कि आजकल के डिप्रेशन एंजाइटी और लिटरली जो हमारी अम्माएं कहती है ना कि बेटा सारे फसाद की जड़ ये मोबाइल है, घूम फिर कर वाकई
0: सही कहती हैं आप। बिल्कुल नहीं नहीं वो सही कहती हैं। आप ये देखिए कि अगर फॉर एग्जांपल अगर एक फैमिली के अंदर कोई दावत है या कुछ भी है, लोग बैठे हुए हैं, जितने भी लोग होंगे उनके हाथ में मोबाइल पकड़ा होगा, हर बंदे के पास मोबाइल।
1: अरे भाई आप क्या बात कर रहे हैं, मैं इस दफा अपनी छुट्टियों पर जो छुट्टियां मनाने गई थी, मेरे छोटे बेटे ने फरमाइश ये की, उसको ये नहीं पता कि सामने वाले घर में कौन सा बच्चा रहता है, लेकिन उसकी फरमाइश ये थी कि मुझे

0: दूसरे कॉन्टिनेंट दुनिया के यूएसए जाना है क्योंकि मुझे अपने ऑनलाइन फ्रेंड से मिलना है. और उनकी दोस्ती माशाल्लाह से 4 से 5 साल पुरानी थी उन दोनों बच्चों की. तो वो इतना जज्बाती हो गया, मैंने कहा अरे तुम्हें ये पता है तुम्हारे पड़ोस में कौन रह रहा है कि तुमने यूएसए जाना है अपने दोस्त से मिलने. तो ये भी एक है,
1: बिल्कुल हकीकत है, क्रेज है ये, क्रेज, इसको क्रेज कह सकती हैं आप.
0: और उसका हल मुझे नजर नहीं आता कि पता नहीं, एक अच्छी चीज है, अच्छी चीज है, इट इज अ वेरी मैं कहूंगी कि तरक्की है दुनिया के लिए. लेकिन वो फिर ये भी उसके साइड इफेक्ट्स भी अपने अपनी कुछ अलग किस्म के.
1: ज्यादा कोई भी चीज हो वो खाली मोबाइल नहीं है, वो खुराक है, वो कोई भी किसी भी चीज में उसका नुकसान है, उसका फायदा नहीं है.
0: बिल्कुल है.
1: और इससे पहले कि मैं ज्यादा बात करूं और बेचारे कॉलर्स
0: हाँ जी इंतजार में, लेकिन जाने से पहले क्योंकि 12 बज गए तो मैं चाहूंगी कि आप जो है ना हमारे साथ बॉलीवुड ट्रिविया खेल कर जाएं, क्या कहते हैं?
1: मैं बॉलीवुड मुझे जरा इस मामले में बड़ा मैं मुझे सही नहीं
0: आता. क्योंकि थर्सडे है, आज क्योंकि थर्सडे तो हमने लीनियंसी की, हमने कहा चलो लाइट मोड पर रखते हैं. वैसे तो हम मूवी का नाम और गाने का नाम पूछते हैं, आज मैंने कहा चलो सिर्फ गाने का नाम बता देना, खल्ली वल्ली मूवी को कौन याद रखता है, क्या कहते हैं?
1: चले मतलब गाना अगर मुझे आ गया तो ठीक है, और अपना कोई मसला नहीं है, पूछ लीजिए, फंस तो गया हूं मैं.
0: चले भाई एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं आप ही से, ठीक है? और आपने बताना है एक मिनट के अंदर अंदर, देखते हैं आप कितने गानों के नाम गेस कर सकते हैं, ठीक है? एक मिनट का टाइम है, तो भाई एक मिनट मेरी स्टॉप वॉच ये रही और आपका टाइम शुरू होता है नाउ. और नहीं नहीं हाँ जी, अब बताइएगा कि ये गाना कौन सा है.

0: ये कौन सा गाना, टाइटल बताएं इस गाने का।
1: सूरज हुआ मत।
0: आहा, वेरी गुड भाई, वन पॉइंट आपके हिस्से में आया। ये बताइएगा ये कौन सा वाला गाना है।

0: ये शाहरुख खान का गाना है और मैं मेरे जहन में लेकिन है शाहरुख खान का।
1: ये बताएं नाम बताएं। और टाइम खत्म हो गया, इतना मजे का मस्त सॉन्ग था।
0: नहीं है ना वो, मतलब मैं मतलब मुझे ज़हन में देखे मुझे पता लग गया शाहरुख खान का है, शाहरुख खान का गाना है।
1: अब तो टाइम अप हो गया, नेक्स्ट प्लेयर से पूछेंगे। लेकिन आपका स्कोर अच्छा, वन का स्कोर, ठीक है, आपसे शुरुआत हुई है। तो ये होता है, नाम दिमाग में होता है लेकिन मुंह पर नहीं आ रहा होता।
0: तुमने मोहब्बत की है, तुमने मोहब्बत की।
1: चले आप सोचते रहे, हम नेक्स्ट कॉलर पे चलेंगे, ठीक है।
0: चलो ठीक है,
1: अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।
0: थैंक यू वेरी मच।
1: डिस्कशन कुछ ज्यादा लंबी हो गई माजरत के साथ, लेकिन मजा आया, अच्छी डिस्कशन थी। अच्छी वाली डिस्कशन हो ना तो थोड़ी सी ऊपर नीचे होते, कुछ नहीं होता, चलता है। देखते हैं हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम।
1: हाँ जी भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। कौन है हमारे साथ?
2: अब्दुलरहमान अंजुम है।
1: अब्दुलरहमान भाई कैसे हैं?
2: जी मैं ठीक, आप कैसे हैं? आप ठीक हैं?
1: अल्लाह का करम है भाई, अल्लाह की रजा में राजी, जो अल्लाह की रजा में राजी वो मुझे खुशी होगा, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि मैं और आप। अब्दुलरहमान भाई ये बताएं, जुगनू से कभी आपका जो है ना वो कभी मुलाकात हुई है? जुगनू से
2: मुलाकात हुई है, बहुत हुई है।
1: अरे भाई,
2: हमारे गांव था, हमारी फूफो रहती थी, उधर जाते थे तब
1: सही
2: उधर बहुत
1: सही। तो मतलब आप उन माशाल्लाह से अजीम लोगों में से हैं जिनको जुगनू ने टाइम दिया है।
2: जी ऐसे ही है। हम तो खेल जो थे बचपन में, वो पकड़ के उसे बोतल में डाल लेते थे, वो ग्लास की बोतल होती थी उसमें डाल के।
1: मैंने तो ये किस्से कहानियों में और कार्टूनों में ही देखा है और सुना है। चलिए अब एक और सवाल आपसे करते हैं। नहीं हमने इस दिन देखा क्योंकि हम शहरी बच्चे हैं ना, हम यहाँ पे पले बड़े हैं, हमें नहीं मिले तभी यहाँ पर।
2: जी ऐसे
1: हम अगर यहाँ यहाँ पर मैंने सुना है लोग कहते हैं कि हैं। अभी जैसे मुझे सुखविंदर भाई ने मैसेज किया था, कहते हैं कि पता नहीं कहाँ पे शुमाल साइड पे कह रहे थे कि हैं, लेकिन आना जाना नहीं होता ना उस साइड पर। अगर कहीं पता चल जाए ना कि वाकई में हैं तो मैं तो ताक में बैठी रहूँगी भाई, मैं तो जाऊँगी।
2: इधर में तो नहीं, इधर नहीं है, कतर में नहीं है। कतर में मैंने थोड़े दिन पहले नोट किया, मैं बीच पे गया था, उधर मैं पानी में हाथ डालता था ऐसे लगता जैसे जुगनू नहीं होता।
1: ये दुखान बीच पे मैं जब छोटी थी, दुखान बीच की साइड पे, अभी आप मुझे नहीं पता कौन से बीच की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं बहुत छोटी थी, मैं 10-11 साल की थी, तो मुझे याद पड़ता है मैं दुखान बीच की साइड पे गई थी, तो मुझे बिल्कुल ऐसे जैसे पानी को हाथ लगा रहे थे ना, तो वो चमकते हुए पेबल्स टाइप के ना वो हाथ में आते हैं जैसे
2: जैसे जुगनू होते थे, जुगनू की लाइट।
1: हाँ ये है,
2: सेम ऐसे ही था
1: वो, मैंने देखा है वो। आपने कौन से वाले बीच पे देखा है?
2: मैंने ये सी लाइन बीच पे,
1: सी लाइन बीच पे। अरे भाई, अभी रिसेंटली आपने रिसेंटली देखा है?
2: जी रिसेंटली देखा है।
1: बस इस हफ्ते की मेरी जर्नी तो सी लाइन की बस खत्म। मैं तम्बू वम्बू लेकर जाऊंगी, वहीं बैठूंगी, मैं सुबह तक ना उठूंगी वहां से।
2: सी लाइन बहुत कमाल का बीच है, साफ सुथरा बीच है, और ऊपर से मैंने देखा है वो भी, मैंने ऐसे पानी में हाथ डालू और ऐसे लगे जैसे जुगनू अंदर, लाइट ब्लू लाइट जले।
1: एग्जैक्टली ये एक मौसम ऐसा आता है जिसके अंदर ये होती है। अब मुझे क्योंकि मैंने बचपन में देखा तो मुझे ये पता नहीं चल रहा था कि जो है ना सी लाइन बीच पर होगा कि नहीं होगा, उसका एक स्पेसिफिक मौसम होता है।
2: अच्छा, ये मैंने भी पहले भी गया हूँ, लेकिन बीच पे इसी पे सी लाइन पे, लेकिन पहले मैंने कभी नहीं देखा, अभी मैं गया हूँ रिसेंटली, परसों गया था आई थिंक।
1: देखिए अल्लाह ताला की कुदरत है, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की कुदरत,
2: सुभान अल्लाह। सही है। मैंने कहा यार ये देखो पानी में लाइटें जल रही है, वो दोस्त मुझे कहता है नहीं ये बाइट से कहीं लाइट पर, मैंने कहा बाइट से कहाँ
1: नहीं, वो अलग से जो किनारे पानी, और वो भी पूरे पानी में नहीं होती, वो जैसे पानी आपके हाथों पे या कहीं पे टकराता है ना तो उसके जो किनारे होते हैं ना पानी के वो जगमगाते हैं। जैसे फिल्मों में या कार्टूनों में दिखाते हैं ना कि वो एकदम से शुआ निकलती है उसके अंदर से, वो पानी की पता नहीं क्या चीज, वो बड़ी खूबसूरत सी चीज है। वो बचपन की एक मेमोरी है मेरे पास धुंधली सी, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने नसीब फरमाया तो इंशाल्लाह जाएंगे हम भी सी लाइन ये देखने।
2: अच्छा
1: अब ये बताएं कि जल्दी जल्दी हम गेम खेल लेते हैं, ठीक है
2: जी।
1: बॉलीवुड का ट्रिविया ये है कि आज जो मैं गाने आपको सुना रही हूँ आपने मुझे सिर्फ उनके टाइटल नाम बताना गाने का, ठीक है?
2: ठीक है। और न्यू पंजाबी सॉन्ग में जरा बताइएगा मुझे, मैं ओल्ड मैंने इतने सुने नहीं है।
1: नहीं ये वो वाले हैं जो सबको बताएं, ये हिंदी है ना, बॉलीवुड के हिंदी सॉन्ग्स हैं
2: वो भी ठीक है।
1: चले भाई चलें शुरू करते हैं, आपको एक मिनट दिया जाएगा, आपका एक मिनट शुरू होता है अब। और गाना या इरा वहां क्या प्यार मिलेगा, क्या मन का फूल खिलेगा जिसे तुम ढूंढ रहा हूं,
2: वहां क्या प्यार मिलेगा।
1: हां जी नहीं नहीं जरा गौर से सुने, गौर से सुने, ये बहुत मशहूर गाना है। मैं आपको हिंट देती हूँ, ऋतिक रोशन, ऋतिक रोशन की पहली मूवी, डेब्यू मूवी थी।
3: वहाँ सच होंगे सपने,
1: बोट के अंदर होते हैं
3: भी अपने, दिल की
2: मैं सुनता ही ज्यादातर ना सॉन्ग, मूवी भी नहीं देखता इतना टाइम नहीं होता।
1: ये अपने एरा की सबसे, ये इतनी कोई पुरानी मूवी भी नहीं है ऋतिक रोशन की। अरे
2: क्रिश मूवी का तो नहीं है?
1: नहीं नहीं नहीं नहीं, क्रिश से हितिक रोशन की पहली मूवी थी ये। अरे भाई दिल तोड़ दिया आपने हमारा, इतनी इतनी मशहूर,
2: क्योंकि मैं सुनता हूँ ज्यादातर ना ये इनके इंडियन पंजाबी सॉन्ग, सिद्धू मूसे वाला, ऐसे ऐसे सॉन्ग सुनते हैं।
1: चलें किसी दिन पॉप सिंगर्स का भी रखेंगे फिर हम लोग।
2: जी जी इंशाल्लाह।
1: चलें जी अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।
2: अल्लाह हाफिज।
1: तो भाई भाई मैंने आज बहुत मक्खन सॉन्ग्स निकाले हैं भाई, बिल्कुल मक्खन सॉन्ग्स, कोई तो ऐसा ऐसा ना करो ना, गोभी दिया भूलो ऐसा ना करो ना। चलो भाई देखते हैं हमारे साथ कॉल पे कौन है, अगर आप भी शामिल होना चाहते हैं, गेम खेलना चाहते हैं, 4434377 इज द नंबर, 4434377 इज द नंबर टू कॉल। देखते हैं हमारे साथ कॉल पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
4: सलाम सफा जी, की हाल चाल है जी तुहाडा?
1: मेरा हाल जेका है वो चंगा है जी, मैनू इतनी ही पंजाबी आंदी है। कैसे हैं आप?
4: तो है मगर निकल नहीं रही पंजाबी।
1: ये पता है मसला, पता है क्या है, ये जो हम मिक्स प्लेट वाले बच्चे होते हैं ना, मतलब ये कि अम्मा सिंधी हैं, अब्बा पंजाबी, आती इनको दोनों लैंग्वेजेस हैं, लेकिन वो कहते हैं दिमाग में आ रही है मुंह पर, मैं समझ में तो आता हूँ लेकिन नहीं, मैं दिल में तो आता हूँ लेकिन समझ में नहीं आता। तो समझ पंजाबी समझ में आ जाती है हमें लेकिन मुंह पर नहीं आ पाती।
4: आएगी आएगी, जरूर आएगी जी, जैसे आप कोशिश करते हो ना डेली, आप कोई ना कोई एक्सेंट बोलते हो अंदर।

0: पे भरपूर है मैडम।
1: आप जो है ना देखिए, आप लोगों को हैट्स ऑफ है कि आप लोग बर्दाश्त कर लेते हैं सबर शुक्र से।
0: सफा जी मेरा नाम गाबा है जी, फर्स्ट टाइम बात कर रहा हूँ आपके साथ।
1: अच्छा गाबा भाई यही है, ये आपने मैसेज भी किया था। हाँ जी हाँ, फायरफ्लाई का सही सही। गाबा भाई कैसे हैं, ठीक ठाक हैं
0: जी? बढ़िया, आप बताइए फरजाना मैम का क्या हाल है?
1: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, घूम फिर रही हैं दुनिया के मजे तो भाई, वो तो माशाल्लाह
0: वो तो उनके जैसी हो।
1: बस दुआ करें उनके लिए, दुआ करें अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, उनको ऐसे ही खुशोखुरम रखे, वो जैसी हैं वैसी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई ये बताएं,
0: वो जब
1: जी
0: वो जब इवनिंग में शो करते थे ना फरजाना मैम, उनसे तो बहुत बार बात हो चुकी है जी, उनसे तो मुलाकात भी हुई थी एक बार स्टूडियो में।
1: अच्छा जी माशाल्लाह, तो फिर ये बताएं,
0: बहुत अच्छा है मैडम,
1: ये बताएं
0: मैडम बताता हूँ, पहले मेरे को बात खत्म कर दो। मैंने मैडम एक बात देखी है आप में और फरजाना मैडम में, जो एनर्जी का लेवल है ना मैडम, वो आप में थोड़ा सा ज्यादा ही है फरजाना मैडम से।
1: चलिए इसको कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं।
0: अगर आप मैडम आवाज की बात करोगे तो मैडम की वॉइस थोड़ी सी हैवी है आपसे, मगर अगर आप एनर्जी की बात करोगे तो एनर्जी मैडम ज्यादा है आप में रियली।
1: चलें इसको हम एज अ कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, थैंक यू
0: जी। वो क्यों, मैं उसका रीजन भी बता देता हूँ। आपसे कोई भी क्वेश्चन बंदा पुट करता है या किसी भी टॉपिक में बात करता है ना, तो आपका जो रिप्लाई होता है ना या उस पे आपका कमेंट होता है विद इन सेकंड्स होता है मैम, दैट्स व्हाई आई
1: स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है वो। चलें इसको बस अल्लाह ताला इसको पॉजिटिव वे में रखे इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल मैडम, अभी पूछिए आप जुगनू के बारे में। हाँ मैडम मैंने गेम तो नहीं खेलनी, मैं जुगनू के बारे में जरूर बात करूंगा।
1: हाँ जी जुगनू के बारे में बताएं भाई।
0: जी मैडम एक्चुअली हमने भी बहुत ज्यादा जुगनू देखे हैं, जुगनू की जो ज्यादा तादाद थी ना वो आज से 15-20 साल पहले मैडम बहुत ज्यादा थी।
1: हाँ, हाँ,
0: दुनिया
1: हाँ,
0: डिजिटलाइजेशन हाँ, होने से पहले।
1: एग्जैक्टली
0: जी, तो आप मैडम यकीन मारिए हमारे पंजाब में बहुत सारे फेमस ढाबे हैं ना, जो रेस्टोरेंट है उनका नाम आज भी जुगनू के नाम से है,
1: यादों में।
0: जी यादों में, जो अभी पंजाब के सीएम है ना मौजूदा मैडम,
1: सही,
0: वो पहले एक कॉमेडी शो करते थे, उसका नाम था जुगनू हाजिर हो।
1: सही। अच्छा लोगों का पंजाब में मैंने नाम भी सुना है जुगनू।
0: जी बिल्कुल, बहुत सारे लोगों का शॉर्ट नाम जुगनू है मैडम।
1: हाँ हाँ हाँ हाँ, मैंने मुझे
0: पंजाब वाली साइड बहुत ज्यादा है जी जुगनू।
1: हाँ हाँ जी जी जी, मैंने ये सुना है, तो वो शायद इसीलिए क्योंकि उस वक्त शायद जुगनू ज्यादा होते थे और बड़ी खूबसूरत सी चीज है।
0: जी मैडम एक्चुअली चक्कर पता क्या है, अभी आप देखिए अभी प्राइवेटाइजेशन इतनी ज्यादा हो गई है ना, क्योंकि अभी खेत तो मैडम इतने ज्यादा बचे नहीं वहाँ पे, और फैक्ट्रीज इतनी ज्यादा लग चुकी हैं, उसकी वजह से जो नेचुरल ब्रीड्स थी, इवन आप यकीन मानिए पंछियों की बहुत सारी ब्रीड्स हैं जो अभी अलोप हो चुकी हैं,
1: और कुछ तो ऐसी जो खत्म हो गई हैं,
0: खत्म हो गई हैं। वो चिड़िया होती थी ना जिसको गुराया ऐसे कुछ बोलते थे, वो भी अभी बिल्कुल रेयर ही है मैडम। और आप जुगनू की बात करते हो मैडम, हमने बचपन में इतना मजा किया है ना जुगनू के साथ
1: खेलें।
0: जी मैडम जुगनू के पीछे भागने का मजा ये होता था ना उस टाइम मैडम, ना तो इतनी ज्यादा ट्रैफिक होती थी ना कोई चोट लगने का डर रहता था, बंदा नंगे पांव भी खेतों में भाग जाता था रात को जुगनू के पीछे उसको पकड़ने के लिए। जी तो मैडम उसको पकड़ने की इतनी एक्साइटमेंट होती थी ना, 5-6 जुगनू इकट्ठे पकड़ के उसको फिर बोतल में डालना, और वो मैडम ऐसे ग्लो करते थे ना यकीन मानिए। आज सारे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जिनमें उन्होंने आर्टिफिशियल बल्ब्स लगा के रखे होते हैं।
1: हाँ ये है। हाँ, वो छोटी उन्हें कहते हैं ट्विंकल लाइट्स होती हैं, वो बकायदा वायर उसकी आती है, वो बिल्कुल ऐसा इफेक्ट देते हैं जैसे जार के अंदर ना जुगनू है, और इतनी खूबसूरत लगती हैं वो, और मैंने सिर्फ कार्टून्स में देखा है और लोगों की बातों में सुना है कि भाई ये वाकई में इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत और हसीन लगती हैं वो वाकई में।
0: मैडम एक इतनी अच्छी वाइब आती थी ना जुगनू के पीछे भाग के उसको पकड़ के मैडम, बहुत अच्छा लगता था। अभी तो मैडम आजकल की जैसे नई जनरेशन है आप बता रहे हो उनको नहीं पता होगा,
1: नहीं बिल्कुल अंदाजा नहीं,
0: ब्रॉट अप हुए हैं जो
1: किताबों में देखे हैं सिर्फ किताबों में।
0: जी बिल्कुल, आप भी सफा मैडम जरूर कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपका तो पाकिस्तान पंजाब में जाना आना रहता होगा, कोशिश जरूर कीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको जरूर मिल जाएंगे जुगनू।
1: विश लिस्ट में तो है, विश लिस्ट में तो है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा भाई
0: इसका रीजन ये है ना मैडम, अभी भी इंडिया और पंजाब में बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो शहर से कटे हुए हैं,
1: है।
0: तो आपको वहाँ पे इजीली मिल सकता है, हो सकता है देखने को, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है मैडम।
1: बस

0: अल्लाह चक्कर लगे तो बस आपकी इस मशवरे पे जरूर तवज्जो दी जाएगी।
1: ठीक है ठीक है।
0: अच्छा भाई एक और सवाल ये है कि बताएं अगर एक महीना मोबाइल के बगैर गुजारना पड़े या आपको जो है एक हफ्ता नहाए बगैर गुजारना पड़े तो आप क्या चीज चूज करेंगे अपनी खुशी से?
1: मैडम अगर दिसंबर का महीना है तो डेफिनेटली
0: गर्मियों के दिनों में
1: मैडम फिर तो मोबाइल ही जरूरी है जी।
0: अच्छा मोबाइल जरूरी है
1: जी बिल्कुल,
0: मतलब मोबाइल ना छोड़ेंगे हम?
1: नहीं छोड़ सकते मैडम, नहीं छोड़ सकते, सारा कुछ ही मोबाइल पे डिपेंडेंट है हमारा।
0: सिर्फ एक यूसुफ भाई और मैं हैं जो इस बात पे अग्री करते हैं कि भाई ले लो, दूसरा ऑप्शन हमें चाहिए ना, मोबाइल ले लो मोबाइल।
1: जी सफर मैम आपने अभी बात की है ना मोबाइल की, मेरे दिमाग में एक बात और याद आ गई, सर्च जरूर करना जब आप फ्री हो गए। आज भी दुनिया में मैडम बहुत सारे लोग हैं, इवन यूएस में, आप यूएस की बात कर रहे हो ना,
0: मोबाइल नहीं है उनके पास।
1: कॉटन काउंटी करके एक जगह है, आप उसके बारे में जरूर सर्च करना, नाम थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। तो वहाँ पे आज भी लोग मैडम अपनी पुरानी जिंदगी जी रहे हैं, मोबाइल से बिल्कुल कट ऑफ है।
0: सही सही सही जी, आप बिल्कुल सही कह रहे सही।
1: और मैडम जो ब्राजील में जंगल है, क्या नाम है उसका,
0: अमेज़न के जंगल,
1: अमेज़न में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी
0: पहुंच ही नहीं पाया इंसान अभी तक। अमेज़न के जंगल अभी तक पूरे दरियाफ्त ही नहीं किए गए हैं, उसकी मैक्सिमम जगहें ऐसी हैं जहाँ पे इंसान पहुंच ही नहीं पाया है, पहुंच सकता ही नहीं है।
1: जी मैं आपको थोड़ा और करीब लेके आता हूँ, और इंडिया और बांग्लादेश का जो समुन्द्र का बॉर्डर लगता है ना मैडम, वहाँ पे एक जंगल है उसको बोलते हैं सुंदरवन। उसमें मूवी भी बनी थी टाइगर ऑफ सुंदरवन, और भी मूवीज बन चुकी हैं। वहाँ पे भी बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जिनके पास अभी भी मोबाइल नहीं है मैडम।
0: सही। अच्छा ये आप यहाँ की बात करें, अगर मैं अपने पाकिस्तान साइड की बात करूँ तो वो जो स्कर्दू हुंजा ऊपर वाले इलाके ना, तो वो भी बड़े रिमोट, बहुत रिमोट इलाके हैं, वो वहाँ पर भी सिग्नल के टावर्स वगैरह मोबाइल नहीं है। अगर आपने वहाँ पे घूमने फिरने भी जाना है तो लोग बाकायदा, जैसे वो पुराने जमाने में होता था ना कि आज का टाइम बता, हाइकिंग कर जाते हैं लोग वहाँ पर, बल्कि बाकायदा आबादी है, लेकिन उस आबादी तक पहुँचने के लिए आपको चार चार आठ आठ घंटे की हाइकिंग करके जाना पड़ेगा। आपका ड्राइवर आपको उस जगह के बाहर छोड़ेगा और आप उससे बोलोगे भाई 3 दिन बाद 4 दिन बाद शाम को 6 बजे मैं यहाँ पर मिलूंगा। हाँ, ये है कम्युनिकेशन लेवल।
1: ये चीजें हैं जी, हमारे वहाँ पे ये चीजें हैं, इंडिया नेपाल पाकिस्तान हो गया, वहाँ पे मैडम पहाड़ी एरियाज में है।
0: हाँ जी पहाड़ी एरिया, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी,
1: करके जाना पड़ता
0: है। सही।
1: अगर प्लेन लेवल में देखोगे वहाँ पे नहीं है बिल्कुल भी कुछ ऐसा,
0: जो पहाड़ी वाले
1: के बहुत सारे लोग हैं मैडम जो अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं विदाउट मोबाइल।
0: ये एक अच्छी
1: चीज है मैडम, उनके रिश्ते बचे हुए हैं, हेल्थ बची हुई है, अच्छी चीज है। हम लोग तो शिकार हो गए ये चीज का।
0: अच्छा खुद अपने आप को बैलेंस नहीं करेंगे ना, हम तो शिकार हो गए खुद नहीं मान रहे कि हमने अपने को शिकार कर दिया है।
1: जी जी मैडम फंस गए हैं, क्या करें
0: नहीं हर हर चीज को। अच्छा मैंने तो जो ना अपने पास मोबाइल में काउंटर लगाया, मैं तो ये करती हूँ हर हफ्ते का देखती हूँ रिपोर्ट कि मैंने इस हफ्ते कितना कम मोबाइल यूज किया है। मेरा डाटा मुझे बताता है कि अच्छा तुमने इतना कम यूज किया, चाहे वो 5 मिनट कम क्यों ना हो, चाहे वो 10 मिनट कम क्यों ना हो, मुझे उसके ऊपर खुशी होती है। अच्छा पिछले हफ्ते से 10 मिनट कम यूज हुआ है। अच्छा ओके गुड गुड गुड।
1: आईफोन ने ये चीज तो आसान कर दिया हर किसी के लिए, आपको देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, खुद ही नोटिफिकेशन आ जाता है मैडम।
0: ओ सारे मोबाइल्स के अंदर अब जो है ना अच्छी खासी इंफॉर्मेशन आ जाती है। चलिए भाई गाबा भाई
1: अच्छा लगा बाकी बात करके,
0: आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट कॉलर भी लाइन में डांटेंगे मुझे, कहेंगे देखो गुम हो जाती है बातें करने में, गजनी तो कहीं की। चलिए जी
1: थैंक यू मैडम,
0: अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी 4434377 इज द नंबर टू कॉल, और प्लीज कोई तो खेल लो बॉलीवुड ट्रिविया, कोई तो खेल लो, आज तो इतना आसान कर दिया। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम,
0: कौन है हमारे साथ? अल्हम्दुलिल्लाह
2: जी जुगनू बात कर रहा हूं।
0: जुगनू है वाकई में जुगनू बात कर रहे हैं क्या? मैंने तो सिर्फ सुना था जुगनू नाम होता है।
2: नहीं जुगनू होते भी है ना, कईयों के नाम निकनेम भी जुगनू होते हैं।
0: ओह माय गॉड, देखें अपने, मैं अपनी तारीफ नहीं करता, मैं खुद जुगनू हूँ। अच्छा भाई असली वाला नाम तो बता दें।
2: जी अदील बात कर रहा हूँ, अभी जुमा भर के आ रहा हूँ।
0: जुमा अदील भाई। अच्छा चल देखें, हर ग्रुप में ना एक शख्स ऐसा जरूर होता है जो आपकी क्लास लेता है, तो आज आप मेरे लिए वो हैं जो आप मेरी क्लास ले रहे। छोटी छोटी बातें पकड़ने लगा छोटे। अच्छा चले कोई बात नहीं, कभी हमारा टाइम भी आएगा, सबका टाइम आता है।
2: अभी कल का भी नारा लगा के आप गई हैं, मैंने जाके कढ़ाई बनानी है फिर खाऊंगी
0: कढ़ाई। नहीं वो शीश तो शीश तो, अरे फिर याद दिला दिया, बड़ी मुश्किलों से मैंने जान छुड़वाई थी उस सोच से.
2: नहीं बनाया ना
0: आपने? नहीं ना, मैंने बनाना है. अब वो अब क्या करूं मैं, देखिए आपने फिर याद दिला दिया. अरे आज तो वीकेंड है, आज तो आराम से बन जाएगा भाई.
2: आज तो बनाएंगे, ये कहना ना कल छुट्टी है.

0: ताला आपको भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह वीकेंड दे. एक टाइम हमने भी ऐसा गुजारा है बहुत लंबा चौड़ा कि हमें वीकेंड नहीं मिलता था और हम हसरत से वीकेंड वालों को देखते थे. चलें ये आता है, सबके ऊपर टाइम आता है. जो बेचारा जॉब वाला बंदा होता है उसके ऊपर आता है ये टाइम. अच्छा भाई,
1: छुट्टी तो कर सकते हैं, इशू नहीं है, लेकिन वो अपना ही नुकसान है छुट्टी करके. हाँ, ना किप्ट उठा.
0: मैंने कहा ना वो रोजी रोटी वाले लोग हैं तो फूंक फांक के चलते हैं हम. अच्छा भाई ये बताएं आदिल भाई, आपको अगर मौका दिया जाए जिंदगी में एक महीने के लिए नो मोबाइल या एक हफ्ते के लिए नो नहाना.
1: देखे मैं तो इसको प्रोवाइड करूंगा कि मोबाइल ना ही हो तो अच्छी बात है.
0: सही,
1: क्योंकि पहले भी तो हम मोबाइल के बिना रहते थे ना.
0: हाँ रहते थे बिल्कुल.
1: ठीक है, तो मेरे लिए तो ये है कि मतलब एक महीना मुझसे मोबाइल ले ही लें तो अच्छी बात है.
0: मुझे ऐसा लगता है अम्मा बिल्कुल सही कहती हैं, ये सारी बलाओं की जड़ी है.
1: नहाने के बगैर तो गुजारा नहीं ना, मोबाइल के बगैर.
0: नहाने के यहाँ ये बात तो हकीकत है भाई, ये सच है, ये एक खरा सच है. अच्छा भाई ये बताएं कि हमारे साथ बॉलीवुड ट्रिविया खेलेंगे.
1: जी जरूर.
0: चले भाई,
1: सॉन्ग बताऊंगा मैं.
0: हाँ सॉन्ग का नाम नहीं, नहीं फिल्म छोड़ दें. आज आज आज हम फिल्म का नहीं कर रहे भाई, आज हम सिर्फ सॉन्ग का नाम टाइटल बताना है अपने सॉन्ग का. ठीक है, आपको दिया जाएगा एक मिनट, उस एक मिनट के अंदर अंदर आपने कोशिश करनी है मुझे सॉन्ग का नेम बताने की, टाइटल. ठीक है. अच्छा भाई ये आपका रहा सॉन्ग, टाइम स्टार्ट होता है नाउ. हाय हाय मेरा फेवरेट हीरो, कहो ना कहो. चले भाई ये तो बिल्कुल मक्खन था, ये तो किसको याद नहीं होगा. अच्छा ये वाला, अब दूसरा.
1: जिंदी, जिंदी.

0: बताएं बताएं।
1: अरे भाई पूरा गाना ही सुना दिया
0: तो वो तभी अब तो बता दें पूरा गाना तो सुना दिया मैंने
1: कौन कर ले
0: खुदी लो जी भाई टाइम भी खत्म हो गया। अरे भाई इतना मशहूर गाना मैं कह रही हूँ मैंने आंसर दे दिया ऋतिक रोशन की डेब्यू मूवी थी ये।
1: हाँ जी ये समुंदर में गाना गा रहे
0: हैं। हाँ जी मैंने ये तक बता दिया कश्ती में गाना था।
1: हाँ जी हाँ जी लेकिन अभी मेरे मुंह पे नहीं आ रहा ना।
0: चले भाई तो फिर एक के स्कोर के साथ हम आपसे इजाजत लेंगे ठीक है। नेक्स्ट प्लेयर को तंग करते हैं फिर। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। चले भाई कोई दूसरा बंदा हमें मिला। अदील भाई कह रहे हैं मोबाइल के बगैर जिंदगी गुजर सकती है मेरी आराम से। जिंदगी नहीं मतलब एक महीना तो गुजार ही लेंगे। देखते हैं हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर कौन है। 4434377 इज द नंबर टू कॉल। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।
0: अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है अल्लाह की रजा में राजी है। कौन है हमारे साथ।
2: जसिम खान।
0: जसिम खान जसिम भाई कैसे हाल चाल चल रहे हैं।
2: अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया
0: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब जल्दी से ये बता दें जिंदगी में अगर एक चीज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना हो तो वो क्या होगी। एक महीने के लिए नो मोबाइल या एक हफ्ते के लिए नो
2: नहाना बर्दाश्त कर सकते हैं मगर मोबाइल के बिना तो एक सेकंड एक मिनट भी नहीं बर्दाश्त कर सकते।
0: चले भाई एक काम करते हैं फिर हम आपके लिए डबल मास्क खरीद लेते हैं आपसे मिलने के लिए ठीक है। वो क्या N95 कोई मास्क आया था ना वो वाला।
2: वो ऐसा है ना मैडम क्या है ना पहले के जमाने में जो अभी लोग खेल रहे हैं ना कि फोन के बिना बिता लेंगे वो अब नहीं हो पाएगा किसी से भी नहीं हो पाएगा।
0: मैं कह रही हूँ हो जाएगा
2: नहीं हो पाएगा फोन
0: कर देखा है मैंने
2: चीज हो गई है ना
0: एडिक्शन रीहैब में जाना पड़ेगा उसके लिए अपने आप को मुझे ऐसा लगता है आने वाले वक्तों में ना अलग से मोबाइल से निकलने के लिए लोगों के रीहैब सेंटर बनना शुरू होंगे क्योंकि भाई बहुत ज्यादा हो गया है।
2: मैडम इतना ज्यादा अभी जो है ना हाल फिलहाल के

0: जनरेशन जो अभी बच्चे हैं, अभी हाल फिलहाल के बच्चे हैं ना, उन्हें देखो वो अभी एक साल से ऊपर के हो रहा है, उनके हाथ में मोबाइल थमा दो, वो बैठे हुए देखते रहेंगे आराम से, मोबाइल हटा लो ना उनका, शुरू हो जाएगा।
1: बच्चों को छोड़े, चले अपनी बात कर लें कि आप लोग खाना नहीं खा सकते मोबाइल के बगैर।
0: नहीं खा सकते।
1: हमारे घर में एक फसाद बरपा होता है जब खाने की टेबल बैठा जाता है, तो मैं चीख रही होती हूँ कि अगर किसी का मोबाइल या किसी का और कोई गैजेट यहाँ पे नजर आया तो उसको खाना ना मिलेगा, तो वो खाना ना खाने पर रेडी है। ये हाल चल रहा है,
0: अपनी भी सिचुएशन ऐसी है,
1: वो जादू बने हुए जादू बने हुए धूप से गुजारा
0: टाइम पे बैठेंगे और खाने के लिए जब बैठेंगे ना, पहले फोन ऑन करेंगे या तो मूवी लगाएंगे, वेब सीरीज लगाएंगे, अच्छा कुछ फनी देखेंगे।
1: मजे की बात ये कि खाना खाने के बाद तक उनको पता नहीं होगा कि उन्होंने खाया क्या है।
0: बिल्कुल नहीं।
1: और ये मसला है, सारा मसला ही यही है ना, सारा मसला ही यही है।
0: बिल्कुल यार, फोन जो है ना बहुत बुरी चीज हो गई है, एडिक्ट, इतने एडिक्ट हो गए ना इसके बिना ना।
1: हाँ, बुराइयां सारी कर लेंगे हम, बुराइयां सारी कर लेंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं हम।
0: छोड़ेंगे फिर भी नहीं।
1: चलें भाई, एक काम करते हैं, इसी दुख के साथ आपके साथ बॉलीवुड ट्रिविया खेलते हैं, ठीक है?
0: जी, कोशिश करते हैं।
1: चले, इसका प्लीज आप ही बता दें, कोई तो बता दे इसका, आपको देते हैं एक मिनट, ठीक है? एक मिनट के अंदर सॉर्ट आउट करते हैं कि ये कौन सा वाला है। मैंने तीन लोगों से ऑलरेडी पूछा है, इसका कोई नहीं बता पा रहा, आप ही बता दें। आपका टाइम शुरू होता है नाउ।
0: लहरों की कश्ती में, बहारों की मस्ती में।
1: नहीं, कश्ती है इसके अंदर, लहरों की मस्ती में नहीं है, गाने का एक टाइटल है। कश्ती में, बिल्कुल सही बोला है आपने, कश्ती में बिल्कुल सही है।
0: पास
1: किसकी कश्ती? नहीं, पास नहीं होता हमारी गेम में। किसकी कश्ती में? लहरों की कश्ती में नहीं,
0: लहरों की मस्ती में, बाहर कश्ती में। अरे ऐसे कुछ टाइटल है इसका।
1: एक वर्ड आप मिस कर रहे हैं, एक वर्ड मिस कर रहे हैं।
0: लहरों की कश्ती में,
1: लहरों को हटाएं, लहरों की जगह कुछ और है। लव को, लव को, हाँ ये बात। चले मैं दूसरा दूसरा दूसरा दूसरा जल्दी से दूसरा हो जाए, दूसरा।
0: तेरी झलक,
1: शर्फी, हाँ सही जी। ये गाने का नाम क्या है, नाम क्या था, नाम नाम नाम?
0: श्रीवल्ली।
1: ओ भाई, कर दिया स्कोर, दो का फाइनल, हमें कोई तो मिला दो का स्कोर करने वाला, बड़ी बात हो गई, बड़ी बात हो गई भाई, चैंपियन मिल गया हमें आज का। आज का चैंपियन मिला हमें, तालियां तो बजा दो भाई, तालियां तालियां चैंपियन के लिए, तालियां।
0: अरे तीन चार होते तो होते चैंपियन।
1: नहीं नहीं नहीं, दो पे हम दो पे भी खुश हैं, हम दो पे खुश हैं भाई। कोई तो मिला फाइनली, कोई तो मिला। श्रीवल्ली है गाने का नाम, बिल्कुल सही। देखें, अभी तक किसी ने स्कोर नहीं किया था, तो आपने आकर ना हमारा दिन बचा लिया, मेरा थर्सडे बचा लिया आपने।
0: अरे चलो, अच्छा चलो, शाम को एक बर्गर मेरी तरफ से खा लेना।
1: चले, अपने अपने खर्चे पे खुश। चले भाई, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलेंगे। अल्लाह हाफिज।
0: ओके, ठीक है, अल्लाह हाफिज।
1: कौन है वो चीता जो दो से ऊपर का स्कोर कर जाए? कोई तो आ जाओ मैदान में, कोई तो आ जाओ। चलो भाई, देखते हैं हमारे साथ कॉल पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम
1: जी, कौन है हमारे साथ?
2: मैं नवीद बात कर रहा हूँ।
1: नवीद भाई कैसे हैं, ठीक ठाक हैं?
2: खैरियत बिल्कुल।
1: और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप कुछ स्कोर कर ही जाए हैं।
2: आप ट्राई करें, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे।
1: चलिए एक काम करते हैं, हम जो ना एक आपसे सवाल कर लेते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद गेम स्टार्ट करते हैं। ये बताएं कि आपको अगर एक महीने का टाइम दिया जाए कि विदाउट मोबाइल, विदाउट एंटरटेनमेंट ऑफ मोबाइल, मीम्स, कॉल्स, विदाउट इट, या आपको एक हफ्ते के लिए नहाना नहीं है, तो क्या चूज करेंगे?
2: मोबाइल अगर सिंपल वाले हैं, पुराने जमाने के, तो वो तो चलेगा।
1: नहीं नहीं, आपका अपना मोबाइल ना, तो आपका अपना मोबाइल आपके हाथ से खस लिया जाए,
2: ये तो मुश्किल सवाल हो गया।
1: इसको सोचने की क्या बात है?
2: मोबाइल नहीं होगा तो डिप्रेशन में चला जाऊंगा।
1: अगर नहाए बगैर घर में घूमेंगे ना, तो याद रखे घर वाले जो है ना आग कर देंगे। कहेंगे यार ना। बाहर बैठो।
2: मैं क्योंकि मेरा ख्याल मैं मोबाइल छोड़ दूंगा मैं।
1: चले भाई शुक्र है।
2: आए बगैर तो फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन मोबाइल के बगैर डिप्रेशन हो जाएगा आपकी वजह से मुझे अगर आप नहीं देंगे।
1: अरे मैं बता रही हूँ जिंदगी बड़ी अच्छी है मोबाइल के बगैर। कुछ आर्ट क्राफ्ट करेंगे, कुछ खाना वाना बनाएंगे, कुछ घर की सफाई। आपको ये पता चलेगा कि आपके घर में कितने लोग रहते हैं, आपको ये पता चलेगा घर वालों ने खाना क्या बनाया था आज, आपको ये पता चलेगा अच्छा आसमान का रंग कैसा दिखता है, मेरे घर में कितनी टाइलें लगी हुई हैं, कौन से रंग की लगी हुई हैं।
2: ये बात भी ठीक है, लेकिन फिर ऑनलाइन खाना कहाँ से आएगा?
1: अरे कॉल कर लेंगे ना, घर का लैंडलाइन है ना, उससे कॉल कर लेंगे। टेंशन नहीं ले।
2: वैसे दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं लाइफ में।
1: देखें ये घर वालों को जानने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम लोग थोड़ा सा जो है ना वो मोबाइल से कदा ताल्लुक हो, क्योंकि घर वाले हमें कहते हैं कि ये एक स्टैचू है, ये आता है ऑफिस से, बैठता है, मोबाइल इस्तेमाल करता है, घूमता फिरता है इसी घर में, बस ये पता नहीं क्या चीज है।
2: ये तो लगता है मेरी बात ही हो रही है।
1: ये हर हर बंदे को लगता है कि उसी के बारे में बात हो रही है। चलें भाई अब आगे बढ़ते हैं, आपके साथ खेलते हैं बॉलीवुड ट्रिविया। ठीक है, आपको दिया जाएगा एक मिनट। आज का हाईएस्ट स्कोर हमारे पास जो है ना वो 2 का है, तो कोशिश करें।
2: मैं तोड़ दूंगा अभी।
1: देखते देखते चलें चलें ठीक है ओके। कहां गया आपका टाइम स्टार्ट होता है ये बताइएगा।

0: एक सेकंड यार,
1: आ रहा है ये यार, आ रहा आ रहा आ रहा आने ना ना ना ना ना ना ऐश्वर्या राय भूमरो में कहाँ से आ गई प्रीति जिंटा को हटाकर. बाजरे बाजरे बाजरे
0: बाजरे ए ढम ढम ढोल बाजे ढोल बाजे.
1: गाने का नाम क्या था? महफिल जमा दी आपने तो, टैलेंट हंट हो गया तो हमारा. हाँ ढोल कौन बजा रहा था? ढोल बाजे ढोल. उसके शुरू में वो क्या कहता है?
0: आंखें इसकी गोल गोल बम
1: भाई. बुमरो आ गया बीच में. ये इन्होंने रिमिक्स बना दिया. बुमरो बुमरो रिमिक्स. नहीं भाई ऐसा ना हो पाएगा, आपका टाइम खत्म हो गया. बुमरो रिमिक्स नहीं है ये.
0: सॉरी मेरे से मैशअप हो गया.
1: हाँ ना, ये आपने कोई 2.0 किस्म का सॉन्ग निकाल लिए दोगा.
0: पुरानी जनरेशन का है, कोई नया है तो बताइए.
1: नहीं भाई अभी के लिए तो यही वाला है. और ये इतना कोई पुराना नहीं, सलमान खान और ऐश्वर्या राय पुराने नहीं हुए. आज भी नाम ले तो मार्केट में तबाही मच जाती है.
0: ओहो,
1: ऐसे कैसे? हाँ तो फिर देखे ना, ऐ भाई गाना भी गा रहे हैं साथ में मजे से, पहचान नहीं रहे.
0: आपसे फोन कॉल पे एंजॉय भी तो करना है ना, फिर मुझे लगा कि मैं सही गा रहा हूँ.
1: मजे से. अच्छा गा सही रहे हैं. वो बीच में भूमरो कहाँ से आ जा रहा है? भूमरो के अलावा कुछ था. चले हम नेक्स्ट कॉलर से हम पूछेंगे, नेक्स्ट कॉलर से. ठीक है, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए. भूमरो भूमरो अल्लाह हाफिज. इनको देखो ये भूमरो में पहुंच गए, मतलब हृतिक रोशन ले आए ये सलमान खान ऐश्वर्या राय को हटाकर. चलिए मैं देखते हैं हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर कौन है. अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम अस्सलाम.
1: जी कौन है हमारे साथ?
2: यूसुफ
1: भाई. फाइनली. अरे भाई अब आएगा मजा, अब आया हमारा टॉप स्कोरर. ये हुई ना बात, अब आया प्लेयर मैदान में.
2: नहीं ऐसा नहीं है, अभी बहुत सारे प्लेयर.
1: यूसुफ भाई ने 8 का स्कोर किया था, अभी तक इस हफ्ते का टॉप स्कोरर यूसुफ भाई रहे. चले यूसुफ भाई रेडी हैं?
2: जी.
1: लेकिन उससे पहले सवाल, इस सवाल के मरहले को क्रॉस करें पहले. नहाए बगैर रह लेंगे एक हफ्ता या? अच्छा हाँ, आपने तो मुझे मैसेज किया था, आपने कहा था कि मोबाइल के बगैर ले लो मोबाइल. मैं भी यही कह रही हूँ, ले लो. चलिए भाई ये तो हो गया मामला मोबाइल लेने का. ठीक है अब आपसे शुरू करते हैं बॉलीवुड ट्रिविया. ठीक है, 1 मिनट का टाइम और 1 मिनट के अंदर आपने बताना है गाने पहचानने. ठीक है, 1 2 3 गो. ये आपने नाम बताना है गाने का. ठीक है सिर्फ.
2: जी. कोई मिल गया.
1: चलें भाई वेरी गुड हो गया. ये वाला बताइएगा.
2: डोली तारो हम दिल दे चुके थे ना.
1: चलें जी ये वाला बताइएगा.
2: पठान टाइटल सॉन्ग झूमे जो पठान.
1: ठीक है भाई ये वाला बताइएगा मुझे जरा. ये वाला कौन सा है?
2: लेजर. बोले चूड़ियां बोले कंगना.
1: अरे भाई क्या चल रहा है ये. चलें भाई ये वाला बताइएगा.
2: कहो ना कहो मर्डर फिल्म.
1: चलें भाई ये भी हो गया और टाइम भी खत्म हो गया हमारा तो. अरे भाई 5 का स्कोर. नाइस, तालियां हो जाए भाई. तालियां कहाँ गई हमारी तालियां भाई? ये रही हमारी तालियां. वेरी वेरी गुड, टॉप स्कोरर भाई. 10 वाला बच्चा. जी
2: फिल्म बताने का था?
1: नहीं फिल्म नहीं बतानी थी हमने आज, सिर्फ गाने की, क्योंकि थर्सडे था, हमने कहा लाइट मोड पे लेंगे. अगर फिल्म साथ बताई थी तो 10 हो जाते आपके. तो वेरी गुड भाई, वेरी गुड, वेरी गुड हो गया. आज के टॉप स्कोर अभी तक के आप हैं. तो भाई अपना ढेर सारा ख्याल रखें, एंजॉय करें अपना थर्सडे. और ये बताइएगा संडे को के वीकेंड पे कहाँ कहाँ घूमने गए थे. ठीक है
2: जी. अच्छी,
1: अपना ढेर सारा ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज.
2: आप भी अल्लाह हाफिज.
1: तो साथियों एक काम करती हूँ, नंबर है 4434377 कॉल करने का और नंबर है 6662107 मैसेज का, लेकिन फिलहाल के लिए मेरा गला मांग रहा है थोड़ी सी इजाजत, तो मैं बिल्कुल यूं गई और यूं आई, ठीक है, जानना नहीं अभी आ रही हूं मैं वापस, टेंशन नॉट, बस ये कितना 2 मिनट में वापस आ रही हूं, ठीक है। सुनते रहे FM 107 सफा के साथ सन एंड साउंड, गुजारिश है वापस आना, ठीक है, गेम मजा आ रहा था।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन की राय पर, माहिरीन की राय पर। लीजिए, हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड, हेल्थ गाइड, जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात। स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई, बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक, इलाज और एहतियात तक। सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ, ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी, दिल से देसी। याद रखिए, सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत।
2: एब्सोल्यूट सिनेमा।
3: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। पर डोंट वरी, मैं हूं ना। भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर फ्राइडे शाम 7:15 RJ फजील के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा। आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड RJ सफा के साथ, सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
4: भाई वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं सफा के साथ, शो का नाम है सन एंड साउंड। और भाई आखिरी मरहला चल रहा है शो का, क्योंकि मैंने जो है वो स्टूडियो छोड़ देना है। कब तक ये 12:50 में स्टूडियो छोड़ देंगे हम, देखो भाई। तो उससे पहले पहले आप लोगों में से जितने लोग शामिल होना चाह रहे हैं बॉलीवुड ट्रिविया में, वो कॉल कर सकते हैं। देखते हैं हमारे साथ कॉल पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
5: हेलो, वालेकुम अस्सलाम
4: जी। कौन है हमारे साथ?
5: अब्दुल कादिर।
4: अब्दुल कादिर भाई, चैंपियन बन जाए आज, प्लीज चैंपियन बन जाए। मैं कह रही हूँ यूसुफ भाई का रिकॉर्ड तोड़ दें।
5: कोशिश तो वही है, अब देखते हैं।
4: चलिए भाई, बगैर टाइम वेस्ट किए, टाइम बड़ा शॉर्ट है, आपको सुनाते हैं गाने।
5: मैं ज्यादा बात भी नहीं कर रहा।
4: चलिए भाई, आपको एक मिनट दिया जाएगा। एक मिनट के अंदर आपने मुझे जितने मैक्सिमम गाने बता सके उनका टाइटल बताना है अपने गानों का, ठीक है? हो जाए, 1 2 3 गो। 1 2 3 आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। ये बताइएगा
5: कैसे मुझे तू मिल गई।
4: अरे भाई, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, दूसरा वाला, दूसरा वाला, दूसरा वाला हो जाए।
5: तो एनिमल मूवी का कुछ सॉन्ग है ना,
4: टाइटल बताना है ना। टाइटल
5: टाइटल तो ये अजीब टाइटल है, पता ही नहीं चलता।
4: कुछ कुछ एक नाम जैसा है, एक नाम
5: जमल
4: जैसा
5: गुटू,
4: यस यस यस। अच्छा ये वाला बताइएगा, ये वाला।

0: शाहिद कपूर का म्यूजिक है,
1: शाहिद कपूर भाई
0: जगसारा ऐसे कुछ है, हाँ वही है।
1: टाइटल टाइटल टाइटल
0: टाइटल
1: टाइटल बताए इसका,
0: गाना आता है टाइटल तो पता नहीं, मौजा ही मौजा।
1: ये बात हुई ना। अच्छा ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ठीक है,
0: पास
1: नहीं ना हमारे पास, पास नहीं होता, चलो भाई ये नहीं हो रहा। टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया। चले भाई नॉट बैड, कितने गाने किए उन्होंने, एक दो तीन और चौथे पे आके फंस गए। अरे भाई यूसुफ भाई का रिकॉर्ड तोड़ते तोड़ते रह गए। चले कोई नहीं, देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम, बट इट वॉज अ गुड प्ले, नाइस नाइस, आई लाइक इट। तो भाई नेक्स्ट टाइम फिर से कॉल कीजिएगा कुछ और गानों के साथ, फिर आपके साथ हाजिर होंगे और देखते हैं आप इससे ज्यादा स्कोर करेंगे, उम्मीद करते हैं।
2: गाना चूज करना, मॉर्निंग में भी एक प्रोग्राम में सुन रहा था ऑफिस जाते हो, वो भी वन तक थ्री प्ले करने वाला, सो ये सब ठीक है। इससे पिछले वाले जो महीने थे वो बड़ा बोरिंग लगा मुझे, दो सवाल ईजी फिर उस पर गेस करते रहो, एक ही चीज एक महीना चल रहा है वो थोड़ा बोरिंग।
1: नहीं, नहीं, ये सही है। हमने पता है अब मैंने अगले हफ्ते से क्या शुरू करना, जितने लिसनर्स सुन रहे ना बस अब स्टूडियो छोड़ूंगी मैं जल्दी जल्दी, लेकिन जितने भी लिसनर्स सुन रहे मैं अगले हफ्ते से ये करूंगी कि मैं आपको एक स्टोरी बोर्ड दूंगी, लेकिन कुछ फनी तरीके से दूंगी, बॉलीवुड का एक स्टोरी बोर्ड दूंगी एक मिनट के अंदर अंदर, और वो मैं कुछ इस फनी तरीके से दूंगी और आपने मुझे गेस करके बताना कि वो मूवी कौन सी है।
2: वो भी अच्छा रहेगा,
1: वो अच्छा रहेगा, वो बहुत मजा आएगा, उसको सीरियस मोड में नहीं उसको सफा स्टाइल में खेलेंगे। चलिए जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा अब्दुल कादिर भाई, अल्लाह हाफिज। तो भाई साथियों वक्त आ गया है स्टूडियो लीव करने का और आपसे इजाजत चाहूंगी। ये याद रखें कि आज जो मैंने सवाल किया था बड़ा रैंडम नोट पे किया था, लेकिन उसके पीछे बात आपको याद दिलाना थी कि देखें जिंदगी में हर चीज़ को एक लिमिट में इस्तेमाल करना सीखें, अपने आप को उससे डी अटैच करना भी सीखें। अगर हम किसी चीज़ से अपने आप को अटैच कर सकते हैं जैसे कि मोबाइल, उससे डी अटैच करना भी हमारे ऊपर है कि अगर हमें कभी ये चीज़ गिव अप करनी पड़े कि हम लोग मोबाइल के बगैर रह सकें, तो थोड़ा सा भाई नहाना गिव अप कर रहे हो भाई, क्या हो गया है, गर्मियों में कौन नहाना गिव अप करता है। तो एक काम करें आप जो हैं वो इस बात के ऊपर तवज्जो दें, नहीं तो रीहैब में जाएं। किसी भी चीज़ की एक्सेस बहुत गलत होती है। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, याद रखें कि जो इंसान अपना ख्याल नहीं रखता वो दूसरों का भी ख्याल नहीं रख सकता, और अपना ख्याल रखने के लिए ये याद रखो बाबू कि अच्छी अच्छी चीज़ों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। कम से कम मोबाइल छोड़ोगे थोड़ी देर लिए तो ये तो पता चलेगा खाने में क्या खाया था। चलो भाई मेरी तरफ से आई एम लीविंग द स्टूडियो, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। आप सुन रहे थे सफा के साथ सन एंड साउंड ऑन FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107
3: Time check। मैं जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? उम्मीद तो नहीं क्योंकि इस टाइम ही आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम बच्चों के दोपहर के एक गुड आफ्टरनून कहूँ क्या कहूँ, आदत नहीं है गुड आफ्टरनून कहने की, लेकिन फिर भी काम चला लीजिए, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। चलो भाई अस्सलाम वालेकुम, आपके एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी गार्ड आज स्पोर्ट्स की बात करेगा। भाई साहब खेल खेल में बहुत सारी बातें हो रही हैं, अभी रीसेंट सेटबैक की बात जो है मुझे बड़ा मजा आएगा इस बारे में बात करें। तो स्पोर्ट्स राउंडअप में स्वागत है, क्योंकि अमीन भाई चले गए हैं छुट्टी पे, मौज कर रहे हैं भाई वो, तो उनके लिए जो गाड़ी में जैसे स्टेप नहीं लगती वैसी मैं हूँ अभी, तो उनके लिए आज सुबह से उठाऊँ मैं अमीन भाई से, इसके लिए मैं गिफ्ट लूंगा जरूर, पर वो बात की बात है। फिलहाल तो मुझे जरा सबसे पहले ऑल द फैंस ऑफ CR7 प्लीज असेंबल, एक साइड में आ जाओ। क्या सोच के आए थे जीत जाएंगे? मैं भी यही सोच रहा था, आप गलत नहीं थे, मैं भी यही सोच रहा था कि इस बार जो है सारी की सारी जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं वो सही होंगी और पोर्चुगल जो है वर्ल्ड कप उठाएगी, खेल खत्म। यही सोचा था ना, सबने यही सोचा था, यही सोच के चल रहे थे भाई पहले वाला मेसी को जिता दिया दूसरा लाई। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है, मैं बता रहा हूँ प्रॉपर शर्त आ रहा हूँ मैं, स्पेन वर्सेस पोर्चुगल वाली प्रॉपर शर्त आ रहा हूँ मैं। और इतना दुख हुआ, इनफैक्ट वो जो हमारी ऐप नहीं है कतर में उस पर भी मैंने लगा लिया भाई, उस पर भी मैंने लगाया था, मैं ना जी ना आज तो किसी भी हाल में पोर्चुगल ही जीत रही, लेकिन वहाँ वहाँ वहाँ वो वाला सीन हुआ और मैच खत्म हो गया। आज बहुत सारी बातें करनी है स्पोर्ट्स की, क्योंकि क्या है अभी हम उस पड़ाव पे आ चुके हैं जहाँ पर मैं आपसे सीधा सीधा पूछ सकता हूँ कौन सी टीम आपको लग रही है सेमीफाइनल तक पहुँच जाएगी। क्लियर कट बात तो नहीं है, अंडरडॉग टीम्स में पिछली बार भी मोरक्को ने बहुत खतरनाक खेला था और इस बार भी ऐसा कुछ नजर आ रहा है, हालांकि उनका मुकाबला बड़ी खतरनाक टीम से पिछली बार तो पोर्चुगल से था, इस बार फ्रांस वर्सेस मोरक्को क्वार्टर फाइनल के लिए भाई सब तैयार हो जाओ आप।

ये जो वर्ल्ड कप 2026 फुटबॉल का है, बहुत जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी क्वार्टर फाइनल है फ्रांस और मोरक्को के दरमियान। और ये जब खेला जाएगा तो मुझे लगता है कि फ्रांस की जो अटैकिंग फुटबॉल की टीम है, मुझे लगता है वो खेलते नहीं, डिफेंस आता ही नहीं जी, उन्होंने तो सामने वाली टीम को बताना ना ना नो रेस्टिंग टाइम, टू टाइम्स कुछ नहीं चलेगा, तो उनका तजुर्बा काम आएगा क्योंकि वो तो फेवरेट है ही। पर दूसरी तरफ है मोरक्को, जिसमें ज्यादा प्रेशर होना नहीं चाहिए कायदे से। मोरक्को जो है ना धीरे से, वो तो ना चूटी काट लेती है दूसरी टीम को, दूसरी टीम ढह जाती है, वैसी वाली टीम है। तो क्या इस बार मोरक्को फ्रांस को अपसेट कर पाएगी और ये फील्ड से जाने पर मजबूर कर देगी, ये जो है बहुत डिसाइडिंग, बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर, बिकॉज इनमें से एक टीम सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाने वाली है। सो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट मैचेस दैट विल हैपन टुडे। इसके अलावा जो दूसरा मैच है, आई नो बहुत सारे जो पोर्चुगल के फैंस हैं वो स्पेन के बड़े खिलाफ हो चुके, ना मैं तो देखूंगा ही नहीं स्पेन का कोई भी मैच, देखना तो पड़ेगा, मजबूर कर दिया स्पिन ने। देखो मैं भी CR7 का फैन हूँ, अब रोनाल्डो नहीं जीत पाया ठीक है, उन्होंने बहुत सारे बयान भी दे दिए, बट स्पेन वर्सेस बेल्जियम देखने वाला मैच तो है भाई, बहुत ही हाई वोल्टेज वाला मैच है, वो तार को छील के जो करंट दौड़ता है वैसा वाला मैच है। तो स्पेन और बेल्जियम का जो क्वार्टर फाइनल है वो कल होगा, आमने सामने दोनों टीम्स होने वाली हैं, और राउंड ऑफ 16 में पोर्चुगल को हरा कर जो कॉन्फिडेंस हासिल किया है स्पेन ने, तो या तो ये कॉन्फिडेंस उनको ओवर कॉन्फिडेंस में ले डूबेगा, या तो भाई साहब इस कॉन्फिडेंस के जरिए बेल्जियम को बहुत भारी पड़ जाएगा, क्योंकि बेल्जियम ने जो यूएस के खिलाफ जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है उसके बाद दोनों टीमें ऑलमोस्ट आमने सामने आ गए, ऐसा नहीं कोई कम कोई ज्यादा है, तराजू में इस स्केल पे आने के बाद दोनों ही टीमें आमने सामने आएंगी तो लगता है कि जबरदस्त मुकाबला होगा। तो मिडफील्ड और अटैक में सबसे ज्यादा दोनों ही टीमें आगे आती हैं और दोनों पर नजरें टिकी हुई हैं। कुछ मैसेज है, खादर अब्दुल आदि भाई कहते हैं जी बेल्जियम जीतेगी, फ्रांस स्ट्रांग है बिकॉज दे हैव अ गेम प्लान। मैं देखो मैं शर्त नहीं लगाऊंगा आपसे, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये बेल्जियम वाला जो आपने बोला यहाँ पे तो बेल्जियम जीत जाएगी, पर मैं देखना चाहता हूँ ये वाला मैच, ये जो स्पेशल मैच है मोरक्को और ये फ्रांस के बीच में, बिकॉज अगर गलती से भाई साहब पासा पलट गया और इसमें सरप्राइज मिल गया फ्रांस को, तो हर जगह हर रील में यही नजर आने वाला है। अकील हैदर साहब लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम भाई, आई विल सपोर्ट स्पेन, सो ही सपोर्टिंग स्पेन। अस्सलाम वालेकुम भाई सर, टाइम पर रेडियो ऑन किया, सबको सुनाए क्या क्या करना पड़ता है क्या क्या करना पड़ता है, बेचारा होता है स्पोर्ट्स पढ़ रहा। गुड आफ्टरनून कबीर भाई, फजील भाईजान नहीं है अभी, वो शाम में आएंगे। देखे ये बेचारे ये फैन है CR7 के, दिल टूट गया इनका, इकबाल भाई का। इकबाल भाई हमारा भी दिल टूटा भाई, हमने तो शर्तें लगाई थी ऐप पर बैठ के, एक मैसेज है गेम छोड़ें अपनी बताएं कह रहा अब ये सब छोड़ो यार, मुमिन भाई कह रहे हैं अपना बताओ। एक मैसेज और आया, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद भाई। तो देखो फुटबॉल की दुनिया में ये दो मैचेस जो अब होने वाले हैं, एक तो आज और कल, फर्स्ट इज फ्रांस फेसिंग मोरक्को और स्पेन वर्सेस बेल्जियम, दोनों ही मैच बहुत तगड़े हैं, दोनों का बता देना कौन सी टीमें लग रही हैं आपको कि वो अभी आगे बढ़ने वाली है। लेकिन आप एक टीम को नहीं भूल सकते जिसके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा है, और वो है इंग्लैंड की टीम। वर्ल्ड कप जीतने की रेस में कोई कसर नहीं छोड़ रही है इंग्लैंड की टीम, नॉर्वे के खिलाफ अपने क्वार्टर फाइनल खेलने के लिए एकदम तैयार नजर आ रही है। आपने ब्रिटिश मीडिया देखा होगा, ब्रिटिश मीडिया में इतनी एक्साइटमेंट है भाई साहब, उनके तो रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर इंग्लैंड, मैं आई एम नॉट इवन किडिंग, लुक एट द रिपोर्ट्स, उन्होंने कह दिया है अगर इंग्लैंड जो है वर्ल्ड कप जीत गई तो मुल्क में बैंक हॉलीडे तक दे दिया जाएगा, छुट्टियां मनाई जाएंगी भाई। तो वो छुट्टियां अगर उन्हें मिल गई, बस इतना आसान नहीं है इंग्लैंड का सफर, अभी इतना भी आसान नहीं होने वाला है, बट लेट्स सी। अभी तो फिलहाल उनको क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे को झेलना है, और नॉर्वे का आपने देखा है उन्हें किसी मैस्कॉट वेस्कॉट की जरूरत नहीं है भाई, जरूरत ही नहीं है, वो जिस तरीके से सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जिस तरीके से दिखा रहे हैं, अलग ही मामला चल रहा है। पर इफ यू स्टिल सपोर्टिंग इंग्लैंड लेट मी नो, क्योंकि मैं अभी इस बार की वर्ल्ड कप में डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं कि सेमीफाइनल्स में कौन सी टीमें आमने सामने होने वाली हैं, जजमेंट ही मेरा छीन लिया इन लोगों ने। एंड ये जो रेस है सेमीफाइनल्स की बहुत बहुत गर्माने वाली, क्वार्टर फाइनल्स के बाद सिर्फ चंद टीम्स होंगी जो ट्रॉफी की रेस में आगे बढ़ पाएंगे, और जो फुटबॉल के एक्सपर्ट्स हैं उनके हिसाब से बता देता हूं क्या है, आप अपने बता दो सेमीफाइनल्स की टीम। मैं फुटबॉल के एक्सपर्ट्स की बात कर रहा हूं, नॉट मी नॉट यू बट द एक्सपर्ट्स। उनका कहना है कि फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड और अर्जेंटीना, ये चार टीमों के नाम सामने आ रहे हैं। उनका कहना है ये चार टीमें जो हैं सबसे मजबूत कंटेंडर्स हैं जो नजर आ सकती हैं सेमीफाइनल्स में। आई डोंट नो, मुझे देखो इनमें से मुझे स्पेन का तो नजर आ रहा है, इंग्लैंड का आई एम नॉट श्योर, अर्जेंटीना शुड बी देयर। तो दो टीमों को लेकर मैं श्योर नहीं हूं। आई नो फ्रांस को लेकर आपकी बहुत भारी उम्मीदें हैं, पर मैं मैनिफेस्टेशन पर यकीन रखता हूं। मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि इस बार कुछ बदल सकता है।

मामला, दैट इज जस्ट मी मैनिफेस्टिंग, मेरा कोई ओपिनियन कोई व्यू नहीं दे रहा हूं मैं. ये मत कहिएगा ओ यू डोंट लाइक फ्रांस देन वी डोंट, नहीं ऐसा कुछ नहीं है. आई एम जस्ट सेइंग मैं चाहता हूं कि यहाँ पे थोड़ी सी रद्दबदल हो जाए. हालांकि एक्सपर्ट्स के हिसाब से फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड, अर्जेंटीना यही हैं जो कंटेंडर्स हैं सेमीफाइनल्स के लिए. वैसे मोरक्को ने इंशाल्लाह, भाई ने जिता ही दिया, भाई कह रहे हैं सेमीफाइनल छोड़ो, जीता दिया इन्होंने मोरक्को को. इकबाल भाई एटलीस्ट सेमीफाइनल तक की दुआ तो पहले हम करनी चाहिए हमें. खादिर अब्दुल भाई कह रहे हैं वर्ल्ड कप 2022-2026 अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस सॉन्ग, मुझे ऐसा लगता है इस बार भी. एक और भाई कह रहे हैं अर्जेंटीना जीत जाएगी. यूसुफ भाई ये मैं जेरे लब पे बात होती ना वाली बात है ये, तो मैं कहने वाला था, मैं कहना चाह नहीं रहा था. अर्जेंटीना अगर दोबारा जीत गए ना भाई, तो मैं बता रहा हूँ फिर कोई ये मेसी वर्सेस रोनाल्डो वाली जो डिबेट है वो दफन हो जाएगी. एक मैसेज है, अगर क्या है, ये छोड़ो सर हम तो आपके लिए आए हैं. भाई मेरे लिए आप 5 बजे जरूर रहेगा, अभी तो देखो स्पोर्ट्स में आधा ही घंटा है मेरे पास. अच्छा इसके बाद जरा क्रिकेट की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ये भी बहुत बहुत बड़ी चीज़ हो रही है क्रिकेट की दुनिया में, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था और मैं चाह रहा था कि जो सीरियसनेस लेके है बेसबॉल को लेकर जो बाहर की कंट्रीज में है, क्या कभी हमारी तरफ हो सकती है. हम ना वीडियो गेम्स में पहले खेला करते थे बेसबॉल एंड वी यूज्ड टू लव इट. वो होम रन मारना, वो जिस तरीके से वो लोग बॉल थ्रो करते हैं, जिस तरीके से शॉट मारते हैं, जिस तरीके से वो लोग रन करते हैं, इट इज़ ऑलमोस्ट नॉट सिमिलर टू क्रिकेट, मगर ठीक है वैसे कुछ मैकेनिक्स हैं बेसबॉल की भी. और बेसबॉल से हमारी तरफ की कंट्री कभी ज्यादा इंट्रोड्यूस हुई नहीं है बाहर, तो मतलब ये मेन कल्चर है. पर अभी जो सुनने में आया है, आई एम रियली रियली हैप्पी अबाउट इट. तो इंडिया के जो T20 वर्ल्ड कप की विनिंग कैप्टन हैं सूर्य कुमार यादव, उनको चुना गया है मेजर लीग बेसबॉल ने एज देयर ब्रांड एम्बेसडर. ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है. वो इंडिया में बेसबॉल को ना सिर्फ प्रमोट करेंगे बल्कि इसके अलावा जो है खिलाड़ियों की जो सिलेक्शन होगा उसमें भी शामिल रहेंगे, और फिलाडेल्फिया में जो खेला जाता है MLB ऑल स्टार वीक में भी वो शिरकत करने वाले हैं. ये क्रिकेट और बेसबॉल इन दोनों को करीब लाने की बहुत बड़ी कोशिश है, एंड आई थिंक अगर ये हो जाए तो बहुत बड़ी बात है. एक भी स्टेडियम नहीं देखा भाई, आंखों से देखना है मुझे एक स्टेडियम बेसबॉल का. एक बारी तो बेसबॉल का भी मैच जरूर अटेंड करना है. आई रियली वांट टू. आई डोंट नो कि हम में से कितनों को बेसबॉल के रूल्स पता है. पता है क्या मुझे भाई, गेम की वजह से होम रन शोम रन पता है. एक मैसेज है, उम्मीद लगानी अच्छी बात है बट जरा देख के. शेख भाई मेरे खिलाफ चले गए. शेख इरफान भाई कह रहे हैं हेलो, उम्मीद उम्मीद मत लगाओ भाई, थोड़ी देर लगाने दो. एक मैसेज, चलो भाई कोई तो आया स्पोर्ट्स की न्यूज लेकर, जो पाकिस्तान के फला प्लेयर ऐसे फला ऐसे 555 मैच कंटिन्यू जीते, कमाल दुनिया में और भी कंट्रीज. हाँ भाई बिल्कुल, आपका भाई है ना टीम जस्ट लाइक मुंबई. अच्छा एक मैसेज आ रहा है, सना का कह रही है टीम अर्जेंटीना जो है वर्ल्ड कप में इट्स लाइक मुंबई इंडियंस टू IPL. अच्छी हाँ, मुझे पता है ना अभी अर्जेंटीना के जो जो फैंस हैं वो बाहर निकल के यही कह रहे हैं कि बाकी सब छोड़ो, हमें मतलब नहीं है क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल से, हमें कप दो और हमें घर जाने दो भाई. पर मुझे ऐसा लगता नहीं है इस बार होगा. मैं दिल की बात कह दूं आपसे, मुझे अभी भी ये लगता है इफ दैट इज इफ स्पेन डिफीट्स बेल्जियम, ओके दे विल मूव फॉरवर्ड. और मुझे लगता है कि फाइनल, ये मेरा ओपिनियन भी, आई विल नॉट कॉल इट ओपिनियन, यू समझ लो कि मेरी एक प्रेडिक्शन है. मुझे ऐसा लगता है फाइनल विल बी बिटवीन ईदर फ्रांस वर्सेस स्पेन, और अगर मेरा मैनिफेस्टेशन सच हो गया तो इस बार मोरक्को का थोड़ा लक चल जाएगा. बट मोस्ट प्रोबेबल जो फाइनल मुझे नजर आ रहा है दैट इज स्पेन वर्सेस फ्रांस, और भाई बहुत डेंजर मैच हो जाएगा ये. अच्छा मूविंग ऑन विद द क्रिकेट थिंग, बिकॉज बेसबॉल की मैंने बात कर दी है, सूर्य कुमार यादव की, तो वुमेन्स क्रिकेट टीम की जो शौहरत है वो भी तेजी से बढ़ रही है. इफ यू हैवंट नोटिस्ड, वैसे तो आपको हर बार अब नजर आता होगा, क्योंकि पहले किसी जमाने में मामला हुआ करता था फीस का, कि भाई इनको उतनी फीस नहीं मिलती है, उतनी सैलरी नहीं मिलती है, बट नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड माशाल्लाह एंड फॉर गुड. तो ICC के मुताबिक वुमेन्स क्रिकेट की जो पॉपुलैरिटी है वो रिकॉर्ड तोड़ रही है इस बार. स्टेडियम के अटेंडेंस बढ़ी है, TV की व्यूअरशिप बढ़ी है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिससे क्रिकेट आगे बढ़ता है, स्पेशली फॉर वुमेन्स क्रिकेट की बात करूं, इट्स नॉट जस्ट इंडिया और पाकिस्तान बट एवरीवेयर, वो है स्पॉन्सरशिप का बीच में आना. जब वो पैसे नहीं डालेंगे तो फिर मामला कैसे आगे बढ़ेगा, वो पैसा डालेंगे तभी तो मार्केटिंग आगे बढ़ेगी. सो स्पॉन्सरशिप वाले भी आगे आने लगे हैं. इंडिया और पाकिस्तान का जो वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप मैच भी है वो भी देख चुका है ऑडियंस सबसे ज़्यादा, रिकॉर्ड ब्रेकिंग, एंड आई रियली होप दिस कंटिन्यूज. एंड जिस तरह से बाकी खेलों को तवज्जो दी जा रही है, ये सेम क्रिकेट जिसे हम दोनों ही पड़ोसी मुल्क इतनी शिद्दत से मोहब्बत करते हैं, उसमें वुमेन क्रिकेट का जो सेगमेंट है वो भी उतना आगे बढ़े. सो दैट वुड बी वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स.

0: इन फ्यूचर। एक मैसेज है शेख इरफान अली भाई का, लिखते हैं भाई
1: क्या
0: बिरयानी पार्टी पक्का भाई साहब, सच हुआ तो बिरयानी पार्टी। अच्छा कह रहे मोरक्को जीत गए तो बिरयानी पार्टी पक्का है भाई। और ये प्रिंस भाई कह रहे मोरक्को विल विन द फाइनल्स। भाई आई रियली होप सो, दे आर अंडरडॉग्स। मैं पता है मैं क्यों नहीं कहना चाह रहा, मैं उनको पहले मैं चाहता हूँ क्वार्टर फाइनल से आगे निकल जाएं बस, क्योंकि उनका सामना जिस टीम से है ना कोई हल्के बोल के टीम नहीं है भाई, फ्रांस कोई मजाक नहीं है। एक मैसेज है कबीर भाई, आप तो स्पेन के फैन से भाई। मैं अरे रे रे मैं इसलिए नहीं कह रहा था पता यूसुफ भाई, अरे मैं फैन नहीं हूँ स्पेन का, समझ नहीं रहा बात को। मेरा तो उल्टा दिल टूटा है जब ये जो पोर्चुगल वाला मैच था, मैं कोई फैन नहीं हूँ, मैं एक बहुत ही भारी दिल से प्रेडिक्शन बता रहा हूँ आपको। एक और प्रेडिक्शन आई है आरिफ अंसारी भाई की, कह रहे हैं उनका प्रेडिक्शन है फ्रांस वर्सेस मोरक्को, फ्रांस जीतेगा, बेल्जियम वर्सेस स्पेन, स्पेन जीतेगा, नॉर्वे वर्सेस इंग्लैंड, नॉर्वे जीतेगा। भाई यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपके थोड़ा सा मुझे लगता है इंग्लैंड जीत जाएगा। आए लिखते हैं अर्जेंटीना वर्सेस स्विट्जरलैंड में अर्जेंटीना जीत जाएगा, फिर फ्रांस वर्सेस स्पेन में फ्रांस जीत जाएगा, अर्जेंटीना नॉर्वे में ये कह रहे हैं आई वॉन्ट नॉर्वे टू विन बट अर्जेंटीना जीत जाएगा, फाइनल होगा अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस दोबारा से। अरे भाई सोचो जरा, ये भी एक एक हिसाब किताब अगर लगाया जाए, इतिहास अपने आप को वापस दोहरा सकता है और इतिहास की आदत होती है अपने आप को दोहराना। सो पॉसिबिलिटी है कि फाइनल्स जो है वापस अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस हो जाए। अरे भाई रोंगटे खड़े हो गए ये सोचते के साथ ही। फिलहाल अपने प्रेडिक्शन मुझे भेजते रहेगा, बिकॉज ये जो भाई ने बताया है अगर ऐसा हो गया तो भाई साहब एक चीज़ होगी, वो जो जो बहस छिड़ती है मेसी वर्सेस रोनाल्डो, वो कहीं ना कहीं चुपके से छुप जाएगी। बट एनीवे मूविंग ऑन टू अनदर न्यूज़ जो कि क्रिकेट की ही दुनिया से आई है। तो इंग्लैंड का जो T20 ब्लास्ट नॉकआउट स्टेज है वो करीब है, उसके करीब आ चुका है। इंग्लैंड का वाइटैलिटी T20 ब्लास्ट अपने फैसले मरहले में दाखिल हो रहा है और टीम्स नॉकआउट क्वालिफिकेशन के लिए बहुत ही सख्त मुकाबला कर रही हैं। हर मैच पॉइंट्स टेबल के लिए नहायती एक एक मैच बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इसके अलावा जो ग्लोबल सुपर लीग है उसकी तैयारी पूरी होती नजर आ रही है। 23 जुलाई से गुयाना में ग्लोबल सुपर लीग शुरू होगी, जहां लाहौर कलंदर्स समेत मुख्तलिफ जो मुमालिक की चैंपियन फ्रेंचाइज है हिस्सा लेंगे। तो टूर्नामेंट के फैंस को एक बहुत ही हाई क्वालिटी T20 क्रिकेट देखने को मिलेगा एंड दिस इज गोइंग टू बी ह्यूज। जैसे जैसे बाकी खेल बढ़ रहे हैं क्रिकेट भी धीरे धीरे अपने बाकी सेगमेंट्स को बढ़ा रहा है, विच इज रियली गुड थिंग। एक मैसेज और है इकरम भाई का, गुड आफ्टरनून सर, मैं तो कहता हूँ सारे ही विन करके ट्रॉफी मुझे दे दो मैं इसीलिए। वाह वाह वाह शाबाश शाबाश। एक मैसेज भाई, हमारा तो शौक ही मर गया रोनाल्डो के जाने के बाद, मैं समझ सकता हूँ भाई हमजा भाई। आई हैव सीन सो मेनी फ्रेंड्स, मैंने भाई बच्चों को रोते हुए देखा है जब रोनाल्डो जो चेहरा था उनका पोर्चुगल के मैच में, वॉज रियली रियली सैड। आरिफ भाई मैं आपकी प्रेडिक्शन से यार बहुत खुश हूँ भाई, पता लग रहा है कि आपके अंदर भी एक फुटबॉल का बहुत बड़ा फैन है। लिखते हैं भाई मैंने प्रेडिक्शन क्यों किया है क्योंकि एम्बापे की 2022 की मेहनत के लिए बहुत ही अफसोस जो होता है मुझे। 2022 में उसने अपने अकेले ही दम पर मैच ड्रॉ किया था और मैं चाहता हूं कि एम्बापे उस टीम को हरा। ओके ये दिल की भड़ास निकाल रहे हैं बेसिकली, कह रहे हैं भाई एम्बापे ने बहुत मेहनत करी, इस बार मैं चाहता हूं फाइनल में पहुंचे और अर्जेंटीना को हरा दे। देखो जी ऐसा है ये आपने अंदर की बड़ा से निकाल, ये प्रेडिक्शन नहीं है भाई, ये प्रेडिक्शन नहीं है, ये तो आपके दिल के किसी कोने की एक बात निकाली आपने। खैर प्रेडिक्शन करते रहिए जब तक मैं और भी खेलों की खबरें आपको देता रहूंगा। सो अगली जो खबर है वो टेनिस की दुनिया से है। विंबलडन विमेंस सेमीफाइनल्स वो आज है, विंबलडन की विमेंस सेमीफाइनल्स खेला जा रहा है। कोको गॉफ, मार्था कोत्स्युक और कैरोलिना मुचोवा एंड लिंडा नोस्कोवा में से दो प्लेयर्स होंगे जो फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे। टेनिस फैंस को सख्त मैं हिदायत देना चाहता हूँ, ये मैच ना मिस करें, बहुत ही दिलचस्प मुकाबला होगा। एंड इफ़ यू हैवंट बीन टू अ टेनिस कोर्ट एवर, कभी मौका लगे भाई टेनिस के कोर्ट में जाना, इतनी शांति, आप कहेंगे इतना सुकून तो मेरे घर पर नहीं है। टेनिस का कभी मैच देखने गए, आप लाइव जाना कभी, यू विल रियलाइज कि किस तरीके का सुकून होता है वहाँ पे। एक हल्की सी वो जो स्कूल में कहते थे ना पिन ड्रॉप साइलेंस, एक पिन भी गिरी ना भाई, एक पिन तब भी इतनी खतरनाक आवाज निकलती है इसके हद नहीं। अच्छा मूविंग ऑन विद द वर्ल्ड ऑफ टेनिस, जोकोविच भाई साहब शानदार वापसी, 5 घंटे से ज्यादा चलने वाले मैराथन क्वार्टर फाइनल मैच में यादगार कमबैक करके सेमीफाइनल में जगह बना ली है जोकोविच ने। मैच के बाद उन्होंने ऐसी मजाक में, आई एम जस्ट कोटिंग हिम एज इट इज़, तो उन्होंने मैच के बाद जो है मजाक में बोला कि लायनल मेसी की तरह 90 मिनट खेलना ज़्यादा

आसान होता है, आई थिंक भाई उनके पीछे मत पड़ जाना, ही वॉज जस्ट किडिंग. एंड जोकोविच की वापस शानदार वापसी की बात, तो ऑब्वियसली उनके भी फैंस बहुत बड़े लेवल पे हैं, तो वे बड़े खुश होंगे. एंड जो विंबलडन फाइनल्स का जो जोश है वो बढ़ता चला जा रहा है, टूर्नामेंट अपने अभी आखिरी मरहले पे पहुंच चुका है और हर मैच के साथ प्रेशर बढ़ता जा रहा है. दुनिया भर के जितने टेनिस फैंस हैं फाइनल्स का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. सो इसमें भी अगर आपको रुचि है, आपका इंटरेस्ट है, कुछ शौक है तो बताइएगा. बाकी प्रेडिक्शंस तो फुटबॉल की मेरे पास भर भर के आ रही है. आरिफ भाई क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं भाई जो अर्जेंटीना और मेसी को फीफा और रेफरी की हेल्प मिल रही है वो बुरा हो रहा है और ये भड़ास निकाल रहा हूँ. मैं समझ रहा हूँ, इजिप्ट वाले मैच की बात करो ना, मुँह पता है भाई मुँह पता है, इसलिए अर्जेंटीना के फैंस भी अर्जेंटीना के फैंस कह रहा हूँ जो रोनाल्डो के फैंस हैं वो इसलिए परेशान नहीं है कि पोर्चुगल हार हो गई, उनकी परेशानी ये है कि अर्जेंटीना इसके साथ कैसा ऐसा हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए. बिकॉज यू फेल देन यू वॉन्ट अदर्स टू फेल, वैसे वाले फैन हो चुके हैं अभी रोनाल्डो के. एंड इट्स फाइन, होता है भाई, मोहब्बत में आदमी क्या क्या नहीं बोलता. खादर अब्दुल्ला भाई कह रहे हैं नाउ कबीर भाई इज एनर्जाइजर रिचार्जर नॉट एंटरटेनमेंट सिक्योरिटी गार्ड. भाई मैं तो सारे शो कर लूँ, कोई दिक्कत को नहीं भाई, रोकड़ा लगता बस. अच्छा अब जरा आगे बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ जो कि रॉयल बॉक्स की तरफ है. रॉयल विंबलडन सिर्फ टेनिस ही नहीं है तो आपको बताया, बल्कि अपने रॉयल ट्रेडिशंस की वजह से भी बहुत मशहूर है. जैसे मैंने कहा, राइट फ्रॉम द कोर्ट टू द प्लेयर्स टू द वे द गेम इज प्लेड, इस दफा क्वीन कैमिला और कई मशहूर शख्सियतें रॉयल बॉक्स में मैच देखती हुई नजर आने वाली हैं. एंड दिस इज गोइंग टू हैपन येट अगेन फॉर द फाइनल्स. टूर्नामेंट की शान में ऑफकोर्स इजाफा होगा और अगर आप भी फैन हैं टेनिस के सो लेट मी नो कि आप इसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं, बिकॉज टेनिस के फॉलोअर्स ही मैंने देखे हैं भाई जिन्होंने नया नया आके यहाँ पे सीखा है, तो दैट इज़ ऑल्सो देयर. अब जरा बैक टू फुटबॉल, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड कप और बहुत सारे फैंस हैं. तो अर्जेंटीना सेमीफाइनल्स की तरफ जो नज़रें अपनी बनाई हुई है, अर्जेंटीना ने राउंड ऑफ 16 में इजिप्ट को 3-2 से हराया, क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली. ओके, मैच वॉज कॉन्ट्रोवर्शियल, ठीक है. अब उनका मुकाबला स्विट्जरलैंड से होने वाला है. मेसी के बगैर अर्जेंटीना की यंग टीम ने इम्प्रेसिव फुटबॉल दिखाई है और टाइटल फेवरेट सभी भी बने हुए हैं. मैं ये नहीं कह रहा कि अर्जेंटीना में दम नहीं है, कुछ नहीं है और मैसी होगा तभी कुछ होगा, ऐसा भी नहीं है. और मैसी के होने से फ़र्क तो पड़ता है क्रिकेट में, जैसे सचिन के होने से फ़र्क तो पड़ता था भाई, तो फ़र्क तो पड़ेगा. अब स्विट्जरलैंड क्या कर पाएगी अर्जेंटीना के सामने, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है एवरी टाइम व्हेन अर्जेंटीना फेसेस अ टीम सबसे अनप्रिडिक्टेबल मैचेस होते हैं. इजिप्ट का उठा लो, यहाँ पे जब 2022 में हुआ था सऊदी अरब वाला मैच उठा लो, फ्रांस का फाइनल उठा लो, एवरीथिंग जस्ट goes unpredictable. तो अभी इस बार क्या होगा ये भी देखने को मिलेगा. इसके अलावा जो नॉर्वे का कॉन्फिडेंस है वो बहुत बुलंद है, हल्के में ले रहे हैं लोग कह रहे हैं इंग्लैंड जीत जाएगी, लेकिन अभी जैसे आरिफ भाई ने कहा नॉर्वे जीत सकती है. नॉर्वे ने फुटबॉल की दुनिया को हैरान किया है, ब्राज़ील को राउंड ऑफ 16 में 1-0 से हरा दिया था, भूलिएगा नहीं ये बात को. और अब नॉर्वे इंग्लैंड के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में खेलेगी, मुझे लग रहा है ये भारी पड़ जाएगी इंग्लैंड पर, ऐसा मुझे लग रहा है, जैसे आरिफ भाई को लग रहा है. और इसके बाद स्पेन की बात करते हैं. स्पेन का सब जानते हैं डिफेंस बेहद मजबूत है, जो उन्होंने दिखाया भी पोर्चुगल के अगेंस्ट. टूर्नामेंट में सिर्फ चंद गोल्स कंसीड किए, इतना कोई भारी भरकम किसी ने गोल मार के उनको तंग नहीं किया है, तो डिफेंस उनका टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है. और कोच के कहना है कि डिसिप्लिन डिफेंस और पोजिशन फुटबॉल की सबसे बड़ी ताकत है. उनके कोच इस बार भी डिफेंस को लेकर आगे बढ़ने वाले हैं, बट आई थिंक द नेक्स्ट मैच दैट दे आर प्लेइंग उसमें इन्हें थोड़ा अटैकिंग खेलना पड़ेगा, बहुत जरूरी हो जाएगा. इसके अलावा मोरक्को पे जाते हैं अगेन. पिछली बार तो हमने कहते थे अंडर डॉग्स हैं, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इस बार मोरक्को की हिस्टोरिक जर्नी जारी है. पिछले वर्ल्ड कप की तरह ही इस बार भी लगातार दूसरे वर्ल्ड कप में नॉकआउट स्टेज में शानदार परफॉर्मेंस दे रही है टीम. तो जाहिर सी बात है अरब ममालिक और अफ्रीकन फैंस पूरी दुनिया में उनकी हिमायती कर रहे हैं, हम भी उन्हीं की तरफ हैं भाई, हम तो चाहते हैं पहुंच जाएं आगे तक, दुनिया को हैरान करते हैं, निकल जाए पूरी की पूरी फैंस की. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. बट राइट नाउ अभी आपकी टीम्स कौन सी हैं सेमीफाइनल्स में जा रही हैं वो ज़रूर बताएं. क्रिकेट की तरफ वापस आता हूँ, बैक टू द क्रिकेट, बिकॉज उसके बिना तो हजम होगी नहीं आपको न्यूज़. सो पाकिस्तान के तो यंग प्लेयर्स हैं, उन पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नज़र है. सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में उभरते हुए जो फास्ट बॉलर्स हैं और जो एग्रेसिव बैटर्स हैं उनको उन पर उनकी नज़र बनी हुई है. इस बार के जो प्लेयर्स हैं आने वाले इंटरनेशनल सीरीज के लिए तैयार किए जा रहे हैं. सो लेट्स सी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है अभी. एंड एज अ पड़ोसी मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान की जो टीम है उसमें बोर्ड ऐसा सिलेक्शन करे कि लगे यार अभी टीम थोड़ी अलग दिशा में जा रही है, एंड दे नीड टू टेक अ

टेस्ट टीम की प्रिपरेशन कर रही है इंग्लैंड अपने आने वाली टेस्ट सीरीज के लिए। ट्रेनिंग कैंप्स में फिटनेस और बैटिंग कॉम्बिनेशन पर खास तवज्जो दे रही है। कोचिंग स्टाफ जो है और एक्सपीरियंस्ड और यंग प्लेयर्स के दरमियान बेहतरीन बैलेंस बनाने की कोशिश जारी है। इसके अलावा फ्रेंचाइजी क्रिकेट में बड़ा इन्वेस्टमेंट किया गया है। मुख्तलिफ टी ट्वेंटी लीग्स जो है इस साल नए स्पॉन्सर्स और नए इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी को बढ़ा रहे हैं। कोशिश यही है ना कि क्रिकेट को ज़्यादा से ज़्यादा बेचा जाए, तभी तो उन मुल्कों में जाएगा जहाँ पर क्रिकेट कभी खेला नहीं गया है। तो लेट्स सी, फिलहाल एक दो मैसेजेस पढ़ दूं बिफोर आई साइन ऑफ। ने कहा भाई अर्जेंटीना को छोड़ के किसी को भी ट्रॉफी दे दो। अरे भाई कह रहे भाई कोई भी जीत जाए, अर्जेंटीना नहीं जीतनी चाहिए। अरे अरे अरे अरे अरे भाई, ये मैसी के फैंस के बीच में मत बोल देना, थिंग्स विल गो मैसी। बता रहा हूँ। बाबर को फिर से कैप्टन क्यों बनाया यंगर्स में से कोई? हाँ मैं देखो, मैं जैसे मैंने कहा ना, एज अ पड़ोसी आई बिलीव पाकिस्तानी क्रिकेट को मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। आई जस्ट वॉन्ट देम टू टेक सम रिस्क बिकॉज बहुत ज़रूरी है यार। हम चाहते हैं वाली टीम हो जो बहुत खतरनाक खेलती थी, बहुत अग्रेसिवली बैटर्स होते थे, बॉलर्स होते थे, देख कर डर लगता था। तो वैसा कुछ होना बहुत ज़रूरी है। लेट्स सी इफ दैट एवर हैपन्स। एंड इसके अलावा जो लास्ट की कुछ खबरें हैं, मैं ज़रा फार्मूला वन के ट्रैक से देना चाहता हूँ। जो हंगेरियन ग्रां प्री है, तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। ऑफकोर्स नवंबर में कतर में भी होगी, लेकिन फार्मूला वन टीम्स अपनी अगली रेस के लिए कार्स की परफॉर्मेंस और रेस स्ट्रेटजी पर काम कर रही हैं। चैंपियनशिप के करीब आते ही हर पॉइंट की अहमियत बढ़ गई है और इंजीनियर्स नए नए अपग्रेड्स टेस्ट कर रहे हैं। क्या क्या गाड़ी में डाला जाए, कैसे कैसे अपग्रेड किया जाए, भाई सब तैयारी पूरी है। ड्राइवर्स चैंपियनशिप में सख्त मुकाबला हो रहा है। टॉप ड्राइवर्स के दरमियान पॉइंट्स के जो फर्क है, जो एक जमाने बहुत होते थे, अभी कम होते जा रहे हैं। हर रेस के बाद स्टैंडिंग्स बदल रही हैं और इसकी वजह से जो टाइटल रेस इस सीजन की है, सबसे दिलचस्प कहानी बना रही है। ये कहानी प्रॉबली रिपीट होगी जब कतर में फॉर्मूला वन होगा, बट लेट्स सी, उसमें थोड़ा सा टाइम है। नवंबर में हमें दिखने को मिल जाएगा, लुसेल सर्किट वापस से सजा होगा, वापस से तैयार होगा। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन फार्मूला वन, सो कई फार्मूला वन टीम्स ने अनाउंस किया है कि अगली रेसेस में नए एरोडायनामिक्स पैकेजेस और सस्पेंशन इंप्रूवमेंट्स का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि लैप टाइम्स में थोड़ा बेहतरी लाया जा सके। हर साल मैं सुनता हूँ कुछ ना कुछ किया था। पिछले साल इफ़ यू रिमेंबर तो उन्होंने इलेक्ट्रिक कार्स की भी रेस करा दी भाई, मैं तो खुद गया था देखने के लिए, इलेक्ट्रिक गाड़ियां दौड़ रही थी भाई। तो क्या कुछ नहीं किया जा रहा है इस बार? दे आर वर्किंग ऑन द एरोडायनामिक्स पैकेजेस एंड सस्पेंशन इंप्रूवमेंट्स, तो देखते हैं कि क्या होगा। इसके अलावा अगली जो खबर है वो है फैंस का फोकस, क्योंकि शिफ्ट हो गया तो सीजन के दरमियान हिस्से में कंस्ट्रक्टर्स और ड्राइवर्स दोनों चैंपियनशिप्स बहुत ज़्यादा करीब है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगले जो चंद ग्रां प्री टाइटल रेसेस होंगे उनका रुख बदल सकता है। So let's hope for the best and let's see what happens next. अब जरा मैसेज की तरफ, because only 3 minutes left. क्या है? आरिफ भाई ने भी मैसेज किया है, भाई आई एम हैप्पी बाबर इज कैप्टन, आई वन ऑफ द बिगेस्ट फैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, लव यू भाई, लॉट्स ऑफ लव मेरे भाई। मैं आई एम अ फैन ऑफ बोथ आर क्रिकेट्स ब्रो। मुझे लगता है पाकिस्तान और इंडिया क्रिकेट तो वो कहते हैं ना बाप है बाप हर क्रिकेट का, बट आई स्टिल फील थोड़ा सा अभी क्या है पीसीबी को थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत है और ऐसा एक्सपीरियंस कि लोग बोले ये क्या कर दिया, वैसा वाला एक्सपीरियंस। सो दैट्स ऑल आई वॉन्ट टू से, बिकॉज आई बिलीव कि एक बार अगर थोड़ा बहुत चेंज से खेल लिया गया तो कुछ अलग होने की उम्मीद है। बाकी तो देखो अल्लाह मालिक है ना। तो आरिफ अंसारी भाई थैंक यू सो मच। ऑन दैट नोट इट्स टाइम फॉर मी टू साइन ऑफ। बस मैं इतना कहूँगा कि शाम में मिलेंगे भाई, शाम में 5 बजे आ जाइएगा। वीकेंड भी है, लॉट ऑफ थिंग्स टू से, बहुत सारी बातें करनी है, प्रेडिक्शन भेज देना, वहाँ पर भी बात कर लेंगे, क्या टेंशन है। बट फॉर नाउ दिस इज दोहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ, और अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप बेहद बेहद ज़रूरी हैं। मा सलामा।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: चेक टाइम चेक। इस वक्त हमारी स्टूडियो क्लॉक पे हुए दोपहर के डेढ़, यानी इट्स टाइम कि हम थोड़ा सा चैलेंज ले लें।
3: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से दी।
2: हां जी, तो मेरी देसी ऑडियंस क्या हाल चाल है, हैप्पी वीकेंड। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी फॉर अमिता। आप सभी का वेलकम है हमारे एस्केप रूम के इस वीकेंड एपिसोड में। तो क्या जनाब, क्या चल रहा है, क्या हो क्या रहा है, हाँ, व्हाट आर योर प्लान्स फॉर द वीकेंड? आई नो इट्स अ वेरी क्लिशे क्वेश्चन, लेकिन आज के दिन ये पूछना बनता है। तो वीकेंड प्लान शेयर करो ना, 666-22-107 इज आवर नंबर, उस पर आप अपनी बातें कर सकते हैं। लेकिन आज का जो चैलेंज होगा एस्केप रूम का, उस चैलेंज को पास करने के बाद, भाई देखो, हम सभी को ना कुछ स्टोरीज पसंद आती हैं एंड वी आर द लवर्स ऑफ स्टोरीज। लेकिन जब हम किसी किताब को उठाएं एंड स्पेशली वो एक हॉन्टेड स्टोरी बुक हो और हम उसके पन्ने पलटाएं सिर्फ पढ़ने के लिए, लेकिन एकदम से अगर हम उसके अंदर ही चले गए और उस स्टोरी बुक का हिस्सा बन गए, तो फिर एस्केप कैसे करेंगे? वेल, यही आज का चैलेंज होने वाला है। तो बिल्कुल प्रिपेयर हो जाइए, अपने आप को थोड़ा सा लूजन अप कीजिए, जूस वगैरह पीजिए, करक पीजिए, जो करना है करिए, क्योंकि एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद आपकी मेरी मुलाकात होगी और आज की सिचुएशन आपके सामने आएगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट। फिलहाल ये नंबर याद रखिए, 666-22-107, 666-22-107, इसी नंबर के जरिए आप मुझसे रابطہ कायम कर सकते हैं। मेरी खामोशी है। उफ, ये गाना तो बनता है आज के शो की शुरुआत में। हाँ, enjoy it. Stay tuned to FM 107, दिल से देसी।

0: हमें ऑन एयर नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर दिल से देसी
1: क्रिकेट हो
2: एंड ही इज हुक्ड दैट अवे दैट्स फोर रन
1: फुटबॉल हो या कोई और बड़ा स्पोर्टिंग एक्शन हम लाते हैं आप तक हर एंगल हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे साधे अंदाज में
3: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से
1: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंड अप दोहा वाले कबीर के साथ एवरी थर्सडे एट 1 PM
3: क्योंकि यहाँ होगी बात सिर्फ
4: समर्स का टेम्परेचर तो गिरता बढ़ता रहेगा फिर चाहे मौसम कितना भी सनी क्यों ना हो जाए रेडियो की वॉल्यूम हम गिरने नहीं देंगे सन और हमारी साउंड आपके लिए मुफीद साबित होंगी तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं सन एंड साउंड आरजे सफा के साथ संडे से थर्सडे सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी
5: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी
6: यस वेलकम FM 107 सुन रहे हैं आप मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता एस्केप रूम की आज की सिचुएशन आज के चैलेंज को लेने का वक्त हो चला है तो जनाब आज आप एक हॉन्टेड स्टोरी बुक का हिस्सा बनने वाले हैं कैसे हाँ आप एक पुरानी बुक स्टोर में गए धूल से भरी बुक स्टोर में गए और एकदम बाहर तेज बारिश तूफान शुरू हो गया आप थोड़ा सा सहम गए आपने कहा ये क्या बात हुई मतलब बुक स्टोर में गए अब ये बाहर बारिश कैसे हो गई बेमौसम बारिश शुरू हो चुकी है कुछ बड़ा ही डेंजरस होने वाला है वहाँ आपकी नज़र एक लेदर बाउंड वॉल्यूम पर पड़ती है और आपको लगता है कि चले वहाँ पहुँच जाएं और आपने देखा एक बड़ी ही अट्रैक्टिव सी किताब लेकिन उसमें धूल ही धूल जमी हुई है जैसे ही आपने उस किताब को लिया उस किताब के पन्नों को फ्लिप किया एंड देन सडनली बूम अचानक सारे अल्फाज सारे वर्ड्स घूमने लगे और आप खुद को एक विशाल कागज के पहाड़ पर खड़ा पा रहे हैं ओ हो यहाँ के जो पेड़ हैं वो कार्डबोर्ड के हैं और बादल चारकोल से बने हैं वैसे आप एक कहानी के अंदर हैं समझ में आया कि नहीं आया तो जनाब ये जो कहानी है ये कोई आम कहानी नहीं है एक मिस्ट्री है और ऑथर ने आपको एक अंधेरे डंजन में या यूं कहें तहखाने में लॉक कर दिया है यस इट्स अ वेरी मैसिव तहखाना ठीक है अब यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है आपको वो मिसिंग वर्ड ढूंढना है जो इस कहानी को मुकम्मल या यूं कहें कंप्लीट करेगा ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि चैलेंज अब एक एक करके शुरू होने वाले हैं एक जायंट इंक ब्लॉट यानी स्याही का धब्बा आपका पीछा कर रहा है अब आपने भागना शुरू किया भाग रहे हैं और भागते आपको ज़मीन पर एक कागज़ का टुकड़ा मिल गया यस ये स्टोरी बुक के अंदर हो रहा है ठीक है आपने उस टुकड़े को उठाया और आपका क्लू नंबर वन आपके सामने आया मैं वो किरदार या यूं कहें मैं वो कैरेक्टर हूँ जो हमेशा कहानी सुनाता है पर कभी दिखाई नहीं देता पढ़ते वक्त मैं आपके दिमाग की आवाज़ बन जाता हूँ बताइए मुझे क्या कहते हैं देखिए आप अभी किताबों की दुनिया में हैं तो उसी पर गौर फरमाइए आपको क्लू नंबर वन का जवाब मिल जाएगा मैं वो किरदार हूँ मैं वो कैरेक्टर हूँ जो हमेशा कहानी सुनाता है पर कभी दिखाई नहीं देता पढ़ते वक्त मैं आपके दिमाग की आवाज बन जाता हूं बताइए मेरा नाम क्या है मुझे क्या कहते हैं कम ऑन थिंक सही जवाब दीजिए 6622107 पर 6622107 पर अपने नाम के साथ और बता दीजिए हमको कि क्लू नंबर वन ये रहा इसका जवाब ये है एंड देन आप लेवल वन पार कर पाएंगे सो आई एम वेटिंग कि आप में से कितने लोग आज लेवल वन को पार कर पाते हैं और अभी भाई म्यूजिक ऑन रहेगा, उसमें कोई कमी नहीं आने वाली. तो एंजॉय द सॉन्ग्स एंड स्टे ट्यून्ड टू FM 107 दिल से देसी.

0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी.
1: Yes, my desi audience, welcome once again. FM 107 सुन रहे हैं आप. मैं हूँ आपकी A for Amita और आज escape room की situation बड़ी कमाल के भाई. आज आप एक haunted story book के अंदर कैद हो गए हो. कैसे हुआ ये? आप एक पुराने से बुक स्टोर में गए, एकदम से बाहर बारिश स्टॉर्म सब चालू हो गया, आप डर गए, बिजलियाँ कड़क रही थी, सब कुछ हुआ. आपने हिम्मत थोड़ी सी रखी कि चलो कोई बात नहीं, होता है. अब एक हॉन्टेड स्टोरी बुक की तलाश में थे और आपके हाथ एक किताब लगी, बहुत ही पुरानी सी, धूल में एकदम सनी हुई, लेकिन बड़ी अट्रैक्टिव. अब जैसे ही आपने उसके पन्नों को पलटना शुरू किया, ओए होए होए, एकदम से एक बूम की आवाज़ और आप समझ नहीं पाए हुआ क्या. आप उस किताब के अंदर कैद हो गए. यहाँ पेड़ पौधे सब आपको दिख रहे हैं, कार्डबोर्ड से बने, बादल चारकोल से बने. एंड देन क्या हुआ? अब आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है. देखिए, इस किताब का जो ऑथर है वो एक मिसिंग वर्ड को ढूंढ रहा है, क्योंकि वो जैसे ही मिसिंग वर्ड आप बता देंगे, मेरे ख्याल से सिर्फ मिसिंग वर्ड नहीं है, वो मिसिंग वर्ड्स है. एंड द मोमेंट आप बता देंगे, आप इस किताब से बाहर निकल आएंगे असली दुनिया में. ठीक है, तो एक एक करके क्लू हमें सॉल्व करने थे. तो यहाँ पर एक बड़ा सा इंक का जो धब्बा था वो आपका पीछा कर रहा था. अब भाई यहाँ पर तो आप छोटे से हो, किताब के अंदर भाग रहे थे, भागते भागते क्लू नंबर वन मिला. तो मैं वो किरदार हूँ जो हमेशा कहानी सुनाता है. ठीक है, वो कौन सा किरदार है जो कहानी सुनाता है, इस पर आपको गौर फरमाना है. वो कौन सा किरदार है जो कहानी सुनाता है, ठीक है, पर कभी दिखाई नहीं देता. पढ़ते वक्त मैं आपके दिमाग की आवाज़ हूँ. हाँ, बताइए मुझे क्या कहते हैं. तो हमारे लिसनर्स लिख रहे हैं ऑथर, कुछ ने लिखा है आवाज़, कुछ ने लिखा है राइटर और कुछ ने लिखा है नरेटर. ओके, क्या सही जवाब हो सकता है? वेल, जिन्होंने भी लिखा है नरेटर, दैट्स द राइट आंसर. कंग्रेचुलेशंस, मुबारक. आपने पहला क्लू सॉल्व कर लिया और ये करने के बाद पहला लेवल भी आपका पार हो गया है. और जिन्होंने सबसे पहले सही जवाब दिए हैं उनके नाम हैं उमर, अली और कौन है भाई, मोहम्मद. यहाँ पर कौन है, मोहम्मद बशारत, इन्होंने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है. आरिफ अंसारी ने भी सही जवाब दिया है. मोहम्मद यूसुफ खान, अच्छा ये वीडियो कॉल कर रहे हैं हमको. नहीं नहीं. तो और एक और शख्स है जिन्होंने सही जवाब दिया, उनका नाम बताना बनता है, फातिमा यूसुफ. यस, उन्होंने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है. तो जवाब हर किसी ने दिया है, लेकिन सही जवाब सिर्फ चुनिंदा लोग ही दे पाए हैं. और जिन्होंने सही जवाब दिया है अब उन्होंने दूसरे लेवल पर पहुंचना है. तो जैसे ही आपने नरेटर कहा, जवाब मिलते ही वो स्याही का धब्बा रुक गया. अब आप एक ऐसे पुल पर हैं जो पेंसिल से बना हुआ है. अब इसे पार करने के लिए आपको एक और पहेली सुलझाना पड़ेगा. ठीक है, अब पुल पर आपको क्लू नंबर टू मिला और वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्लू है. मैं वो लेजेंडरी तलवार हूँ, ध्यान से सुनिए, मैं वो लेजेंडरी तलवार हूँ जिसे एक नौजवान बादशाह ने पत्थर से बाहर खींचा था. मेरा नाम क्या है? और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए एक्सकैलिबर, ऑप्शन बी ट्राइडेंट, ऑप्शन सी मियोनिर. ये तीन ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ही है जो सही है और ये क्लू नंबर टू आप सॉल्व कर पाएंगे, दूसरा लेवल पार कर पाएंगे. आई रिपीट, ध्यान से सुनिए. पहला क्लू आपने सॉल्व किया और इस वक्त आप एक पेंसिल से बने ब्रिज पर हैं, खड़े हैं, अभी चल नहीं रहे, यू आर जस्ट स्टैंडिंग. और आपको इस ब्रिज पर मिला आपका क्लू नंबर टू. मैं वो लेजेंडरी तलवार हूँ जिसे एक नौजवान बादशाह ने पत्थर से बाहर खींचा था. बताएं मेरा नाम क्या है. एंड ऑप्शंस आर ऑप्शन ए एक्सकैलिबर, बी ट्राइडेंट, सी मियोनिर. कम ऑन, थिंक थिंक एंड थिंक, सही जवाब दीजिए ताकि आप इस ब्रिज को पार कर पाएं और यहाँ से निकलने के आखिरी मुकाम तक पहुँच पाएं. ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट. और अभी एक म्यूजिकल ब्रेक की तरफ हम रुख करते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जल्द से जल्द मुझे सही जवाब देंगे 666-22-107 पर, 666-22-107 पर अपने नाम के साथ. और जनाब, बातों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा और तेरी मेरी बातें भी चलती रहेंगी. फिलहाल ये बेहतरीन सा गाना, जस्ट एंजॉय स्टेट.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक। हाँ जी, एस्केप रूम का सेकंड हाफ शुरू हो चुका है। इस वक्त हमारी स्टूडियो क्लॉक पे हुए दोपहर के 2:02 लाइन पर। मेक अ विश कि आप आज की चैलेंज को जल्दी से पार कर पाए।
2: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से दी।
1: वेलकम वंस अगेन FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता। कैसा लग रहा है आज एस्केप रूम में एक हॉन्टेड स्टोरी बुक का हिस्सा बनकर? यू मस्ट बी थिंकिंग यार स्टोरी समझ में नहीं आ रही, ये क्या हो गया? हाँ देखिए, यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है कि जो ऑथर है ना वो चाहता है कि इस स्टोरी बुक से जब आप आज़ाद हो तो एग्जिट आपको मिले जब आप ये तीन या यूँ कहें मिसिंग वर्ड्स को बता सके। ठीक है, अब यहाँ मैंने आपको हिंट दे दी है, तीन मिसिंग वर्ड्स हैं। देखिए, क्लू नंबर वन आपने सॉल्व किया, सही जवाब था नरेटर। क्लू नंबर टू पर आप आए और अब यहाँ पर हमें जवाब ढूंढना है। क्या सही? ओके, तो क्लू नंबर टू आपको मिला कि मैं वो तलवार हूँ, लेजेंडरी तलवार हूँ, जिसे एक नौजवान बादशाह ने पत्थर से बाहर खींचा था। तो मेरा नाम क्या है? ऑप्शन भी मैंने आपको दिए, ऑप्शन ए वॉज एक्सकैलिबर, ऑप्शन बी वॉज ट्राइडेंट एंड ऑप्शन सी था म्योनिर। और हमारे लिसनर्स समझ नहीं पा रहे हैं सही जवाब क्या है। कुछ लिख रहे हैं, मुझे लग रहा है ये एकदम प्योर तुक्का है। कुछ ने ट्राइडेंट लिखा है, कुछ ने म्योनिर लिखा है और कुछ ने लिखा है एक्सकैलिबर। देखिए, ये तलवार ऐसी है ना, ऐसे फैंटेसी लैंड में बहुत सारी मूवीज इस पर बनी है कि एक बादशाह ने एक पत्थर के बीच में से एक तलवार निकाली और उसका नाम है एक्सकैलिबर। यस भाई, जोरदार तालियां बजा लो और अपनी पीठ थपथपा लो क्योंकि आपने सही जवाब दे दिया है और काफ़ी चुनिंदा लोगों ने इस लेवल को पार किया है, क्लू नंबर टू को पार किया है। उनके नाम हैं उमर, मोहम्मद, फातिमा यूसुफ, आरिफ अंसारी एंड मोहम्मद यूसुफ खान। क्या बात है, आपने फाइनली लेवल टू पार कर लिया है। जब आपने सही जवाब दिया तो आप जो पेंसिल के पुल की शुरुआत में खड़े थे वो सख्त हो गया और आप उससे पार हो गए। अब आपने आखिरी चैप्टर में कदम रखा है क्योंकि आप एक हॉन्टेड स्टोरी बुक के अंदर हैं। बस रुकिए इस विशाल डेस्क पर, ठीक है, इस आखिरी चैप्टर के बहुत बड़े डेस्क पर एक कहानी का विलन बैठा हुआ है। ओए होए और ये कहानी का विलन क्या कहना चाह रहा है? क्लू नंबर थ्री ये रहा, अगर इस किताब से बाहर निकलना है तो मुझे वो तीन शब्द बताओ जिनसे हर पुरानी फेरी टेल खत्म होती है। और आपको हिंट भी दिए उसने, हैप्पीली डैश डैश। अब ये जो ब्लैंक हैं इनको आपको फिल करना है और बताना है कि वो दो शब्द क्या होंगे। तीन शब्द तो पूछ रहे हैं लेकिन आपने पहली हिंट में पहला वर्ड बता दिया है। ठीक है, अगर इस किताब से बाहर निकलना है तो मुझे वो शब्द बताओ जिनसे हर पुरानी फेरी टेल खत्म होती है। हैप्पीली डैश और डैश, कम ऑन, इन ब्लैंक्स को फिल कीजिए, अपना इमेजिनेशन बिल्कुल यूज कीजिए। और अगर आप सबने फेरी टेल्स पढ़ी है तो आई एम वेरी सर्टन कि आपको इसका जवाब पता है। सो गिव मी द राइट आंसर 6622107 पर, 6622107 पर अपने नाम के साथ। और इस आखिरी पड़ाव को पार करके इस हॉन्टेड स्टोरी बुक से बाहर निकल जाइए। कम ऑन, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। और अभी क्या किया जाए, चलिए थोड़ा सा म्यूजिकल ब्रेक हो जाए। भाई गर्मियों के दिन में ये हर किसी का फेवरेट सॉन्ग है क्योंकि भाई चश्मा लगा के बाहर घूमने का मजा ही कुछ और है कि नहीं? लेट्स एंजॉय द ट्रैक, स्टे ट्यून्ड टू FM 107 दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से दी.
1: वेलकम वंस अगेन एफएम 107 सुन रहे हैं आप. मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता. भाई एस्केप रूम में आज लगता है हमारे लिसनर्स इस रूम से एस्केप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी भी मैं देख रही हूँ जवाब बड़े खतरनाक आ रहे हैं. देखिए, आज आप एक हॉन्टेड स्टोरी बुक के अंदर कैद हैं. आप एक पुरानी सी बुक स्टोर में गए, एक बड़ी अट्रैक्टिव सी बुक आपको अच्छी लगी, आपने उठाया, पन्ने पलटाए और एकदम से आप गायब हो गए. अब आप पहुंच गए इस हॉन्टेड स्टोरी बुक में, जहां पर आप अजीब और गरीब चीज़ें देख रहे हैं. एक इंक का धब्बा आपका पीछा कर रहा था, उससे बचे, ठीक है. उसके बाद एक पेंसिल के पुल को भी आपने पार किया, ठीक है ना. सो क्लू नंबर 1 का सही जवाब था नरेटर, क्लू नंबर 2 का सही जवाब था एक्सकैलिबर, और क्लू नंबर 3 पर आकर अब सबकी गाड़ी अटक गई है. देखिए, मैं कहूँगी ध्यान से सोचिए, जब आप कार्टून फिल्म्स देखते थे फेरी टेल की, या पहले बहुत सारी फिल्में आती थी, किताबें होती थी, उसमें 3 शब्द लिखे होते थे. वो 3 शब्द एग्जैक्टली वैसे ही मुझे चाहिए, क्योंकि जब आप सही जवाब दोगे तभी आप आज का ये तीसरा लेवल पार कर पाओगे और तभी एग्जिट हो पाओगे, ठीक है. सो क्लू नंबर 3 आपके लिए ये रहा, और ये कौन दे रहा है इस कहानी का विलन, ठीक है. अगर इस किताब से बाहर निकलना है तो मुझे वो शब्द बताओ जिनसे हर पुरानी फेरी टेल खत्म होती है. 3 में से 1 शब्द विलन ने आपको बता दिया है हिंट के तौर पर, दैट इज हैप्पीली, और फिर डैश डैश 2 ब्लैंक्स छोड़ दिए और कहा कि इसको फिल करो, कम ऑन यू कैन डू इट. कुछ ने लिखा है गॉट मैरिड. देखिए, आपकी कहानी नहीं चाहिए यहाँ पर, यहाँ पर चाहिए फेरी टेल जो सदियों से चली आ रही है, उसकी सही कहानी का आखिरी के 3 शब्द चाहिए हैं. ओके, कम ऑन, थिंक अबाउट इट, क्या सही जवाब हो सकता है. एक बार मैं फिर से दोहराऊंगी और इसके बाद मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे लिसनर्स हमें सही जवाब दें और इस लेवल को पार कर दें. आई थिंक आज जिस हॉन्टेड स्टोरी बुक के आप अंदर पहुँचे हुए हैं, मसला बड़ा मुश्किल हो रहा है कि आपको कुछ ना कुछ चीजें समझ नहीं आ रही है. ओके, सो क्लू नंबर 3 इज हियर. अगर इस किताब से बाहर निकलना है तो मुझे वो शब्द बताओ जिनसे हर पुरानी फेरी टेल खत्म होती है. हैप्पीली डैश डैश, इन ब्लैंक्स को फिल कीजिए सही शब्दों से और इस लेवल को पार कीजिए एस्केप रूम से बाहर निकलने के लिए. और अभी सोचने के लिए मैं आपको एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक देती हूँ, क्योंकि इसके बाद हमें पता चलेगा कि आप में से कितने लोगों के दिमाग एकदम तेज दौड़े हैं और उन्होंने सही जवाब को अपनी जकड़ में, या यूं कहें पकड़ लिया है. सही है, सो हियर वी गो. कतर की गर्मी तो हम एंजॉय कर ही रहे हैं, अब जरा दिल्ली सारा यहाँ घूम कर आ जाते हैं, क्या बोलते हो. स्टे ट्यून्ड टू एफएम 107.

0: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, FM 107, दिल से देसी, दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
2: हाँ जी, बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का ऑन FM 107 पर। मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता, और क्या कहना है, एस्केप रूम अब पूरे आखिरी मुकाम पर पहुंच गया है, और हमारे लिसनर्स मुझे लग रहा है अभी भी फेरी टेल्स में ही घूम रहे हैं। देखिए, आज का मंजर बड़ा कमाल का था। आप एक हॉन्टेड स्टोरी बुक देख रहे थे और आप उसमें सडनली कैद हो गए। हम मुश्किल ये हुई कि यहाँ पर अलग अलग चैलेंज आपको मिलते रहे और क्लूज आपने सॉल्व करने थे। पहला क्लू आपने सॉल्व किया, जवाब था नरेटर। दूसरा क्लू आपने सॉल्व किया, जवाब था एक्सकैलिबर। और तीसरे क्लू में, जो सिंपलेस्ट क्लू है, यहाँ पर हमारे लिसनर्स की गड्डी अटक गई है। जनाब, वीकेंड आ चुका है, क्या लगता है वीकेंड इस हॉन्टेड स्टोरी बुक के अंदर ही बिताना है या बाहर निकलना है? हाँ, वेल, क्लू नंबर 3 आपके लिए था कि अगर इस किताब से बाहर निकलना है तो मुझे वो शब्द बताओ जिनसे हर पुरानी फेरी टेल खत्म होती है। और आपको एक हिंट दी थी कि शुरुआत का जो शब्द है, हैप्पीली डैश डैश, ये दो ब्लैंक्स हैं, इसको हमें भरना है, ठीक है? तो हमें जवाब मिले हैप्पीली लिव्ड आफ्टर, किसी ने लिखा हैप्पीली लिव्ड एवर आफ्टर।

Aí. भाई तो जितने लोगों ने सही जवाब दिया है कैसा लग रहा है, आप बिल्कुल बाहर आ चुके हैं। सही जवाब देने वाले हमारे लिसनर्स बहुत कम हैं। यस, क्योंकि ज़्यादातर लोग हैप्पीली लिव्ड एवर आफ्टर में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे। कुछ ने लिखा हैप्पीली एवर आफ्टर, तो जिन्होंने हैप्पीली एवर आफ्टर लिखा है दैट्स द राइट आंसर। और सही जवाब देने वाले हमारे लिसनर्स हैं मिस्टर आरिफ और ओमर एंड मोहम्मद। और आज का जो लकी विनर है वो है मिस्टर आरिफ। भाई जोरदार तालियां आपके लिए, मुबारका। क्या बात है, कमाल कर दिया हमारे लिटरेरी हीरो। सच में मजा आ गया। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इतनी मोहब्बत से आपने लग कर हमारा साथ दिया और पूरा एक घंटा आप हमारे साथ हैं। इनफैक्ट हमारे सारे लिसनर्स जिन्होंने अपने इमेजिनेशंस का इस्तेमाल किया, भले ही जवाब गलत है, डजंट मैटर, आपका साथ सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अब ये जब हुआ, जब आपने सही जवाब दिया तो पलक झपकते ही आप वापस पुरानी दुनिया में आ गए, वही बुक स्टोर में आए और जिस लेदर बाउंड किताब को आपने उठाया हुआ था वो अपनी शेल्फ पर अपने आप रखी हुई मिली। एनीवे, आप उस बुक स्टोर से बाहर निकल गए, अब रियल जिंदगी में इंजॉय कर रहे हैं। देखिए, वीकेंड इंजॉय करना बहुत ज़रूरी है चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन वो कहते हैं ना कि कभी कभी हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे किस्से कहानियाँ होते हैं, बस इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आखिरी जो पन्ना है वो हम पलट सकें। एंड व्हेन यू डू दैट यू एंजॉय योर लाइफ। ठीक है, चलिए इसी बात के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त क्योंकि वक्त है अब मेरे जाने का। और अब आपकी मेरी मुलाकात होगी अगले हफ्ते ठीक इसी वक्त दोपहर 1:30 बजे एस्केप रूम के इस नए चैलेंज के साथ। तब तक के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए FM 107 के, और अपनी आरजे अमिता को भी सोशल मीडिया पे ढूंढ सकते हैं। और जाते जाते भाई अब कहना तो बनता है, हमें राई प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते। और अभी के लिए सारे खूबसूरत लोगों के लिए ये गाना, जस्ट एंजॉय, स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी। हैप्पी वीकेंड।

अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं इको स्विच ऑन एफएम 107, जहां हम बात करते हैं उन छोटी छोटी लाइफस्टाइल हैबिट्स की जो मिलकर हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत बड़ा फर्क पैदा करती हैं। भाई देखिए, आज का टॉपिक शायद सुनकर आपको ऐसा लगे कि भाई ये तो बस इतनी सी बात है और क्या है, कुछ भी नहीं है, लेकिन यकीन मानिए कभी कभी सबसे छोटी से छोटी आदत ही सबसे बड़ा असर छोड़ जाती है। आज हम बात कर रहे हैं सेविंग वाटर वाइल ब्रशिंग, यानी दांत साफ करते हुए मेहरबानी करके पानी बचाएं। हम सब दिन भर में कम से कम दो बार या एक बार तो ब्रश करते ही करते हैं, ये हमारी रूटीन का कॉमन सा हिस्सा है। ये रूटीन इतनी कॉमन है कि हम इस पर कभी गौर ही नहीं करते, कोई जरूरत ही नहीं है गौर करने की। देखिए, ब्रश हाथ में आता है, टूथपेस्ट हम उसके ऊपर लगाते हैं और बिना सोचे समझे क्या होता है, कभी कभी टैप भी ऑन रह जाता है। फिर दो मिनट तक हम जो है वो टीथ ब्रश करते रहते हैं, अपने दांत ब्रश करते रहते हैं, पानी बेइंतहा चलता रहता है टैब में और हम ये समझते हैं कि बस थोड़ा सा ही तो टाइम हुआ है, थोड़ा सा ही तो पानी गया है, या कभी कभी तो पानी के ऊपर तवज्जो भी नहीं जा रही होती जो रनिंग टैप वाटर चल रहा होता है। लेकिन इको स्विच हमें ये सिखाता है कि हर रोज एक रूटीन में छुपा हुआ वेस्ट ही असली चैलेंज होता है। जब रोजाना की छोटी छोटी आदतें बदली जाती हैं ना, तभी दुनिया बदलती है। चलिए साथियों, एक सीन इमेजिन करते हैं, ठीक है? ये मेरे ख्याल से सबकी डेली रूटीन होती होगी। सुबह 6:45 बज रहे होते हैं, हम सब जो है ना वो अलार्म बड़ी मुश्किल से बंद करते हुए उठते हैं, बच्चों को स्कूल जाना होता है, किसी ने अपनी ऑफिस की मीटिंग्स अटेंड करनी होती हैं, किसी की ऑनलाइन क्लास होती है। होता क्या है, बाथरूम में ब्रश चल रहा होता है, बाथरूम में हम ब्रश करना शुरू करते हैं, लेकिन साथ साथ मोबाइल नोटिफिकेशंस भी चेक कर रहे होते हैं, कपड़े भी सेलेक्ट हो रहे होते हैं और दिमाग भी हमारा पूरे दिन भर के प्लान्स ऑपरेट कर रहा होता है, चला रहा होता है साथ साथ। और इस पूरे वक्त में पता है क्या होता है, वही काम होता है जो हम रोज कर रहे होते हैं। सुबह उठ के जब ब्रश करते हैं तो टैब ऑन करते हैं, पानी का टैब ऑन करते हैं, तो भाई उससे क्या होता है, टैब खुला रहता है। कभी किसी ने उस बहते हुए पानी की आवाज को नोटिस ही नहीं किया, वो बस बहता रहता है और हर सेकंड के साथ लीटर्स के हिसाब से भाई पानी ड्रेनेज में जा रहा होता है। अब जरा सोचिए, अगर एक घर में 5 लोग रहते हैं तो हर शख्स सिर्फ ब्रशिंग के दौरान ही टैप खुला छोड़ देता है, तो रोजाना तकरीबन 100 लीटर पानी से ज्यादा तो वेस्ट हो ही जाता है ना। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस पानी का ज्यादा हिस्सा हम यूज कम करते हैं और वेस्ट ज्यादा करते हैं। साथ ही यहाँ पर थोड़ा सा थिंक डिफरेंटली करते हैं ना। देखिए, अगर पानी की जगह पैसा बह रहा हो, थोड़ा सोचें, कुछ आपका माइंडसेट फ्लिप करते हैं। पानी की जगह अगर पैसा बह रहा होता तो एक छोटा सा सवाल है, पानी की जगह अगर पैसा बह रहा होता, अगर वॉश बेसिन के टैप से पानी की जगह पैसा बह रहा होता, मान लीजिए हर सेकंड ₹1 या $1 ड्रेन में जा रहा होता, तो क्या हम टैप इतनी देर तक खुला छोड़ देते? बिल्कुल नहीं ना, हम फौरन उस टैप को बंद कर देते भाई। लेकिन जब पानी बहता है ना तो हमें उसकी वैल्यू का कोई एहसास ही नहीं होता, हमें महसूस ही नहीं होता, क्योंकि वो एक ट्रांसपेरेंट सी चीज है, ना कोई आवाज करती है ना कोई शिकायत करती है। लेकिन याद रखिए, वाटर बिल सिर्फ पैसों का नहीं होता, एनवायरमेंट का भी होता है। साथियों, अब बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। देखें, एक रनिंग टैब 1 मिनट में तकरीबन 6 से 10 लीटर पानी वेस्ट कर सकता है। अगर ब्रशिंग के दौरान 2 मिनट के दौरान टैप खुला रखा जाए तो लगभग 10 से 20 लीटर पानी भी जा सकता है। अच्छा, अगर एक शख्स सिर्फ ब्रश के वक्त टैप बंद करता है या अपने आप को टैप बंद करने की आदत देता है तो वो साल भर में हजारों लीटर पानी बचा सकता है। और दुनिया में आज भी 2 बिलियन से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके पास साफ पीने का पानी तक मयसर नहीं है, यानी जिस पानी को हम बिना सोचे समझे ड्रेन में भेज रहे होते हैं ना, दुनिया के बहुत से लोग

0: लोग ऐसे हैं जिनको ये नेमत मुयस्सर नहीं है। जरा सोचिए पर्सपेक्टिव कितना चेंज हो जाता है हमारा अगर हम इसके ऊपर ध्यान दें तो। देखें अक्सर हम सिर्फ इतना ही सोचते हैं कि भाई पानी वेस्ट हो गया, लेकिन असल कहानी तो उससे भी ज्यादा बड़ी होती है भाई। देखिए हर ड्रॉप जो हमारे घर तक पहुंचता है उसके पीछे पंपिंग स्टेशंस होते हैं, फिल्टराइजेशन होती है, फिल्ट्रेशन प्लांट्स होते हैं, पाइपलाइंस होती हैं और बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही होती है। यानी जब हम पानी वेस्ट करते हैं ना तो हम सिर्फ पानी वेस्ट नहीं कर रहे होते बल्कि उस पानी को ट्रीट और ट्रांसपोर्ट करने वाली एनर्जी को भी वेस्ट कर रहे होते हैं। और हमारा इको स्विच इसी चेन रिएक्शन को रोकता है। एक टैप बंद करना सिर्फ एक एक्शन नहीं होता बल्कि पूरी सप्लाई चेन के लिए एक पॉजिटिव डिसीजन होता है। देखें आपके घर का इको चैलेंज एक मैं आपको देती हूँ, आज एक छोटा सा फैमिली चैलेंज ट्राई करें। देखिए कल सुबह से ना घर के हर मेंबर को सिर्फ एक काम करना है, ब्रश करते वक्त टैप को बंद रखना है। दिन के एंड पर देखिएगा कि कितनी दफा किसने किसको याद दिलाया कि टैप बंद रखो। हो सकता है बच्चे पेरेंट्स को रिमाइंड करा रहे हो सकता है पेरेंट्स बच्चों को रिमाइंड करा रहे हो और आहिस्ता आहिस्ता ये चैलेंज एक हैबिट बन जाए। देखिए एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करने के लिए हमेशा बड़ी कैंपिंग की जरूरत नहीं होती, कभी कभी सिर्फ एक फैमिली चैलेंज ही काफी होता है साथियों। इसी के साथ आपको अब मैं बात कर लेती हूँ, आपके साथ कुछ शेयर कर लेती हूँ प्रैक्टिकल इको स्विच टिप्स। देखिए सबसे पहली टिप तो ये है कि ब्रश करते वक्त टैप को सिर्फ उस वक्त ऑन करें जब ब्रश गीला करना हो या उसे साफ करना हो। दूसरी बात ये कि गार्गल करने के लिए या मुंह साफ करने के लिए आप बजाय इसके कि आप रनिंग टैप वाटर खोल के खड़े हो जाए आप एक कप एक ग्लास इस्तेमाल करें, इससे पानी का इस्तेमाल बहुत कम हो जाता है। तीसरी बात ये कि अगर मुमकिन हो तो लो फ्लो टैप्स इस्तेमाल करें, यानी पानी का प्रेशर मेंटेन रखते हैं वो टैप्स लेकिन कंजम्पशन कम करते हैं पानी की। चौथी बात ये बच्चों को, छोटी उम्र के जो बच्चे होते हैं ना उनको ये हैबिट सिखाएं कि ब्रश करते हुए पानी का टैप बंद रखें। जो आदतें बचपन में इंसान सीखता है ना साथियों वो जिंदगी भर साथ रहती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वॉश बेसिन के पास एक छोटा सा स्टिकी नोट लगा दें, टैप ऑफ व्हाइल ब्रशिंग। कभी कभी सिर्फ एक छोटा सा रिमाइंडर ही आदत बदलने के लिए काफी होता है साथियों। अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, एक इंटरेस्टिंग बात नोटिस की गई है कि जब घर का एक मेंबर एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल हैबिट अडॉप्ट करता है ना तो आहिस्ता आहिस्ता घर के बाकी लोग भी उसे कॉपी करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह कल्चर बनता है, पहले एक शख्स टैब बंद करता है, फिर पूरा घर, फिर बच्चे स्कूल में ये हैबिट अपनाते हैं और फिर बाकी दोस्त भी आपसे ये चीज सीखते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके ये बात पूरी कम्युनिटी में फैलती है। इसीलिए भाई इको स्विच सिर्फ एनवायरमेंट की बात नहीं करता, इको स्विच पॉजिटिव इन्फ्लुएंस की भी बात करता है। साथियों आज का इको स्विच सिर्फ इतना सा है, अगली बार जब आप ब्रश करें टैप को कंटिन्यूसली चलने ना दें, सिर्फ जरूरत के वक्त टैप को ओपन करें। इसी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सफा और आप सुन रहे थे FM 107 पर इको स्विच। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और सिंपल लाइफस्टाइल हैबिट के साथ जो हमारी जिंदगी भी बेहतर बनाएगी और हमारे प्लेनेट को भी हमारे लिए बेहतर बनाएगी। सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान। आज का टॉपिक है जानवरों पर रहम करना। इस्लाम सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि हर मखलूक के लिए रहमत का पैगाम देता है। जानवरों पर रहम करना भी एक बहुत बड़ी नेक आदत है। जब हम जानवरों के साथ नरमी से पेश आते हैं, उनको तकलीफ नहीं देते और उनका ख्याल रखते हैं, तो ये अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है। अक्सर लोग जानवरों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन इस्लाम हमें सिखाता है कि हर जिंदा मखलूक के साथ इंसानियत का रवैया रखा जाए। आज का अमल ये है कि किसी जानवर के लिए पानी या खाना रखें, या कम से कम उनको तकलीफ देने से परहेज करें। ये था आज का मैसेज। आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूँ आरजे मावश। फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ।
0: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
2: One step to 2030.
3: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया।
2: One Step to 2030.
3: और दोस्तों, आज हम वापस से बात करने वाले हैं AI governed cities की, और उसमें भी हेल्थ केयर में AI के रोल की, जैसा मैंने कल आपसे कहा था। तो देखिए, AI governed cities का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा हेल्थ केयर सिस्टम है, स्मार्ट हॉस्पिटल्स। जी हाँ, AI हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स का रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली एनालाइज किया जाएगा। अब जरूरत नहीं है डॉक्टर्स की, आई मीन टू से एनालिसिस्ट की या किसी और की। ये सिस्टम जो है ना, वो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स को सजेशन देता है कि कौन सी ट्रीटमेंट जो है वो बेस्ट है, किस पेशेंट को कौन सी चीज ज्यादा सूट करती है। वहीं पर अगर मैं बात करूं AI की, तो यहाँ पे डिजीज को प्रिडिक्ट करने में भी AI बड़ी यूजफुल होगी। AI डेटा एनालाइज करके डिजीज का अंदाजा लगाएगा। अगर किसी एरिया में फ्लू या वायरस स्प्रेड हो रहा हो, तो सिस्टम पहले ही अलर्ट भेज देगा। ये देखिए कितना अपने आप में जो है वो अच्छा भी है और थोड़ा सा घबराने वाली बात भी है। वहीं पर कई बार आपने और हमने रिमोट ट्रीटमेंट के बारे में भी सुना और पढ़ा है, लेकिन हाँ, जो रिमोट ट्रीटमेंट है वो शायद 2030 में भरपूर तरीके से डोमिनेट करे। फ्यूचर में लोग घर बैठकर AI डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, जाना बहुत दूर की बात होगी। वेरेबल डिवाइसेस जैसे स्मार्ट वॉचेस हैं, हेल्थ डेटा भेजती रहेंगी और AI सिस्टम पेशेंट को एडवाइस वहीं से ऑटोमेटिकली करते रहेंगे, और ये सिस्टम कहलाएगा रिमोट ट्रीटमेंट। वहीं अगर मैं बात करूं इमरजेंसी रिस्पांस की, तो अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो AI सिस्टम फॉरन एम्बुलेंस नियरेस्ट लोकेशन से भेज देगा। ट्रैफिक सिग्नल्स भी एम्बुलेंस के लिए ग्रीन हो जाएंगे। ये सारा चीज जो है वो AI से ड्रिवन होगा, ऑटोमेटिकली काम करेंगी चीजें। ये सिस्टम ह्यूमन लाइफ सेव करने में बहुत ज्यादा यूजफुल होगा, ऐसा माना जा रहा है। वहीं अगर मैं बात करूं सिक्योरिटी की, तो देखिए AI गवर्न सिटीज में सिक्योरिटी भी एडवांस्ड होगी। स्मार्ट सर्वेलेंस होंगे, शहर में कैमराज होंगे।

जो फेसेस और बिहेवियर को एनालाइज करेंगे अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो तो सिस्टम फौरन अलर्ट ऑटोमेटिकली भेज देगा वहीं एआई डेटा एनालाइज करके प्रिडिक्ट करेगा कि किस एरिया में क्राइम का चांस ज्यादा है पुलिस वहां पहले से डिप्लॉयमेंट कर सकती है ये कितना अच्छा हो जाएगा वहीं ऑटोमेटेड पॉलिसिंग भी होगी कुछ केसेस में रोबोट्स या फिर ड्रोन्स भी यूज होंगे जो एरिया को मॉनिटर करेंगे और पुलिस को रिपोर्ट करेंगे ये सिस्टम पब्लिक सेफ्टी

0: है वो चौंका रही हैं, लेकिन आने वाले वक्त में हम इन सारी चीजों के आदी हो जाएंगे, यूज्ड हो जाएंगे, है ना. अपने आप में कितनी बड़ी बात. वही अभी मुझे लगता है कि आज के लिए बस इतना ही रखती हूँ. थोड़ा सा आप भी वक्त लीजिए, सोचिए समझिए इन सारी चीजों को जो है वो एब्जॉर्व कीजिए. कल जब वापस आऊंगी तो इसी टॉपिक को मैं कंटिन्यू रखूंगी. कल मैं बात करूंगी अर्बन मैनेजमेंट और गवर्नेंस पर. इस पर भी बात करना बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है. किस तरह से AI जो है वो सिर्फ ट्रैफिक या फिर हॉस्पिटल्स तक महदूद रहेगी, पूरे शहर को मैनेज करेगी. कल इसी टॉपिक पे बात होगी. फिलहाल अभी के लिए मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों की इजाजत दीजिए. देखते और सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी.
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी.

0: साथ साथ उन्होंने कतर की कौमी टीम की नुमाइंदगी भी की और मुख्तलिफ इंटरनेशनल इवेंट्स मैचेस में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। यंग फुटबॉलर्स के लिए अहमद एक मिसाल हैं कि मेहनत, डिसिप्लिन और मुसलसल प्रैक्टिस से बुलंद मकाम हासिल किया जा सकता है। उनका जज्बा और परफॉर्मेंस कतर में फुटबॉल की बढ़ती हुई मकबूलियत को मजबूत बनाने में मददगार साबित हो रही है। आने वाले सालों में भी उनसे मजीद बेहतरीन खेल और यादगार परफॉर्मेंसेस की उम्मीद की जाती है। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शाकिब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह लिसनर्स, आज हम एक नहायत अहम मौजू पर बात करेंगे और वो है वैक्सीनेशन की अहमियत और वैक्सीनेशन कैसे बीमारियों से हमारी हिफाजत करती है। वैक्सीन जो जदीद तिब की एक बहुत बड़ी कामयाबी है, ये हमें मीजल्स, पोलियो, हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा और टीबी जैसी खतरनाक बीमारियों से बचाने में अहम किरदार अदा करती है। लेकिन सवाल ये है कि वैक्सीन काम कैसे करती है। हमारे जिस्म में एक कुदरती दिफाही निज़ाम मौजूद है जिसे इम्यून सिस्टम कहा जाता है। जब वायरस या बैक्टीरिया जिस्म में दाखिल होते हैं तो ये निज़ाम उन जरासीम के खिलाफ लड़ता है। वैक्सीन में बीमारी पैदा करने वाले जरासीम का कमज़ोर और गैर फाल या बेजरर हिस्सा शामिल किया होता है और जब ये जिस्म में दाखिल किया जाता है तो हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो इसे पहचानता है और इसके खिलाफ जो दिफाई कुव्वत है वो पैदा करना सीख लेता है, बगैर इसके कि कोई इंसान बीमार हो उस बीमारी की वजह से। इस अमल के नतीजे में जिस्म में बीमारी के खिलाफ इम्यूनिटी पैदा हो जाती है और बाद में अगर असल बीमारी का जो जरासीम है वो जिस्म में दाखिल हो तो फिर हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है फौरी तौर पर उसका मुकाबला करता है और बीमारी को संगीन होने से रोकता है। वैक्सीन खास तौर पर शीरखार बच्चों और कम उम्र बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम अभी मुकम्मल तौर पर मजबूत नहीं होता। वैक्सीन सिर्फ एक फर्द को ही नहीं बल्कि पूरे मुआशरे को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। जब ज्यादा अफराद वैक्सीन लगवाते हैं तो बीमारियों के फैलने के इम्कानात कम हो जाते हैं। कुछ अफराद वैक्सीन के बारे में बहुत से खदशात रखते हैं लेकिन हकीकत यह है कि वैक्सीन इस्तेमाल से पहले सख्त साइंसी जांच और तहकीक के मराहल से गुजरती है ताकि उनकी हिफाजत और को और ज्यादा मौसर और यकीनी बनाया जा सके। वैक्सीन के बाद बाजू में कुछ हल्का दर्द हो सकता है, सूजन या फिर मामूली बुखार हो सकता है, लेकिन ये अलामतें बिल्कुल

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सामिन किराम, खुश आमदीद आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे में। हम में से बहुत से लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा ताल्लुक दीन इस्लाम से मजीद मजबूत हो, हमारा ईमान बढ़े और हमारी जिंदगी अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर जाए। अक्सर हम ये समझते हैं कि इसके लिए शायद बहुत बड़े बड़े आमाल, लंबी इबादात या मुश्किल मराहिल दरकार हैं। हालांकि कभी कभी अल्लाह के करीब होने का सबसे आसान रास्ता उन्हीं छोटी छोटी सुन्नतों में पोशीदा होता है जिन्हें हम रोजमर्रा जिंदगी में आसानी से अपना सकते हैं। माहिरीन नफ्सियात भी कहते हैं कि बड़ी तब्दीली हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती है। इसीलिए इस प्रोग्राम में हम ऐसी आसान और मुख्तसर सुन्नतों का जिक्र करेंगे जो सिर्फ चंद सेकंड या एक मिनट लेती हैं, लेकिन इंसान की रूह, आदतों और अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। तो आइए आज हम मिलकर एक और खूबसूरत सुन्नत सीखते हैं और अपनी जिंदगी को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी से मुनव्वर करते हैं। सर्विक्राम, आज हम आपको बताएंगे दूसरों के दिलों तक अपनी बात सही अंदाज में पहुंचाने की सुन्नत। सुन्नत का मौजू है साफ, वाज़े और मुख्तसर गुफ्तगू करना। अल्लाह ताला ने इंसान को जो सबसे बड़ी नेमतें अता फरमाई हैं, इनमें एक नेमत जबान भी है। इसी जबान से इंसान अल्लाह का जिक्र करता है, इसी जबान से कुरान पढ़ता है और इसी जबान से लोगों की रहनुमाई करता है। लेकिन यही जबान अगर बेहतियाती से इस्तेमाल हो तो रिश्ते भी तोड़ देती है, दिल भी जख्मी कर देती है और मुआशरे में गलत फहमियाँ भी पैदा करती है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कैसे बोलना है ये भी सिखाया। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू ऐसी वाज़े, अलग अलग और साफ होती थी कि हर सुनने वाला उसे आसानी से समझ लेता था। उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवामिउल कलिम अता फरमाए थे। इसका मतलब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम

0: बहुत कम अल्फाज में बहुत बड़ी बात बयान फरमा देते थे। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा मज़ीद फरमाती हैं कि अगर कोई शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज गिनना चाहता तो गिन सकता था, यानी आप इतनी ठहराव के साथ गुफ्तगू फरमाते थे। क्यों? क्योंकि आप चाहते थे कि हर शख्स बात को समझे। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और सुन्नत ये भी थी कि अगर कोई अहम बात होती या महसूस होता कि सुनने वाले ने सही तरह नहीं समझी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे दोबारा भी बयान फरमाते। सामिन, ये था प्रोग्राम आज की सुन्नत। याद रखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत में खैर, बरकत, सुकून और कामयाबी पोशीदा है। और जब हम मोहब्बत के साथ किसी सुन्नत को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो वो सिर्फ एक अमल नहीं रहती बल्कि हमारे ईमान की खूबसूरती बन जाती है। प्रोग्राम सुन्ना ऑफ द डे के आज के इस हलके से साउंड डिज़ाइनर नदीम अंसारी और मुझे तलहा अशरफुज़्ज़मान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाज़त। मा सलामा।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।

0: Maximum music, maximum fun.
1: On FM 107, Dil Se Desi.

0: FM 107. Time check.
1: भाईजान, ये जो वीकेंड है ना, ये वीकेंड का दिन नहीं होता है, वीकेंड की खुशबू होती है यार, जो मतलब एक दिन पहले से आना शुरू हो जाती है वेंसडे की शाम को है। और ये खुशबू बहुत तेज हो जाती है जब थर्सडे का दिन आता है और शाम को 3, 4 या 5 बज जाए, अकॉर्डिंग टू योर लीव, मतलब कि आपकी छुट्टी ऑफिस से कब होती है, तो ये खुशबू बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है। जैसे इलायची को आप पास में रखें तो तेज़ खुशबू हो जाती है, हैं, ज़ाफरान एकदम नाक के पास रहे एकदम से जल जाती है नाक, ऐसे ही होता है यार ये थर्सडे का दिन, वीकेंड का दिन, फीलिंग बहुत तेज़ हो जाती है एंजॉयमेंट की। नहीं,
2: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
1: तो बाकी दिन का तो पता नहीं, लेकिन आज का दिन ऐसा लगता है अपना ही टाइम है, और इसलिए हम बता देते हैं कि अभी सबसे बेस्ट टाइम है थर्सडे का दिन है, 4:02 हमारे स्टूडियो की घड़ी में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों, आप सभी का ये शो द रिक्वेस्ट शो, जहां पर हर दिन शाम को 4 से 5 आपके अपने मर्जी के गाने यहां पर प्ले होते हैं। और इस वक्त मैं भी लेकर बैठ गया हूं, अपना कीबोर्ड तैयार कर लिया है और उंगलियां घिसने को तैयार कर ली, लंबी उंगलियां छोटी होने लग गई हैं धीरे धीरे तो, और नाखून भी छोटे होने लग गए। सो आप अपने मर्जी के गाने हमसे यहाँ पर प्ले करवा सकते हो। वेल, आज की थीम क्या है? आज की थीम बड़ी ही लाजवाब, बड़ी ही बेहतरीन है, क्योंकि आज है थर्सडे। थर्सडे का दिन घूमने फिरने का, टहलने का होता है, और अगर लॉन्ग ड्राइव हो जाए कार में तो मज़ा आ जाए, तो क्यों ना थीम लॉन्ग ड्राइव की हो, और वो भी थोड़े से लव सॉन्ग रोमांटिक टाइप के। आए हाय, दिन बन जाएगा। वेल, अगर आप फैमिली के साथ घूमने के लिए निकल रहे हैं, अगर आप अपने पूरे फैमिली के साथ सोच रहे हैं कि यार बीच, कहीं दूर बीच जाएंगे, तो उसके लिए आपको तो 4 बजे निकलना पड़ेगा ना, शाम को 6 बजे तक पहुंचने के लिए 5:30 तक, तो ऐसे में सनसेट देखने के लिए यार बेस्ट है FM 107 लगा लो, क्योंकि आज FM 107 पे लव सॉन्ग या फिर आप कह सकते हैं लॉन्ग ड्राइव के ब्यूटीफुल, खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग्स प्ले होंगे, तो आपकी अपनी मर्जी के गाने और ये सफर दिल खुश हो जाएगा। वेल, ऐसे कौन कौन से गाने हैं जो प्ले करवाए जा सकते हैं, जैसे कि दिल चाहता है, ये तो मतलब फॉरएवर वाला गाना है कि कहीं अगर सफर कर रहे हैं तो ये गाना होना ही चाहिए। और उसके अलावा वो एक और गाना था ना, वो कौन सी वो है ना, फिर से उड़ चला ये वो लोग है ना भाई, मैं ये गाना रॉकस्टार मूवी का है, और ये गाना मैं हर बार अपने उस दोस्त के प्रोफाइल पे देखता हूँ जो कानपुर में रह के भाई जाजमऊ तक जाएगा और डालेगा स्टोरी, फिर से उड़ चला। और ये बेरोजगार लोग हैं, इनके पास काम नहीं है, ये बस सुबह इतना करते हैं कि वीकेंड के दिन या फिर संडे के दिन, सैटरडे के दिन सुबह बिरयानी खाने के लिए जाजमऊ चले जाएंगे, और जाजमऊ कानपुर से मुश्किल से 15 किलोमीटर या 10 किलोमीटर है, ठीक है। या फिर वो लोग जो एक शहर से दूसरे शहर चले जाएंगे, स्टोरी लगा देंगे, कानपुर से लखनऊ भाई 80-90 किलोमीटर की दूरी है, और 80-90 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए एक स्टोरी लगा के फिर से उड़ चला। अरे प्लीज, ये फिर से उड़ चला से मुझे ना तो थोड़ी थोड़ी से चिढ़ होने लगी, अच्छा खासा गाना था है ना, लॉन्ग ड्राइव के लिए कितना अच्छा है। उसके अलावा आप अपने मर्जी के जो भी गाने हैं वो लगवा सकते हैं। और फिर एक और गाना है जो आप हर जगह सुनते होंगे, और ये तमाशा मूवी का सॉन्ग है, पहाड़ों में अगर कोई आदमी जा रहा है और ये गाना अगर नहीं प्ले कर रहा है तो फिर वो पहाड़ों पर दूसरे के पैसे से गया है। और ये गाना है सफरनामा, इसी म्यूजिक के साथ शुरू होता है नहीं हर बात पे, ये लोग जो है सफरनामा, और पहाड़ों पे अगर ये गाना नहीं प्ले हुआ है तो वो पहाड़ नहीं है, फिर वो बंजर पहाड़ है। फिर इंसान घूमने नहीं, मजदूरी करने गया, आई एम बैड। आई एम श्योर के ये लोग वही हैं जो काम करने के लिए गए हमारी तरह, और उन लोगों के लिए भी आज गाने प्ले किए जाएंगे जो टहलने के लिए, घूमने के लिए निकले, और सही में अच्छे गाने की रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे आओ मिलो चलें, हवाएं, दैट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, हैरत, सूरज डूबा है, ख्वाबों के परिंदे, ये सब सॉन्ग बेहतरीन सॉन्ग है। फिलहाल 4:06 हमारे स्टूडियो की घड़ी में, और मैं तैयार बैठा हूँ इस शो में आपके लिए गाना प्ले करने के लिए। ये शो का नाम
2: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: जब से ये नया फोन आया है पहली बार हुआ है कि 48% पे इसको चार्ज देख रहा हूँ भाई साहब, 50% के ऊपर मिला है। देखो ये होता है नजर लग जाना, है ना। तो कल ही का दिन था जब मैं कह रहा था कि इस मोबाइल को हमेशा जब भी मैंने उठाया है 50 से ज्यादा चार्ज रहा है, लग गई नजर 48 पे बेचारा जान से खेल रहा है अपने। खैर कोई बात नहीं, ये 48 भी भाई 80 के ऊपर ही है पुराने वाले को अगर हम साथ में लेकर चले। मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। हिशाम भाई ने सबसे पहले अपना वही इमोजी वाला या कहें GIF भेज दिया, सलाम का वालेकुम अस्सलाम। हुसैन कहते हैं सलाम फजल भाई, वालेकुम अस्सलाम, हैप्पी वीकेंड, हम अपनी मोहब्बत का इम्तिहान देंगे, प्लीज़ प्ले दिस सॉन्ग। देख रहे हैं आते ही ऐसा दिल जला सॉन्ग, इतना पुराना सॉन्ग भाई, कुछ नए ज़माने का सुनिए वो भी अच्छे होते हैं। अच्छा एक और चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा, मे बी हो सकता है ये थोड़ा सा लग जाए दिल में, लेकिन इसलिए नहीं मैं कह रहा हूँ कि दिल पे लग जाए, बट इसलिए कह रहा हूँ कि वो होती है ना कि पुराने ज़माने में जो आपने गाना सुन लिया है तो पुराने ज़माने से पुराने लोग बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं और फिर वो उसे छोड़ना नहीं चाहते। ये हमारे माँ बाप के साथ भी बहुत हुआ है और मुझे डर है कि शायद मेरे साथ भी ना हो, क्योंकि आज से 15-20 साल बाद जब मैं वो हो जाएगा ना कि अभी तो आधी सफ़ेद है पूरी जब दाढ़ी सफ़ेद हो जाएगी, ये ना हो कि अरे बेटा दिन तो हमारे हुआ करते हैं 2020 से लेकर 2025 तक, ये तो ज़माना था सॉन्ग्स का, तो मैं वैसा वाला बूढ़ा आदमी ना बन जाऊं कि मैं अपने ज़माने की बात करने लग जाऊं, बजाय इसके कि यार आज का ज़माना भी बहुत अच्छा है, आज के गाने भी बहुत आला दर्जे के हैं, आज भी अरिजीत सिंह और ऐसे सिंगर जो नेहा कक्कड़ जैसे भले क्यों ना हो, जुबिन नौटियाल जैसे भले क्यों ना हो, लेकिन ये हिट गाने देते हैं। ऐसे ही खादिम साहब ने ये जो गाना कहा है अच्छा गाना, मैं ऑब्वियसली पुराने गानों की बात अलग है, 90s गानों की बात अलग है, लेकिन हम पुराने गानों से जो कनेक्शन बना चुके हैं उसे छोड़ नहीं रहे और नए ज़माने के गाने सुनना नहीं चाह रहे कि अरे भाई वो हम ज़माना तो हमारा था, ये ज़माना तो हमारा छोड़कर अभी जी लिया जाए जो ज़्यादा बेहतर है। होता क्या है कि अभी तो ठीक है लेकिन आज से जैसे ही 10 साल पहले या 10 साल आगे बढ़ेंगे फिर भी यही लाइन होगी कि भाई हमारा ज़माना था, 10 साल पहले ऐसे गाने आया करते थे, तो अभी वाले गाने सुन लेते ना, तब 5-7 साल में जो अभी गाने रिलीज़ हुए हैं उन गानों को भाई अगर हम सुने तो ज़्यादा बेहतरीन होंगे बिल्कुल। लेकिन मैं कोशिश करूँगा अगर ये गाना ऐसा हुआ अच्छे कॉम्पोजिशन के साथ तो मैं ये गाना प्ले कर दूंगा। सलाम आया है मुजीब साहब का, वालेकुम अस्सलाम मेरा भाई, और है सलाम मैं जा रहा हूँ कल बीच, बट प्लीज़ प्ले टुडे सॉन्ग आँखों की गुस्ताखियाँ, मैं अभी घर जा रहा हूँ। उस्मान कहते हैं आँखों की गुस्ताखियाँ अगेन, ये तो ब्यूटीफुल सॉन्ग है, अगेन रोमांटिक भी है और लव सॉन्ग भी है, तो आँखों की गुस्ताखियाँ आँखों की मिल जाओ भाई, गुस्ताखियाँ गुस्ताखियाँ ही नाम डालूँ तो मिलेगा या आँखों में, हाँ मिल गया, कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू की आवाज़ में हम दिल दे चुके सनम मूवी का ट्रैक है और हम इसी ट्रैक से शुरू करेंगे दोस्तों। लेकिन कोशिश करें थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव वाले गानों पर स्टिक रहने की, लेकिन ये गाना भी लाजवाब है, ठीक है। मैं ऐसा मान लेता हूँ कि ड्राइव करते हुए आपके बगल एक और कार चल रही है है ना, आपके फैमिली मेम्बर की, और उनसे उनके साथ ये गाना आप सुन रहे हैं और अगल बगल बार बार देख रहे हैं कि आंखों के। फिर एक और ये सॉन्ग की फरमाइश की है, आई गेस इनका नाम क्या है, फैसल मोहम्मद बिलाल, कहा है कहो ना कहो, ये भी बहुत ही प्यारा गाना है यार, क्या बात है, कहो ना कहो, सफ़र करते हुए ये गाना अच्छा लगेगा। तो मैंने ये गाना भी ढूंढ लिया है, तो सेकंड नंबर पे बिलाल भाई की रिक्वेस्ट पे ये गाना चलेगा, आंखों की गुस्ताखियाँ, किसका है, मैंने नाम लिया था बिलाल नहीं, आंखों की गुस्ताखियाँ उस्मान साहब, हाँ नाम तो लिया था मैंने, उस्मान भाई का है। फिर खलील पाशा क्या कहते हैं, सलाम फजील भाई, वालेकुम अस्सलाम मेरा भाई, बांदा रोड से किमारी चली है घोड़ा गाड़ी, बाबू हो जाना फुटपाथ पर, है ये गाना है या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, बांदर रोड से किमारी चली है गोरी गाड़ी बाबू हो जाना, हो सकता है अपनी लैंग्वेज में कुछ कह रहे हो ऑमलेट मांग रहे हैं ऑमलेट आगे ये मैसेज अबू सिद्र का है, माय रिक्वेस्ट इज देखते देखते सॉन्ग आतिफ असलम, रिटन बाय नुसरत फतेह अली खान साहब, कंपोजर नुसरत, देखते देखते कौन सा, अभी मैं देखते देखते अगर डालूंगा ना तो 100 गाने आएंगे, 4 गाने हैं, नुसरत वाला मुझे ढूंढना है अगर, तो ये बत्ती गुल मीटर चालू का है,
2: सिंगर आतिफ असलम, देखते देखते बत्ती गुल, हाँ ठीक है। अच्छा इसके दो गाने हैं, तो तीसरे नंबर का गाना भी अपने को दोस्तों मिल गया है। तो अपन ये दो, ये तीन गाने प्ले कर रहे हैं, ठीक है, एफएम 107 पे, उस्मान बिलाल और फिर अबू सिदरा की रिक्वेस्ट पे ये तीन गाने एंजॉय करें एफएम 107 पे। वापस आएंगे तो बाकी लोगों के सॉन्ग्स भी लेकर आएंगे। सुनते रहे एफएम 107, दिल से देसी।

0: बात है कि सोचता था कितने मासूम है, देखते देखते क्या हो गया। ये बात तो बिल्कुल सही भी है यार।
1: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
0: हाँ जी, अभी भी 4:26 हमारे स्टूडियो की घड़ी में। ऐसे गानों की रिक्वेस्ट से फिर दिन बन जाता है और खास तौर पे यार वीकेंड बन जाता है। ये गाने यार सच में सुनने के बाद ऐसा लगता है कि चलते रहें दो भाई। इसी के बाद बैक टू बैक आतिफ असलम को ले आओ, उसके बाद आमिर जमाल को ले आओ, कुमार सानू, चलता रहें दो। आँखों की गुस्ताखियाँ से लेकर कहो ना कहो और देखते देखते, ये तीनों गाने थे लाजवाब और आने वाले भी गाने आई बेट लाजवाब हैं। सबसे पहले जो गाना मैं प्ले करने जा रहा हूँ अब वो है बिंत दिल, अरिजीत सिंह की आवाज़ में। ये रिक्वेस्ट है मुजीब साहब की। ओके, फिर हमज़ा ने कहा है ये गाना, और 100% लोग इस गाने को पसंद जरूर करेंगे। और इस गाने का नाम है सूरज हुआ मध्यम। कितना सही टाइम है यार, हल्का हल्का सूरज नीचे आ रहा है, हालांकि तेजी है अभी भी लेकिन अब अपने वो जो ताव था ना, जो तेज तर्रारी थी सूरज की, वो हल्की हल्की ढलती हुई सी है और बिल्कुल मध्यम हो रहा है धीरे धीरे। ऐसे में ये गाना अगर प्ले हो जाए तो दिन ना बन जाए, ऐसा ना लगे वीकेंड तो अब शुरू हुआ है बाबा। और ऐसा है ना, क्या अगर आपका ब्लड नेगेटिव में भी है ना, तो ये गाने सुनने के बाद इंसान का ब्लड पॉजिटिव में हो जाता है भाई है ना, तो ए भी पॉजिटिव हो गया, बी पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव वालों का भी पॉजिटिव हो जाता, क्योंकि गाने वाह सुनने में दिल खुश हो जाता है। तो दूसरा गाना है सूरज हुआ मध्यम, हमजा होकर की रिक्वेस्ट पे। और फिर नूर हुसैन की आवाज में है ये गाना, फिर से उड़ चला, क्योंकि इन्होंने ऑडियो भेजी है सॉरी नूर भाई। ये गाना सुनना चाहते हैं, फिर से उड़ चला सॉन्ग प्ले करो। और सलाम भी कहा है, वालेकुम अस्सलाम। अगेन वही वाली बात, ठीक है लेकिन चलेगा। एक रिक्वेस्ट है, जब से तुमको देखा है सनम, 1996 का गाना सुनना चाहते हैं भाई, थोड़ा आ जाओ नए जमाने में भी आ जाओ मेरा भाई। सलाम फजील भाई, योर प्रोग्राम गोइंग गुड माशाल्लाह, खलील पाशा। ये खलील भाई एक और अलग अलग नंबर से खलील पाशा, दो हैं खलील पाशा क्या? एक तो आपने ये लिखा है जो मैं समझ नहीं पाया ये वाला अलग है, अच्छा दो नंबर हैं हमें लग रहा है इनके। तो ये तीन गाने हमने निकाल कर रख लिए दोस्तों, सूरज हुआ मध्यम, बिंत दिल और फिर से उड़ चला। बाकी लोगों के मैसेज देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अमन, प्लीज नेक्स्ट सॉन्ग मूनलाइट बाय मिक्स सिंह। मिक्स, ये कौन सा सोसाइटी में सिंगर आ गया मिक्स? मिक्स दाल सुना है भाई ये मिक्स सिंह कौन है? एक तो मेरे को पता नहीं है भाई ये कौन कौन से सिंगर आ जा रहे हैं, और मैं थोड़ा पीछे छूट रहा हूं राहुल वैद्य का एक गाना है मूनलाइट, मिक्स नाम का तो कोई आदमी नहीं है चलो ठीक है, मैं कोशिश करता हूं अगर मुझे ये मिल जाता है। फिर ये मैसेज है किस भाई का, झूमे जो पठान सुनना है। सलाम वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल? मैं बहुत अच्छा हूँ, आज तो एकदम बाबा ज्ञानदास बन गए भाई। भाई नए गाने भी पुराने गाने का रिमिक्स है या रिवाइज वर्जन है झूमे जो पठान फिल्म पठान मूवी से? सिंपल बात कहना है, ये गाना प्ले करवा लो भाई, बाकी बातें क्यों। फैसल भाई आपकी रिक्वेस्ट पे ये गाना प्ले किया जाएगा, लेकिन अभी ये तीन गाने तो मैंने निकाल लिए हैं। बाकी और लोगों के मैसेज पढ़ लेता हूँ जल्दी से, फिर उनके गाने भी तो चलाने हैं। ठीक है, तो एक गाना फिक्स हो गया है, इन तीन गानों के बाद झूमे जो पठान आएगा, फिर मूनलाइट ये भी गाना अपन प्ले करेंगे, लेकिन ये मिक्स कोई नहीं है भाई, हो सकता है मुझसे अगर छूट रहा हो तो अलग बात है। सितारे सितारे सॉन्ग बाय अरिजीत सिंह। यार वैसे आज की थीम एक बार फिर से सुन लें, आज की जो थीम है वो है लॉन्ग ड्राइव के गाने। मूनलाइट थोड़ा रात हो जाने देते, लेकिन ये अरिजीत सिंह का कोई ये गाना नहीं है, सितारे सितारे थोड़ा और चांद सितारे हैं अरिजीत सिंह का भाई थोड़ा। चलो ठीक है, आज मैं एक स्टेप आगे जाके आर्टिस्ट का नाम और गाना सर्च कर लेता हूँ ताकि आसान हो जाए, ठीक है? शायद उनके नाम से मिल जाए। टाइप टू नहीं भाई, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है।

0: अरिजीत कहाँ लिखूँ मैं, हाँ आर्टिस्ट आ गया, ठीक है आज मैं एक स्टेप आगे जाके ये हरकत कर रहा हूँ आज तक किसी ने ना करी होगी एफएम 107 पे, लेकिन ठीक है आर्टिस्ट का नाम लिखने के बाद सितारे अगर डाल दो तो शायद नहीं है, सितारे में डबल ए लगा लेता हूँ, और बताओ नहीं है इसमें भी भाई, नहीं आ रहा कहीं से, नहीं आ रहा, आया कुछ तो आया अरिजीत सिंह का 21 2025 का ये गाना है, देखा ये तरीके से मिल जाएगा। अब आर्टिस्ट का नाम भी डाल दिया करूंगा मैं, ठीक है मैंने एक ऑप्शन और ढूंढ लिया, ये सिस्टम की बात है भाई साहब, ये सारा सिस्टम जो है मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ, और ये गाना मुझे मिल गया है सितारे बाय अरिजीत सिंह, चलो मैं ये देख लेता हूँ अगर मैं प्ले कर पाता हूँ तो बिल्कुल, फिर लव्स भी देखने पड़ते हैं ना अपने को, बाकी बिनते दिल सबसे पहले ये गाना आ रहा है और सेट कर दिया मैंने, सूरज हुआ मध्यम आ रहा है और कौन सा आ रहा है, एक और गाना है, ठीक है पहले ये दो प्ले कर लेते हैं फिर आते हैं वापस, बाकी आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं 666-22-107 पे, 666-22-107 पे, एंजॉय करें इन गानों को।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से, कॉल करें 448-88-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

बात है सुन निगम और अलका याग्निक की आवाज में गाना सुना आपने एफएम 107 पे। आला हबीब इस्तकबाल है आप सभी का एफएम 107 पे और 4:42 हमारे स्टूडियो की घड़ी में। और जिन्होंने कल सुना है उनको पता है कि आज एक चैलेंज लिया है और ये नाम है दानिश आजाद का। पिछले 3 दिनों से ये खेल रहे हैं, बहुत ही उम्दा खेल का मुजाहरा किया है इन्होंने। 3 के 3 गाने पहचान कौन में पहचाने हैं और कैच ये है कि ये चैलेंज करके पहचानते हैं। तो मेरे को हल्का हल्का शक हुआ कि अरे कैसे यार, मतलब 3 के 3 गाने इवन जो टफ भी होते हैं जो बाकी लोग नहीं पहचान पा रहे वो दानिश भाई पहचान पा रहे हैं। हालांकि इस बीच यूसुफ भाई भी सही जवाब दे रहे हैं और हिशाम ने भी 3 के 3 गाने पहचानने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और बहुत ही उम्दा उन्होंने भी खेला है। लेकिन कभी कभार होता ना कि कोई कितना भी अच्छा खेल जाए, एक जो जिस पर इतना यकीन नहीं है कि लेकिन वो यार इतना अच्छा खेल रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है, तो शक के दायरे में तो आ गए। तो ऐसा है कि अब डायरेक्ट लाइव खेलेंगे उनसे। उनका कहना है कि यार ऐसा कुछ नहीं है, लोग गलत कह रहे हैं। और फिर कल कई लोगों ने ये भी कहा था कि हाँ यार फजील भाई ये एक्चुअली चीटिंग कर रहे हैं, ये कहीं और वो एक एप्लीकेशन भी आता है जिसमें आप गाना अगर प्ले करते तो बता देता है कि कौन सा गाना ये है, इसका नाम क्या है, किस नाम से है, तो हो सकता है वो चीटिंग कर रहे हैं, कई लोगों ने कहा। फिर मुझे भी ऐसा लगा, तो इन्होंने चैलेंज किया है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं ड्राइव करता हूँ अच्छी खासी और लगातार 120 की स्पीड रहती है, मेरे पास इतना मौका नहीं होता है, तो मैं आपको ऐसी जवाब बता देता हूँ और ऐसा नहीं है कि मैं चीटिंग कर रहा हूँ। तो ये तैयार हो गए खेलने के लिए डायरेक्ट कि आओ चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता हूँ मैं तुम्हारा फजील भाई और डायरेक्ट मैं ये गेम खेलूँगा कॉल पर और गाड़ी पार्क करके आसानी से आराम से खेलूँगा। तो दानिश भाई ने ये एक्सेप्ट तो कर लिया, लेट्स सी अगर दानिश भाई सुन रहे हैं तो बिल्कुल इनके साथ खेलना तो बिल्कुल चाहिए। और अच्छा ये अभी भी दानिश भाई कह रहे हैं कि बताओ मुझे वो एप्लीकेशन कौन सा है। अरे एक तो एप्लीकेशन भी आता है, ऊपर से एक फ़ोन है उसमें फीचर है, उसमें कान बना होता है, अगर आप उसे ऑन कर दें और कुछ भी आसपास अगर म्यूजिक चल रहा है तो वो ढूंढ कर ले आता है कि असल में ये गाने का नाम क्या है। वेल ये बात भी कई लोगों ने कल कही थी और अभी एक भाई कह रहा है मैं मोबाइल का नाम तो नहीं ले सकता लेकिन है जो सबसे महंगा फ़ोन है वही वाला है। ठीक है इन्होंने लिखा भी है, देखो फलाने फ़ोन पे मुबीन भाई ने कहा है कि बहुत आसान हो जाता है ये है। सो लेकिन कोई बात नहीं, मैं ऐसा नहीं कि तोहमत लग रही है, बट क्या होता है कि इंसान अपने आप को साबित तो कर ही सकता है। तो गाड़ी अगर पार्क कर लें आप आजाद भाई, मजा आ जाएगा नहीं, सही में गाड़ी पार्क करिए, अपन लोग तैयार हैं, मजा आएगा। और मैं चाहता भी हूं कि कॉल पर भी अगर हो, हालांकि वक्त इतना मुख्तसर सा होता है, अगर हमने कॉल पर लेना शुरू कर दिया तो सिर्फ 1 या 2 लोगों को कॉल पर ले पाएंगे, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि सारे के सारे लोग जो है मैसेज पे आ जाएं, व्हाट्सएप पे आ जाएं तो बढ़िया है, लेकिन कॉल पर थोड़ा सा लंबा वक्त चला जाता है। फिलहाल मैं कॉल करने की कोशिश करता हूं, आप रेडी हैं? मैं दानिश भाई अब टाइपिंग छोड़ दो मेरा भाई, मैं कह रहा हूं आप गाड़ी पार्क कर लें, अपन लोग आज खेल ही लेते हैं, मजा आएगा। असल में तो मुझे कॉल का ही दिल होता है बट क्योंकि वक्त बड़ा मुख्तसर सा होता है तो नहीं हो पाता है। ये लिख रहे हैं भाई ने, कुछ लिखा भी है, टेको पार्क 10 यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा मोबाइल का नंबर बताया शायद, मोबाइल टाइप मॉडल आप देख लें अपडेट है या पुराना है। खैर कोई बात नहीं यार दानिश भाई छोड़ो यार।

0: दानिश भाई म्यूजिक थोड़ा सा धीमा कर लेते आप, मजा आता फिर खेलते हैं आज। धीमा तो करें आप, आपकी आवाज रिपीट आ रही है, ऑडियो धीमा कर लें रेडियो का। आप आराम से कुछ देर बाद भी अपन खेल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अभी अभी खेलना जरूरी है।
1: मुश्किल नहीं है, मैं रेडी हूँ क्योंकि मैं आज वैसे ड्यूटी का टाइम तो 4 बजे है मेरा।
0: अच्छा,
1: घर से निकलने के लिए। हाँ। तो अभी आज 3:30 बजे निकला हूँ घर से, ताकि मैं टाइम से पहुँच जाऊँ यहाँ। अभी आ गया हूँ, इंसलाल अली में हूँ।
0: अच्छा, तो गाड़ी पार्क कर ली आपने?
1: जी मैंने गाड़ी पार्क कर ली है।
0: थोड़ा सा और धीमा कर ले क्योंकि आपकी आवाज ना रिपीट हमारे कानों तक आ रही है और मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है बात करने में। या बेहतर है कि डायरेक्ट आप मोबाइल से कनेक्ट कर लें ब्लूटूथ के बजाय, अगर ब्लूटूथ से कनेक्टेड है तो।
1: नहीं, मेरा ब्लूटूथ कान में लगा हुआ है और ये रेडियो ऑन किया हुआ है।
0: अच्छा चले, तो हम गेम खेलना शुरू करते हैं, ठीक है
1: जी।
0: तो दोस्तों अभी तक तो आपको पता चल गया है कि हमने कॉल क्यों करी है। लोगों का भी अपना कहना है कि अरे यार दानिश भाई चीटिंग कर रहे हैं, लेकिन दानिश भाई अब आपको आपके ऊपर ना ऐसा तलवार लटकी है। आपने देखा है वो बचपन में होता है स्कूलों में, अगर आपने चीटिंग करी हो और टीचर ने पकड़ लिया हो तो टीचर कहता है कि कोई बात नहीं, अब एक बार दोबारा से पेपर दो, मैं सामने खड़ा हूँ, अब साबित करके दिखाओ। वही वाला हिसाब है आपके साथ, ठीक है।
1: तो मैंने ये सॉन्ग का नाम जो है,
0: हाँ,
1: मैंने टाइप करके सेंड करना है, नहीं तो यहाँ से बोलना है।
0: नहीं नहीं, आपको ऐसी, आपको सारे लोग सुन रहे हैं FM 107 पे इस वक्त, जितना भी तोहमत लोगों ने लगाया कि ये चीटिंग कर रहे हैं, सब क्लियर हो जाएगा आज, ठीक है
1: ये ठीक हो गया।
0: चले तो पहला
1: मुंह से मैंने बोल देना।
0: हाँ हाँ, आप बोल दें, आप अभी अभी डायरेक्ट लाइव सब आपको सुन रहे हैं, ठीक है
1: जी, ठीक हो गया।
0: ओके, तो दानिश भाई के साथ हम ये खेल रहे हैं दोस्तों, आज ये तलवार इनके गर्दन से हट जानी चाहिए अगर इन्होंने सारे जवाब सही दे दिए। अगर नहीं दिए तो कोई बात नहीं, हम फिर भी कोशिश करेंगे एक दो बार कॉल करके इनके साथ गेम खेलें, क्योंकि ये सारे जवाब सही देते हैं। तो पहला गाना दानिश भाई के लिए वो रहा ये।

0: अरिजीत दोसांझ, दिलजीत दोसांझ की आवाज में ये गाना कुड़ी,
1: एक कुड़ी आया है।
0: मैंने ये रिक्वेस्ट की थी। यस
1: बिल्कुल सही पहचाना।
0: की आवाज में मेरे पास सेव भी है मेरी प्लेलिस्ट में।
1: हाँ वेल ये शाहिद की आवाज में है। गाने का नाम
2: एक कुड़ी।
0: गाने का नाम तो एक कुड़ी है ना।
1: करेक्ट करेक्ट करेक्ट करेक्ट।
2: मोहब्बत
1: बिल्कुल सही
0: है। गुम है,
2: गुम है।
1: क्या बात है, आवाज तो आपकी भी जानदार है यार दानिश भाई। तो दोस्तों बाहर से जो सुन रहे हैं वो भी इस गेम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो गाना है दानिश भाई के लिए वो रहा ये।

0: देर लग रही है, समझ में नहीं आ रहा, एक बार फिर प्रे कर देंगे।
1: हाँ
0: ये सॉन्ग है सैफ अली खान की, एक मूवी थी कुछ नाम है ना इसका, चूड़ियां ऐसा ऐसा कुछ है, चूड़ियां जैसा है इसमें,
1: चूड़ियां जैसा यार ये जो तलवार है, इस तलवार को आपको अपने जवाब से ही काटना होगा यार।
0: छुड़ाया
1: ये अब इतना रहना है तेरे दिल में, इस गाने का ये ट्रैक है, गाने का नाम है।

0: सैफ अली खान की एक मूवी है जिसमें ईसाई को और भी दोस्त होता है।
1: ये के कविता कृष्णमूर्ति के आवाज में गाना है, गाने का आई मीन मूवी का नाम है रहना है तेरे दिल में और गाने का नाम चुराया चुराया। ठीक है, ये भी आपने बिल्कुल सही पहचाना है। ठीक है, तो तीसरे नंबर का सॉन्ग इसे भी पहचानिए और साबित कर दीजिए जो बाहर से लोग सुन रहे हैं कि आप बिल्कुल सही सच्चा गेम खेल रहे थे।

0: नैना
1: का कसूर। क्या बात कर रहे हैं यार, तालियां हो जाए, बिल्कुल सही पहचाना। और फाइनली सारे जो कसूर इनके ऊपर लगे थे

0: कसूर से आजाद हो गए हैं। क्या बात है दानिश,
1: सिंगर का कुछ नाम है अमित या ऐसा कुछ नाम,
0: अमित त्रिवेदी
1: सिंगर का।
0: अब जब आप
1: अमित त्रिवेदी,
0: अब जब आप ये कर रहे हैं ना, अमित त्रिवेदी हैं, तो ऐसे फिर से शक हो जाता है कि कहीं ना कहीं ये वो वाला है ना कि एक्टिंग कर रहा हूँ मैं तो, लेकिन पूरा नहीं करना है मुझे।
1: नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अगर ऐसा है तो फिर आप कभी भी किसी भी वक्त ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि आप देखें लाइव कॉल चल रही है, और जब लाइव कॉल चलती है तो उस टाइम आई थिंक डेटा नहीं यूज होता। और अगर आप YouTube पे नहीं तो Google पे जो वॉइस का ऑप्शन आता है उसमें भी सर्च कर लें, और एप्लीकेशन में भी सर्च कर लें, तो डेटा यूज होगा तो एप्लीकेशन में होगा ना।
0: लेकिन मालूम है जैसे मेरे मन में हल्का हल्का चल रहा, मुबीन भाई भी वही कह रहे हैं, स्टिल कोई भरोसा नहीं है, नो ट्रस्ट।
1: मुश्किल नहीं है, आप कहते हैं तो बाकी को खेलने दे, मैं बस सुनता रहूंगा।
0: एक और भाई है, इनका नाम है MK, और लिखते हैं भाई उधर आवाज चल रही है, रेडियो का सर्च हो रहा है भाई। अरे मान लो यार, अब तो मान लेना चाहिए।
1: तो मैं बोल रहा हूँ ना, YouTube पे भी अगर वॉइस लगा के आप चेक करेंगे तो डेटा ऑन होगा तो ये वॉइस सर्च होगी ना, और आप बेशक इन लोगों को बोल दें कि ये ऐसे सर्च करके दिखाएं एप्लीकेशन में नहीं तो YouTube में, ये जीत के दिखाएं ऐसे बता दें।
0: सही है, चलो भाई तुम लोग पर भी यही तोहमत भाई ने दे दिया कि अच्छा अगर मैं चीटिंग कर रहा हूँ तो तुम ही लोग ये करके दिखा दो कि सबसे पहले अगर सर्च करके और एप्लीकेशन का यूज करके आप तुरंत फौरन के फौरन रिप्लाई कर दें व्हाट्सएप पर।
1: मैं पिछले तीनों बार मैं गाड़ी चला के आ रहा था, और आज बेशक मेरी लाइव लोकेशन भी ले लें
0: दोस्तों,
1: मैं गाड़ी चला रहा होता हूँ, आज मैं सिर्फ जल्दी निकला हूँ इसी के लिए, कॉल के लिए।
0: सादिक भाई ने कहा है एक और
1: बजे गाड़ी घर से निकला हूं।
0: एक आपके लिए मैसेज है कि इनको स्टूडियो में बुलाओ, मतलब भरोसे का यहाँ तक लेवल आ गया है। सादिक भाई कह रहे कि सामने, मुझे लगता है दोस्तों वीडियो कॉल पर ही ना खेल लूं इनके साथ में।
1: वीडियो कॉल पे खेले, मैं कल भी आपको मैसेज करने वाला था लेकिन उसके बाद आपका डेटा ऑफ हो गया था। मैं ये कहने वाला था कि इसी नंबर पे मेरा ईमो बना हुआ है।
0: अच्छा,
1: क्योंकि व्हाट्सएप पे तो आपको पता है VPN यूज करने के लिए होता है, तो फिर वो VPN यहाँ कतर में बैंड है।
0: ये तय हो गया कि ये भाई वीडियो कॉल पर भी खेलेंगे, तय हो गया दोस्तों। मैं कोशिश करूंगा एक कोई सिस्टम ऐसा लेकर आऊं कि वीडियो कॉल के थ्रू मैं इनको देखता रहूं और फिर यहां से प्ले करूं और कॉल पे ये जवाब दें। ठीक है, यहां तो हो गई बात क्लियर, बहुत शुक्रिया।
1: मैं तो रेडी हूं, लेकिन इनको भी बोले ना कि एक बार ये भी तो, ये जो चीटिंग मुझ पे लगा रहे हैं ना, ये भी खुद भी करके देखें। 120 की स्पीड से गाड़ी चलाना, वो भी ये शमाल रोड से उम सलाल अली आ रहा हूँ, 120 की स्पीड, 120 होती है, 130 होती है, फर्स्ट ट्रैक में भाग के आता हूँ, क्योंकि मेरे पीछे अरबी लोगों की गाड़ी होती है, वो पीछे से फ्लैश देते हैं, साइड करना पड़ता है।
0: नहीं,
1: तीन तीनों मिरर।
0: आपने जिस तरह का चैलेंज दिया है, मुझे लगता है कि सब लोग यहाँ पर इस बात से आपकी बात को बिल्कुल यकीन में बदल देंगे या यकीन कर लेंगे इस बात पे कि आपने वीडियो कॉल पर या यहाँ आकर खेल लिया। ठीक है,
1: जैसे आपको अच्छा लगे और इन लोगों को अच्छा लगे,
0: चले बहुत बहुत शुक्रिया।
1: मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बहुत छोटी सी उम्र से मूवीज देखने लगा हूँ, जब VCR था वो VCR वाली मैंने एक दो बार कहीं देखा होगा, लेकिन DVD का जब जमाना आया ना हमारे कश्मीर में, उस टाइम से मैं मूवीज देख रहा हूँ, और मेरा भाई मिथुन दास का फैन था, वो उनकी मूवीज लाता था, तो बाकी अदरवाइज हम बाकी भी देखते थे मूवीज।
0: हाँ, मुझे भी याद है यार, 30-30 रुपए का पूरा हम लोग कैसेट वगैरह लेकर आते थे। ये भी क्या दिन थे, बहुत बेहतरीन दिन थे वो।
1: उस टाइम से मैं देख रहा हूँ और मेरी एज 30 है।
0: चले वह बहुत अच्छा, लेकिन मैं तो कहूंगा दानिश भाई आपके अंदर, मैं ये कहूंगा आपके अंदर जो कला है वो बहुत ही उम्दा कला है यार, बहुत ही सही तरीके से आपने सारा पहचाना। आखिर में नैना था क्या कसूर, मुझे लग रहा था ये टफ होगा, बट ये भी पहचान लिया, बहुत बहुत शुक्रिया खेलने के लिए, और किसी दिन अपन लोग वीडियो कॉल पर भी खेलेंगे। ठीक है, ओके मेरा भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू। फिलहाल 4:55 हमारे स्टूडियो की घड़ी में, और बाकी और लोग भी हैं यार, यकीन कर लो, अब तो इस आदमी का यकीन करना पड़ेगा। फुल रेडियो बंद करवाएं, कॉल मी नाउ भाई, अब तो वक्त निकल चुका है, इंशाल्लाह फिर फजील भाई, दानिश इज चैंपियन, मैं तो इन पे यकीन करता हूँ। यूसुफ भाई ने कहा है भाई 120 की स्पीड में सबसे पहले मैसेज, वाह भाई। है रफ्तार है भाई में। एक भाई है, कौन है, इनका नाम क्या है, CB, इन्होंने लिखा है स्टिल चीटिंग। अरे नहीं यार, अब तो मैं, अब मैं, मुझे तो यकीन हो गया, क्योंकि अगर आप कितनी जल्दी भी अगर हम उसका इस्तेमाल कर भी लें, जो आप फ़ोन के एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे हैं या फिर जो इनबिल्ट फीचर है कुछ फ़ोन्स में, तो भी थोड़ा सा टाइम लेता है, ये इतनी तेज़ी से नहीं, लेकिन हल्का हल्का है ना, वो एक अंदर चोर होता है ना, वो वाली चीज है। फिर उसके बाद ये मैसेज किया था सलाम का, लेकिन फिर डिलीट कर दिया। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई, आपका नाम है पता नहीं, इन्होंने ऊपर लिखा भी नहीं है और प्रोफाइल पर भी नहीं लिखा है। बचना अच्छा है फज्जू मियां, बहाना अच्छा है, किस बात का बहाना, आप तो बात निकल गए भाई। ब्रदर नेपाली सॉन्ग भाई, बहुत माजरत, लेट हो गया शाहनवाज साहब, इंशाल्लाह फिर कभी। थैंक यू मेरा भाई, ये है मूवी जीप का मैसेज, कैन यू प्ले सोलमेट भाई, लेट हो गया, इंशाल्लाह फिर कभी। अस्सलाम वालेकुम सर, कुछ ऐसा सॉन्ग लगाओ ना कि पुरानी वाली। सारे भाई साहब, क्या सही समय पे मैं रुकता हूँ भाई, मतलब मेरे हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं यार। अरे कौन है ये। अच्छा एक मैसेज है, मेरा सॉन्ग, हाँ आखिरी में आपका ही सॉन्ग मैं प्ले कर रहा हूँ, सितारे अरिजीत सिंह का झूमे जो पठान, ये मैं प्ले नहीं कर पाऊंगा, माजरत मेरा भाई, क्योंकि वक्त जो है बड़ा कम होता है। और मूनलाइट भी सॉन्ग मिल गया था, लेकिन इंशाल्लाह फिर कभी। फिलहाल मुझे और मेरे दिल को यहाँ से इजाजत दें, मुलाकात होगी इंशाल्लाह आपसे संडे को, और संडे दोपहर 1 बजे मुलाकात करूंगा इस समर स्पोर्ट्स में। फिलहाल बेहतरीन से गाने के साथ छोड़े जा रहा हूँ आपको, ये गाना है अरिजीत सिंह की आवाज में सितारे। आरके की रिक्वेस्ट पे ये ब्यूटीफुल सा ट्रैक, नाम पूरा नहीं लिखा है लेकिन प्रोफाइल पे आरके है तो आरके ही सही। सितारे काफी दिन से रिक्वेस्ट कर रहे थे और ये गाना आपके लिए दोस्त, सुनते रहें FM 107 और अपना ख्याल रखें। हैप्पी वीकेंड।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: हाँ जी, सब तो पहला सारिया नू गुड इवनिंग। मैं हूँ जी आपका कप्तान, साडा नाम है जी डंबल प्रीत। इस जहाज के दो दरवाजे हैं और दोनों दरवाजों के कुंडे खराब हैं, इसलिए भागने की कोशिश बिल्कुल ना करें। अभी जहाज में टर्बुलेंस आने वाला है, इसलिए सब अपनी सीटें और अपने घुटनों को पकड़ के बैठ जाएं। चलो जी टर्बुलेंस चालू करो जी। आइए, सामने जो बादल दिख रहा है इसी में जहाज दे दो पूरा का पूरा।

0: क्यों कैसे भैया हैं याद क्या नहीं गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे आपके एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी गार्ड हाजिर है। सब तो पहला भाई सबको हैप्पी वीकेंड, बहुत बहुत मुबारक हो। जिनकी छुट्टियां हैं बहुत बढ़िया भाई, मुबारकबाद। जो लोग छुट्टी पर जाने वाले हैं जहाजों में, मैं तो भाई ऐसी एम ही खामखा गलना करता सी, आप उतनो सीरियसली मत लो, आप आराम करो, मजे करो और बाकी मैसेज करते रहो 666-22-107 पे। सबसे पहले मैसेज पढ़ेंगे, एम के भाई लिखते हैं कबीर भाई की आर्मी हाजिरी लगाओ मेरा भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई को बहुत सारा प्यार। मोहम्मद भाई ने मैसेज किया वालेकुम अस्सलाम, और उनके पास खादिम हुसैन साहब वालेकुम अस्सलाम गुड इवनिंग हैप्पी वीकेंड, हैप्पी वीकेंड मेरे भाई को। ईशाम साहब वालेकुम अस्सलाम, अमन भाई गुड इवनिंग ब्रो किद्दां वीरे। और मैं एक क्या कहते हैं उसको, मैं बताऊँ भूल के बता रहा, हाँ मैं कह रहा था कहानी। ओए होए होए होए, देखो आज की कहानी में पहले बता दूँ, स्लो बर्न है। स्लो बर्न किसे कहते हैं, वो नहीं धीरे धीरे जलता, कहने का लिटरली मीनिंग तो ये कहानी धीरे धीरे धीरे धीरे बढ़ेगी। सो स्टे विद द प्रोसेस, ऐसा नहीं क्या बोले अरे मजा ही नहीं आ रहा। सबसे पहले आपके लिए जो भाई साहब गाड़ी में घूम रहे हैं ना, ये शो सुन रहे हैं फुल वॉल्यूम पे, आपके लिए आहा मैं क्या जी, आ जाओ सारे व्हाट्सएप पे। थकता नहीं भाई साहब, मैं थकता नहीं हूँ। लोग कह रहे हैं एक बजे आए थे, मैं जी एक बजे आया था, आधे घंटे की तो बात थी, वो आधे घंटे का शो करके फिर मैं जी गाड़ी में जाके सो गया ऑन द मूव करके। एक मैसेज आया अस्सलाम वालेकुम गुड इवनिंग प्रेजेंट हैप्पी वीकेंड, ये मॉल ऑफ कतर से उन्होंने भेजा है, बढ़िया मैस्कॉट लग रहा भाई ये तो, ये अब्दुल नवीद भाई, नवीद भाई थैंक यू, लव यू पाजी, लव यू पाजी हमजा भाई, बहुत सारा प्यार भाई को। इनके बाद अस्सलाम वालेकुम हाउ आर यू सर, मैं जी वदिया, तुसी सर नहीं कहो आप भाई कह लो। कमालुद्दीन शेख साहब वालेकुम अस्सलाम गुड इवनिंग भाई गुड इवनिंग। अच्छा तो मैं सबसे पहले तो मैं कहानी का थोड़ा सा बता दूँ। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि बेच रहा हूँ कहानी को, मैं नहीं बेच ही रहा हूँ कहानी को, चलो जो भी है। वो कहानी जो स्लो बर्न है वो पहले बता रहा हूँ, ये नहीं कि आप शुरू में छोड़ के भाग जाए, नहीं मज़ा ऐसा नहीं आ रहा। यू हैव टू स्टे विद द स्टोरी। इस कहानी में मिस्ट्री भी है भर भर के, और इस कहानी का मिस्ट्री मैं हूँ क्योंकि मैंने इसे तैयार किया भाई साहब। तो मैं वीकेंड स्पेशल कहानी आपके लिए लेके आया हूँ, आपने भागना नहीं है इसे छोड़ के किधर भी। बाकी ट्रैफिक ट्रूफिक तो लगता रहेगा, आज वीकेंड है तो बताते रहना 666-22-107 पे। राशिद भाई वालेकुम अस्सलाम हैप्पी वीकेंड, बाल बच्चे कैसे सब ठीक मेरा भाई। खादिम हुसैन साहब कहते हैं लव यू कबीर भाई, भाई लॉट्स ऑफ लव टू यू एज वेल, भर भर के ट्रक भर के। तो 11 मिनट और 2 सेकंड के बाद मिलेंगे आपको, तो प्रोसेस पता ही है ठीक है। थोड़ी देर में मुलाकात होगी, दुआएं भर भर के मांगेगा प्लीज़ मेरे लिए भी प्लीज़, और अपने लिए भी थोड़ा सा, इसमें क्या अच्छा लगता है अल्लाह मियां को, तो खूब दुआएं मांगे। 11 मिनट 2 सेकंड शाम के अतकार, उसके बाद इंशाल्लाह आपसे मुलाकात। जाना आपने है नहीं, सुनो बेस्ट जगह पर हो, इधर उधर मत जाना, सबसे बढ़िया जगह है। मैं तो खुद कबीर को सुनता हूँ। हाँ
1: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का एहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते, बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं। आइए समाअत कीजिए शाम के अज़कार FM 107 पर।

0: समझ रहा हूँ बात रहा
1: हूँ। आप भी उस
0: एक
1: समय
0: वैसे 5 साल का और भिजवा देना, थोड़ा थोड़ा सा
1: भिजवा देंगे भाई, कुछ देर में चला देंगे, कोई टेंशन नहीं है।
0: ओके
1: ओके मेरा भाई, ख्याल रखो, अल्लाह अल्लाह फेस। और भाई के बाद इकबाल भाई ने मैसेज किया है, हैप्पी वीकेंड, वालेकुम अस्सलाम, हैप्पी वीकेंड मेरे भाई, हैप्पी वीकेंड। ये फलक भाई ने भेजा है, फिर हमारे यासर भाई ने, खादिम साहब क्या कह रहे हैं, खादिम साहब जज़ाकअल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया। यूसुफ भाई वालेकुम अस्सलाम कहते हैं, हैप्पी थर्सडे इवनिंग, हैप्पी वीकेंड आपको भी। तो ये कुछ मैसेजेस हैं, पर मैं ये कह रहा था कुछ लोग वीकेंड की बहुत ही शिद्दत से प्लानिंग करते हैं, बहुत दिल लगा के प्लानिंग करते हैं, ये कर दूंगा नहीं वो कर दूंगा, बीच पर चला जाऊँगा, आग ला दूंगा, ये तल दूंगा, वो तल दूंगा, बारबेक्यू बना दूंगा। कुछ लोग नहीं करते भाई प्लानिंग, ये वाला ऐड नहीं था, नो नहीं देखने मुझे गन्ने के खेत, ये वो वाला सीन है। तो मैं दूसरी कैटेगरी में आता हूँ, आई डोंट प्लान एनीथिंग एट ऑल, हो जाएगा नहीं होगा नहीं होगा, हमारे लिए तो एक बराबर है भाई। एक मैसेज है, एक नंबर भाई, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, ये मैसेज क्या है वो मैसेज साहब ने, आज तो बड़े टाइम पे आ गए अब, कैसे भाई साहब, वरना तो अब सरकारी दफ्तर जैसे ही है फाइलें जा रही हैं जा रही हैं जा रही हैं, भाई कहते पते नहीं है। और आमिर भाई वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाईजान। तो यही मैं पूछ रहा था कि वीकेंड आप कितनी प्लानिंग करते हैं, डू यू प्लान अ लॉट, क्योंकि कुछ लोग मैंने देखा है कतर में, ओहो इनकी प्लानिंग आप देख लेंगे, मंगल शुरू हो जाती है भाई साहब, बुध तक प्लानिंग होगी और जुमेरात को आते आते ही, क्या करते हैं लोग, कुछ लोग की प्लानिंग करते भी कुछ नहीं हो पाता, क्योंकि मुझे लगता है प्लानिंग करने के लिए आपको लोग भी तो चाहिए, आसपास आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हों जो आपकी प्लानिंग और प्लॉटिंग में आ सकें, फंस सकें। सरवर भाई के साथ क्या है, उनकी प्लानिंग प्लॉटिंग में कोई फंसता नहीं है, हैं तो वो कोशिश पूरी करते हैं बेचारे। आप में से कितने हैं जो पूरी पूरी प्लानिंग करके बैठे हैं अभी वीकेंड की, जिनकी छुट्टी है कल, वो ज़रूर मुझे मैसेज करें 666-22-107 पे। किसी किसी के बहुत बड़े बड़े प्लान होते हैं, मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूं तो चाय पीने के लिए बॉर्डर पे जाते हैं, ये बॉर्डर के बदलते हैं, वहां पे किसी रोड पे रोकेंगे वहां जाके चाय पियेंगे, अजीब उन्हें चस आ रही है ज़िंदगी की। तो ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ, बाकी 666-22-107 मैसेज कीजिएगा। भाई कह रहे हैं क्या आप 1 बजे भी आए थे, जी भाई मैं 1 बजे आया था, क्यों आपको शक है, भाई मैंने तो प्रॉपर बैकग्राउंड में यह म्यूजिक भी बजाया था ताकि ध्यान रहे कि मैं आया हूँ, तो 1 बजे मैं अमीन भाई की जगह आया था और बड़े मजा आया मुझे तो मैं, पर वो ये है कि सुबह जल्दी उठना पड़ गया मुझे, वरना 1 बजे मैं और स्टूडियो में वाड़े जोक, अरे सफा डर गई थी, सफा मुझसे पहले शो कर रही थी, उसके तो मतलब ऐसी रूह काम गई, ये क्या कर रहा है 1 बजे। खादिम साहब कहते हैं आपकी खूबसूरत आवाज़ हमें मल्टीपल विटामिन देती है, खादिम साहब तारीफ ही भाई ढूंढ ढांड करते हैं, थैंक यू सो मच मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत खादिम भाई। और बताओ खादिम भाई क्या चल रहा है, क्या प्लानिंग है। एक मैसेज है, इस्लाम कबीर भाई मेरी प्लानिंग बहुत सिंपल रहती है, हर वीकेंड बिरयानी फिक्स है और बारबेक्यू के लिए बीच जाना फिक्स है, भले ही कैसा भी मौसम हो। ये है देखो, ये है डेडिकेटेड लोग, डेडिकेटेड लोग। इमरान भाई कह रहे हैं चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसा भी मौसम हो, कुछ भी हो जाए, तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, गर्मी हो, आग बरस रही हो, बर्फ पड़ रही हो, मैं तो बीच जाऊंगा। वेरी गुड, वेरी गुड। और आगे इन्होंने एक और मैसेज लिखा है, आगे लिखते हैं कि मेरे बहुत सारे फिलिपिनो दोस्त हैं, हम सब ये पिछले 5 सालों से कर रहे हैं। तो ये मतलब आपने उन्हें इस प्लानिंग में लपेटा है कि उन्होंने आपको लपेटा है, ये मुझे थोड़ा सा समझाइए। और ये बड़ा कमाल का रिश्ता है भाई कि दूसरे मुल्कों से आपकी इतनी गहरी दोस्ती है, माशाल्लाह बहुत बढ़िया, आप तो डिप्लोमेट होनी चाहिए। जावेद साहब वालेकुम अस्सलाम, तब से मैंने मैसेज किया है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, कल की स्टोरी कुछ पार्ट सुनी थी लेकिन रिप्लाई नहीं कर पाई थी, अजीब कोइंसिडेंस था उन दोनों का, एक्सीडेंट 2-3 बार हुआ इसी जगह एक दूसरे से। सब ड्राइव करने वालों को बोलना चाहूँगी, प्लीज़ ड्राइव सेफली, हैप्पी वीकेंड, हैप्पी वीकेंड बहन। और बिल्कुल सही कह रही हैं, वीकेंड पर स्पेशली प्लीज़ प्लीज़ ड्राइव सेफली भाई, प्लीज़ थोड़ा हाथ में, ये जो स्पेशली वो राउट पकड़ते हैं ना लोग, यहाँ से मेरे घर की तरफ जाने वाला जो रास्ता है पूरा का पूरा मंसूरों की तरफ आते आते लोगों का पता नहीं एक्सीलेटर पे बटन क्यों दब जाता है, सॉरी पैर, क्यों भाई कौन सी स्पीड में कहाँ जाओगे। और ऐसे बेचैन 3-4 गाड़ी आगे देख के, नहीं इसके ऊपर से निकालूंगा मैं अभी देख के आया हूँ गाड़ी मेरे सामने ठुकी है, तो थोड़ा गैप लेके चला लिया करो भाई। हीरो भाई ने मैसेज किया है, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, मैं बढ़िया भाई, हैप्पी वीकेंड आपको। और तौकीर अहमद भट्ट साहब लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम जानी क्या हाल है, हैप्पी वीकेंड टू यू एज़ वेल। एक और मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई मेरे वीकेंड का प्लान बड़ा सिंपल रहता है कि हम सब मिलके फैमिली फ्रेंड्स एक साथ बैठते हैं और ऊनो खेलते हैं। अरे वेरी नाइस, ऊनो खेलने वाली टीम है आपकी। ये मैसेज क्या है मुझे संतोष भाई ने, संतोष भाई कह रहे हैं इनकी फैमिली फ्रेंड्स हैं सब साथ में बैठ के ऊनो खेलते हैं, ये भी ये बड़ी बात है भाई। अब मैं क्यों बड़ी बात कर रहा हूँ, बोलेंगे इसमें क्या है ऊनो खेलते हैं साथ में, तो हर हफ्ते फैमिली फ्रेंड्स को इकट्ठा करना साथ में ऊनो खेलना, ये हर हफ्ते की बात नहीं है, समझ रहे कितना खतरनाक बॉन्ड होगा इन लोगों का, इतना खतरनाक बॉन्ड होगा कि जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा, वैसा वाला बॉन्ड होगा, तब जाके हर हफ्ते कर पा रहे हैं। संतोष भाई कैसे,

और एनिवर्सरी आज हीरू भाई को मुबारकबाद हीरू भाई, आज हीरू भाई के लिए ढोल बजाएंगे, हीरू भाई को मुबारकबाद, हीरू भाई की एनिवर्सरी है, मुबारक जी मुबारक। मैं क्या जी किन्ने साल हो गए ने।

0: क्या गाड़ी चलाता है ये।
1: तो ऐसे भी लोग हैं जो भरे ट्रैफिक में रेस करना चाहते हैं, चस आ रही है उनको। पांच साल हो गए भाई। हीरू भाई मुबारकबाद, खुश रहें, अल्लाह ताला आपकी जोड़ी सलामत रखे मेरे भाई। तो मैं ये कह रहा था कि वीकेंड की प्लानिंग करने वाले आप में से कितने लोग हैं, क्योंकि प्लानिंग करने वालों का दिमाग बहुत तेज चलता है भाई, ये सबको लपेट लेते हैं अपने इर्द गिर्द जितने लोग हैं। और कुछ लोग मेरे जैसे होते हैं जिनकी कोई प्लानिंग नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। इनफैक्ट आलम ये है कि मेरे घर वाले जानते हैं ये सोफे से उठेगा नहीं वीकेंड पे, दे नो इट बाय डिफॉल्ट। इसको आप प्लानिंग कह लीजिए या मेरी सालों की मेहनत है कि मैंने उनके दिल में ये डाल दिया है, मुझे मत छेड़ो। एक मैसेज है, मेरा वीकेंड दिल्ली वालों के साथ होता है। क्या बात है खादिम भाई। खादिम भाई आप पाकिस्तान से हैं, ये दिल्ली वालों के साथ बैठना बंद करो, बिगाड़ के रख देंगे आपको, बता रहा हूँ मैं। कितने लोगों तो मैंने खुद बिगाड़ा भाई, कितने मेरे पाकिस्तानी भाई हैं उनको मैंने बिगाड़ा। आपको भी नहीं छोड़ेंगे हम भाई, बता रहा हूँ आपको मैं। ओवैस अहमद साहब वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप, लव इंडिया, थैंक यू सो मच खादिम साहब, बहुत सारी मोहब्बत इंडिया की तरफ से, पाकिस्तान को भी बहुत सारा प्यार। और आपको मुझे लग रहा है शरीफ दिल्ली वाले मिल गए, ये बहुत रेयर ब्रीड है जो आपको मिले हैं, उनको बहुत संभाल के संजो के रखिएगा। एक मैसेज क्या है, इनवाइट कल फ्रेंड आई, एक सेकंड, क्या इनवाइट किया फ्रेंड नू कल जब ओहो, तो ये हर हफ्ते करते हैं आप या कल कुछ स्पेशल प्लानिंग है ओवेज भाई। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, हमारा कुछ ज़्यादा प्लानिंग नहीं रहती, हमारा हिसाब आपकी तरह है, हम पांच दोस्त आपस में मिलते हैं और फिर आपस में हर वीकेंड चाय पीने कहीं भी निकल जाते हैं। हमने प्लान बनाया है कि कतर के कोने कोने की चाय पियेंगे, और जैसे कहते हैं घाट घाट का पानी, वैसे ही हम घाट घाट की चाय पीते हैं। वाह वाह वाह वाह वाह वाह, ऐसे लोग मैं भी जानता हूँ भाई, हमारे एक दोस्त हैं माज भाई, उनको आप कह दीजिए चाय पीने के लिए, वो आदमी अगली गली में नहीं जाएगा, वो कहेगा ये बताओ 100 किलोमीटर दूर कौन सी चाय की टपरी है जहाँ चाय मिल रही है, ऐसा सीन है इनका। क्या है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम भाई, डैडी कबीर, डैडी कबीर फैज भाई केड़ा डैडी। कमालुद्दीन शेख साहब कहते हैं ये वीकेंड क्या होता है कबीर भाई, वीकेंड क्या होता है मैं आपको समझाऊँ सीधी सीधी भाषा में, कुछ नहीं होता भाई। इट इज़ अ ब्लैक वॉइड बेसिकली, नथिंग रियली हैपन्स, वो लेकिन दिल चाहता है कि कुछ किया जाए, पर ऐसा ही दिन है कुछ लोगों के लिए। मैसेज है, बहुत टाइम बाद नाइट शिफ्ट है ना, एडजस्ट किया, ओके जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक और मैसेज, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, मैं भी प्लानिंग वालों में से हूँ, शाकिर भाई ने मैसेज किया है। शाकिर भाई क्या प्लानिंग करते हैं बताइए, पहले तो आपने प्लानिंग तो लिख दिया, क्या प्लानिंग करते हैं आप वीकेंड की, क्योंकि मैं बताता हूँ, मेरे इर्द गिर्द मैंने एक नाम तो लिख दिया सरवर भाई का, वो प्लानर हैं। अगर सरवर भाई से कोई मिलना चाहे आम दिनों में, वीकडेज में, तो कोई भी मिल सकता है, इट्स वेरी इजी, पर आप वीकेंड में उन्हें नहीं पकड़ सकते, इम्पॉसिबल है। उस आदमी की गाड़ी कहाँ होगी, किधर होगी, उनको खुद नहीं पता चलता, जैसे स्टीयरिंग पे हाथ रखा अपने आप वो अकरा पहुँच जाते हैं, अपने आप कहीं पहुँच जाते हैं। मैसेज है, दिल्ली वाले दिल वाले होते हैं। खादिम भाई इधर आओ बैठो मेरे पास, कुर्सी खींच के लाओ इनके लिए। खादिम भाई सुनो मेरी बात, आपको मिल गए शरीफ दिल्ली वाले, समझ रहे हैं आप, तो शुक्र अदा करें इस बात का। हमसे आपका पाला पड़ गया होता तो आदिम भाई दिक्कत हो जाती, हम वही हैं जिनसे घर वाले कहते हैं ना इनके साथ मत घूमा करो। हम वही हैं जिनके साथ घूमने के लिए मना करते आदिम भाई, तो बहुत बढ़िया, आपने दिल्ली वालों को मेरा सलाम कहिएगा। हमजा भाई कह रहे हैं कि वैसे पाकिस्तान में एवरी फ्राइडे आफ्टर प्रेयर बिरयानी खाई जाती है एवरी फ्राइडे न्यू प्लेस पे, पाकिस्तान में ना। हमजा भाई यहाँ पे क्या सीन है, मुझे यहाँ पे लगता है लोग पता नहीं कुछ रूल समझते हैं, हर फ्राइडे बिरयानी खानी ही खानी है, हर फ्राइडे का लोगों का भाई मैं नहीं खा सकता हर फ्राइडे, थोड़ा सा ब्रेक होना चाहिए बीच बीच में, एक डेढ़ हफ्ते का, मतलब हर हफ्ते यार। अस्सलाम वालेकुम, एक और मैसेज आया है, ये क्या है भाई, वी सिंह लिखा है आपने अपना नाम, वी सिंह भाई, वी से क्या है मुझे बता दीजिएगा। तो सिंह साहब कह रहे हैं कि भाई हमारे प्लानिंग कुछ नहीं होती, बस हमारा ये रहता है, हम चार लड़के एक साथ रहते हैं, हम साथ में घूमते फिरते हैं, कॉर्निश पर ठंड में जाते थे, लेकिन आजकल मोहल्ले में बैठ के चाय पीते हैं, और कितने चाय के कप पी जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। वेरी नाइस, ये वाली दोस्ती जहाँ पे चाय के कप की गिनती नहीं होती, लास्ट में पेमेंट पे सब कुछ याद आता है कितने कप चाय पिए। वेरी गुड मेरे वीर। एक और चीज़ मैं बता दूं, क्योंकि अब मुझे किसी ने इंस्टाग्राम का पोस्ट भेजा है और कहा है कि आप जो हैं श्रद्धा कपूर का कोई फोटो नहीं छोड़ते लाइक करने पे, मैं आपको एक राज की बात बताऊं, ध्यान से सुनिएगा, लोगों को ना पता नहीं है कि उनकी लाइक किए हुए फोटो इंस्टाग्राम पे दूसरे लोग देख सकते हैं जो उनकी प्रोफाइल में है। कुछ लोगों का पर्दाफाश हो चुका है मेरी

0: प्रोफाइल में भाई ऐसे ऐसे फोटो लाइक करते हैं वो कि अगर उनके घर पे बता दूं ना तो फिर उन्हें घर से मिनटों में नहीं सेकंडों में बाहर निकाल दिया जाएगा। पर उन बेचारे मासूमों को पता नहीं है वो कौन से फोटो लाइक कर देते हैं। अब उनसे बोलो तो कहते हैं अरे वो तो गलती से हो गया, मैं स्क्रॉल कर रहा था। मगर हाँ जी हर शाम आप स्क्रॉलिंग करते हैं, हर शाम गलत फोटो लाइक हो जाता है। तो नजर रखिएगा अपने दोस्तों पे जो लाइक शाइक करते हैं ना सोशल मीडिया पे। हाँ उन्हें मत बताना ये राज, अपने तक रखना। मैं से कल 2 बजे जुमे नमाज के बाद कॉल करूंगा आपको। खादिम भाई मैं किसी कोने में पड़ा हुआ हूँ, एक मैसेज है भाई आई एम अ बिरयानी मॉन्स्टर एवरीडे खाता हूँ। मेरा भाई हमजा भाई चरण कहाँ हैं इनके? हमजा भाई आपको सलाम मेरे भाई, ये आप ही कर सकते हैं। कॉल आ रही है, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकात, क्या हाल चाल है भाई?
0: बढ़िया भाई एकदम चौकस चल रहा है, बताएं क्या हाल है भाई के?
1: अरे भाई क्यों सबके पोल खोलने पे लगे रहते हो यार?
0: सबका बताएं मुझे हिसाब, कौन कौन कौन से फोटो लाइक कर रहा है? हाँ कोई बात नहीं, सब बताएं मुझे।
1: अब तो लग रहा है दूसरी आईडी बनानी पड़ेगी लोगों को।
0: मैं बता रहा हूँ ना बहुत सारे लोग तो मेरे प्रोफाइल में, मैंने कहा अच्छा तुम कल बड़ी लाइक कर रहे थे इसकी फोटो, कर कौन सी मगा भी दिखाता हूँ। तो मुझे बड़ा मजा आता
1: है। आईडी चेंज करना पड़ेगा भाई, सब दो दो आईडी चलानी पड़ेगी, एक से नहीं होने वाला है।
0: ये देखो ये डिसाइड करना पड़ेगा आपको, आईडी बता के जाओ अपनी खुशी खुशी, मैं देखूं तो सही क्या क्या लाइक किया आपने।
1: तो फिर फायदा क्या भाई ऐसे फंस गए। एक तो ऐसी रिकॉर्ड खराब है, बस घर में ही अच्छा है।
0: हाँ।
1: मैं आधार कार्ड का भी फोटो देखती तो बोलती कि मेरा बेटा कितना खूबसूरत है।
0: देखो माँ को तो ऐसी है, मेरा आधार कार्ड का फोटो अगर आपने देख लिया तो भाई साहब फिर आप कहेंगे नहीं इसको नहीं सुनूंगा मैं, चैनल चेंज करो।
1: मैं तो लग रहा हूँ चाइल्ड लेबर एकदम
0: भाई, मैं तो लग रहा मेरा भी वैसी लग रहा है, वो जो वो कोने में लगाते हैं ना वो तखत लगा के बर्फ बेचते हैं वैसा वाला लग रहा हूँ मैं बिल्कुल ही, कि उनके यहाँ काम करता हूँ मैं। क्या अभी छोड़े बर्फ लगा थोड़ी सी दो सिल्ली। तो इसलिए भाई मैं वो फोटो कभी रिवील नहीं करूंगा।
1: तो भाई वो शरीफ उमो ऐसे है जो घर वाले बोलते कि इसके साथ मत घूम बदमाश खराब हो जाएगा।
0: हाँ,
1: घर वालों को क्या पता कि बॉस तो यही है।
0: तो वही हो मुझे पता है, एक बार बस अपने आईडी बता दो बाकी सब मैं निकाल लूंगा, कोई टेंशन नहीं, इन्वेस्टिगेशन में एक नंबर हूँ भाई मैं।
1: नहीं भाई हम लोग को जिंदगी प्यारी है भाई,
0: फॉर रिसर्च एंड क्वालिटी पर्पस, ओनली फॉर रिसर्च पर्पस मेरे भाई, डरो नहीं। आज जो मैंने बता दिया
1: क्या चल रहा है आज का भाई?
0: अभी टॉपिक तो ये था, मैंने कहा वीकेंड पे कुछ लोग प्लानिंग करते हैं कुछ लोग नहीं करते हैं, आप किन में से आते हैं? आपकी पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग होती है या वीकेंड के दिन डिसाइड करेंगे क्या किया
1: भाई? पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग सब होती है, बस उस प्लानिंग पे काम नहीं हो पाता है,
0: अमल करने वाले लोग नहीं है,
1: पूरी होती है।
0: अरे रे ये बहुत मोटी मोटी चमड़ी वाले दोस्त हैं आपके मुझे लग रहा है, क्या चक्कर क्या है?
1: नहीं होता सब कुछ है, वही चीज होती है, लेकिन इतना हरबड़ लो सब एकदम बस।
0: उन्होंने आपके इंस्टाग्राम के लाइक्ड फोटो तो नहीं देख लिया कहीं? दोस्त ना बताते नहीं है, मैं बताऊँ आपको मुझे सब पता लगता है कौन क्या देख रहा है कौन सा लाइक।
1: भाई कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहुंचे होते हैं।
0: हाँ, आप समझ जाओ क्यों नहीं बैठ रहे आपके साथ। हैंड्स प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, भाई साहब मैथ्स आ गई आज मेरे को। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो कल के क्या प्लानिंग है वैसे, कुछ प्लानिंग करी जो नहीं होने वाली है?
1: कल की प्लानिंग है शाम में जाने का बाहर कुछ लोगों के साथ, मतलब दोस्तों के साथ, देखो वो लोग क्या करते हैं, मैं तो रेडी हूँ।
0: अच्छा,
1: बाकी लोग का पता नहीं।
0: तो बैकअप प्लान कुछ है?
1: बीच को जाने का प्लान है कल।
0: ओहो बीच, इतना बड़ा प्लान बना लिया आपने, तो अगर प्लान ए नहीं हुआ तो बी क्या है?
1: बी मस्त एकदम, बेड तो लगा ही रहता है, बस कंबल ओढ़ना है और
0: चादर तान के सो जाना है। बढ़िया भाई, ये बहुत बढ़िया प्लान है, ठीक है।
1: यही सेकंड प्लान, हमेशा प्लान भी यही है।
0: फिर ठीक है, वेरी नाइस, ठीक है मेरा भाई। बहुत बहुत शुक्रिया, और आईडी बना लीजिए, अभी आपके पास टाइम है, एक और आईडी बना ली जाए, ठीक है मेरा भाई, सजेशन है।
1: सही है, आईडी बनाओ तो बताओगे नहीं भाई।
0: अरे यार हम ये कोई बात होती है यार, भाइयों भाइयों को नहीं बताओगे तो किसको बताओगे भाई, हम आपके भाई हैं यार, किसी बात
1: यार, पोल खोलोगे यार क्या कर रहा है बता भाई, प्राइवेसी रहने दो भाई।
0: चलो ठीक है, अब आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो छोड़ देते हैं आपको, कभी ना कभी तो धापे में आओगे, कोई टेंशन नहीं है।
1: ठीक है, मैं ऐसे भी फॉलो करता हूँ आप लोग को, स्टोरीज देखता हूँ मैं सबके, वीडियोस वगैरह सब देखे मैंने।
0: आपने जो यू टर्न मारा ना बात पे, बहुत बढ़िया लगा मुझे, अच्छा तरीका है बात को काटने का। अच्छा था, अच्छा था।
1: नहीं नहीं आप बहुत बहुत अच्छे हो कबीर भाई, वाकई में आप बहुत अच्छे, मतलब वीडियोस वगैरह भी डालते हो। वो आपने रुसेल वगैरह का भी डाला, मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा वाकई।
0: जज़ाकअल्लाह भाई, 5 रियल काटूंगा पूरी एक्टिंग की, ठीक है, सिर्फ 5 रियल काटेंगे। चलिए बहुत प्यार भाई को, थैंक यू सो मच मेरे भाई, दिल से प्यार। बस कहानी शुरू करने रहा, सुनिएगा। ओके मेरे भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। और भाई के बाद कुछ मैसेज आए, स्टोरी कब शुरू की, बस शुरू हो रही है। एक मैसेज है जे एस के साहब का, कहते हैं गुड इवनिंग कबीर भाई, हमारा प्लान हिडन जैम ढूंढने का रहता है वीकेंड में। अरे किसी भी इंस्टाग्रामर को खोल लीजिए, हिडन जैम, हिडन जैम है वो, तो अपने मोहल्ले की सड़क को भी कह देते हैं। यहाँ कभी आए हैं आप लोग? ये हिडन जैम, ये गटर का ढक्कन देख रहे हैं आप, ये हिडन जैम, इसके अंदर कोई नहीं गया है। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है कबीर भाई?
0: बस हिडन जैम ढूंढ रहा हूँ मैं। कमल भाई आप बताइए क्या हाल है?
2: ठीक, अल्लाह का करम है भाई। सोशल मीडिया पे आवाज लगा रहा है कि ये भाई आप तो बोले तो भाई, अब मैं सुस्ती पना नहीं करूंगा।
0: सुस्ती पना छोड़ दिया भाई, एक दो चीजें क्या होती है ना, वो अंडर द टेबल चल रही होती है, समझ नहीं, उसमें कुछ लीगैलिटी होती है तो मैं बात नहीं कर पाता हूँ उस बारे में, वो तो अलग चीज है। वो अभी मैसेज में आपको बता दूंगा मैं। बाकी सब डन है आपका भाई, रेडी है, लोडेड एकदम।
2: आपने जो उसको बोला तो मैं लिंक भेजता हूँ, मैंने मैसेज भी डाला आपके नंबर पे।
0: कौन सा लिंक?
2: कोई जवाब नहीं आया मैं।
0: किस चीज का?
2: मूवी का लिंक बोले थे ना।
0: अरे जी जी जी, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ मुझे याद आ गया, बटरफ्लाई इफेक्ट दे दी थी ना आपको। ठीक है मैं अभी दे दूंगा, कहने के बाद देता हूँ आपको फौरन, ठीक है।
2: और सोशल मीडिया पूरा ढूंढ डाला भाई, कहीं अब दिखे ही नहीं।
0: मैं नहीं दिखा, क्या बात कर रहे हो, किस पे ढूंढ रहे थे मुझे?
2: आप दिखे है, आप दिखे हैं, लेकिन जो नया
0: डालने के लिए। अच्छा वो नहीं दिखा, अरे वो भी दिख जाएगा भाई, टेंशन न को, सब दिखेगा, टेंशन मत लो। हैं?
2: आप तो हर जगह
0: हैं। बिल्कुल भाई, हम हर जगह हैं। बोले डालने के हैं? क्या क्या क्या
2: बोले थे? नया वीडियो डालूंगा,
0: नया भाई आएगा। मैंने बोला ना कुछ चीजें होती है थोड़ी सी फंसी हुई रहती है, वो थोड़ी सी फंसी हुई है अभी याद है। हाँ डोंट वरी सब आ जाएगा, सब आ जाएगा, अभी टेंशन मत लो आप, बेफिक्र हो जाओ, ठीक है। ओके मेरा भाई, कहानी शुरू कर रहा हूँ, सुनिएगा। डन डन डन मेरा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके मेरा भाई, जज़ाकअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया कमल भाई, शुरू करता हूँ कहानी में। ओके मेरा भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। और क्या कह रहा था भाई, सब मैं ये कह रहा था के क्या कह रहे हैं, एक भाई ने मैसेज किया, समझ आया, एक मैसेज आ रहा है, सलाम कबीर भाई, हैप्पी वीकेंड, हैप्पी वीकेंड टू यू एज वेल मेरे भाई। क्या हम पूरे हफ्ते की प्लानिंग करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, बहुत शानदार, शाबाश शाबाश। इकरम भाई ने मैसेज किया, गुड आफ्टरनून, होप यू आर डूइंग वेल टुडे सर, आई एम बिरयानी शुगर मैन। हैं? जैसे किसी को शुगर हो तो वो हर वक्त ऐसे मेंटेन रखता है कि इस लेवल का, इसी तरह मैं बिरयानी खाने के लेवल को मेंटेन रखता हूँ, वेरी गुड। ये कौन सी बिरयानी खाते हैं आप? या भाई कह रहे हैं, एवरी फ्राइडे वी हैव ब्रंच आफ्टर नमाज हेयर इन दोहा, वैसे इन पाकिस्तान यूज टू हैव बिरयानी और पुलाव फ्राइडे। मैं ऐसे लोगों को बहुत इज्जत करता हूँ, डेडिकेटेड लोग हैं ये, डेडिकेटेड लोग हैं, दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन हमारा ब्रंच लंच चलता रहना चाहिए, वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, दिस इज कॉल्ड डेडिकेशन। और ये मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं सीरियसली दिल से कह रहा हूँ। एक लास्ट कॉल ले लेते हैं, चलो। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: क्या हाल है भाई के?
3: अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है आपके?
0: दुआ है, मैंने सुना है बड़ा शेरो शायरी करते हैं आप।
3: आप कहें तो मैं आपके ऊपर एक सुना दूं।
0: अरे सुना दो, सुना दो, सुना दो।
3: ठीक है, इरशाद है।
0: हाँ इरशाद, इरशाद।
3: मिलने से पहले मैं तुझे कुछ और समझ बैठा था। मिलने से पहले मैं तुझे कुछ और समझ बैठा था, जब तुझसे मैं मिला तो कुछ अपना सा महसूस हुआ।
0: हाँ हाँ, आग ला दी, आग ला दी, आग ला दी भाई साहब, भस्म कर दिया आपने, भस्म कर दिया एकदम, कोयले भी जल के खत्म हो गए, राख कर दिए। क्या बात है, कहाँ से लाते हैं ये सब आप?
3: आपसे सीखा है।
0: मुझसे सीखे हैं भाई, मैंने तो एक भी शेर नहीं सुनाया, मुझसे कैसे सीख लिया आपने? क्या पर्चा फाड़ा है मेरे पे यार, क्या बात है, क्या बात है। और बताओ सब बढ़िया चल रहा है?
3: अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है।
0: चलो बढ़िया चलना चाहिए मेरे भाई, कल का कोई प्लान व्लान है?
3: हमारे तो छुट्टी नहीं आपकी छुट्टी कहें तो मैं आ जाऊं दावत खाना आपके यहाँ।
0: वाह वाह वाह, जब छुट्टी नहीं तो कैसे दावत खाओगे?
3: टाइम निकालो
0: ना। अच्छा, तो अपने लिए भी टाइम निकालो भैया, ऐसा कैसे चलेगा? है
3: बात तो सही है आपकी
0: भाई साहब। अच्छा ठीक है, चलो आप आराम से नींद खींचिए, मैं जरा कहानी सुनाता हूँ और सुन पाए तो सुनिएगा। हैं,
3: आप कहानी सुनाइए, मैं जब तक सो जाता हूँ। बिल्कुल, कहानी सुनते सुनते नींद आ जाए।
0: डन डन डन डन, मैं लोरी सुना रहा हूँ ना आपको, मैं एकदम कहो तो झूला झूला दूं भाई। बढ़िया नींद दिला देते, कोई टेंशन नहीं। चलो इतना काफी है ना, ठीक है भाई। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा भाई। हाँ चलो, अल्लाह हाफिज मेरा भाई। तो हाँ नसीम भाई, क्या बिस्तर के अलावा कोई काम है? बता नहीं भाई। देखो तो कह रहे हैं, बट साहब कह रहे हैं भाई, मुझे लग रहा है मुझे जब भी वो कॉल करते हैं ना, वो अलग ठाट बाट से बैठे होते हैं। खैर मैं कहानी शुरू कर रहा हूँ। अरे हाँ भाई, लोरी सुनाने वाला था मैं कुछ देर में, सिद्दीक साहब शुरू होने वाला था मैं। अरे मेरे छोटे बाबू, सोएगा वही करने वाला था मैं। बहरहाल तो आज जो मैं कहानी सुना रहा हूँ, जैसे मैंने पहले कहा, इट इज़ अ स्लो बर्न स्टोरी। ये कोई टिपिकल कहानी नहीं जो मैं आज तक मैं सुना चुका हूँ। इस कहानी में मिस्ट्री है एंड बहुत सारे सवाल खड़े होंगे। इस कहानी को ओपन माइंडेड सुनिएगा, जो मैं आपके आपको भी डिलीवर करने वाला हूँ। इसमें बहुत मेहनत लगी इस कहानी को रिसर्च करने में, बिकॉज ये एक जगह पर इकट्ठी कहानी नहीं थी। आई हैड टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ स्टफ़ एंड इस मूवी इस कहानी के ऊपर एक मूवी भी बनी है, तो वो आप कहानी के बाद जाके देख सकते हैं इफ़ यू वॉन्ट टू। ऑल दो इट्स एन ओल्ड मूवी, बट नंदलेस आई एम नाउ बिगिनिंग द स्टोरी नाउ। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि आप मेरे साथ रहें, ओके? बस एक जो है छोटा सा निक्का सा प्रो, बहुत छोटा सा, ये मैं चला दूं, उसके बाद मिल रहे हैं। और अगर आप लाइव सुन रहे हैं मुझे तो मैसेज कर दीजिएगा।
4: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से, और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीब। सुनिए हदीब टू हैबिट आरजे महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीब सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीब, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। हदीब टू हैबिट, हदीब टू हैबिट, दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए।
0: ओके तो मैं आज का किस्सा शुरू कर रहा हूँ। जैसे मैंने कहा, इट्स अ स्लो बर्न स्टोरी, सबके टेस्ट की नहीं है, बट आई एम टेकिंग अ रिस्क नाउ। तो रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ। लाइव सुनने का मजा इसलिए क्योंकि बैकग्राउंड में आपको स्कोर मिल जाएगा ऑफ कोर्स। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर, इस कहानी का मकसद किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं है। कहानी किसी किस्म के जेंडर प्रोपेगेंडा को प्रमोट नहीं करती है। FM 107 किसी भी किस्म के सुपरस्टिशन को ना तो बढ़ावा देता है ना ही कभी देगा। लेकिन आज का किस्सा भी एकदम असली है। इट इज़ वेरी वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड, इनके इनफैक्ट इसके ऊपर एक मूवी भी है एंड टन्स ऑफ एविडेंस। सो मैं शुरू करता हूँ, लिसन टू दिस वन विद एन ओपन माइंड, लेट्स बिगिन। मैं दोहा वाला कबीर FM 107 पे, और आज का जो किस्सा है उसे सुनाने के लिए मैं आपको कई साल पीछे ले चलता हूं। आज के किस्से के लिए चलते हैं जरा 1974 में, 1974, कैलिफोर्निया USA। और कैलिफोर्निया में इस वक्त बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी, इट वॉज रियली रियली वार्म आउटसाइड। और कैलिफोर्निया में एक बुक स्टोर के अंदर एक यंग आदमी जिसका नाम था कैरी गेनर, वो खड़ा हुआ था अपने दोस्त के साथ। कैरी और उसका दोस्त, ये दोनों एक दूसरे से किताबों के बारे में बात कर रहे थे, किताबें देख रहे थे, और उसके साथ साथ कैरी का दोस्त जानना चाहता था कैरी के नए काम के बारे में। कैरी जो था वो एक वॉलंटियरिंग ज्वाइन कर चुका था UCA में, एक लैब में। लैब जो थी वो डेडिकेटेड थी पढ़ाई के लिए, पढ़ाई किस चीज़ की? पैरासाइकोलॉजी की। और ये लैब थी न्यूरोसाइकेट्रिक बिल्डिंग में ऑफ द यूनिवर्सिटी जहां पर ये खुद कैरी काम करता था। लैब जो थी इसकी डायरेक्टर थी डॉक्टर थेल्मा मॉस। 10 साल से लोग हर चीज को लेकर एक साइंटिफिक अप्रोच लेकर चल रहे थे। कैरी बिल्डिंग में जब जाता था तो मदद करने के लिए जाता था, इन्वेस्टिगेशन, साइकोकिनेसिस, ऑल्टरनेट मेडिसिंस, और ये सारी चीज़ें जो थी ये जुड़ी हुई थी हॉन्टेड

हाउसेस से, हॉन्टिंग से, पोल्टरगाइस्ट से। कैरी का दोस्त जाहिर है ये जानने के बाद, क्योंकि सब्जेक्ट ही ऐसा है, तो बहुत ज्यादा क्यूरियस हो रहा था और वो बहुत सारे सवाल लगातार पूछे चले जा रहा था और कैरी भी समझा रहा था पूरी डिटेल में। उसने बताया एक केस के बारे में, एक हॉन्टेड हाउस के बारे में। और जब ये दोनों बातें कर रहे थे, जिस आइल में खड़े थे इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड में, बहुत ध्यान से इन दोनों की बातें सुन रहा था कोई। दरअसल दो औरतें जो थीं वो पैरानॉर्मल वाले सेक्शन में थीं और सॉल्यूशन ढूंढ रही थी किसी चीज का, और किताबें ढूंढते हुए उन दोनों औरतों को कैरी और उसके दोस्त की बातें साफ सुनाई दे रही थी। कैरी अपने दोस्त को बता रहा था कि उसे एक एविडेंशियल प्रूफ की तलाश है जो हॉन्टिंग के केसेस को प्रूफ कर सके कि यह ऐसा होता है। जो दो औरतें थीं आइल की दूसरी तरफ, उनमें से एक फौरन भाग कर आई एंड विदाउट सेइंग हाय, हेलो, एक्सक्यूज मी, इस औरत ने सीधा बोला, सर यू शुड इन्वेस्टिगेट माय हाउस, आपको मेरे घर की इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। उसने बताया, सर मेरा हाउस, माय होम इज हॉन्टेड एंड इट इज वेरी वेरी वायलेंट। कैरी थोड़ा झिझक में आया कि एकदम से मतलब ये क्या बात हुई, पर उसने अपना कॉन्टेक्ट नंबर दिया और उसका कॉन्टेक्ट नंबर लिया, फिर बोला कि आई विल कॉन्टेक्ट यू। उसके बाद कैरी और उसका दोस्त एकदम चुप थे, दूसरी कोई बात नहीं कर पाए और कैरी ने उसे सीधा बाय बोल के निकल गया रिसर्च सेंटर में। कैरी पैरासाइकोलॉजी के लैब में गया, अपने रिसर्च असिस्टेंट को बुलाया जिनका नाम था डॉक्टर बैरी टैफ। टैफ जो थे वो पैरासाइकोलॉजी लैब के साथ कई सालों से जुड़े हुए थे और ऐसी कई सारी हॉन्टिंग्स, 4,000 से भी ज्यादा हॉन्टिंग्स इन्वेस्टिगेट कर चुके थे। एंड ही वॉज वेरी वेरी ऑनेस्ट। कुछ लोग क्या होते हैं, अपने जब इन चीज़ों में होते हैं तो वो लोग झूठ भी बोल देते हैं मसाला लगाने के लिए। मैं आपको बोल दूं कि ये जो फला फला जगह है यहाँ पे फला फला चीज़ें होती हैं, तो हो सकता है कि मैं बहुत कन्विंसिंगली बोलूँ तो आप शायद मान भी लें। मगर बैरी टैफ ऐसा बंदा नहीं था, वो भले ही पैरासाइकोलॉजी में काम करता था मगर ही वॉज ऑनेस्ट। उसने बोला कि 4,000 से ज्यादा हॉन्टिंग्स इन्वेस्टिगेट कर चुका है लेकिन सिर्फ 5% हॉन्टिंग्स उनमें से असली निकली हैं। और टैफ ने इसमें एक फर्क बताया, उसने बोला हॉन्टिंग्स जो होती हैं यूजुअली लोकेशन से जुड़ी हुई होती हैं, जो लोकेशन पे होती हैं, घर से जुड़ी हुई होती हैं, और ये सालों साल तक चलती हैं। और फिर होते हैं पोल्टरगाइस्ट, एक इंसान से जुड़ी हुई हॉन्टिंग। खैर टैफ को सारी बातें पता लगी जो इस औरत ने कही थी कैरी से, और फिर दोनों ने डिसाइड किया कि दोनों इन्वेस्टिगेशन के लिए निकलेंगे। 22 अगस्त 1974 दोनों पहुंचे बताए हुए एड्रेस पे, बैरक स्ट्रीट कल्वर सिटी में। डेफ जब पहुंचा घर के सामने दोनों खड़े हुए थे तो बड़े हैरान थे, क्योंकि ये घर नहीं था, एक किस्म का शैक था, और जिस जगह पे ये घर था ऑलरेडी स्टेट की गवर्नमेंट ने इसे कंडेम लिस्ट में डाला हुआ था। क्यों डाला हुआ था, देर वॉज नो अपेरेंट रीजन, लेकिन इसका मतलब ये था कि कोई इस घर में होना ही नहीं चाहिए, दिस शुड बी एन एम्प्टी हाउस। यानी इसके अंदर जो रह रही है वो टेक्निकली इलीगल तरीके से रह रही है। पर दोनों ने कहा यू नो व्हाट, दिस इज नॉट आवर मैटर। दोनों ने डोर पे नॉक किया और डोर खोलने के लिए आई डोरिस बाइदा। डोरिस वही औरत थी जो बुक स्टोर में कैरी गनर के पास गई थी। उसने तुरंत गेट खोला और तुरंत डोरिस बाइदा ने दोनों को वेलकम किया। डोरिस जो थी वो तीन लड़कों की, तीन बच्चों की माँ थी और साथ में एक लड़की भी, शी वॉज अ सिंगल मदर। डोर्स खुलने के बाद जैसे ही दोनों अंदर दाखिल हुए, उन दोनों की एक बड़ी अजीब सी स्मेल आ रही थी, बट दे कुड नॉट एक्सप्लेन कि ये किस चीज की स्मेल है। बट दे वर लाइक ओके, दोनों अंदर आके बैठ गए और फिर उसने बताना शुरू किया। डोरिस ने बताया कि किस तरीके से वो हर 4-5 रातें, 3 रातें, कई मरतबा लगातार होता है कि उसकी बॉडी के अलग अलग हिस्सों में एक अजीब से स्क्रैच मार्क्स होते हैं, कई मरतबा गहरे होते हैं, कई मरतबा हल्के होते हैं, मगर होते हैं। एंड ये बात उसके बड़े बच्चों ने भी
बताई कि अक्सर ऐसा हो रहा है. शी वेंट टू डॉक्टर्स एज वेल, अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स बाय द वे, एंड डॉक्टर्स ने पहले तो कहा ये आप खुद कर रही हैं, पर जब उन्हें वो मार्क्स नजर आए जो समझ में आ रहे थे कि ये ऐसा मुमकिन नहीं है, आप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, एज लॉन्ग एज यू आर मेंटली इल, आप खुद को इतनी बुरी तरह नहीं खरोचेंगे, वो भी इतने लंबे लंबे मार्क्स तो कभी नहीं आएंगे. पर डॉक्टर्स को लगा कि मे बी देयर इज सम साइकोलॉजिकल इशू, और उन्होंने उसे दवाई देना शुरू कर दी, विच रियली डिडंट हेल्प. टेफ और टेरी को ये बात डोरिस ने बताई, और उसने बताया कि अभी आप हैं तो मैं ये नहीं कह सकती कि आपके आते के साथ ही अभी घर में कुछ शुरू हो जाएगा. एंड टेफ नहीं बोला, आई नो दिस इज नॉट अ मूवी, ऐसे नहीं होता है, मगर वट एवर दैट इज हैपनिंग टू यू, आई डोंट नो व्हाट इट इज. और टेफ बातें करते करते घर के कोने में घूम रहे थे, एंड जब वो घूम रहे थे तो शी वॉज अंडरस्टैंडिंग, ही वॉज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये अजीब सी महक आ कहाँ से रही है, क्योंकि वो ऐसी महक थी जैसे जैसे मेटेलिक ब्लड की जो स्मेल होती है, बिल्कुल वैसी एक अजीब सी. एंड ही ट्राइड, बहुत कोशिश करी कि ये ऑर्डर कहाँ से आ रहा है उस जगह पहुंचने का, लेकिन ही कुड नॉट टेल. अभी उन्हें डोरिस पे पूरी तरह से भरोसा नहीं था, मगर डोरिस ने फिर उन्हें एक और चीज़ बताई. डोरिस ने बोला कि ऑलमोस्ट हर दो तीन रात पे जब वो सोने की कोशिश करती है, शी फील्स कि उस पर कोई वायलेंट अटैक्स होते हैं. शी फील्स कि वो एक दो नहीं तीन चार टॉर्सोस देखती हैं, मतलब बॉडी के नीचे का हिस्सा देखते हैं जो उसके घर में घूम रहे होते हैं. एंड पहले उसे लगता था जस्ट हिज माइंड प्लेइंग विद हर, लेकिन वो समझा नहीं पा रही है इस चीज़ को. एंड शी इज़ टायर्ड, शी इज़ वॉर्न आउट, उसके पास अभी इतनी रकम नहीं है कि वो अपना घर बदल सके, दैट्स वाई शी नीड्स हेल्प. उसने ये भी बताया टेफ को कि आई ट्राई टू गो टू मीडिया, लेकिन वो लोग मेरे घर आते हैं सेंसेशन बनाने के लिए, वो लोग इसको अलग तरीके से लेते हैं, और मुझे किसी से कोई पैसा नहीं चाहिए, बस मुझे मदद चाहिए, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए. और जिस तरीके से वो बता रही थी, टेफ और कैरी दोनों को ये तो लग रहा था कि कन्विंसिंग है, बिकॉज साफ साफ है ये औरत झूठ नहीं बोल रही है, मगर अभी भी उन्हें पूरी तरह से यकीन नहीं था. और टेफ को ये लग रहा था कि यार ये झूठ तो नहीं बोल रही है, लेकिन कहीं कोई साइकोलॉजिकल हेल्प की जरूरत तो नहीं है. उसने वहां पर रुककर, टेरी और टेफ ने डोरी से बहुत देर तक बात की, तकरीबन एक घंटा इस घर में रहे एक स्मॉल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए. और फिर उसके बाद टेफ ने कहा, मैम लिसन टू मी रियली केयरफुली, आई डोंट नो कि आपके घर में क्या है या आपके साथ क्या हो रहा है जो आपने मुझे बताया, आई एम नॉट सेइंग यू आर रॉन्ग, आई एम नॉट सेइंग यू आर राइट, लेकिन ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, एक साइकोलॉजिस्ट हैं हमारी बिल्डिंग में ही काम करते हैं जहाँ हमारी लैब है, प्लीज़ उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए और रेफरेंस मेरा दे दीजिएगा. ये कहकर पूरी तरह से बात को खारिज करके डोरिस की, टेफ और कैरी वहाँ से निकल गए. दोनों जब गाड़ी में बैठे और अपनी लैब की तरफ जा रहे थे, तो दोनों के दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, दोनों के दोनों एक गहरी सोच में थे, बिकॉज दे वर कन्फ्यूज्ड कि अंदर जो भी उसने बताया, जो भी उन्होंने महसूस किया, वो किस हद तक सच हो सकता है. दे हैड दिस स्केप्टिकल अप्रोच, और अंदर जो डोरिस थी वो गुस्से में भी थी लेकिन उदास भी थी कि कोई उसकी बात को सुनने को राजी नहीं है. उसने बार बार ये बोला था, आई डोंट वॉन्ट मनी, आई डोंट वॉन्ट दिस टू बी सेंसेशनलाइज कि कोई बाहर इसको टीवी पे दिखाए, अखबारों में छाके, उसे नहीं चाहिए, शी नीड्स हेल्प. तो अगर ये सब उसे ड्रामा ही करना होता तो पैसे के लिए कर लेती, पर शी डिडंट डू इट. ये दोनों जो अपने लैब में चले गए, लेकिन विद इन 10 days दोनों के पास फिर से डोरिस की कॉल आई, एंड शी इन्फॉर्म्ड कि सर मुझे नहीं पता कि आप मुझे झूठा समझते हैं सच्चा, पर सेम चीज मेरे नेबर के साथ होने लगी, एंड द नेबर वाज आल्सो शेयरिंग एक्सपीरियंसेस जहां पे उन्हें अपरिशंस नजर आ रहे थे, जहां पे डोर्स वर ओपनिंग ऑन देयर ओन, ड्रॉर्स वर कमिंग आउट अपने आप. ये दोनों भले ही पूरी तरह से नहीं मानते थे, लेकिन टेफ और कैरी दोबारा घर पे पहुंचे. इस बार भी जब घर में दाखिल हुए तो वो मेटेलिक, वो जो ब्लड की स्मेल होती है, वो अजीब सी स्मेल आ रही थी. और उन्होंने अब की बार डोरिस से ये कहा, क्योंकि पिछली बार उन्होंने छुपा लिया था कि हो सकता है डोरिस झूठ बोल दे, लेकिन अभी उन्होंने मुंह पे कहा डोरिस के, डोरिस ये जो अजीब सी स्मेल आ रही है आपको नहीं आती है? तो बोली यस आती है. तो टेफ ने बोला तो ये कहां से आ रही है? तो उसने बोला ये पूरा घर आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, आई डोंट नो.
उन्होंने हर जगह देखा, पाइप्स और हर जगह, बेसमेंट, एक एक जगह को चेक किया, बट दे कुड नॉट सेंस कि कहां से ये अजीब सी स्मेल आ रही है. एंड डोरिस बस यही कह रही थी, आई नीड योर हेल्प, प्लीज प्लीज हेल्प मी. डोरिस के घर में एसी भी नहीं था, इट वॉज अ वेरी वार्म आफ्टरनून, तो घर ऑलरेडी बहुत तप रहा था. लेकिन जब डोरिस ने बेडरूम वाला सेक्शन दिखाया जहां पे मोस्टली उसके साथ चीजें हुई हैं, तो कंपैरेटिवली पूरे घर के अलावा ये बेडरूम जो कि लिटरली खिड़की के पास था, दिस वॉज फ्रीजिंग कोल्ड, ये ठंडा था. इट वॉज वियर्ड, टेफ कुड नॉट एक्सप्लेन इतना टेम्परेचर चेंज. पर उसने ये बात भी जाहिर नहीं करी और बातें करते करते करते करते ये सब किचन में पहुंच गए. ये बात ही कर रहे थे इतने में दोनों आदमियों ने नोटिस किया कि किचन की एक ड्रॉर उनके लेफ्ट साइड से खुली अपने आप, और फिर एक और खुली, और उसके बाद तेजी से ऊपर रखा हुआ फ्राइंग पैन लिटरली स्पिन करता हुआ उनके सामने गिरा बुरी तरह से. दोनों डर चुके थे, डोरिस बुरी तरह से रो रही थी, वो पीछे हटके एक तरीके से किसी ने धक्का दिया, वो पीछे गिरी, और दोनों के दोनों हैरान थे. टेफ जो था, जिसे अभी भी शक था कि कुछ ना कुछ डोरिस ने किया होगा, उसने हर तरीके से चेक किया, डोरी है, स्प्रिंग है, कैसे इसने ड्रॉर को खींचा, ये तो हमारे साथ ही खड़ी है, दे कुड नॉट प्रूव इट. और डोरिस बार बार होते हुए ही कह रही थी, मैंने आपसे बोला था, ये हर रोज होता है मेरे साथ. फिर उसने एक सेक्शन दिखाया घर का जहां पे फ्यूज बॉक्स लगा हुआ था, और साफ नजर आ रहा था कि फ्यूज बॉक्स को किसी ने दीवार से उखाड़ा है, दीवार से लिटरली. एंड देयर वर स्मॉल स्मॉल हैंड प्रिंट, जैसे बहुत बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी के हैंड प्रिंट्स होते हैं, वाज देयर इन द वॉल इन फ्यूज सेक्शन, जो कि एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है क्योंकि घर में कोई बच्चा इतना छोटा नहीं था. और मजबूरन टेफ और कैरी को इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी पड़ी, एंड दिस इन्वेस्टिगेशन वॉज अ वेरी लॉन्ग वन. तकरीबन 20 से 25 लोग इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हर रोज यहां पर आ रहे थे, जिसमें पैरासाइकोलॉजी के रिसर्चर्स, स्टूडेंट्स, फोटोग्राफर्स, ये सब मौजूद थे. इनके साथ साथ पुलिस वाले भी इक्का दुक्का आया करते थे व्हेन देयर वाज सम नॉइज. इस दौरान एक किस्सा हुआ जो बहुत ज्यादा वेयर्ड था. देयर वाज वन फोटोग्राफर जो कि अकेले फोटोग्राफ्स खींचने के लिए बेडरूम की तरफ गया था, नहीं, वो जस्ट क्लिकिंग फोटोग्राफ्स इधर से उधर इधर से उधर. एंड उसके बाद जब उसे पुकारा जा रहा था, नीचे से आवाज़ आ रही थी, तो उसने रिस्पॉन्स नहीं दिया, जिसकी वजह से जो पुलिस ऑफिसर था उस दिन आया हुआ, वो ऊपर गया देखने के लिए. एंड द थिंग दैट ही सॉ ही कुड नॉट एक्सप्लेन, जो फोटोग्राफर था वो बहुत देर तक चुप था. उसके हाथ में कैमरा था, गले में लटका हुआ, और वो एकदम साइलेंटली सिर्फ बेड की तरफ घूर ही जा रहा था. पुलिस वाला ने बोला, उसका नाम मैथ्यू था, मैथ्यू यू ओके, सब बुला रहे हैं तुम्हें नीचे. पर मैथ्यू बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ था. एंड देन ही स्टार्टेड शाउटिंग, वो जोर से चिल्लाया, और इतनी जोर से चिल्लाया कि उसकी आंखों में से आंसू आने लगे. एंड देन ही रैन आउटसाइड एंड देन गॉन. वो वापस कभी लौट के नहीं आया. नोबडी कुड कॉन्टेक्ट हिम एंड अंडरस्टैंड कि उसके साथ क्या हुआ. बट अपेरेंटली उसके इस चिल्लाने का, इस बिहेवियर का असर इस पुलिस वाले पे भी बहुत ज़्यादा हुआ. एंड उसने भी इस घर के इन्वेस्टिगेशन में साथ देने से बिल्कुल मना कर दिया. ऑल दीज 25 पीपल, जिन्हें कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं, जो डोरिस को कुछ पेमेंट नहीं दे रहे हैं, जिनको कोई मीडिया में हाईलाइट करने को नहीं मिल रहा है, इन सब ने एक्सपीरियंस किए डोर्स अपने आप बंद खुलना, वो स्ट्रेंज साउंड्स, सडन टेम्परेचर चेंज, और सबसे कॉमन एक चीज जो उन्होंने नोटिस करी कि घर में दिन दहाड़े हो या फिर रात हो, एक किस्म की स्ट्रेंज येलोइश ग्रीन लाइट्स जो हैं वो पूरे कमरे में डार्ट मारती रहती हैं. बिल्कुल एक हाथ में अगर आप मुट्ठी बना लें तो उस साइज की लाइट्स जो हैं वो इधर से उधर होती रहती हैं. एंड पहले टेफ को लगा कि ये प्लाज्मा जैसी जो लाइट्स हैं, ये हो सकता है बाहर से आ रही हो. सो उन्होंने सारी खिड़की दरवाजों पे ब्लैक कोटिंग लगा दी, बंद कर दिया, उस पर कागज लगा दिए, अखबार लगा दिए, लेकिन ये लाइट्स नहीं बंद हुई क्योंकि उन्हें लगा था कि बाहर की गाड़ियों की मूवमेंट की वजह से शायद रिफ्लेक्शन पैदा होगा. उल्टा हुआ, लाइट्स और ज्यादा प्रोमिनेंटली सामने नजर आ रही थी.
and it was not making sense. कैरी की टीम में एक बंदा था जिसका नाम था अलरिच. अलरिच जो था वो स्पेसिफिकली इस बेडरूम एरिया और जो पूरी एली थी उसे कवर करने के लिए गया था. एंड ही यूज्ड टू कैरी अ लाइसेंस्ड गन विद हिम. उसके पास गन रहती थी, लाइसेंस्ड गन थी. हालांकि वो पेशे से एक पैरासाइकोलॉजिस्ट की टीम का हिस्सा था. उसने किसी को नहीं बताया ही इज कैरिंग अ गन. वो इन्वेस्टिगेशन करने के ऊपर गया. ही वॉज कैरिंग अ सेंसर, एक किस्म का सेंसर जो टेम्परेचर चेंज को रिकॉर्डिंग करता है पूरी तरह से. और वो खुद उधर उधर कमरे में, एक कमरे से दूसरे कमरे की तरफ जा रहा था. पर जब वो बेडरूम के पास पहुंचा, किसी को पता नहीं क्या हुआ, मगर उसके साथ एक और लड़की थी जिसने नोटिस किया कि उसका बिहेवियर बड़ा अजीब सा हो रहा है. एंड दैट बिहेवियर चेंज लेड टू समथिंग एल्स. वो वहां से निकला ये बोलकर कि इट इज माई लंच टाइम, घर गया एंड शॉट हिमसेल्फ. ही डाइड द वेरी नेक्स्ट डे एंड इट वॉज नॉट मेकिंग सेंस एट ऑल. जो फोटोग्राफर्स थे दे कुड नॉट कैप्चर एनी थिंग. उन्होंने बहुत कोशिश करी, कैमराज वर रन डाउन, नेटवर्क्स पूरी तरह से नहीं आ रहे थे. एंड दे वर लाइक कि हम कैसे दुनिया को बताएं ऑफ ऑल दैट इज हैपनिंग राइट नाउ. एंड ये सब के सब पढ़े लिखे स्केप्टिकल लोग थे. ये तो चाहते थे डोरिस को बताना कि ऐसा कुछ नहीं होता है, बट वो खुद नहीं समझ पा रहे थे कि ये सब जो हो रहा है ये आखिर कैसे हो रहा है. एंड इट वॉज एक्सट्रीमली वायलेंट. डोरिस की उन्होंने बिठा के जब फोटो ली, जब डोरिस ने बोला कि आई डोंट नो समथिंग इज रॉन्ग, उसकी तबीयत खराब हो रही थी, देवर क्लिकिंग फोटोग्राफ्स. सो फोटोग्राफ्स अभी भी ऑनलाइन अवेलेबल हैं. और पूरी एक आर्क बन रही थी उसके सर पे, उसके आसपास लाइट्स की. जो फोटोज खींचे गए उस टाइम पे वो बहुत ओवर एक्सपोजर वाले फोटो थे, और जब नॉर्मल उन जगह के फोटो खींचे गए तो नॉर्मल फोटोग्राफ्स थे. एंड इन फोटोग्राफ्स को ऑथेंटिकेट करने के लिए एक मैगजीन को भी दिया गया, जो बाहर की मैगजीन थी, जिसने ऑथेंटिकेट करके, उन्हें ये भी नहीं पता कि फोटोज में क्या है, बट उन्होंने जब ऑथेंटिकेट किया, इसकी असलियत को चेक किया, दे वर लाइक नहीं ये फोटोज असली हैं. और फिर उन्होंने अपनी मैगजीन में भी छापे. और उसके बाद सबसे ज्यादा टेरिफाइंग चीज, डोरिस जो थी अपने बेडरूम में थी वन फाइन इवनिंग, और उन्होंने चिल्ला के मदद मांगी कि हेल्प, एंड शी कुड नॉट मूव. तो जब वहां पे लोग पहुंचे तो उन्होंने देखा कि आसपास वो जो ऑब्स हैं वो येलोइश ग्रीनिश ऑब्स इधर उधर घूम रहे हैं. एंड उस वक्त डोरिस से पूछे, डोरिस वाई आर यू स्केयर्ड, और डोरिस ने कोने की तरफ इशारा किया. डोरिस कहीं और बैठी हुई थी. सारे इंडिविजुअल्स जो इस घर के थे उनसे अलग अलग रिपोर्ट्स ली गई, और अलग अलग रिपोर्ट्स भी एकदम सेम आ रही थी. देयर कैमराज वर गोइंग ऑफ, और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें. बहरहाल जब उन्होंने इशारा किया कोने की तरफ, तो इस वक्त टैफ वहां पर मौजूद थे. एंड टैफ ने कहा कि आर यू श्योर, यू ओके? और उनके पास एक पोलोराइड कैमरा था जो उन्होंने निकाला. उन्होंने वहां पे फोटो क्लिक करी कोने की. वो फोटो पूरा का पूरा ब्लीच्ड आउट आया, जैसे किसी ने पूरी ब्लीच लगा दी हो. इट वॉज नॉट क्लियर. उन्होंने दोबारा पूछा, इज इट देयर डोरिस, अभी भी? एंड शी वॉज क्राइंग अगेन एंड अगेन. दोबारा क्लिक किया, दोबारा ब्लीच्ड फोटो, ओवर एक्सपोजर वाला फोटो. फिर वहां से जब हट गई, देन ही क्लिक्ड, द फोटो केम आउट फाइन. और उसके बाद जब एक किस्म का जैसे फिट्स आते हैं वैसे जब डोरिस को आए, तो दे वर क्लिकिंग फोटोज एंड ऑल्सो ट्राइंग टू हेल्प हर, लेकिन उसका फोटो ही क्लियर नहीं आ पा रहा था. शी वॉज नॉट फाइन, शी वॉज शाउटिंग, एंड द स्मेल वॉज वियर्ड पूरे के पूरे घर में. इनफैक्ट एक ठंडी सी ब्रीज घर के अंदर जब दाखिल हुई खिड़की से, जिसको उन्होंने खोला था फॉर डोरिस क्योंकि वो बेचैन हो रही थी, उस हवा के आने के बाद एंड स्मेल के आने के बाद कुछ लोगों को वहां पर उल्टियां भी हुई. And all of this is happening. Meanwhile, जो parapsychology lab की जो director थी वो परेशान थी, क्योंकि अभी तक उनके पास इससे सिर्फ 5% cases आए थे. And she was really skeptical कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता. मगर उन्हीं की टीम बहुत कन्फ्यूज थी कि मैम हम समझ नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है. ये लोग जहाँ पर सो रहे थे वो इस घर का
नीचे का एरिया था जहाँ पे गद्दे डाले हुए थे उन्होंने, एंड इट वॉज अ लिविंग एरिया जहाँ पर 10-12 लोग सो रहे थे. एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग दे वोक अप, उन्होंने देखा कि पूरे किचन का जो प्लास्टर होता है वो किसी ने उखाड़ा हुआ था पूरी तरह से, और किसी के सोते हुए कोई हथौड़ा मारे और कोई ना जगे इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल. एंड दैट्स व्हाट हैपेंड. दे कुड नॉट अंडरस्टैंड कि अगर ये डोरिस भी कर रही है तो डोरिस ने हमारे सोते हुए, क्योंकि उससे पहले तो कुछ नहीं था, तो यानी कि वो आई होगी, उसने हथौड़ा मारा होगा, हम नहीं जगे होंगे, ये कैसे हो सकता है. इट्स जस्ट बियॉन्ड क्रेजी फॉर ऑल ऑफ देम. दे वर रियली रियली फ्रस्ट्रेटेड. डोरिस ने अपने रिश्तेदार से एक लोन लिया था इस जगह से भागने के लिए, बिकॉज ये सारे के सारे पैरासाइकोलॉजिस्ट और तमाम लोग नहीं चाहते थे कि डोरिस वहाँ से जाए. एंड कुछ लोग इनकी टीम में से जो लालच की साइड में थे, वो चाहते थे कि डोरिस की बताई हुई चीज़ें जो हैं ये सेंसेशनलाइज की जाएं, बट डोरिस ऐसा नहीं चाहती थी. शी डिडंट वांट मनी और फेम. उन्होंने बहुत ही डेस्परेशन में लोन उठाया था, एंड शी जस्ट वॉन्टेड टू रन अवे, एंड दैट्स व्हाट शी डिड. अगली सुबह जब ये लोग डोरिस के घर में उठे, डोरिस तब तक अपने घर से जितना छोटा मोटा सामान था जो उनके काम का था वो उठा के वहाँ से भाग चुकी थी. इस दौरान उनका एक दोस्त था फ्रैंक, जो राइटर भी था पेशे से, और बिना डोरिस को बताए डोरिस की बातें और पैरासाइकोलॉजिस्ट की बताई हुई चीज़ों को लिख रहा था. डोरिस जब शिफ्ट हुई थी वहां पे फिर से उनके साथ ये सब चीजें हो रही थी, पर इस बार उन्होंने डिसाइड किया वो किसी को नहीं बताएंगी, पर उनके नेबर्स को उन्होंने बताया. बिकॉज हर रात ऐसा हो रहा था कि डोरिस बाहर आके खड़ी हो जाती थी, चाहे बारिश हो रही हो चाहे कुछ हो रहा हो, शी वॉज आउटसाइड हर हाउस एंड शी वॉज क्राइंग एवरी नाउ एंड देन. डोरिस के घर में कभी कूड़ा पूरी तरह से फैला होता था, कभी डोरिस अपने बच्चों को लेके बाहर भागती थी. दिस वॉज हैपनिंग एवरी सिंगल डे. जितनी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस थी वो खराब हो जाती थी चलते चलते, एंड शी कुड नॉट अफोर्ड. थक हार के उन्होंने वापस मदद मांगी, एंड इस बार जब उन्होंने मदद मांगी तो टैफ और 2-3 लोग मदद करने पहुंचे, और इस बार इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर पुलिसमैन जो यहाँ पर पहुंचे, बिकॉज डोरिस चाहती थी कि कुछ भी गड़बड़ ना हो उनके साथ, कहीं कोई उनके साथ जबरदस्ती ना करे, तो उन्होंने एक पुलिस वाले को भी बुलाया था. एंड इन्होंने एक चेयर पे जब बैठे हुए थे टैफ, उन्होंने अपने लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे की तरफ एक माइक्रोफोन लगाया था टू रिकॉर्ड. उन्होंने लाइट्स को डिम किया, एंड ही वॉज जस्ट वेटिंग एंड बातचीत कर रहे थे. इतने में एक वास उड़ता हुआ आया और बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसके पैर के पास गिरा. टैफ वॉज शॉक्ड और उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, क्योंकि सब के सब इनके पीछे खड़े हुए थे, नोबडी वॉज इन फ्रंट. वास कहाँ से उड़ के आया? उन्होंने फिर इस रिकॉर्डिंग को वापस चलाया, और जब रिकॉर्डिंग को वापस चलाया माइक्रोफोन की, सो हाफ ऑफ द पीपल रैन आउटसाइड. आधे लोग भागे, आधे लोगों में पुलिस वाला भी भागा. ना आओ देखा ना ताओ, उसने कहा मैं नहीं रुकूंगा यहां पे, क्योंकि इसमें एक बहुत ही हैवी ब्रीदिंग बार बार माइक के पास आ रही थी, बार बार. और जो कदम के पास थी वो धीरे धीरे बढ़ रही थी, धीरे धीरे, एक एक कदम. और उसके बाद जब वास गिरा एंड द रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड, बल्कि एज टैफ रिमेंबर उन्होंने रिकॉर्डिंग कुछ देर बाद बंद करी थी. एंड डोरिस पूरी तरह से अब तक टूट चुकी थी. उन्होंने बहुत पैसा खर्च करके ये प्रॉपर्टी ली थी. शी हैड नो चॉइस. उनकी एक बहन एक दूसरे एरिया में रहती थी, उन्होंने उनसे लिटरली, क्योंकि बनती नहीं थी, तो उनसे लिटरली भीख मांग के कहा कि मेरे बच्चों को कुछ टाइम के लिए अपने पास रख लो, बिकॉज एवरीथिंग वॉज गेटिंग आउट ऑफ हैंड. डोरिस अपने बच्चों को वहां पे छोड़ के भाग गई, और कहां गई लोगों ने पता किया. एंड आफ्टर 2-3 मंथ्स, क्योंकि लोग पीछा नहीं छोड़ना चाह रहे थे, सैन बर्नार्डिनो में एक जगह है वहां पे वो जाके शिफ्ट हो गई थी, और उसके बाद वहां से भी भाग के वो टेक्सास चली गई थी और अपने बच्चों को अपने पास बुला लिया था. ऑल ऑफ दीज थिंग्स वर हैपनिंग, और वो मीडिया से दूर रहना चाह रही थी, पर ये सब कुछ उनका दोस्त फ्रैंक लोगों को बता रहा था, क्योंकि उसे अपनी किताब पूरी करनी थी. रिजल्ट ये आया कि सारा डॉक्यूमेंटेशन एक मूवी में तब्दील हो गया था. मूवी का नाम था एंटिटी. 1983 के पास आसपास ये मूवी तैयार हुई थी, और जब ये मूवी आई थी द एंटिटी, इसके रिलीज होने के बाद
डोरिस ने फैसला किया कि वो फ्रैंक से कभी बात नहीं करेंगी। तब से लेकर अब तक डोरिस कहाँ गई, किधर गई, नोबडी नोज। कुछ सालों बाद उनके बच्चे सामने आए, लेकिन बच्चों ने मना कर दिया बताने के लिए कि उनकी माँ कहाँ पर है, कैसी है, वो जिंदा भी है कि मर गई है। दे जस्ट रिजेक्टेड द होल थिंग कि वो कभी किसी को कुछ नहीं बताएंगे। उनके बड़े बेटे ने बहुत सारी चीज़ों को डीबंक किया, क्योंकि कुछ लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि तुम्हारी माँ खुद ये सब कर रही थी। तो उन्होंने बोला कि खुद ये सब कर रही थी, ये आपके दिमाग में, क्योंकि आप वो नहीं झेल रही थी। उन्होंने बताया कि हम हर रात ये सोचते थे कि जैसे कमरे के अंदर कोई मार पीट कर रहा है, एंड एवरी मॉर्निंग हम अपनी माँ को देखते थे जख्मी हुए हुए। सो वी नो वॉट वॉज हैपनिंग, एंड रिजल्टिंग टू द फैक्ट कि डोरिस उसके बाद किसी से बात नहीं करना चाहती थी, जबकि उसको किताब जो छपी फ्रैंक उसको पैसे देने के लिए भी तैयार था। शी रिजेक्टेड, शी डिड नॉट वॉन्ट एनी मनी आउट ऑफ इट, एंड शी जस्ट वॉन्टेड टू डिसअपेयर। और वो वहाँ से पूरी तरह से अपने आप हट गई पूरी सीन से। दैट हाउस इज स्टिल देयर, जहाँ पे सबसे पहले डोरिस रहने के लिए गई थी, हालांकि अभी भी वहाँ पे रहना इलीगल है। कुछ लोग कहते हैं कि जो चीज़ जो हो रही थी ये डोरिस से अटैच थी, और कुछ लोग कहते हैं कि वो हाउस से अटैच थी। डोरिस के जो बच्चे हैं जो बड़े हो गए उसके बाद, उन्होंने इंटरव्यूज भी दिए हैं, उन्होंने भी कहा दे बिलीव कि ये चीज पहले से थी उनकी माँ के साथ, इट जस्ट वेंट विद हर। एंड पूरी की पूरी मूवी है, आप देख सकते हैं। मूवी का नाम है द एंटिटी, इट इज अवेलेबल, आपको इजीली मिल जाएगी व्हेन यू टाइप। बाकी ये थी कहानी, इट वाज अगेन अ स्लो बर्न, लेकिन आपके हवाले। 666-22107 नंबर है, 666-22107, एक और बार 666-22107।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: हाँ जी, देखो जी, स्टोरी मैंने सुना दी है पूरी आपको, अब आपके वाले है, आप डिसाइड कर लीजिए क्या करना है इसका। 666-22-107 मैंने आपसे कहा था मैं जब तक आपको ऐसी वाली स्टोरी नहीं सुनाऊंगा जब तक उसके तथ्य ना मौजूद हो, मतलब थोड़े बहुत तो फैक्ट्स हों कम से कम, तो ये उन्हीं में से एक थी जिसके फैक्ट्स थे। सो अगर आपको इस पे बेस्ड एक मूवी देखनी है तो मूवी का नाम है द एंटिटी, आप जाके देख सकते हैं। बाकी मैंने स्टोरी आपको सुना दी है, बताइएगा आपको कैसी लगी। प्लीज़ प्लीज़ देखो, रिजल्ट चाहिए होता है, नंबर आने चाहिए, जब एग्जाम दे देते हैं ना भाई साहब नंबर चाहिए होते हैं, ठीक है। सो 666-22-107 और डांडा न्यूली वाले का भाई साहब नया गाना हमारे भाई का, एक सेकंड एक कॉल उठा लेते हैं उसके बाद चलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम।
2: हाँ जी
3: भाई, भाई। एक ऐड चला सकते हैं भाई हम?
2: कौन सा ऐड भाई?
3: भाई बाबा बंगश बंगाली आपके कदमों में
2: क्या आप प्यार में हारे हुए हैं आज ही कॉल कर रहे हैं हाँ जी भाई, कैसे लगे भाई को गाने?
3: भाई बस इसी चीज की कमी रह गई थी यार, मैं ना पूरी कर दूं क्योंकि बाकी डॉक्टर्स उन्होंने देख लिए, ठीक है, बाकी उन्होंने रिसर्च आगे कर ली, 20 से 25 बंदे रिसर्च के ऊपर, तो हमारे बाबा जी रह गए थे, बाबा पंकज बंगाली था उनकी कमी से मिलना वो पूरे कर दूं क्योंकि उनके हाथ में केस तो सॉल्व हो जाता भाई,
2: है ना, यही है भाई। अंग्रेज थोड़ी
3: डील बताओ बेचारे डील दे दे, उनकी अम्मा मिल जाती है,
2: डील दे दी इन लोगों ने, डील दे दी थोड़ी, है ना। क्या बात है, वाह वाह, क्या कंक्लूजन
3: है। ये बात तो हकीकत है कि अल्लाह पाक ने मखलूकात पैदा की हैं और भी जो इंसानी आंख से नजर नहीं आती,
2: यस
3: ठीक है, ऐसी मखलूकात दुनिया में मौजूद है, तो ये चीजें तो भाई मैं आंखों से देख बैठे,
2: हां वही मैंने कहा
3: ना, अक्सर कहते हो ना कि लोग बिलीव नहीं करते, ठीक है, बट आई बिलीव भाई, मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ, मुझे पता है।
2: हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ, थिंग्स आर लाइक दिस ओनली, तो कई बार तो हो जाता है, बट जब मैं कहता हूँ ओपन माइंड से सुनो इस कहानी को, तो इसीलिए जैसी लगी वैसी लगी
3: भाई। एक दोस्त है अल्लाह का खुश है उसको, हमने उसको संभाला था, सेहत आपको क्या बताऊँ, कुछ सिंगल तस्वीर इतना कि उसका अगर धक्का दे देना तो वो दो कला बाजी पीछे का जाके गिरे।
2: अच्छा,
3: और आप यकीन करो मैं सर्वर भाई को हाथ देते हैं कि मैं सर्वर भाई की तरह का ही हूँ, थोड़ा सा कम ही उनसे लेकिन हम होने के टाइप का।
2: अच्छा,
3: और समझ लेगा सर्वर भाई जितने तीन बंदे वो थे, चौथा मैं था, हम चार ने सिंगल तस्वीर को पकड़ा हुआ, वो हमारे काबू नहीं आ रहा था।
2: ओहो अच्छा, नहीं अभी देखिए आपकी आपने मैसेज, आपने बात करी, एक मैसेज है मेरे पास, असद अब्बास कह रहे हैं आई एम वेटिंग फॉर कॉमेडी सीरीज, देख रहे हैं आप, बिल्कुल उलट बात हुई है आपसे, वो कह रहे हैं लाइफ से हंसी गायब हो गई है कबीर भाई, कभी कभी हंसा भी दिया करो भाई। कॉमेडी स्टोरी कहाँ से पैदा करूँ ये बताओ, कहाँ से पैदा कर लूँ मैं, जब नहीं है तो कहाँ से लाऊँ मैं, फिर वही पाँच पाँच मिनट के एपिसोड सुनाने पड़ेंगे तो कहाँ से कॉमेडी लेके आऊँ मैं, ये है
3: परेशानी भाई। कॉमेडी यार, कॉमेडी सुनाते तो है भाई,
2: कॉमेडी के लिए पूरा इंटरनेट है भाई।
3: नहीं आते साथ क्या जब आप फ्रीडम जेंट ढूंढ रहे होते हो,
2: ये कह रहे हैं प्लीज पैदा करो, अरे मैं पैदा नहीं करता हूँ, असली कहानियां है, कॉमेडी वाली कहानी दो तीन सुनाई थी मैंने, तोते वाली बीच बीच में आ जाती है तो वो सुना दूंगा मैं।
3: रॉबर्ट,
2: हाँ रॉबर्ट भाई, उससे बढ़िया कहानी है
3: कोई,
2: उससे बढ़िया कहानी है भाई, तो ये है तो
3: और भाई आपके हिडन जैम पे ना मेरे को कल ही एक, मैं इत्तफाकन काफी टाइम बाद दोबारा स्क्रॉल किया।
2: अच्छा,
3: तो माशाल्लाह हमारे कतर में अल्लाह पाक खुश रखे उन लोगों को जो इतने सारे हिडन जैम ढूंढे
2: जी।
3: हमारे एक भाई था, उसने पता है क्या किया, रोड से ऑफ रोड के अंदर आया, तकरीबन एरिया खुला एरिया था।
2: अच्छा
3: ठीक है, वहां कबूतरों के लिए किसी ने रखा हुआ था खाने पीने का सामान, मेरा भाई बोलता है कि ये हिडन जैम है भाई और जो है यहाँ पे लोग आते जाते हैं, बहुत अच्छी जगह, बहुत उम्दा जगह, कभी आपको टाइम मिले तो निकलना। मैं उस बेचारे की शक्ल देखो, मैं भाई मैं तेरे को क्या बोलूं, पाकिस्तान सो फिर मैं आपको बताता कि हिडन जैम कहते किसको है, मेरे को इतना शदीद गुस्सा आ रहा था
2: भाई। बहुत सारे हिडन जैम, मैं तो कह रहा हूँ मंजूरों को हिडन जैम में घोषित कर दूंगा, बहुत जल्दी मैं रील बनाऊंगा अपने सड़क की, कहता हूँ ये हिडन जैम, इससे बड़े हिडन जैम को यही नहीं भाई।
3: अरे यार हद करते हैं भाई
2: भाई, क्या कर सकते,
3: क्या बोले यार बंदा।
2: कोई गाल नहीं बाजी आपको थैंक यू सो मच मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ठीक है मेरे भाई, ख्याल रखें बस अपना।
3: लेकिन जो मजे के चक्कर में ये है कि अगलों की बेचारों की अम्मा नहीं मिली, अफसोस भी है,
2: क्या कर सकते हैं,
3: क्या कर सकते हैं,
2: क्या कर सकते हैं, अपने हाथ में नहीं है भाई, अपने हाथ में नहीं है भाई। पर थैंक यू भाई, आपने बहुत बहुत शुक्रिया भाई,
3: ओके थैंक यू, खुश है,
2: अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। भाई एक मैसेज क्या है, कल आपने जो सोने वाली स्टोरी में बात किया था वो बहुत सोने वाली स्टाइल रॉबर्ट के मैन्यूज, यहाँ तो कुछ कुछ कॉमेडी बीच में आ जाती है भाई स्टोरी, बाकी सारी में मुकम्मल कॉमेडी वाली स्टोरी लाना बड़ा मुश्किल है। एक कॉल है, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम।
2: हाँ जी भाई, कैसे हो? बढ़िया भाई, आप सुनाए।
3: एकदम बढ़िया बढ़िया बढ़िया
2: जी भाई, क्या कहना चाह रहे हैं?
3: स्टोरी का एंड थोड़ा सा रह गया, नहीं तो अगर एंड भी होता तो मजा आ जाता
2: भाई। यही एंड है, अब मैं क्या करूँ। कहाँ से पैदा करूँगा।
3: ये तो है, लेकिन हाँ। अभी थोड़ा मैं सुन रहा था बहुत ध्यान से, हाँ। जब भी मैं टाइम मिलता ना पूरा ध्यान से सुनता हूँ, टाइम के लिए बाहर नहीं जाता।
2: नहीं, इसका एंड यही है भाई। मैं कहाँ से अलग से बेचारे को एंड दे दूँ, कहानी का खात्मा ही इसी पॉइंट पे हुआ है। तो ये आखिरी रिपोर्ट थी भाई, मैंने तो सारी रिपोर्टें छान मार के बिल्कुल आखिरी तक ले गया हूँ कहानी को। दिस वाज द मैक्सिमम।
3: हाँ, बहुत टाइम से मन था आपसे बात करने का।
2: थैंक यू भाई। क्या नाम है आपका?
3: अभी पहले में।
2: क्या नाम है?
3: मेरा नाम है मनीष।
2: मनीष नाम है आपका
3: जी?
2: हाँ मनीष भाई, कहाँ से?
3: मैं हूँ लुधियाना से।
2: अरे हरियाणा से आप? मेरा भाई क्या बात है,
3: पंजाब लुधियाना।
2: अच्छा लुधियाना, मैंने कहा हरियाणा, चलो कोई बात नहीं, आपस में पड़ोसी है भाई, क्या टेंशन है, पंजाब हरियाणा सब बना भाई। और मनीष भाई आपको बस आपको बढ़िया लगती है गानी, बस ये बड़ी बात है मेरे लिए। आप थैंक यू मेरा भाई, ये आपकी मोहब्बत है भाई,
3: इसकी वेट करता रहता हूँ।
2: जी
3: आपसे बात करने की, आज फर्स्ट टाइम आपसे बात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है
2: भाई। आप कभी भी हुक्म कीजिए मैसेज में, कॉल कर लूंगा भाई जान, ये आपकी मोहब्बत है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष भाई, खुश रहिए बस।
3: आप स्टोरी सुन के मजा आ जाता है।
2: थैंक यू भाई,
3: आपकी बातें सुन के मजा आ जाता है।
2: थैंक यू सो मच भाई,
3: कभी मिलना होगा आपसे
2: इंशाल्लाह,
3: जरूर मिलेंगे।
2: जरूर जरूर मनीष भाई, जरूर, बहुत सारा प्यार मनीष भाई आपको। थैंक यू सो मच भाई जान।
3: एक कबीर भाई गाना सुना देना, मैं वो सुनना चाहता था 3-4 दिन से
2: भाई। रिक्वेस्ट आर देखो ये नहीं है, मैं प्रॉब्लम ये रिक्वेस्ट आर नहीं है, देखो यहाँ प्रॉब्लम है, रिक्वेस्ट आर नहीं, रिक्वेस्ट आर हमारा 4-5 वाला है, बाकी सब चंगा है भाई, बाकी सब मैं कुछ भी चला देता, लेकिन रिक्वेस्ट गाने की इस घंटे हो नहीं पाएगी, क्योंकि कुछ प्रोटोकॉल मुझे ही फॉलो करने पड़ते हैं, दिक्कत ये है ना। ठीक है मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, थैंक यू मेरे भाई, ओके भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। भाई के बाद जो मैसेज आया है, मिस्टर प्रोग्राम नाइस स्टोरी, हीरो भाई कह रहे हैं सलाम सर जी। वालेकुम सलाम सर जी, अबू साद साहब, इनका मैसेज आया, आज की स्टोरी कबीर भाई प्लीज सेंड। उसामा बिन शफीक साहब, थैंक यू सो मच। उस्मान, इनके बाद माशाल्लाह सो स्टोरी बहुत अच्छी थी। कह रहे हैं सर, पहले तो मुझे ये बताइए कि हेड एंड हिडन जेम क्या होता है। भाई हिडन जेम मैं बस बताना नहीं चाहता, मुंह मत खुलाओ मेरा। जकी साहब कह रहे हैं स्टोरी वाज ऑसम। जकी साहब थैंक यू सो मच, एंड आई मिस्ड, अर्जेंट काम आ गया, कोई गाल नहीं, मैं भेजदा कहानी नसीर साहब। और शाम साहब वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रिंस भाई लिखते हैं ब्यूनिस्ट, यस थैंक यू सो मच। वैसे तो ये आप अर्जेंटीना को सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे साफ साफ नजर आ रहा है। एक मैसेज है ज़बरदस्त कहानी, फलक साहब थैंक यू सो मच, गुड वर्क वहीं लिखा है, वेरी नाइस स्टोरी लिखा है तौकीर अहमद भट्ट साहब ने, और तब उस मैंने लिखा है वेरी हार्ट ब्रेकिंग एंड टेरिफाइंग स्टोरी, कबीर भाई गूज बम्स आ गए, थैंक यू सो मच। दिलशाद भाई लिखते हैं वाओ अमेजिंग, थैंक यू मेरा भाई। एंड बागी ताजी, मैं गाने गुने चला दूं तो नया गाना आया जी लिस्ट में लगा हुआ है, डांडा न्योले वाला अपना भाई, और गाने का ना की है जगाने, भाई साहब मौत आ जाएगी आपको ये गाने सुन के। इसमें एक लाइन आएगी, अपने आप सुनोगे, अपने आप फील कर जाओगे कौन सी लाइन की बात कर रहा हूं मैं।

0: हाँ जी भाई साहब, क्या समझ गया, जो भी समझ गया सब मिलेगा आपको, कोई टेंशन नहीं है। हमने शटर खोल दिया, हमारी दुकान खुली हुई है पूरे 2 घंटे अभी, तो भाई साहब कुछ ही टाइम बचा है, लेकिन आपके पूरा प्रेम से हम सत्कार करेंगे। आप आ जाओ व्हाट्सएप पे, 666-2107 नंबर है। तबस्सुम बहन, आपकी प्रॉब्लम अभी हम सॉल्व करते हैं, कोई टेंशन को नहीं बहन। और एक मैसेज आया है, स्टोरी बहुत अच्छी थी भाई, थैंक यू, बहुत बहुत प्यार आपको अब्दुल भाई, वालेकुम अस्सलाम। और एक भाई ने और मैसेज गेड़ा है भाई, उसामा भाई, सॉरी भाई मैंने उस्मान बोल दिया, पहले उसामा ही बोला था मैंने, अपने आप को गलत करके ठीक कर दिया, ठीक करे गलत कर दिया, सॉरी। तो उसामा बिन शफीक भाई, बहुत सारा प्यार भाई को, थैंक यू भाई। और एक और मैसेज है, कबीर भाई अपना ख्याल रखिए, और कतर के लिए और कतर में जितने लोग हैं उन सब के लिए दुआ करें, अल्लाह हाफिज। वालेकुम सलाम, अल्लाह हाफिज। मुबीन भाई कह रहे हैं भाई कर सकते हैं इसलिए 2 सेकंड क्या के भाई, अच्छा दूसरा मैसेज पढ़ा ही नहीं मैंने, बहुत मजे की स्टोरी थी भाई, मजा आ गया, चलो भाई मौज आ गई ना। मैंने कहा था स्लो बर्न कहानी है, हर किसी के लिए नहीं है भाई ये कहानी, किसी किसी को बहुत बढ़िया लगेगी, कोई कोई बोलेगा ये क्या सुना दिया। नसीम साहब थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अस्सलाम वालेकुम। और क्योंकि अभी अजान का वक्त है तो उसके बाद इंशाल्लाह मुलाकात होगी, लेकिन आप आज पता है मुझे ट्रैफिक ट्रूफिक में फंसने वाले हैं, ट्रैफिक लगेगा, तो मुझे भी बता दीजिए कहीं पर ट्रैफिक मिले तो। एक मैसेज साथ, जो सॉन्ग आपने प्ले किया उसका नाम क्या होता है, मीन्स सॉन्ग रियली भाई, जगाने मतलब हथियार होते हैं भाई, और डांडा भाई का गाना है, डांडा न्यूली वाला एक गांव है, डांडा हमारा भाई का नाम है, बहुत बढ़िया गाना है भाई, और हरियाणा में बहुत नाम है भाई का। ये गाना इजी भी है, मतलब अब हरियाणवी सीखने जाए तो ईजी हो जाएगा। टाइप कर दूँ मैं टाइप कर दूँ, कोई टेंशन को नहीं भाई। 6:29 हो लिए और कुछ देर में आपसे मुलाकात होगी, बाकी ट्रैफिक की अपडेट ज़रूर दे दीजिएगा, एंड प्लीज़ ड्राइव सेफली, वीकेंड पर थोड़ा जोश ज़्यादा होता है, बट आपने बहुत हौली हौली चलाना है, ठीक है। 666-2107 नंबर है, और मैं जी आपसे इतने कहूँगा कि मैसेज आप करते रहेंगे तब गाड़ी चलती रहेगी, कहानी के ऊपर आपको कुछ कहना है, कुछ ऐसी बात कर लेनी है, वीकेंड है वैसे भी, तो बस कह दीजिएगा आप, नहीं ऐसी खामा खामी बात करनी चाहिए कभी कभी। 666-2107 एंड ऑल्सो भाई, अच्छा इतना बढ़िया लग गया गाना लोगों को, चल तो बढ़िया भाई, तो मैं ज़रा लिख के भेज देता हूँ जिनको ये गाना चाहिए। हेलो जी, सुन लो भाई मुबीन भाई, ठीक है, लेट्स टेक अ ब्रेक, विल बी बैक इंशाल्लाह इन अ वाइल, एंड फिर आगे की कार्रवाई करेंगे, स्टे ट्यून्ड।
1: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामेईन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में मगरिब की अजान का वक्त हो गया है। अल्लाहु

6:37 हो लिए, चिकरी चिकरी करते हुए टाइम का कुछ पता नहीं लग रहा है, 6:38 भी हो गए, देखते देखते सेकंड होगी, घड़ी आगे बढ़ गई है। बाकी 6666221107 नंबर है, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट करना है क्योंकि डॉक्टर कबीर के पास सारा इलाज है। मेरा म्यूजिक आ गया, म्यूजिक लगा यार, काम पे लग जाओ।

पूरी सवासी मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आ जाइए, अस्सलाम वालेकुम, जिन्होंने अभी ट्यून किया है और अपनी गाड़ियों में किसी तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले जरा खबरों की तरफ चल लेते हैं। सो एक बहुत बड़ा इवेंट रखा गया कतर में और इसमें सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है उससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं जिनको 20-20 साल हो चुके हैं उन्हें ऑनर किया गया है। सो बेसिकली इंचार्ज ऑफ द मैनेजिंग ऑफ QCAA मोहम्मद बिन फाले अल हजरी, उन्होंने ऑनर किया है। बहुत सारे लोग थे, एम्प्लॉयज़ हैं जो सिविल एविएशन अथॉरिटी से जुड़े हुए हैं 20-20 सालों से, तो बनता भाई उनका। और इस सेरेमनी जो कतर ट्रैफिक कंट्रोल एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर में हुई है वहाँ पर इन सबको इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन को सराहना मिली है और इनकी बहुत सारी तारीफें भी हुई हैं और इनके पॉजिटिव वर्क और इन्वायरमेंट को बहुत ही काम काजी रखने के लिए इनको बधाइयाँ और इनाम भी दिए गए हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। सो देवर ऑनर्ड प्रैक्टिकली, बहुत बड़ी बात है, ऐसे कंपनी को करना चाहिए। 10 साल से ऊपर बंदा अगर रह रहा है ना आपकी कंपनी में तो फिर ये वाली बात हो जाती है, तो मेरी नहीं तो किसी की नहीं, वो वाला सीन है। तो आपको वो छटके कहीं कहीं कहीं जाएगा नहीं, वो तो आपको छटके कहीं जाएगा नहीं, तो आपको तो इनाम देने चाहिए, बनता है। 10 साल के बाद तो किसी भी एम्प्लॉय के लिए बनता है, बनता है। अच्छा, इसके अलावा जो दुनिया सेलिब्रेट करी, दुनिया ने सेलिब्रेट किया वर्ल्ड वॉलीबॉल डे। कतर फाउंडेशन ने एक पाथवे प्रोग्राम तैयार किया है जो वॉलीबॉल के जरिए मदद करेगा, एम्पावर करेगा न्यू जनरेशन को, स्पेशली जनरेशन ऑफ न्यू जनरेशन ऑफ गर्ल्स इन कतर, जो कि कॉन्फिडेंस के ऊपर है, लीडरशिप और लाइफ लॉन्ग स्किल्स को लेकर आगे बढ़ाएगी और उन्हें मौका देगी कि वो भी कोर्ट में अपना दमखम दिखा सकें आने वाले वक्त में। इसके साथ साथ टेम्परेचर का हाल बता देता हूं, क्योंकि आज सनसनाती हुई हवाएं चल रही हैं और ये हवाएं भी रुकने का नाम नहीं लेंगी, थोड़ी और चलेंगी भाई, तो जरा ख्याल रखें, स्पेशली दोपहर के वक्त। फिलहाल टेम्परेचर जो लोएस्ट टेम्परेचर है मिनिमम है वो 33 है एंड मैक्सिमम विल गो अप टू 44, 45, 46, 47, जितना भी ले लो और ठीक ठीक लगा लो, वो तो ऊपर जाता ही रहेगा, लेकिन टेम्परेचर के साथ साथ जो हवाएं हैं वो आपको बढ़िया मिलने वाली हैं। आज गस्ट ऑफ विंड एक्चुअली में ज़्यादा 37 किलोमीटर्स पर आर की स्पीड से आपको हवा के झोंके लग सकते हैं और नॉर्मल जो स्पीड है विंड की दैट इज 18 किलोमीटर्स पर आर। तो जो लोग वीकेंड्स पे बीच पे जाने वाले हैं मुंह बंद रखिएगा, नहीं तो बारबेक्यू के साथ आपको मिट्टी भी खानी पड़ सकती है, ठीक है। जेन्युइन बात बता रहा हूँ मैं, जेन्युइन बात आपको। और ऐसा ही टेम्परेचर इस हफ्ते भर में रहने वाला है, कोई हवाई शवाई नहीं है, टेम्परेचर विल गो अप अप अप ऑल द वे। हालांकि जो अगले हफ्ते की बात की जा रही है, अभी से प्रेडिक्शन जो आई हैं वो ये कहती है कि टेम्परेचर माइट बी क्लोज टू 40 डिग्री, लेकिन वो माइट वाइट तो जाइए मत, कतर का जो टेम्परेचर है इट इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल, तो कुछ भी किधर भी हो सकता है भाई। 666-22-107 इसे मैसेज कर दीजिएगा अगर कहीं आप ट्रैफिक में हैं, बाकी कहानी तो आपको मिल जाएगी, टेंशन मत लीजिए। अच्छा, दूसरा गाना भी ढांडा का लगा हुआ है, ये एल्बम का ही हिस्सा है जो उनकी एल्बम आने वाली है। एक एक करके हर हफ्ते गाना लॉन्च कर रहे हैं वो बाकायदा वीडियो के साथ, तो एक तो मैंने सुना दिया आपको जगाने, दूसरा गाना जी दिल दे बैठी, कथी क्लब वाला गाना है भाई, बढ़िया वाला एकदम, मौज आ जाएगी सुनते हुए जाइए आप, और किसी को भी डेडिकेट कर दीजिए आप, स्टोरियाँ डाल दो भाई इंस्टाग्राम पे, ये तुम्हारे लिए दिल दे बैठी टांडा भाई का गाना। अ वेरी हैप्पी वीकेंड सेलिब्रेशन कम नहीं होना चाहिए भाई साहब, वीकेंड की वाइब जारी रहेगी। मैं दोहा वाला कबीर, आपके एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी गार्ड।

0: हाय हाय डांडा भाई आग ला दी भाई ने दिल दे बैठी है कि छोरन मगा जी हैप्पी वीकेंड के ढंग से भाई बढ़िया मौज आ रही है भाई साहब 6:45 हो लिया और हमारा भाई ने मैसेज किया उससे पहले एक कॉल उठा लेते हैं अस्सलाम वालेकुम बढ़िया भाई एकदम के ढंग से भाई बढ़िया चल है भाई
1: बढ़िया
0: चले
1: भाई
0: थारे गाना कैसा लगा भाई डांडा भाई का
1: भाई गाना तो मस्त है किस छोरे ने दिल दे बैठी हो
0: वो ना बताएगी भाई और भाई क्या चल रहा है बढ़िया कहो भाई क्या
1: भाई पहली बार इसका यू सॉन्ग सुना
0: हाँ
1: पार्टी सॉन्ग और रिदम वाला अच्छा लगा
0: है ना बढ़िया बाकी इनका एक वो भी गाना है ना जगाड़ने बहुत बढ़िया गाना है वो भी भाई कुछ देर पहले चला
1: भाई इनके जो भी सॉन्ग है ना वो पूरे धूम धड़ाके वाले होते हैं मगर ये वाला सॉन्ग थोड़ा डिफरेंट है
0: हाँ ये वाला डिफरेंट है भाई है भले ही थोड़ा क्लब वाला लेकिन बढ़िया बीट है बढ़िया भाई ने गाया लिया बहुत शानदार गाया भाई
1: शानदार
0: गाया भाई लाइन ही टूट रही गाने में बल डाल दिया बल और
1: बढ़िया भाई मैं तो इधर से गुजर रहा था भी मंसूरा थे मना सोचा भाई ना याद कर लिया जाए
0: भाई बहुत बहुत प्यार भाई ने भाई बहुत सारा प्यार भाई मैं भी भाई बस साइन आउट करने लग रहा हूँ बस कुछ देर में 4 मिनट पे फिर निकल लूंगा मैं भी यहाँ से
1: बढ़िया बढ़िया भाई आपका क्या प्लान है आज का
0: भाई कोई प्लान को नहीं भाई सीधा घर उसके बाद देखेंगे जो होगा उसके बाद का सीन नहीं पता भाई अंधा घोड़ा भाई
1: पड़े रहेंगे फर्नीचर की तरह
0: भाई फर्नीचर की तरह कोने में

0: जिस तरह वो भैंस पड़ी रहे ना भाई पानी में, बिल्कुल वैसे
1: पानी में हाँ। सही बात है भाई, गर्मी में यार।
0: हाँ भाई क्या करें, गर्मी तो
1: रहेगी, टास्क है भाई, भैंस नहीं निकालना
0: होता थे बस भाई, फिर वही चलेगा। और आपका क्या सीन है, कुछ बढ़िया सॉलिड सीन बनाया नहीं बनाया?
1: ज्यादा सॉलिड तो नहीं है कबीर भाई, इंडोर ही है बस, एक मॉल में जाना था, फिर उसके बाद में थोड़ा खाने पीने का जुगाड़ है, बस यही है।
0: चलो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है भाई, खुशबाश रहो यार बस। काबा भाई बहुत धन्यवाद कि आपने कॉल करके याद किया भाई को, बहुत प्यार भाई को भाई।
1: बस भाई मैं तो उस चाय को उड़ीक रहा हूँ और उस दिन को उड़ीक रहा हूँ जब चाय आपके साथ नसीब हो।
0: इंशाल्लाह भाई जल्द होगी भाई, क्यों नहीं होगी, इतनी बड़ी बात थोड़ी है, बहुत छोटी सी बात है ये तो मेरे भाई, बहुत छोटी बात है ये तो, हो जाएगी भाई इंशाल्लाह, जरूर बैठ के चाय पियेंगे भाई।
1: मैंने इसीलिए कबीर भाई बस चाय का ही जिक्र किया है, ओनली चाय
0: ओनली चाय, साथ में खारी भी तो खाएंगे भाई, ऐसे थोड़ी
1: हाँ,
0: चाय सूखी सूखी नहीं भाई, चाय सूखी नहीं हाँ। साथ में खारी हो जाकर भाई, जब मौज आती है असली, ठीक है,
1: मौज
0: चस आ जाती है भाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
1: भाई।
0: और भाई धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करी आपने गाबा भाई, और बस अपना ख्याल रखिएगा, और अगर ड्राइविंग करेंगे तो ड्राइव सेफली मेरा भाई।
1: जी भाई थैंक यू भाई,
0: थैंक यू मेरा भाई, लव यू मेरा भाई, बिल्कुल मेरा भाई, बहुत सारा प्यार भाई, हैप्पी वीकेंड भाई को, हैप्पी वीकेंड तुम्हारा भाई तो। अरे एक और कॉल आ रही है, एक सेकंड भाई, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
0: और भाई साहब बढ़िया चल रहा है भाई, थाम सुनाओ क्या हाल
2: है। भी चल रही है
0: स्विच करना पड़ा था मुझे अपने अंदर, जितने भी कैरेक्टर सब बाहर निकालने पड़ते।
2: स्विच मोड चल लिया है,
0: स्विच मोड चल लिया भाई, और क्या प्लानिंग हो रही है भाई की, बैचलर लाइफ कैसे चल रही है भाई की?
2: ओ हेलो, रिमाइंडर को ले कल के लिए,
0: रिमाइंडर देने की जरूरत नहीं, रिमाइंडर है देख लेना कल सुबह को।
2: सुबह सुबह कौन भाई, सुबह हाँ। कुछ नहीं होता, रात जो होगी रात काली होगी।
0: अच्छा ऐसा करना है, ठीक है, और ऐसा कर लेंगे, कोई दिक्कत हाँ। नहीं, दिक्कत कौन नहीं भाई,
2: दिन में तो हम हाँ। जाके हम बैंक में है।
0: अच्छा वैसा वाला सीन है, ठीक है जी, कोई हाँ, कोई टेंशन नहीं भाई,
2: बैंक में दिन की उजाले में हम राख हो जाते हैं,
0: टेंशन को नहीं भाई, कोई टेंशन नहीं, सब ला देंगे।
2: और सुनाओ क्या हाल है?
0: बढ़िया भाई, बस अभी कहानी कोनी
2: सुना ली लोगों को भाई,
0: आज हमने हॉरर सुना दी, हॉरर
2: आवाम घबराहट का शिकार हुई है।
0: कहाँ है कबीर, कहाँ है कबीर, चलनी है भाई,
2: यही
0: किया मिलेगा, तारा सितारा मैं ही हूँ भाई,
2: बकरिया बच्चा मासूम है, एकदम मासूम
0: है। सही फरमाया आपने, सही फरमाया आपने, ये तो
2: यार आखिरी के चार महीने रह गए, दो मिली के मैं भी थोड़ा सा हाय हेलो कर लूं भाई।
0: नहीं भाई थैंक यू भाई, बहुत सारा लव यू भाई को
2: भाई, कल करना, कल करेंगे झप्पियां पप्पियां,
0: डन
2: मान लो झप्पिया हो भाई, हेलो हेलो हाँ। दोनों शादी भाई, ऐसा कुछ भी नहीं भाई मोहब्बत है, भाई मोहब्बत है
0: बिल्कुल, ब्रदरहुड ब्रदरहुड भाईचारा ऑन टॉप,
2: ब्रदरहुड ब्रदरहुड का वो वाली है, वो वाली भाई।
0: हाँ ठीक है
2: भाई, मैं करता हूँ रात ना इंशाल्लाह,
0: डन डन डन डन डन, ओके मेरा भाई,
2: भाई सुन लो सारे सुन लो, मैं गवाह भाई, दुनिया गवाह बना रहा हूँ मैं, कतर पूरा कतर गवाह है,
0: नहीं अदालत में खड़ा कर देंगे आपको, टेंशन मत लो, गवाही अब मेरे हक में दोगे, टेंशन
2: मत लो, खड़ा करेंगे यहाँ पे तुम बोलोगे, अरे भाई
0: डन हो लिया भाई,
2: इतनी बड़ी गलती थोड़ी करी थी हमने,
0: ठीक है सलाम भी साइन ऑफ करते हैं,
2: चलो भाई
0: अल्लाह हाफिज। और तला भाई के बाद मैसेज आया, तला भाई को सलाम, और हमजा भाई ने मैसेज किया, हमजा भाई क्या कह रहे हैं, हमजा भाई कह रहे हैं भाई दो दिन सैड गुजरेंगे हमारे, तो भाई नहीं भाई ऐसी क्या बात कर दी भाई, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आगे देखते हैं, और मौसम का तो ये हाल है कि डायरेक्ट आफ्टरनून हो रहा है, मॉर्निंग भी हाँ भाई भाई यही है, मॉर्निंग तो है ये नहीं, अगर आप 5 बजे उठ जा रहे हैं तब तो ठीक है, उसके बाद मॉर्निंग शोरिंग कुछ नहीं है, सब आफ्टरनून ही है, बस धूप का जो वो है ना क्या कहते हैं उसे, अरे क्या कहते हैं उसे, इंटेंसिटी, वो थोड़ी ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर रही है, बाकी सब सेम है, और इस तरह ही चलेगा भाई, बाकी तो आपसे इजाज़त लेने का वक्त आ गया, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, सीधा संडे को मिलेंगे, वीकेंड भरपूर बढ़िया तरीके से मनाइए, दिल से दुआएं आप सबके लिए, एंड सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar, इस नाम से हम हर जगह मौजूद हैं, और अगर आप आवाज़ और चेहरे को मिलाना चाहें तो मुझे भी ढूंढ सकते हैं, दोहा वाला कबीर KABIR.FM107, मैं आपको मिल जाऊंगा हर जगह, जैसे मैंने कहा कि वहाँ पे भी सरप्राइज आने वाला है सोशल मीडिया पे, तो जुड़े रहेंगे तो आपकी फ़ायदे आपका ही फ़ायदा है, देखो प्लीज़ हाँ ठीक है, दिस इज़ दोहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ, अ वेरी हैप्पी वीकेंड, अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप बेहद

best day, Jay.

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं इको स्विच और FM 107, जहां हम बात करते हैं उन छोटी छोटी लाइफस्टाइल हैबिट्स की जो मिलकर हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत बड़ा फर्क पैदा करती हैं। भाई देखिए, आज का टॉपिक शायद सुनकर आपको ऐसा लगे कि भाई ये तो बस इतनी सी बात है और क्या है, कुछ भी नहीं है, लेकिन यकीन मानिए कभी कभी सबसे छोटी से छोटी आदत ही सबसे बड़ा असर छोड़ जाती है। आज हम बात कर रहे हैं सेविंग वाटर वाइल ब्रशिंग, यानी दांत साफ करते हुए मेहरबानी करके पानी बचाएं। हम सब दिन भर में कम से कम दो बार या एक बार तो ब्रश करते ही करते हैं, ये हमारी रूटीन का कॉमन सा हिस्सा है। ये रूटीन इतनी कॉमन है कि हम इस पर कभी गौर ही नहीं करते, कोई जरूरत ही नहीं है गौर करने की। देखिए, ब्रश हाथ में आता है, टूथपेस्ट हम उसके ऊपर लगाते हैं और बिना सोचे समझे क्या होता है, कभी कभी टैप भी ऑन रह जाता है। फिर दो मिनट तक हम जो है वो टीथ ब्रश करते रहते हैं, अपने दांत ब्रश करते रहते हैं, पानी बेइंतहा चलता रहता है टैब में और हम ये समझते हैं कि बस थोड़ा सा ही तो टाइम हुआ है, थोड़ा सा ही तो पानी गया है, या कभी कभी तो पानी के ऊपर तवज्जो भी नहीं जा रही होती जो रनिंग टैप वाटर चल रहा होता है। लेकिन इको स्विच हमें ये सिखाता है कि हर रोज एक रूटीन में छुपा हुआ वेस्ट ही असली चैलेंज होता है। जब रोजाना की छोटी छोटी आदतें बदली जाती है ना, तभी दुनिया बदलती है। चलिए साथियों, एक सीन इमेजिन करते हैं, ठीक है? ये मेरे ख्याल से सबकी डेली रूटीन होती होगी। सुबह 6:45 बज रहे होते हैं,

सब जो है ना वो अलार्म बड़ी मुश्किल से बंद करते हुए उठते हैं, बच्चों को स्कूल जाना होता है, किसी ने अपनी ऑफिस की मीटिंग्स अटेंड करनी होती हैं, किसी की ऑनलाइन क्लास होती है, होता क्या है बाथरूम में ब्रश चल रहा होता है, बाथरूम में हम ब्रश करना शुरू करते हैं, लेकिन साथ साथ मोबाइल नोटिफिकेशंस भी चेक कर रहे होते हैं, कपड़े भी सेलेक्ट हो रहे होते हैं और दिमाग भी हमारा पूरे दिन भर के प्लान्स ऑपरेट कर रहा होता है, चला रहा होता है साथ साथ। और इस पूरे वक्त में पता है क्या होता है, वही काम होता है जो हम रोज कर रहे होते हैं। सुबह उठ के जब ब्रश करते हैं तो टैब ऑन करते हैं, पानी का टैब ऑन करते हैं, तो भाई उससे क्या होता है टैब खुला रहता है। कभी किसी ने उस बहते हुए पानी की आवाज को नोटिस ही नहीं किया, वो बस बहता रहता है और हर सेकंड के साथ लीटर्स के हिसाब से भाई पानी ड्रेनेज में जा रहा होता है। अब जरा सोचिए, अगर एक घर में 5 लोग रहते हैं तो हर शख्स सिर्फ ब्रशिंग के दौरान ही टैप खुला छोड़ देता है, तो रोजाना तकरीबन 100 लीटर पानी से ज्यादा तो वेस्ट हो ही जाता है ना। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस पानी का ज्यादा हिस्सा हम यूज कम करते हैं और वेस्ट ज्यादा करते हैं। साथ ही यहाँ पर थोड़ा सा थिंक डिफरेंटली करते हैं ना। देखिए, अगर पानी की जगह पैसा बह रहा हो, थोड़ा सोचें, कुछ आपका माइंडसेट फ्लिप करते हैं। पानी की जगह पैसा बह रहा होता तो एक छोटा सा सवाल है, पानी की जगह अगर पैसा बह रहा होता, अगर वॉश बेसिन के टैप से पानी की जगह पैसा बह रहा होता, मान लीजिए हर सेकंड ₹1 या $1 ड्रेन में जा रहा होता, तो क्या हम टैप इतनी देर तक खुला छोड़ देते? बिल्कुल नहीं ना, हम फौरन उस टैप को बंद कर देते भाई। लेकिन जब पानी बहता है ना तो हमें उसकी वैल्यू का कोई एहसास ही नहीं होता, हमें महसूस ही नहीं होता, क्योंकि वो एक ट्रांसपेरेंट सी चीज है, ना कोई आवाज करती है ना कोई शिकायत करती है। लेकिन याद रखिए, वाटर बिल सिर्फ पैसों का नहीं होता, एनवायरमेंट का भी होता है। साथियों, अब बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। देखें, एक रनिंग टैब 1 मिनट में तकरीबन 6 से 10 लीटर पानी वेस्ट कर सकता है। अगर ब्रशिंग के दौरान 2 मिनट के दौरान

0: लोग ऐसे हैं जिनको ये नेमत मुयस्सर नहीं है। जरा सोचिए पर्सपेक्टिव कितना चेंज हो जाता है हमारा अगर हम इसे पर ध्यान दें कि भाई पानी वेस्ट हो गया। लेकिन असल कहानी तो उससे भी ज्यादा बड़ी होती है भाई। देखिए हर ड्रॉप जो हमारे घर तक पहुंचता है उसके पीछे पंपिंग स्टेशंस होते हैं, फिल्टराइजेशन होती है, फिल्ट्रेशन प्लांट्स होते हैं, पाइपलाइंस होती हैं और बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही होती है। यानी जब हम पानी वेस्ट करते हैं ना तो हम सिर्फ पानी वेस्ट नहीं कर रहे होते बल्कि उस पानी को ट्रीट और ट्रांसपोर्ट करने वाली एनर्जी को भी वेस्ट कर रहे होते हैं। और हमारा इको स्विच इसी चेन रिएक्शन को रोकता है। एक टैप बंद करना सिर्फ एक एक्शन नहीं होता बल्कि पूरी सप्लाई चेन के लिए एक पॉजिटिव डिसीजन होता है। देखें आपके घर का इको चैलेंज एक मैं आपको देती हूँ, आज एक छोटा सा फैमिली चैलेंज ट्राई करें। देखिए कल सुबह से ना घर के हर मेंबर को सिर्फ एक काम करना है, ब्रश करते वक्त टैप को बंद रखना है। दिन के एंड पर देखिएगा कि कितनी दफा किसने किसको याद दिलाया कि टैप बंद रखो। हो सकता है बच्चे पेरेंट्स को रिमाइंड करा रहे हों, हो सकता है पेरेंट्स बच्चों को रिमाइंड करा रहे हों और आहिस्ता आहिस्ता ये चैलेंज एक हैबिट बन जाए। देखिए एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करने के लिए हमेशा बड़ी कैंपिंग की जरूरत नहीं होती, कभी कभी सिर्फ एक फैमिली चैलेंज ही काफी होता है। साथियों इसी के साथ आपको अब मैं बात कर लेती हूँ, आपके साथ कुछ शेयर कर लेती हूँ प्रैक्टिकल इको स्विच टिप्स। देखिए सबसे पहली टिप तो ये है कि ब्रश करते वक्त टैप को सिर्फ उस वक्त ऑन करें जब ब्रश गीला करना हो या उसे साफ करना हो। दूसरी बात ये कि गार्गल करने के लिए या मुंह साफ करने के लिए आप बजाय इसके कि आप रनिंग टैप वाटर खोल के खड़े हो जाए आप एक कप एक ग्लास इस्तेमाल करें, इससे पानी का इस्तेमाल बहुत कम हो जाता है। तीसरी बात ये कि अगर मुमकिन हो तो लो फ्लो टैप्स इस्तेमाल करें, यानी पानी का प्रेशर मेंटेन रखते हैं वो टैप्स लेकिन कंजम्पशन कम करते हैं पानी की। चौथी बात ये बच्चों को, छोटी उम्र के जो बच्चे होते हैं ना उनको ये हैबिट सिखाएं कि ब्रश करते हुए पानी का टैप बंद रखें। जो आदतें बचपन में इंसान सीखता है ना साथियों वो जिंदगी भर साथ रहती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वॉश बेसिन के पास एक छोटा सा स्टिकी नोट लगा दें, टैप ऑफ वाइल ब्रशिंग। कभी कभी सिर्फ एक छोटा सा रिमाइंडर ही आदत बदलने के लिए काफी होता है साथियों। अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, एक इंटरेस्टिंग बात नोटिस की गई है कि जब घर का एक मेंबर एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल हैबिट अडॉप्ट करता है ना तो आहिस्ता आहिस्ता घर के बाकी लोग भी उसे कॉपी करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह कल्चर बनता है, पहले एक शख्स टैब बंद करता है, फिर पूरा घर, फिर बच्चे स्कूल में ये हैबिट अपनाते हैं और फिर बाकी दोस्त भी आपसे ये चीज सीखते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके ये बात पूरी कम्युनिटी में फैलती है। इसीलिए भाई इको स्विच सिर्फ एनवायरनमेंट की बात नहीं करता, इको स्विच पॉजिटिव इन्फ्लुएंस की भी बात करता है। साथियों आज का इको स्विच सिर्फ इतना सा है, अगली बार जब आप ब्रश करें टैप को कंटिन्यूसली चलने ना दें, सिर्फ जरूरत के वक्त टैप को ओपन करें। इसी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सफा और आप सुन रहे थे FM 107 पर इको स्विच। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और सिंपल लाइफस्टाइल हैबिट के साथ जो हमारी जिंदगी भी बेहतर बनाएगी और हमारे प्लेनेट को भी हमारे लिए बेहतर बनाएगी। सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM 107 कतर। दिल से देसी।
2: क्या आपने कभी खुद से पूछा है अगर आज मुझे किसी की जरूरत ना हो तो मैं कौन हूं? अक्सर औरतें दूसरों की खुशी में अपनी आइडेंटिटी भूल जाती हैं, मगर अब वक्त है खुद से मिलने का। आरजे ए फॉर अमिता लेकर आ रही हैं एक नया सफर, मेरी पहचान। बर्नआउट से लेकर नए बिजनेसेस तक, सेहत से लेकर सुकून तक, ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्रीज तय करना चाहती है। आप सिलसिले की एक कड़ी नहीं, आप खुद एक

तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से

0: दोस्तों, गर्मियों के मौसम में जब गर्मी अपनी शिद्दत पर होती है, ऐसे वक्त में फायर इंसिडेंट्स का रिस्क भी बढ़ जाता है। इसलिए रूफटॉप्स या छत की सेफ्टी पर खास तवज्जो देना जरूरी है। अक्सर बिल्डिंग्स की छतों को लोग एक्स्ट्रा सामान रखने की जगह समझकर इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ये आदत बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। कोई भी सामान, खास करके फ्लेमेबल मटेरियल्स जैसे के पुराने कार्टन्स, प्लास्टिक, कपड़े या पेट्रोल पेंट के डब्बे आग लगने की सूरत में बहुत जल्द आग या फ्लेम्स को फैला देते हैं। रूफटॉप या अपनी छत को साफ रखना और वक्तन फावक्तन उसको देखते रहना बहुत जरूरी है। हमेशा कोशिश करें कि छत पर फकत जरूरी ही सामान रखा जाए और वो भी ठीक तरीके से। अगर वायरिंग या इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स छत पर हैं तो उनको भी चेक करना लाजमी है, क्योंकि पुरानी या खराब वायरिंग से भी स्पार्क होकर आग लग सकती है। रेगुलर इंस्पेक्शन एक ऐसी आदत होनी चाहिए जो हर बिल्डिंग मैनेजमेंट या हर फर्द अपने घर पर लाजमी बनाए। महीने में कम से कम एक मर्तबा अपनी छत को जरूर चेक करें। सामान की सफाई करना और किसी भी अनयूजुअल स्मेल, वायर या गर्म होने वाले इक्विपमेंट्स को देखना बहुत मददगार साबित होता है। एक फंक्शनल फायर एक्सटिंग्विशर का होना रूफटॉप और बिल्डिंग दोनों के लिए बहुत अहमियत रखता है। ये भी बात याद रखें कि एक फंक्शनल फायर एक्सटिंग्विशर का होना रूफटॉप और बिल्डिंग दोनों के लिए बहुत अहमियत रखता है। ये इंश्योर करें कि फायर एक्सटिंग्विशर एक्सेसिबल हो, उसकी एक्सपायरी डेट चेक हो और हर वक्त काम करने की पोजीशन में हो। ये सब छोटी छोटी एहतियात आपकी और आपके आसपास रहने वालों की जिंदगी को महफूज बनाती हैं। वजारत दाखला का कहना है कि याद रखें, आपकी सेफ्टी सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक सोशल जिम्मेदारी भी है, क्योंकि आपकी एहतियात से दूसरे लोग भी महफूज रहते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
0: गर्मी का सीजन और स्पोर्ट्स का एक्शन,
2: लाइव अपडेट्स, बिग मैचेस और नॉनस्टॉप एक्साइटमेंट,
0: गेम ऑन,
2: वॉल्यूम अप,
0: एवरी संडे और ट्यूसडे दोपहर 1 बजे से
2: समर स्पोर्ट्स विद आरजे फजील,
0: ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
3: Maximum music, maximum fun.
4: On FM 107, Dil Se Desi.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी। One step to 2030. Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया।
2: One Step to 2030.
1: और दोस्तों, आज हम वापस से बात करने वाले हैं AI governed cities की और उसमें भी हेल्थ केयर में AI के रोल की, जैसा मैंने कल आपसे कहा था। तो देखिए, AI governed cities का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा हेल्थ केयर सिस्टम है, स्मार्ट हॉस्पिटल्स। जी हाँ, AI हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स का रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली एनालाइज किया जाएगा।

जरूरत नहीं है डॉक्टर्स की, आई मीन टू से एनालिसिस्ट की या किसी और की. ये सिस्टम जो है ना वो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स को सजेशन देता है कि कौन सी ट्रीटमेंट जो है वो बेस्ट है, किस पेशेंट को कौन सी चीज ज्यादा सूट करती है. वहीं पर अगर मैं बात करूं एआई की, तो यहाँ पे डिजीज को प्रिडिक्ट करने में भी एआई बड़ी यूजफुल होगी. एआई डेटा एनालाइज करके डिजीज का अंदाजा लगाएगा. अगर किसी एरिया में फ्लू या वायरस स्प्रेड हो रहा हो तो सिस्टम पहले ही अलर्ट भेज देगा. ये देखिए कितना अपने आप में जो है वो अच्छा भी है और थोड़ा सा घबराने वाली बात भी है. वहीं पर कई बार आपने और हमने रिमोट ट्रीटमेंट के बारे में भी सुना और पढ़ा है, लेकिन हाँ जो रिमोट ट्रीटमेंट है वो शायद 2030 में भरपूर तरीके से डोमिनेट करे. फ्यूचर में लोग घर बैठकर एआई डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, जाना बहुत दूर की बात होगी. वेरेबल डिवाइसेस जैसे स्मार्ट वॉचेस हैं, हेल्थ डेटा भेजती रहेंगी और एआई सिस्टम पेशेंट को एडवाइस वहीं से ऑटोमेटिकली करते रहेंगे और ये सिस्टम कहलाएगा रिमोट ट्रीटमेंट. वहीं अगर मैं बात करूं इमरजेंसी रिस्पांस की, तो अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो एआई सिस्टम फॉरन एम्बुलेंस नियरेस्ट लोकेशन से भेज देगा. ट्रैफिक सिग्नल्स भी एम्बुलेंस के लिए ग्रीन हो जाएंगे. ये सारा चीज जो है वो एआई से ड्रिवन होगा, ऑटोमेटिकली काम करेंगी चीजें. ये सिस्टम ह्यूमन लाइफ सेव करने में बहुत ज्यादा यूजफुल होगा ऐसा माना जा रहा है. वहीं अगर मैं बात करूं सिक्योरिटी की, तो देखिए एआई गवर्न सिटीज में सिक्योरिटी भी एडवांस्ड होगी. स्मार्ट सर्वेलेंस होंगे, शहर में कैमरास होंगे जो फेसेस और बिहेवियर को एनालाइज करेंगे. अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो तो सिस्टम फौरन अलर्ट ऑटोमेटिकली भेज देगा. वहीं एआई डेटा एनालाइज करके प्रिडिक्ट करेगा कि किस एरिया में क्राइम का चांस ज्यादा है, पुलिस वहां पहले से डिप्लॉयमेंट कर सकती है. ये कितना अच्छा हो जाएगा. वहीं ऑटोमेटेड पॉलिसिंग भी होगी. कुछ केसेस में रोबोट्स या फिर ड्रोन्स भी यूज होंगे जो एरिया को मॉनिटर करेंगे और पुलिस को रिपोर्ट करेंगे. ये सिस्टम पब्लिक सेफ्टी

0: ये बातें फिलहाल हमें जो है वो चौंका रही हैं, लेकिन आने वाले वक्त में हम इन सारी चीजों के आदि हो जाएंगे, यूज्ड हो जाएंगे, है ना. अपने आप में कितनी बड़ी बात. वही अभी मुझे लगता है कि आज के लिए बस इतना ही रखती हूँ. थोड़ा सा आप भी वक्त लीजिए, सोचिए समझिए, इन सारी चीजों को जो है वो एब्जॉर्व कीजिए. कल जब वापस आऊंगी तो इसी टॉपिक को मैं कंटिन्यू रखूंगी. कल मैं बात करूंगी अर्बन मैनेजमेंट और गवर्नेंस पर. इस पर भी बात करना बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है. किस तरह से AI जो है वो सिर्फ ट्रैफिक या फिर हॉस्पिटल्स तक महदूद रहेगी, पूरे शहर को मैनेज करेगी. कल इसी टॉपिक पे बात होगी. फिलहाल अभी के लिए मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए. देखते और सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी.
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। सामिन किराम, खुश आमदीद आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे में। हम में से बहुत से लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा ताल्लुक दीन इस्लाम से मजीद मजबूत हो, हमारा ईमान बढ़े और हमारी जिंदगी अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर जाए। अक्सर हम ये समझते हैं कि इसके लिए शायद बहुत बड़े बड़े आमाल, लंबी इबादत या मुश्किल मराहिल दरकार हैं। हालांकि कभी कभी अल्लाह के करीब होने का सबसे आसान रास्ता उन्हीं छोटी छोटी सुन्नतों में पोशीदा होता है जिन्हें हम रोजमर्रा जिंदगी में आसानी से अपना सकते हैं। माहिरीन नफ्सियात भी कहते हैं कि बड़ी तब्दीली हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती है। इसीलिए इस प्रोग्राम में हम ऐसी आसान और मुख्तसर सुन्नतों का जिक्र करेंगे जो सिर्फ चंद सेकंड या एक मिनट लेती हैं, लेकिन इंसान की रूह, आदतों और अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। तो आइए आज हम मिलकर एक और खूबसूरत सुन्नत सीखते हैं और अपनी जिंदगी को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी से मुनव्वर करते हैं। सामने कराम, आज हम आपको बताएंगे दूसरों के दिलों तक अपनी बात सही अंदाज में पहुंचाने की सुन्नत। सुन्नत का मौजू है साफ, वाज़ह और मुख्तसर गुफ्तगू करना। अल्लाह ताला ने इंसान को जो सबसे बड़ी नेमतें अता फरमाई हैं, इनमें एक नेमत जबान भी है। इसी जबान से इंसान अल्लाह का जिक्र करता है, इसी जबान से कुरान पढ़ता है और इसी जबान से लोगों की रहनुमाई करता है। लेकिन यही जबान अगर बेहतियाती से इस्तेमाल हो तो रिश्ते भी तोड़ देती है, दिल भी जख्मी कर देती है और मुआशरे में गलत फहमियाँ भी पैदा करती है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कैसे बोलना है ये भी सिखाया। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू ऐसी वाज़ह, अलग अलग और साफ होती थी कि हर सुनने वाला उसे आसानी से समझ लेता था। उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवामिउल कलिम अता फरमाए थे। इसका मतलब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत कम अल्फाज में बहुत बड़ी बात बयान फरमा देते थे। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा मज़ीद फरमाती हैं कि अगर कोई शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज गिनना चाहता तो गिन सकता था। यानी आप इतनी ठहराव के साथ गुफ्तगू फरमाते थे। क्यों? क्योंकि आप चाहते थे कि हर शख्स बात को समझे। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और सुन्नत ये भी थी कि अगर कोई अहम बात होती या महसूस होता कि सुनने वाले ने सही तरह नहीं समझी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे दोबारा भी बयान फरमाते। सामिन, ये था प्रोग्राम आज की सुन्नत। याद रखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत में खैर।

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 पर पैगाम।
2: जैसा कि आप जानते हैं कि जिंदगी में हम सब मुख्तलिफ अदवार से गुजरते हैं और अच्छे और बुरे वक्त दोनों से हमारा वास्ता पड़ता है। वक्त के समझाने का अंदाज उमूमन सख्त और तकलीफ दे होता है, मगर इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि वक्त की समझाई हुई बात हतमी होती जो पूरी जिंदगी के लिए काफी होती। अच्छा वक्त तो अच्छी तरह से गुजर जाता है, लेकिन बुरे वक्त में भी एक अच्छाई जरूर होती है, क्योंकि जैसे ही बुरा वक्त आता है मतलब ही और फालतू लोग आपकी जिंदगी से चले जाते हैं। याद रखिए कि इस दुनिया में रहते हुए मुश्किल वक्त हर किसी पर आता है, जिसके नतीजे में कोई तो संवर जाता है तो कोई बिखर जाता है। दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर किसी को बुरे वक्त से महफूज रखे।
1: पैगाम ऑन FM 107।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। आज हम बात करेंगे अहमद अलादीन के बारे में। अहमद अलादीन कतर के उभरते हुए फुटबॉल सितारों में से एक हैं, जो अपनी रफ्तार, ड्रिबलिंग और अटैकिंग स्टाइल की वजह से मशहूर हैं। अहमद अलादीन कतर के वेरियस एज ग्रुप्स को क्रॉस करते करते आज वो सीनियर टीम के एक अहम मेंबर हैं। उन्होंने कम उम्र से ही फुटबॉल में दिलचस्पी दिखाई और लगातार मेहनत के जरिए प्रोफेशनल सतह तक अपना सफर तय किया। विंगर के तौर पर वो मैदान में दोनों किनारों से खतरनाक हमले करने की सलाहियत रखते हैं और अपनी टीम के लिए स्कोरिंग चांसेस पैदा करते हैं। अहमद की सबसे बड़ी खूबी उनकी स्पीड और डिफेंडर्स को वन ऑन वन सिचुएशंस में बीट करने की सलाहियत है। अच्छा, वो तेज़ काउंटर अटैक्स में भी अहम किरदार अदा करते हैं और अपनी एक्यूरेट क्रॉसिंग और फिनिशिंग से मैच का रुख तब्दील कर सकते हैं। क्लब फुटबॉल के साथ साथ उन्होंने कतर की कौमी टीम की नुमाइंदगी भी की और मुख्तलिफ इंटरनेशनल इवेंट्स मैचेस में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। यंग फुटबॉलर्स के लिए अहमद एक मिसाल हैं कि मेहनत, डिसिप्लिन और मुसलसल प्रैक्टिस से बुलंद मकाम हासिल किया जा सकता है। उनका जज्बा और परफॉर्मेंस कतर में फुटबॉल की बढ़ती हुई मकबूलियत को मजबूत बनाने में मददगार साबित हो रही है। आने वाले सालों में भी उनसे मजीद बेहतरीन खेल और यादगार परफॉर्मेंसेस की उम्मीद की जाती है। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शाकिब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।
0: FM 107 पर हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट।

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.
2: दोस्तों, ट्रैफिक के रेगुलेशंस की पाबंदी करना हर ड्राइवर की जिम्मेदारी है, खासतौर पर स्कूल जोन्स के आसपास। ड्राइवर्स को रोड मार्किंग्स जैसे लेन्स और स्टॉप लेन्स और पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। ये रूल्स ना सिर्फ आपकी सेफ्टी के लिए हैं, बल्कि हमारे स्टूडेंट्स की हिफाजत के लिए भी बुनियादी अहमियत रखते हैं। स्कूल्स के आसपास ट्रैफिक स्लो होना चाहिए और ड्राइवर्स को स्टूडेंट्स के क्रॉसिंग के वक्त रुकना चाहिए। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स और स्कूल साइंस की रेस्पेक्ट करना और स्पीड लिमिट का ख्याल रखना एक्सीडेंट्स और चोटों से बचाता है। हर एक शख्स का फर्ज है कि वो इन रूल्स की पाबंदी करे। पेरेंट्स, टीचर और लोकल कम्युनिटी सब मिलकर स्टूडेंट्स की सेफ्टी को बढ़ावा दे सकते हैं। वजारत दाखिला का कहना है कि अगर हम ट्रैफिक रेगुलेशंस फॉलो करें तो स्कूल के आसपास का माहौल ज्यादा सिक्योर और स्टूडेंट्स के लिए सेफ बन जाता है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।
3: बस बहुत हो गया रूटीन, नीड एन एस्केप, एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए, तो लॉक हो जाओ FM 107 के साथ, क्योंकि आ गया है

0: Escape Room. Escape Room. The ultimate mind workout as pure fun. Fun. यहाँ traffic नहीं, tricky wordplay है. Boring meetings नहीं, brain teasing riddles है. जहाँ contestants navigate करेंगे audio challenges around the clock. ये है आपका weekly escape into a world of puzzles and excitement. Excitement.
1: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopehar 1:30 baje se. Only on FM 107. Dil se, desi se, desi.
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें. आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
3: Maximum music, maximum fun
4: on FM 107. Dil se desi.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
3: अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह लिसनर्स, आज हम एक नहायत अहम मौजू पर बात करेंगे और वो है वैक्सीनेशन की अहमियत और वैक्सीनेशन कैसे बीमारियों से हमारी हिफाजत करती है। वैक्सीन जो जदीद तिब की एक बहुत बड़ी कामयाबी है, ये हमें मीजल्स, पोलियो, हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा और टीबी जैसी खतरनाक बीमारियों से बचाने में अहम

0: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, FM 107, दिल से देसी, दिल से देसी।
1: Absolute cinema.
2: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। बट डोंट वरी, मैं हूं ना। भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर फ्राइडे शाम 7:15 RJ फजील के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
4: आज ही राब्ता करें
3: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
5: आर यू रेडी? फ्राइडे 9 PM लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको।
6: टॉप 10 काउंटडाउन।
5: सबसे जबरदस्त गाने, लेटेस्ट हिट्स और आप

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
3: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सामिने किराम, प्रोग्राम तहफीमुल कुरान में आज हम नहायत ही एक अहम आयत पर गुफ्तगू करने वाले हैं और वो आयत है आयतुल कुर्सी। आयतुल कुर्सी के साथ साथ सूरतुल फातिहा पर भी गुफ्तगू होगी। इब्तिदा ही में आपको बता दें कि इमाम गजाली रहमतुल्लाह कुरान के उलूम को दो हिस्सों में बयान करते हैं। एक हिस्सा वो है जो हमें अल्लाह ताला की मारिफत देता है, यानी अल्लाह कौन है, उसकी सिफात क्या हैं, उसकी अजमत क्या है, और दूसरा हिस्सा वो है जो हमें बताता है कि अल्लाह तक पहुँचने का रास्ता क्या है, बंदा अपने रब की तरफ कैसे चले, कैसे इबादत करे, कैसे हिदायत मांगे। तो इसी जाविये से सूरह फातिहा को देखें तो ये अजीब सूरत है। एक हदीस कुदसी में आता है कि अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने नमाज को अपने और अपने बंदे के दरमियान तकसीम कर दिया है। जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तो अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे ने मेरी हम्द की। जब बंदा कहता है रहमान रहीम तो अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। जब बंदा कहता है मालिकी यौमिद्दीन तो अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे ने मेरी अजमत बयान की। तो ये फातिहा का पहला हिस्सा है, ये अल्लाह की मारिफत है, अल्लाह की हम्द है, अल्लाह की रुबूबियत रहमत और मालिकियत का इकरार है। फिर बंदा कहता है इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, ए अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। यहाँ से बंदे का रास्ता शुरू होता है। फिर दुआ आती है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा।

यही मनाजिर देखे थे, कान कहेंगे हमने यही बातें सुनी थी, यहाँ तक कि जमीन भी गवाही देगी कि उस पर क्या कुछ हुआ था। सोचिए सामने किराम, जिस जिस्म को हम अपनी मिल्कियत समझते हैं वही क्यामत के दिन अल्लाह के हुक्म से सच बोलने लगेगा। इसीलिए इंसान अपने आज़ा को गुनाहों में इस्तेमाल न करे, क्योंकि यही आज़ा कल उसके खिलाफ गवाह बनेंगे। सामिन किराम, ये तसव्वुर हमारे अंदर एक ज़बरदस्त एहसास ज़िम्मेदारी पैदा करता है। जब कोई इंसान तन्हाई में गुनाह करता है तो उसे लगता है कि कोई नहीं देख रहा है, लेकिन ईमान वाला जानता है कि अल्लाह देख रहा है, फरिश्ते लिख रहे हैं और मेरा अपना जिस्म भी सब कुछ महफूज कर रहा है। इसलिए मोमिन लोगों से नहीं बल्कि असल में तो वो अपने रब से हया करता है। क़यामत के दिन सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी उठाए जाएंगे। इस्लाम हमें बताता है कि अल्लाह की अदालत इतनी कामिल है कि अगर एक जानवर ने दूसरे पर जुल्म किया होगा तो उसका भी इंसाफ होगा। फिर इंसान क्यों समझे कि वो बग़ैर हिसाब के बच जाएगा, और यही अल्लाह के अदल की शान है। समझ कराम, फिर कुरान हमें अल्लाह की माइयत यानी अल्लाह के साथ होने के मफहूम की तरफ भी रहनुमाई देता है। अल्लाह हर जगह अपने इल्म के साथ मौजूद है, उससे कोई चीज़ छुपी हुई नहीं। लेकिन कुरान एक और माइयत का भी जिक्र करता है। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, यानी अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, और फरमाया इन्नल्लाह मअल्मुत्तकीन, अल्लाह मुत्तकी लोगों के साथ है। इन्हें अल्लाह के इल्म तो हर एक के साथ है, लेकिन उसकी ख़ास मदद, रहमत और नुसरत अहल ईमान, अहल सब्र और अहल तक्वा के साथ होती है। ये मोमिन के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। आज साइंस भी हमें बता रही है कि कायनात का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसे हम देख ही नहीं सकते। माहिरीन फलकियात डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की बात करते हैं, यानी वो खुद तस्लीम करते हैं कि कायनात का बेशतर हिस्सा हमारी निगाहों से ओझल है। कुरान तो 1400 साल पहले हमें बता चुका था कि सिर्फ ये मादी दुनिया ही हकीकत नहीं बल्कि एक आलम गैब भी है। फरिश्ते हैं, अर्श है, कुर्सी है, लोहे महफूज है, जन्नत है, जहन्नम है, ये सब हकीकत है, अगरचे हमारी आंखें इन्हें इस दुनिया में नहीं देख सकती। समझ कराम, मोमिन की आज़मत यही है कि वो सिर्फ दिखाई देने वाली चीज़ों पर ईमान नहीं रखता बल्कि अल्लाह के बताए हुए गैबों पर भी ईमान रखता है। अहादीस में आता है कि अल्लाह के अर्श और कुर्सी की वसअत का तसव्वुर इंसानी अक्ल से कहीं बढ़कर है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी मिसालें बयान फरमाईं जिनसे हमें सिर्फ अंदाज़ा हो सके कि अल्लाह की मखलूक कितने अजीम है। लेकिन उलमा ने हमेशा ये बात वाजे की है कि इन सिफात की कैफियत हमें मालूम नहीं। हम ना अल्लाह को मखलूक पर कयास करते हैं और न उसकी सिफात को इंसानी सिफात जैसा समझते हैं। अहले सुन्नत का अकीदा यही है कि अल्लाह की सिफात बरहक हैं, जैसे अल्लाह ने बयान फरमाई हम वैसा ही ईमान रखते हैं, लेकिन कैसे उसकी कैफियत अल्लाह ही बेहतर जानता है। इसीलिए जब बंदा अल्लाह की अजमत पर गौर करता है तो आखिरकार उसका दिल एक ही जुमला कहने पर मजबूर हो जाता है, अल्लाहु अकबर, कि अल्लाह हर उस चीज़ से बड़ा है जिसका इंसान तसव्वुर कर सकता है। अल्लाह सबसे बड़ा है, हमारी अक्ल महदूद है, हमारी निगाह महदूद है, हमारा इल्म महदूद है, लेकिन अल्लाह की ज़ात, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह का इल्म और अल्लाह की अजमत हर हद से बुलंद है। इसीलिए बंदा आखिरकार सजदे में गिर जाता है, क्योंकि सजदा ही वही मकाम है जहां अकल आजिज़ हो जाती है और दिल अपने रब के सामने झुक जाता है। सामने किराम, जब इंसान कुरान पढ़ता है तो उसे जन्नत, फरिश्तों, अर्श, कुर्सी और आखिरत के बेशुमार मनाजिर मिलते हैं। लेकिन यहाँ एक अहम बात समझने की ज़रूरत है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा का एक नहायत खूबसूरत मकूला है कि दुनिया और आखिरत की बहुत सी चीज़ों के नाम तो एक जैसे हैं लेकिन हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। यानी हम जन्नत में नहरें पढ़ते हैं, फल पढ़ते हैं, महल्लात पढ़ते हैं, लेकिन ये दुनिया वाले फल और नहरें नहीं हैं। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में वो नेमतें हैं जिन्हें न किसी आँख ने देखा, न किसी कान ने सुना और न कभी किसी इंसान के दिल में उनका ख्याल आया। यानी कुरान हमें
कुछ मिसालें देता है।

0: ताकि हमारा जहन कुछ अंदाज़ा कर सके, लेकिन असल हकीकत हमारी सोच से कहीं ज़्यादा बुलंद है। इसी तरह कुरान हमें अल्लाह की कुदरत की तरफ मुतवज्जे करता है। अल्लाह फरमाता है कि आसमान और ज़मीन की हिफाजत उसे ज़रा भी नहीं थकाती। समीन इकराम, ज़रा सोचिए, हम चंद घंटे काम करें तो थक जाते हैं, एक छोटा सा इदारा चलाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अल्लाह पूरी कायनात को हर लम्हा संभाल रहा है। करोड़ों कहकुशाएं, अरबों सितारे, लाखों सैयारे, हर इंसान, हर जानवर, हर पत्ता, हर कतरा, हर सांस, और ये सब अल्लाह के लिए न बोझ है न मशक्क़त। इसीलिए आयतुल कुर्सी के आखिर में ये फरमाया गया, वहुवल अलियुल अज़ीम, वही बुलंद भी है और अजमत वाला भी। कुरान की एक और नहायत महबूब सूरत है सूरत यासीन। सदियों से मुसलमानों की ज़िंदगी में इस सूरत का एक ख़ास मकाम रहा है। उलमा ने इसकी फजीलत पर बहुत गुफ्तगू की। बाज़ अहादीस इसके फजाइल में सही हैं, बाज़ रवायात के बारे में मुहद्दिसीन ने ज़ौफ़ का जिक्र किया है, लेकिन अहले इल्म ने यह भी वाज़ेह किया है कि फजाइल आमाल में अगर रिवायत शदीद ज़ौफ़ वाली ना हो तो बहुत से फुकहा और मुहद्दिसीन ने उस पर अमल की गुंजाइश बयान की है। इसीलिए उम्मत मुस्लिमा में सदियों से सूरह यासीन की तिलावत रूहानी बरकत के तौर पर जारी रही है। असल चीज़ यह है कि इंसान कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत करे, उसके मानी पर भी गौर करे। इसी तरह अगर कुरान की किसी सूरत को तौहीद का निचोड़ कहा जाए तो वो है सूरह इखलास। सिर्फ 4 मुख्तसर आयात, लेकिन इन 4 आयात में अल्लाह ताला ने अपनी ऐसी जाम पहचान कराई है कि पूरी इस्लामी अकीदा की बुनियाद इन्हीं पर कायम है। कुरान कहता है, कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए अल्लाह एक है, ऐसा वाहिद कि उसकी कोई मिसाल नहीं, कोई शरीक नहीं, कोई हमसर नहीं, कोई उस जैसा नहीं। फिर फरमाया, अल्लाहु समद। समद एक नहायत अजीम लफ्ज़ है, यानी पूरी कायनात अपनी हर ज़रूरत में उसी की मोहताज है, लेकिन वो किसी का मोहताज नहीं। हम सब मोहताज हैं, हमें पानी चाहिए, खाना चाहिए, नींद चाहिए, डॉक्टर चाहिए, लेकिन अल्लाह किसी चीज़ का मोहताज नहीं, बल्कि हर चीज़ उसी की मोहताज है। फिर फरमाया, लम यलिद वलम यूलद, न उसकी कोई औलाद है और न वो किसी की औलाद। यह आयत उन तमाम बातिल अकायद की नफी करती है जिनमें अल्लाह के लिए बेटे बेटियाँ या नसब साबित किया गया। हमारा रब अल्लाह ताला न किसी से पैदा हुआ है और न उससे कोई पैदा होता है। फिर आखिरी ऐलान है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसका कोई हमसर, कोई बराबर, कोई मिसल नहीं, न ज़ात में, न सिफात में, न कुदरत में, न इल्म में, न रहमत में, न बादशाही में, यही खालिस तौहीद है। समीने किराम, उलमाए अकीदा कहते हैं कि अल्लाह ताला को किसी मखलूक के साथ एक ही दर्जे में रख कर नहीं देखा जा सकता। हम इंसान एक नौ हैं, फरिश्ते एक नौ हैं, जानवर एक नौ हैं, दरख्त एक नौ हैं, लेकिन अल्लाह किसी नौ का फ़र्द नहीं, वो मखलूक की तरह किसी जिन्स, ख़ानदान या तबके में भी शामिल नहीं, वो अपनी ज़ात में एकता है। इसलिए अक़ल जहाँ रुक जाती है वहाँ ईमान शुरू होता है। हम अल्लाह को उसकी बताई हुई सिफात के मुताबिक मानते हैं, लेकिन इन सिफात की कैफियत के बारे में हमारा कोई इल्म नहीं है, ना हम इनकी कैफियत को मालूम करने की कोशिश करते हैं। प्रोग्राम के इस मरहले में समय निकराम अब रुख करेंगे एक छोटे से वक्फे की तरफ। वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है प्रोग्राम के इख्तितामी मरहले में। जुड़े रहिए हमारे साथ।
1: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
0: सामने किराम, प्रोग्राम तहफीमुल कुरान के आज के इस मुबारक हल्के के इख्तिताई मरहले तक हम पहुँच चुके हैं, और इस इख्तिताई मरहले

में हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करने वाले हैं जो शायद हमारी पूरी जिंदगी का रुख बदल सकता है। कुरान हमें बार बार ये एहसास दिलाता है कि दुनिया मुस्तकिल क़ियामगाह नहीं बल्कि एक मुख्तसर सफ़र है। ये अहम नहीं कि हमने कितने साल जिंदगी गुजारी बल्कि अहम तो ये है कि हमने ज़िंदगी को किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया। अल्लाह ताला ने इंसान को सिर्फ खाने कमाने खेलने और दुनियावी मसरूफियात में खो जाने के लिए पैदा नहीं किया बल्कि अपनी मारिफत इबादत और आखिरत की तैयारी के लिए पैदा फरमाया है। कुरान में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया हमें यही सबक देता है। जब उन्होंने अल्लाह की कुदरत के आसार देखे तो उनका मकसद सिर्फ मालूमात हासिल करना नहीं था बल्कि दिल का यकीन बढ़ाना था। उन्होंने अर्ज किया रब्बे अरिनी कैफ तुहील मौता। अल्लाह ताला ने फरमाया वलम तुमिन। उन्होंने अर्ज किया बला वला किल्ली इत्मइन कल्बी, यानी ईमान तो मौजूद था मगर दिल मजीद इत्मीनान चाहता था। यही मोमिन का सफ़र है। ऐसा यकीन हासिल करना ज़रूरी है जो ज़िंदगी बदल दे। सामिन किराम, आज इंसान एक नई आजमाइश से गुजर रहा है। पहले इंसान हकीकत पर रहता था, अब बहुत से लोग वर्चुअल दुनिया में रहते हैं। वर्चुअल दोस्ती, वर्चुअल मुलाकातें, वर्चुअल तफरी, वर्चुअल शोहरत और कभी कभी तो इंसान हकीकत से ज़्यादा इस मसनूई दुनिया में जीना शुरू कर देता है। कुरान इंसान को हकीकत की तरफ बुलाता है। कुरान कहता है कि ज़मीन व आसमान में गौर करो, अपनी तख्लीक में गौर करो, अपने रब की निशानियों को देखो, यानी हकीकत को पहचानो, धोखे में न रहो। अगर इंसान सारी ज़िंदगी स्क्रीनों में गुम रहा लेकिन अपने रब को न पहचान सका तो उसने ज़िंदगी का असल मकसद खो दिया है। सामिन किराम, औलिया और उलमा हमेशा एक बात कहते आए हैं कि दुनिया में सबसे कीमती चीज़ वक्त है। खोया हुआ माल वापस आ सकता है लेकिन गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। इसीलिए कुरान कसम खाता है वल असर, ज़माने की कसम। क्यों? क्योंकि इंसान का असल सरमाया यही वक्त है। अफसोस यह है कि आज इंसान घंटों ऐसी चीज़ों में गुजार देता है जिनका न दुनिया में फ़ायदा है न आखिरत में। इस्लाम तफरी से मना नहीं करता, आराम से मना नहीं करता लेकिन फजूल की ज़िंदगी से ज़रूर रोकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो नेमतें ऐसी हैं जिनमें अक्सर लोग खसारे में रहते हैं, सेहत और फरागत। आज अगर हम अपने एक दिन का जायज़ा लें तो शायद हमें खुद अंदाज़ा हो जाए कि कितना वक्त अल्लाह की याद में गुजरा और कितना वक्त बेमकसद चीज़ों में। सामने किराम, कुरान हमें दिल की नरमी भी सिखाता है। एक मोमिन सिर्फ अपने लिए नहीं जीता, वो दूसरों के दुख को भी महसूस करता है। अगर दुनिया में कहीं जुल्म हो रहा हो, किसी भूखे के पास खाना ना हो, किसी यतीम का सहारा ना हो तो एक मोमिन का दिल बेचैन हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन एक जिस्म की मानिंद है, अगर जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ हो तो पूरा जिस्म बेचैन हो जाता है। यही इस्लामी क़ुव्वत है, यही ईमान की अलामत है। सामने किराम, बचपन में इंसान खेलता है, यही फितरी बात है लेकिन अगर पूरी ज़िंदगी खेल ही में गुजर जाए तो फिर इंसान अपनी असल जिम्मेदारी भूल जाता है। कुरान हमें बार बार गौर फिक्र, तदब्बुर और अमल की दावत देता है। ज़िंदगी सिर्फ खेल नहीं, सिर्फ मुकाबला नहीं, सिर्फ दौलत नहीं बल्कि एक इम्तिहान है और उस इम्तिहान का नतीजा हमेशा की कामयाबी या हमेशा की नाकामी हो सकता है। सामने किराम, बाज़ अहले इल्म कहते थे कि दुनिया में एक ऐसी तन्हाई भी होती है जो इंसान को अल्लाह के करीब ले जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि इंसान लोगों से नफरत करे कि ना किसी इख्तियार कर ले बल्कि इसका मतलब ये है कि कभी कभी इंसान शोर से निकल कर खामोशी में अपने रब से ताल्लुक़ मजबूत करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नबूवत से पहले गारे हिरा में तन्हाई इख्तियार करते थे। इतिकाफ भी उसी तरबियत का हिस्सा है। रात की तन्हाई में तहज्जुद भी उसी लिए है क्योंकि जब दुनिया खामोश होती है तो दिल अपने रब की आवाज़ ज़्यादा आसानी से सुनता है। सामने किराम, इस्लाम में इल्म का मकसद सिर्फ मालूमात जमा करना नहीं बल्कि अल्लाह की पहचान हासिल करना है।
ایسا علم جو انسان کو اللہ کے قریب

0: घर छोटा है, गाड़ी छोटी है, तनख्वाह कम है, लोग अच्छे नहीं, हालात अच्छे नहीं। हालांकि अगर हम अपनी नेमतों को गिनना शुरू करें तो ज़िंदगी कम पड़ जाएगी। अल्लाह फरमाता है, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, अगर तुम अल्लाह की नेमतें शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। तो आज की गुफ्तगू का खुलासा तीन बातों में है। पहली बात, अल्लाह की नेमतों को पहचानिए। दूसरी बात, हर हाल में शुक्रगुजार रहिए। और तीसरी बात, कुरान को सिर्फ तिलावत ही नहीं बल्कि ज़िंदगी की किताब बनाइए। जिस घर में कुरान समझकर पढ़ा जाए वहाँ दिल जिंदा होते हैं, जिस माशरे में कुरान समझा जाए वहाँ इंसाफ पैदा होता है, और जिस इंसान के दिल में कुरान उतर जाए उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। अल्लाह ताला हमें कुरान करीम को समझने, उस पर अमल करने, उसकी नेमतों का शुक्र अदा करने और अपनी पूरी ज़िंदगी को तौहीद, इखलास और तक्वा के साथ गुजारने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन या रब्बल आलमीन। इसी दुआ के साथ तकनीकी मावन शकीब अहमद और मुझे तलहा अशरफुज़्ज़मान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए अपने और अपने अहले खाना का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
2: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
3: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस, और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
2: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360। कतर बिजनेस 360, जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में।
3: हर मंडे सुबह 10 बजे से आप जनाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107।
2: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
3: दोस्तों, लिमोजीन चलाने वाले ड्राइवर्स के लिए एक अहम पैगाम ये है कि सेफ ड्राइविंग सिर्फ आपकी नहीं बल्कि सबकी सेफ्टी की गारंटी होती है। याद रखिए, फार लेफ्ट फास्ट लेन का इस्तेमाल आपके लिए स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है या मना है। रोड पर रैंडम स्टॉपिंग मत कीजिए, यानी गाड़ी कहीं भी मत रोक दीजिए। रुकना सिर्फ तब अलाउड है जब एप्लीकेशन के जरिए रिक्वेस्ट मिलती है, और हमेशा स्पेसिफाइड स्पीड लिमिट का ख्याल रखिए क्योंकि स्लो ड्राइविंग भी मेन रोड्स पर ट्रैफिक के लिए खतरा बन सकती है। सेफ्टी के इन सिंपल रूल्स पर अमल करके आप अपनी हिफाजत करते हैं और दूसरों के सफर को भी महफूज बनाते हैं। वजारत दाखिला का कहना है, स्टे सेफ, ड्राइव सेफ। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।
4: क्या आपने कभी खुद से पूछा है, अगर आज मुझे किसी की जरूरत ना हो तो मैं कौन हूं? अक्सर औरतें दूसरों की खुशी में अपनी आइडेंटिटी भूल जाती हैं, मगर अब वक्त है खुद से मिलने का। आरजे ए फॉर अमिता लेकर आ रही हैं एक नया सफर, मेरी पहचान। बर्नआउट से लेकर नए बिजनेसेस तक, सेहत से लेकर सुकून तक, ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्रीज तय करना चाहती है। आप सिलसिले की एक कड़ी नहीं, आप खुद

0: आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

0: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से, और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीत। सुनिए हदीत टू हैबिट आरजे महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीत सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीत, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। हदीत टू हैबिट, हदीत टू हैबिट, दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी
1: अलैकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। आज हम बात करेंगे अहमद अलादीन के बारे में। अहमद अलादीन कतर के उभरते हुए फुटबॉल सितारों में से एक हैं, जो अपनी रफ्तार, ड्रिबलिंग और अटैकिंग स्टाइल की वजह से मशहूर हैं। अहमद अलादीन कतर के वेरियस एज ग्रुप्स को क्रॉस करते करते आज वो सीनियर टीम के एक अहम मेंबर हैं। उन्होंने कम उम्र से ही फुटबॉल में दिलचस्पी दिखाई और लगातार मेहनत के जरिए प्रोफेशनल सतह तक अपना सफर तय किया। विंगर के तौर पर वो मैदान में दोनों किनारों से खतरनाक हमले करने की सलाहियत रखते हैं और अपनी टीम के लिए स्कोरिंग चांसेस पैदा करते हैं। अहमद की सबसे बड़ी खूबी उनकी स्पीड और डिफेंडर्स को वन ऑन वन सिचुएशन में बीट करने की सलाहियत है। अच्छा, वो तेज़ काउंटर अटैक्स में भी अहम किरदार अदा करते हैं और अपनी एक्यूरेट क्रॉसिंग और फिनिशिंग से मैच का रुख तब्दील कर सकते हैं। क्लब फुटबॉल के साथ साथ उन्होंने कतर की कौमी टीम की नुमाइंदगी भी की और मुख्तलिफ इंटरनेशनल इवेंट्स मैचेस में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। यंग फुटबॉलर्स के लिए अहमद एक मिसाल हैं कि मेहनत, डिसिप्लिन और मुसलसल प्रैक्टिस से बुलंद मकाम हासिल किया जा सकता है। उनका जज्बा और परफॉर्मेंस कतर में फुटबॉल की बढ़ती हुई मकबूलियत को मजबूत बनाने में मददगार साबित हो रही है। आने वाले सालों में भी उनसे मजीद बेहतरीन खेल और यादगार परफॉर्मेंसेस की उम्मीद की जाती है। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शाकिब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।
2: Maximum music, maximum fun.
0: On FM 107, Dil Se Desi. Morning,

0: number one hits music station.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: Kabhi bhi aur kahi bhi, aap sun sakte hain FM 107.
3: FM 107.
1: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
4: Hawa ke jhonke aaj mausamon se toot gaye.
5: कुछ लोगों को पुराने जमाने के गाने पसंद है, कुछ लोगों को नए जमाने के गाने पसंद है। और कुछ लोगों को सिर्फ हिट गाने ही सुनने हैं। इसीलिए मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा शो जहाँ पर आपके मर्जी के गाने प्ले होंगे, जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो।
3: द रिक्वेस्ट शो
5: हर शाम 4 से 5 फजील के साथ,
3: फजील के साथ
5: संडे से थर्सडे ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी,
3: दिल से देसी।
6: दोस्तों, आग लग जाने के दौरान एलिवेटर्स या लिफ्ट का इस्तेमाल करना बहुत खतरनाक हो सकता है। जब बिल्डिंग में आग लग जाती है तो इलेक्ट्रिक सप्लाई अक्सर अनस्टेबल हो जाती है, जिसकी वजह से लिफ्ट रुक सकती है या आप फंस सकते हैं और अंदर मौजूद लोगों को धुएं और शदीद गर्मी का सामना करना पड़ सकता है, जो आपकी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा रिस्क बन सकता है। सेफ्टी एक्सपर्ट्स हमेशा ये रिकमेंड करते हैं कि फायर सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी एग्जिट और सीढ़ियों या स्टेयर्स का ही इस्तेमाल किया जाए। सीढ़ियां ओपन और एक्सेसिबल होती हैं और उनकी डिजाइन ही इवैक्यूएशन के लिए बनाई जाती है, या उनको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वहां आग लगने की सूरत हाल में आप आसानी से निकल सकें। वजारत दाखिला का कहना है कि याद रखें, ऐसी सिचुएशन में सही फैसला लेना आपकी जिंदगी और मौत का फर्क बन सकता है, इसलिए अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करें और आग लगने की सूरत हाल में लिफ्ट से हर सूरत परहेज करें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की।

0: वुमेन इन स्पोर्ट्स आरजे सफा के साथ हर मंडे दोपहर 1 बजे से सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन एफएम 107 दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
3: अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। लिसनर्स, आज हम एक नहायत अहम मौजू पर बात करेंगे और वो है वैक्सीनेशन की अहमियत और वैक्सीनेशन कैसे बीमारियों से हमारी हिफाजत करती है। वैक्सीन जो जदीद तिब की एक बहुत बड़ी कामयाबी है, ये हमें मीजल्स, पोलियो, हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा और टीबी जैसी खतरनाक बीमारियों से बचाने में अहम किरदार अदा करती है। लेकिन सवाल ये है कि वैक्सीन काम कैसे करती है। हमारे जिस्म में एक कुदरती दिफाही निज़ाम मौजूद है जिसे इम्यून सिस्टम कहा जाता है। जब वायरस या बैक्टीरिया जिस्म में दाखिल होते हैं तो ये निज़ाम उन जरासीम के खिलाफ लड़ता है। वैक्सीन में बीमारी पैदा करने वाले जरासीम का कमज़ोर और गैर फाल या बेज़र हिस्सा शामिल किया होता है और जब ये जिस्म में दाखिल किया जाता है तो हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो इसे पहचानता है और इसके खिलाफ जो दिफाई कुव्वत है वो पैदा करना सीख लेता है, बगैर इसके कि कोई इंसान बीमार हो उस बीमारी की वजह से। इस अमल के नतीजे में जिस्म में बीमारी के खिलाफ इम्यूनिटी पैदा हो जाती है और बाद में अगर असल बीमारी का जो जरासीम है वो जिस्म में दाखिल हो तो फिर हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है फौरी तौर पर उसका मुकाबला करता है और बीमारी को संगीन होने से रोकता है। वैक्सीन खास तौर पर शीखार बच्चों और कम उम्र बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम अभी मुकम्मल तौर पर मजबूत नहीं होता। वैक्सीन सिर्फ एक फर्द को ही नहीं बल्कि पूरे मुआशरे को तहफ्फुज़ फराहम करती है। जब ज्यादा अफराद वैक्सीन लगवाते हैं तो बीमारियों के फैलने के इम्कानात कम हो जाते हैं। कुछ अफराद वैक्सीन के बारे में बहुत से खदशात रखते हैं लेकिन हकीकत ये है कि वैक्सीन इस्तेमाल से पहले सख्त साइंसी जांच और तहकीक के मराहल से गुजरती है ताकि उनकी हिफाजत और को और ज्यादा मौसर और यकीनी बनाया जा सके। वैक्सीन के बाद बाजू में कुछ हल्का दर्द हो सकता है, सूजन या फिर मामूली बुखार हो सकता है लेकिन ये अलामतें बिल्कुल आरजी हैं और बहुत जल्द ख़त्म हो जाती हैं। याद रखिए कि बीमारियों के खतरात वैक्सीन के मामूली और वक्ती असरात से कहीं ज़्यादा संगीन होते हैं। अपने डॉक्टर या हेल्थ सेंटर से राबता कीजिए और यकीन दहानी करें कि आप और आपके अहले खाना की तमाम ज़रूरी वैक्सीन जो हैं वो मुकम्मल हैं। सेहतमंद रहिए और वैक्सीनेशन के जरिए अपनी और अपने खानदान की हिफाजत कीजिए।
0: मैक्सिमम म्यूजिक, मैक्सिमम फन
1: ऑन FM 107। दिल से देसी।

0: रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं इको स्विच ऑन FM 107, जहां हम बात करते हैं उन छोटी छोटी लाइफस्टाइल हैबिट्स की जो मिलकर हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत बड़ा फर्क पैदा करती हैं। भाई देखिए, आज का टॉपिक शायद सुनकर आपको ऐसा लगे कि भाई ये तो बस इतनी सी बात है और क्या है, कुछ भी नहीं है, लेकिन यकीन मानिए कभी कभी सबसे छोटी से छोटी आदत ही सबसे बड़ा असर छोड़ जाती है। आज हम बात कर रहे हैं सेविंग वाटर वाइल ब्रशिंग, यानी दांत साफ करते हुए मेहरबानी करके पानी बचाएं। हम सब दिन भर में कम से कम दो बार या एक बार तो ब्रश करते ही करते हैं, ये हमारी रूटीन का कॉमन सा हिस्सा है। ये रूटीन इतनी कॉमन है कि हम इस पर कभी गौर ही नहीं करते, कोई जरूरत ही नहीं है गौर करने की। देखिए, ब्रश हाथ में आता है, टूथपेस्ट हम उसके ऊपर लगाते हैं और बिना सोचे समझे क्या होता है, कभी कभी टैप भी ऑन रह जाता है। फिर दो मिनट तक हम जो है वो टीथ ब्रश करते रहते हैं, अपने दांत ब्रश करते रहते हैं, पानी बेइंतहा चलता रहता है टैब में और हम ये समझते हैं कि बस थोड़ा सा ही तो टाइम हुआ है, थोड़ा सा ही तो पानी गया है, या कभी कभी तो पानी के ऊपर तवज्जो भी नहीं जा रही होती जो रनिंग टैप वाटर चल रहा होता है। लेकिन इको स्विच हमें ये सिखाता है कि हर रोज एक रूटीन में छुपा हुआ वेस्ट ही असली चैलेंज होता है। जब रोजाना की छोटी छोटी आदतें बदली जाती है ना, तभी दुनिया बदलती है। चलिए साथियों, एक सीन इमेजिन करते हैं, ठीक है? ये मेरे ख्याल से सबकी डेली रूटीन होती होगी। सुबह 6:45 बज रहे होते हैं, हम सब जो है ना वो अलार्म बड़ी मुश्किल से बंद करते हुए उठते हैं, बच्चों को स्कूल जाना होता है, किसी ने अपनी ऑफिस की मीटिंग्स अटेंड करनी होती हैं, किसी की ऑनलाइन क्लास होती है। होता क्या है, बाथरूम में ब्रश चल रहा होता है, बाथरूम में हम ब्रश करना शुरू करते हैं, लेकिन साथ साथ मोबाइल नोटिफिकेशंस भी चेक कर रहे होते हैं, कपड़े भी सेलेक्ट हो रहे होते हैं और दिमाग भी हमारा पूरे दिन भर के प्लान्स ऑपरेट कर रहा होता है, चला रहा होता है साथ साथ। और इस पूरे वक्त में पता है क्या होता है, वही काम होता है जो हम रोज कर रहे होते हैं। सुबह उठ के जब ब्रश करते हैं तो टैब ऑन करते हैं, पानी का टैब ऑन करते हैं, तो भाई उससे क्या होता है, टैब खुला रहता है। कभी किसी ने उस बहते हुए पानी की आवाज को नोटिस ही नहीं किया, वो बस बहता रहता है और हर सेकंड के साथ लीटर्स के हिसाब से भाई पानी ड्रेनेज में जा रहा होता है। अब जरा सोचिए, अगर एक घर में 5 लोग रहते हैं तो हर शख्स सिर्फ ब्रशिंग के दौरान ही टैप खुला छोड़ देता है, तो रोजाना तकरीबन 100 लीटर पानी से ज्यादा तो वेस्ट हो ही जाता है ना। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पानी का ज्यादा हिस्सा हम यूज कम करते हैं और वेस्ट ज्यादा करते हैं। साथ ही यहाँ पर थोड़ा सा थिंक डिफरेंटली करते हैं ना। देखिए, अगर पानी की जगह पैसा बह रहा हो, थोड़ा सोचें, कुछ आपका माइंडसेट फ्लिप करते हैं। पानी की जगह अगर पैसा बह रहा होता तो एक छोटा सा सवाल है, पानी की जगह अगर पैसा बह रहा होता, अगर वॉश बेसिन के टैप से पानी की जगह पैसा बह रहा होता, मान लीजिए हर सेकेंड ₹1 या $1 ड्रेन में जा रहा होता, तो क्या हम टैप इतनी देर तक खुला छोड़ देते? बिल्कुल नहीं ना, हम फौरन उस टैप को बंद कर देते भाई। लेकिन जब पानी बहता है ना तो हमें उसकी वैल्यू का कोई एहसास ही नहीं होता, हमें महसूस ही नहीं होता, क्योंकि वो एक ट्रांसपेरेंट सी चीज है, ना कोई आवाज करती है ना कोई शिकायत करती है। लेकिन याद रखिए, वाटर बिल सिर्फ पैसों का नहीं होता, एनवायरमेंट का भी होता है। साथियों, अब बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। देखें, एक रनिंग टैब एक मिनट में तकरीबन 6 से 10 लीटर पानी वेस्ट कर सकता है। अगर ब्रशिंग के दौरान 2 मिनट के दौरान टैप खुला रखा जाए तो लगभग 10 से 20 लीटर पानी भी जा सकता है। अच्छा, अगर एक शख्स सिर्फ ब्रश के वक्त टैप बंद करता है या अपने आप को टैप बंद करने की आदत देता है तो वो साल भर में हजारों लीटर पानी बचा सकता है। और दुनिया में आज भी 2 बिलियन से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके पास साफ पीने का पानी तक मुयस्सर नहीं है, यानी जिस पानी को हम बिना सोचे समझे ड्रेन में भेज रहे होते हैं ना, दुनिया के बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ये नेमत मुयस्सर नहीं है। जरा सोचिए, पर्सपेक्टिव कितना चेंज हो जाता है हमारा अगर हम इसके ऊपर ध्यान दें तो। देखें, अक्सर हम सिर्फ इतना ही सोचते हैं कि भाई पानी वेस्ट हो गया, लेकिन असल कहानी तो उससे भी ज्यादा बड़ी होती है भाई। देखिए, हर ड्रॉप जो हमारे घर तक पहुंचता है उसके पीछे पंपिंग स्टेशंस होते हैं, फिल्टराइजेशन होती है, फिल्ट्रेशन प्लांट्स होते हैं, पाइपलाइंस होती हैं और बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी

0: यानी जब हम पानी वेस्ट करते हैं ना, तो हम सिर्फ पानी वेस्ट नहीं कर रहे होते, बल्कि उस पानी को ट्रीट और ट्रांसपोर्ट करने वाली एनर्जी को भी वेस्ट कर रहे होते हैं। और हमारा इको स्विच इसी चेन रिएक्शन को रोकता है। एक टैप बंद करना सिर्फ एक एक्शन नहीं होता, बल्कि पूरी सप्लाई चेन के लिए एक पॉजिटिव डिसीजन होता है। देखें, आपके घर का इको चैलेंज एक मैं आपको देती हूँ। आज एक छोटा सा फैमिली चैलेंज ट्राई करें। देखिए, कल सुबह से ना घर के हर मेंबर को सिर्फ एक काम करना है, ब्रश करते वक्त टैप को बंद रखना है। दिन के एंड पर देखिएगा कि कितनी दफा किसने किसको याद दिलाया कि टैप बंद रखो। हो सकता है बच्चे पेरेंट्स को रिमाइंड करा रहे हों, हो सकता है पेरेंट्स बच्चों को रिमाइंड करा रहे हों, और आहिस्ता आहिस्ता ये चैलेंज एक हैबिट बन जाए। देखिए, एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करने के लिए हमेशा बड़ी कैंपिंग की जरूरत नहीं होती, कभी कभी सिर्फ एक फैमिली चैलेंज ही काफी होता है। साथियों, इसी के साथ आपको अब मैं बात कर लेती हूँ, आपके साथ कुछ शेयर कर लेती हूँ प्रैक्टिकल इको स्विच टिप्स। देखिए, सबसे पहली टिप तो ये है कि ब्रश करते वक्त टैप को सिर्फ उस वक्त ऑन करें जब ब्रश गीला करना हो या उसे साफ करना हो। दूसरी बात ये कि गार्गल करने के लिए या मुंह साफ करने के लिए आप बजाय इसके कि आप रनिंग टैप वाटर खोल के खड़े हो जाए, आप एक कप एक ग्लास इस्तेमाल करें, इससे पानी का इस्तेमाल बहुत कम हो जाता है। तीसरी बात ये कि अगर मुमकिन हो तो लो फ्लो टैप्स इस्तेमाल करें, यानी पानी का प्रेशर मेंटेन रखते हैं वो टैप्स, लेकिन कंजम्पशन कम करते हैं पानी की। चौथी बात ये, बच्चों को, छोटी उम्र के जो बच्चे होते हैं ना, उनको ये हैबिट सिखाएं कि ब्रश करते हुए पानी का टैप बंद रखें। जो आदतें बचपन में इंसान सीखता है ना साथियों, वो जिंदगी भर साथ रहती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वॉश बेसिन के पास एक छोटा सा स्टिकी नोट लगा दें, टैप ऑफ व्हाइल ब्रशिंग। कभी कभी सिर्फ एक छोटा सा रिमाइंडर ही आदत बदलने के लिए काफी होता है साथियों। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, एक इंटरेस्टिंग बात नोटिस की गई है कि जब घर का एक मेंबर एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल हैबिट अडॉप्ट करता है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता घर के बाकी लोग भी उसे कॉपी करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह कल्चर बनता है, पहले एक शख्स टैप बंद करता है, फिर पूरा घर, फिर बच्चे स्कूल में ये हैबिट अपनाते हैं, और फिर बाकी दोस्त भी आपसे ये चीज सीखते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके ये बात पूरी कम्युनिटी में फैलती है। इसीलिए भाई, इको स्विच सिर्फ एनवायरनमेंट की बात नहीं करता, इको स्विच पॉजिटिव इन्फ्लुएंस की भी बात करता है। साथियों, आज का इको स्विच सिर्फ इतना सा है, अगली बार जब आप ब्रश करें टैप को कंटिन्यूसली चलने ना दें, सिर्फ जरूरत के वक्त टैप को ओपन करें। इसी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सफा, और आप सुन रहे थे FM 107 पर इको स्विच। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और सिंपल लाइफस्टाइल हैबिट के साथ, जो हमारी जिंदगी भी बेहतर बनाएगी और हमारे प्लेनेट को भी हमारे लिए बेहतर बनाएगी। सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान। आज का टॉपिक है जानवरों पर रहम करना। इस्लाम सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि हर मखलूक के लिए रहमत का पैगाम देता है। जानवरों पर रहम करना भी एक बहुत बड़ी नेक आदत है। जब हम जानवरों के साथ नरमी से पेश आते हैं, उनको तकलीफ नहीं देते और उनका ख्याल रखते हैं, तो ये अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है। अक्सर लोग जानवरों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन इस्लाम हमें सिखाता है कि हर जिंदा मखलूक के साथ इंसानियत का रवैया रखा जाए। आज का अमल ये है कि किसी जानवर के लिए पानी या खाना रखें, या कम अज कम उनको तकलीफ देने से परहेज करें। ये था आज का मैसेज। आप सुन रही हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूँ आरजे मावश। फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ।
2: कानून हमें तहफ्फुज देता है और वजारत दाखिला के तमाम इदारे हर वक्त हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए मसरूफ हैं। MOI के इदारों की सर्विसेज जानने और नए कवानीन से वाकफियत के लिए हम हर हफ्ते पीर के दिन रात 8 बजे लेकर आते हैं प्रोग्राम पुलिस और आवाम, जहां आपकी मुलाकात होती है पुलिस अफसरान के साथ।
3: पुलिस और आवाम एवरी मंडे 8 PM लाइव ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
4: आप सुन रहे हैं FM 107।
0: दिल से देसी।
5: One step to 2030.
6: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया।
5: One step to 2030.
6: और दोस्तों, आज हम वापस से बात करने वाले हैं AI governed cities की, और उसमें भी हेल्थ केयर में AI के रोल की, जैसा मैंने कल आपसे कहा था। तो देखिए, AI गवर्न सिटीज का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा हेल्थ केयर सिस्टम है, स्मार्ट हॉस्पिटल्स। जी हाँ, AI हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स का रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली एनालाइज किया जाएगा। अब जरूरत नहीं है डॉक्टर्स की, आई मीन टू से एनालिसिस्ट की या किसी और की। ये सिस्टम जो है ना, वो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स को सजेशन देता है कि कौन सी ट्रीटमेंट जो है वो बेस्ट है, किस पेशेंट को कौन सी चीज ज्यादा सूट करती है। वहीं पर अगर मैं बात करूं AI की, तो यहाँ पे डिजीज को प्रिडिक्ट करने में भी AI बड़ी यूजफुल होगी। AI डेटा एनालाइज करके डिजीज का अंदाजा लगाएगा। अगर किसी एरिया में फ्लू या वायरस स्प्रेड हो रहा हो, तो सिस्टम पहले ही अलर्ट भेज देगा। ये देखिए कितना अपने आप में जो है वो अच्छा भी है और थोड़ा सा घबराने वाली बात भी है। वहीं पर कई बार आपने और हमने रिमोट ट्रीटमेंट के बारे में भी सुना और पढ़ा है, लेकिन हाँ, जो रिमोट ट्रीटमेंट है वो शायद 2030 में भरपूर तरीके से डोमिनेट। फ्यूचर में लोग घर बैठकर AI डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, जाना बहुत दूर की बात होगी। वेरेबल डिवाइसेस जैसे स्मार्ट वॉचेस हैं, हेल्थ डेटा भेजती रहेंगी और AI सिस्टम पेशेंट को एडवाइस वहीं से ऑटोमेटिकली करते रहेंगे, और ये सिस्टम कहलाएगा रिमोट ट्रीटमेंट। वहीं अगर मैं बात करूं इमरजेंसी रिस्पांस की, तो अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो AI सिस्टम फौरन एम्बुलेंस नियरेस्ट लोकेशन से भेज देगा। ट्रैफिक सिग्नल्स भी एम्बुलेंस के लिए ग्रीन हो जाएंगे। ये सारे चीज जो है वो AI से ड्रिवन होगा, ऑटोमेटिकली काम करेंगे चीजें। ये सिस्टम ह्यूमन लाइफ सेव करने में बहुत ज्यादा यूजफुल होगा, ऐसा माना जा रहा है। वहीं अगर मैं बात करूं सिक्योरिटी की, तो देखिए AI गवर्न सिटीज में सिक्योरिटी भी एडवांस्ड होगी। स्मार्ट सर्वेलेंस होंगे, शहर में कैमरास होंगे जो फेसेस और बिहेवियर को एनालाइज करेंगे। अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो तो सिस्टम फौरन अलर्ट ऑटोमेटिकली भेज देगा। वहीं AI डेटा एनालाइज करके प्रिडिक्ट करेगा कि किस एरिया में क्राइम का चांस ज्यादा है, पुलिस वहां पहले से डिप्लॉयमेंट कर सकती है। ये कितना अच्छा हो जाएगा। वहीं ऑटोमेटेड पॉलिसिंग भी होगी। कुछ केसेस में रोबोट्स या फिर ड्रोन्स भी यूज होंगे जो एरिया को मॉनिटर करेंगे और पुलिस को रिपोर्ट करेंगे। ये सिस्टम पब्लिक सेफ्टी

हैं वो चौंका रही हैं, लेकिन आने वाले वक्त में हम इन सारी चीजों के आदी हो जाएंगे, यूज्ड हो जाएंगे, है ना। अपने आप में कितनी बड़ी बात। वही अभी मुझे लगता है कि आज के लिए बस इतना ही रखती हूँ। थोड़ा सा आप भी वक्त लीजिए, सोचिए समझिए, इन सारी चीजों को जो है वो एब्जॉर्व कीजिए। कल जब वापस आऊंगी

0: उसी टॉपिक को मैं कंटिन्यू रखूंगी कल मैं बात करूंगी अर्बन मैनेजमेंट और गवर्नेंस पर इस पर भी बात करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है किस तरह से एआई जो है वो सिर्फ ट्रैफिक या फिर हॉस्पिटल्स तक महदूद रहेगी पूरे शहर को मैनेज करेगी कल इसी टॉपिक पे बात होगी फिलहाल अभी के लिए मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए देखते और सुनते रहिए एफएम 107 दिल से देसी
1: अरे मौसी जी कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो
2: ठाकुर तो
1: FM 107

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: स्कैम अलर्ट। दोस्तों, उम्मीद है कि आप स्कैम से बचकर टिकट कर चुके होंगे एयरपोर्ट के लिए। फ्लाइट की टिकट हो गई है, अब बस आपने सामान भी खरीद लिया, उसमें भी आपके साथ स्कैम नहीं हुआ होगा। आपकी फ्लाइट तैयार है आपको रिसीव करने के लिए, आपको बस एयरपोर्ट पहुंचना है। तो आमतौर पे जो कतर में दूर रहते हैं, अलखोर में रहते हैं, वकरा में रहते हैं, तो वो दूर से, इतनी दूर से कैसे एयरपोर्ट पहुंचे? तो इसके लिए शटल का अगर कोई बंदोबस्त हो जाए या फिर किसी कैब का बंदोबस्त हो जाए सस्ते में, तो कितना अच्छा होना यार। हम सब कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पैसे बचाए जा सके। वेल, यहां पर आपके साथ हो सकता है स्कैम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। FM 107 पे मैं हूं फजील इस्तकबाल आप सभी का, और मैं आपको बता दूं कि ये एक नए तरह का स्कैम चल रहा है। ये स्कैम है एयरपोर्ट शटल या एयरपोर्ट कैब के नाम पे, जहां पर आप सोशल मीडिया पे या फिर यू नो गूगल पे कहीं पर भी

0: आप देखते हैं कि एक एड सा या फिर एक वीडियो हो, वीडियो आमतौर पे कम होती है, एक पोस्ट होती है, और ये पोस्ट ऐसे अकाउंट्स पे होती है जिसमें हजारों लोग ऐड होते हैं और कहते हैं इसमें ये टाइप होकर आता है या कंटेंट आता है कि अगर आपको फला दिन या इस दिन एयरपोर्ट जाना है तो मुझे बताएं, मैं आपको 50 या 100 रियाल के बजाय 25 रियाल में छोड़ दूंगा क्योंकि मैं भी उस तरफ जा रहा हूँ। मिसाल के तौर पे 15 तारीख या 17 तारीख या 18 तारीख को कोई शख्स है, वो कह रहा है कि मुझे एयरपोर्ट जाना है, मैं आपको 15 या 20 रियाल में छोड़ दूंगा। आप अलखोर से जाएंगे भाई 100 रियाल लगेंगे, 50 80 रियाल लगेंगे, तो इससे अच्छा है कि आप मेरे साथ चलें। वो शख्स आपको ज्यादा इंटरटेन नहीं करता, ज्यादा जबरदस्ती नहीं करता, तो आपको लगता है कि ये किसी तरह का स्कैम हो ही नहीं सकता, और फिर आपको ये एहसास होता है कि अगर इतना सस्ता है तो मुझे प्रॉब्लम क्या है, 20 25 30 रुपए मेरे लिए क्या ही प्रॉब्लम है। लेकिन यहीं पर तो बात है, वो इस तरह के अगर 10 स्कैम कर लेगा उसके दिन के 300 बन गए। वैसे ये भी कमाई का तरीका अच्छा है नहीं? तो दोस्तों ये काम ऐसे करता है कि एक शख्स आपको कहेगा कि भाई 15 20 30 25 रियाल में मैं आपको एयरपोर्ट छोड़ दूंगा और आपको बस मुझे इतना रुपए देना है। वो आदमी आपसे बात करेगा, आप कहेंगे ठीक है मैं इस तारीख को जाऊंगा, आप मुझसे उस दिन पेमेंट ले लीजिएगा। आप भी सोच रहे होते ये तो फिजिकल पेमेंट की बात है। अब होता ये है कि लास्ट डे यानी कि आज आपकी फ्लाइट है और फ्लाइट से कुछ 2 या 3 या 4 घंटा पहले जब भी आपको निकलना हो, वो शख्स कहता है कि मुझे पेमेंट चाहिए और मुझे अभी के अभी तुरंत ये पेमेंट कहीं लगानी भी है और कहीं चाहिए भी, मैं बस आपके घर के पास में ही खड़ा हूं। आपको ऐसे में लगता है कि ये बंदा अगर घर के पास खड़ा है और फिर मैंने इसने इतने दिन तक कुछ कहा भी नहीं मुझसे पेमेंट के लिए, इसने इतनी बार पूछा भी नहीं पेमेंट के लिए, 10 दिन पहले इससे बात हो गई थी कि एयरपोर्ट ये मुझे छोड़ेगा, और अब अगर पेमेंट मांग रहा है, कुछ पैसों की बात है लेकिन ये कुछ पैसे ही आपको बड़ा चूना लगा सकते हैं जब आप ऑनलाइन पेमेंट करें उसे, या फौरन पे करें, या कोई और तरीके से पे करें। अगेन इसमें थर्ड पार्टी का भी इस्तेमाल हो सकता है, तो इसके लिए आपको अवेयर रहने की जरूरत है। कई बार हमें लगता है कि हम जब पेमेंट कर रहे हैं, हो सकता है कि आपको QR कोड दे या पेमेंट करने के लिए अपनी तरफ से कोई लिंक भेजे जहां पर आप 1000 रुपए दे बैठे या 1200 या 1500 दे बैठे बजाय 15, 20 या 30 रियाल के। तो ऐसे में लास्ट डे तक ही आपको पेमेंट तक लेकर जाते हैं और आपसे पेमेंट करवाते हैं, और फिर वो कार या वो कैब कभी आती ही नहीं है जो आपको एयरपोर्ट छोड़ेगी। आप कॉल करते हैं, कॉल नहीं लगती है, कॉल उठता नहीं है, आपको ब्लॉक कर दिया जाता है। ऐसे में फ्लाइट छूटने का भी डर है, लेकिन खुशनसीबी की बात यह है कि आप कैब तो कर सकते हैं एटलीस्ट उस वक्त जब आपके साथ ये स्कैम हो रहा हो। तो इस तरह के स्कैम भी हो रहे हैं जो छोटे लेवल पे भी हैं, जो बड़े लेवल पे भी हैं। तो प्लीज हर वक्त अवेयर रहें, इस स्कैम से बचने का सबसे अच्छा तरीका सिर्फ ये है कि आप अवेयर रहें, और अवेयर इस तरह से रहें कि भाई एयरपोर्ट अगर जाना है, कुछ पैसे ज्यादा खर्च हो जाए कोई बात नहीं, हम कैब करके चले जाएंगे, या आपका कोई दोस्त हो करीबी वो आपको छोड़ दे तो इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता। या फिर कतर की कनेक्टिविटी इतनी जबरदस्त है कि ये कनेक्टिविटी आपको कतर के कोने कोने से ले जाकर एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से ले जाकर कतर के हर कोने तक छोड़ने को तैयार है। मेट्रो सर्विसेज भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे बढ़कर तो और कुछ है ही नहीं। मेट्रो सर्विसेज भी आपके लिए अवेलेबल है और मेट्रो तो आपको एकदम दरवाजे पर उतारती है एयरपोर्ट के। तो दोस्तों अवेयर रहें और इस तरह के फ्रॉड से बच के रहें, ये आपकी अपनी खुद की जिम्मेदारी है आजकल के बढ़ते स्कैम को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट एपिसोड में फ्रॉड अवेयरनेस के, जहां पर हम नए और एकदम ताजे फ्रॉड के बारे में बात करेंगे। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
1: स्कैम अलर्ट, हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में। MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में वजारती दाखिला की हर एक एक्टिविटी, जरूरी खबरें और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ, कुछ मिलेगा यहाँ। ट्यून करें हर वेंसडे शाम 7:15 FM 107 और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है। MOI वीकली अपडेट, आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर। डोंट मिस इट, डोंट मिस इट।

0: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। आज हम बात करेंगे अब्दुल अजीज अल उबैदली। कतर के नुमाया स्विमर्स में शुमार किए जाते हैं अब्दुल अजीज अल उबैदली, और उन्होंने कई बैनुल अक्वामी कॉम्पिटिशन्स में मुल्क की नुमाइंदगी की है। उन्होंने कम उम्र से ही स्विमिंग की ट्रेनिंग शुरू की और लगातार प्रैक्टिस के जरिए अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाया। अब्दुल अजीज खास तौर पर फ्री स्टाइल और डिस्टेंस इवेंट्स में अपनी सलाहियत का मुजाहरा कर चुके हैं। उनकी मेहनत, फिटनेस और पानी में बेहतरीन कंट्रोल ने उन्हें दूसरे स्विमर से अलग पहचान दी। कतर के स्पोर्ट्स इदारों और कोचेस की रहनुमाई में उन्होंने रीजनल और एशियन सतह के टूर्नामेंट्स में कीमती तजुर्बा हासिल किया। अब्दुल अजीज का मकसद सिर्फ फर्दी रिकॉर्ड्स बनाना नहीं बल्कि मुल्क के लिए मेडल्स हासिल करना और नए स्विमर्स को इंस्पायर करना भी है। वो हर ट्रेनिंग सेशन में टेक्निक, ब्रीदिंग और एंड्योरेंस को मजीद बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, एंड दैट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर एनी स्विमर। उनकी डेडिकेशन और प्रोफेशनल रवैया दिखाता है कि कामयाबी मुसलसल मेहनत का नतीजा होता है। दोस्तों, कतर में स्विमिंग की मकबूलियत बढ़ाने में भी उनका अहम हिस्सा रहा है, और उनकी मिसाल देखकर कई नौजवान इस खेल को अपना रहे हैं। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शाकिब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: दोस्तों, लिमोजीन चलाने वाले ड्राइवर्स के लिए एक अहम पैगाम ये है कि सेफ ड्राइविंग सिर्फ आपकी नहीं बल्कि सबकी सेफ्टी की गारंटी होती है। याद रखिए, फार लेफ्ट फास्ट लेन का इस्तेमाल आपके लिए स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है या मना है। रोड पर रैंडम स्टॉपिंग मत कीजिए, यानी गाड़ी कहीं भी मत रोक दीजिए। रुकना सिर्फ तब अलाउड है जब एप्लीकेशन के जरिए रिक्वेस्ट मिलती है। और हमेशा स्पेसिफाइड स्पीड लिमिट का ख्याल रखिए, क्योंकि स्लो ड्राइविंग भी मेन रोड्स पर ट्रैफिक के लिए खतरा बन सकती है। सेफ्टी के इन सिंपल रूल्स पर अमल करके आप अपनी हिफाजत करते हैं और दूसरों के सफर को भी महफूज बनाते हैं। वजारत दाखिला का कहना है, स्टे सेफ, ड्राइव सेफ। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।
2: Anytime, anywhere. कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107। Log into our website urduradio.qa और डाउनलोड the app QMC now.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
3: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्ला। आज हम मुफीद इंतखाब और स्नैक्स के बारे में चंद अहम आदात के बारे में हम गुफ्तगू करेंगे। जैसे कि सब्जियां हैं वो हल्की भी होती हैं और गजाइत से भरपूर भी। गाजर, खीरा, टमाटर, शिमला मिर्च जैसी ताज़ा सब्जियां बेहतरीन स्नैक्स हैं। ये कम कैलोरीज के साथ विटामिंस और मादनियात फ्राहम करती हैं। बॉयल एग जो हैं वो मायारी प्रोटीन रखते हैं और उनका एक बेहतरीन जरिया हैं। एक या दो उबले हुए अंडे दिन भर की मसरूफियात के लिए अच्छी तवानाई फ्राहम कर सकते हैं। ब्राउन ब्रेड में ताज़ा सब्जियां, कम चिकनाई वाले चीज़ या उबला हुआ चिकन शामिल करके एक मतवाजन और मज़ेदार स्नैक आप तैयार कर सकते हैं। अब ये कि किन चीज़ों से हम दूर रहें, चिप्स नीमको है या ज़्यादा नमक वाली अशिया हैं, मीठे मशरूबात हैं, चॉकलेट्स और कैंडीज हैं, क्रीम वाले बिस्किट हैं और केक। ये गजाएं आर्जी तस्कीन तो देती हैं लेकिन उसके साथ साथ वजन ज़्यादा करती हैं और सेहत के मसाइल पैदा करने का सबब बन सकती हैं। हेल्दी स्नैक्स के जो सुनहरे उसूल हैं वो ये कि स्नैक्स की मकदार मुनासिब रखिए, कुदरती और गजाई जो चीज़ें हैं उनको तरजीह दीजिए, पैकशुदा और प्रोसेस्ड चीज़ों का इस्तेमाल कम कीजिए, स्नैक के साथ पानी पीना मामूल बना लीजिए, खाने को आहिस्ता आहिस्ता और बड़े ही सुकून और तहम्मुल से खाइए। और अगर आप डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर या वजन के मसाइल का शिकार हैं तो अपने डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट के मशवरे के मुताबिक स्नैक्स का इंतखाब कीजिए। सेहतमंद या हेल्दी स्नैक्स का इंतखाब एक छोटी सी आदत है जो आपकी मजमूई सेहत पर बहुत ही पॉजिटिव असर डालती है। आज ही अपनी खुराक में मुस्बत तब्दीलियाँ लाइए और सेहतमंद जिंदगी की जानिब कदम बढ़ा दीजिए। अपना ख्याल रखिए, मतवाजन गिजा खाइए और सेहतमंद रहिए।
0: कतर्स मोस्ट हर्ड रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: जैसे देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम साथियों, वेलकम बैक टू इको स्विच विद सफा, जहां हम बात करते हैं लाइफस्टाइल के उन चॉइसेस की जो एनवायरनमेंट को अफेक्ट भी करती हैं और आपको भी अफेक्ट करती हैं। तो भाई आज का टॉपिक है सस्टेनेबल फैशन, यानी ऐसा फैशन या ऐसी फैशन चॉइसेस जो एनवायरनमेंट को नुकसान कम और फायदा ज्यादा देती हैं। साथियों फैशन सिर्फ कपड़ों का नाम नहीं होता, बल्कि एक इंडस्ट्री है जो दुनिया की सबसे ज्यादा पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री में से एक है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ग्लोबल कार्बन इमिशंस का ऑलमोस्ट 10% फैशन इंडस्ट्री से आता है। भाई देखिए भाई, ये एविएशन और शिपिंग कंबाइंड से भी ज्यादा बनता है। साथियों जरा सोचिए, आप अपनी वार्डरोब खोलते हैं और क्या कहते हैं कि भाई मेरे पास कपड़े तो बहुत हैं लेकिन पहनने को कुछ नहीं है। ये मेरे साथ भी होता है, अक्सर औकात होता है। ये मॉडर्न फैशन का कॉमन सिनेरियो है। हम अक्सर नए क्लोथ्स यानी कि नए कपड़े खरीद लेते हैं, और क्यों खरीदते हैं? क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ट्रेंड के लिए थे, और पुराने कपड़े या तो यूज ही नहीं होते या डिस्कार्ड हो जाते हैं। अब इको स्विच पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो एक सिंपल टी शर्ट बनने में लगभग 2,700 लीटर पानी लगता है। भाई इतना पानी एक इंसान आप कह लें कि अराउंड 2.5 साल में, 2.5 साल में इतना पानी इंसान पीता है सिर्फ एक टी शर्ट के लिए। इतना पानी मुझे तो कुछ सही नहीं लग रहा। अब जरा सोचिए, जब आप 10 से 15 फास्ट फैशन आइटम्स खरीदते हैं तो हम कितने रिसोर्सेज यूज कर रहे होते हैं, कभी सोचा है आपने? अच्छा अब कुछ इंटरेस्टिंग और शॉकिंग फैक्ट्स बताती हूँ आपको। देखिए हर साल दुनिया में लगभग 92 मिलियन टन टेक्सटाइल वेस्ट जनरेट होता है। एक एवरेज गारमेंट सिर्फ 7 से 10 दफा पहनने के बाद डिस्कार्ड कर दी जाती है। आपको पता है फास्ट फैशन की वजह से ही हर लिटरल सेकंड एक ट्रक भर के कपड़े या तो फिर लैंडफिल में जा रहे होते हैं या बर्न हो रहे होते हैं ग्लोबली। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पॉलिस्टर जो सबसे कॉमन फैब्रिक है वो प्लास्टिक से बनता है भाई, और उसे डिग्रेड होने में कितने साल लगते हैं? 200 साल से भी ज्यादा लगते हैं भाई। देखें अब मामला ये है कि हाउ इको स्विच हेल्प्स, यानी कि बात कर लेते हैं स्मार्ट फैशन चॉइसेस की। देखिए भाई इको स्विच का आइडिया यहाँ बड़ा सिंपल सा है। फैशन को बंद मत करें, नहीं नहीं आपने ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही आपने कोई फैशन करना बंद कर देना है, बल्कि उसे रिस्पॉन्सिबल बनाए ना। देखिए सस्टेनेबल फैशन का मतलब ये है कि कम लेकिन क्वालिटी क्लोथ्स लें, रीयूज करना सीखें चीजों को और रिसाइकल करें। अगर हम फास्ट फैशन कंजम्पशन 30% तक कम कर देना तो ग्लोबल टेक्सटाइल वेस्ट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो सकता है। इसी तरह आप कह लें कि थ्रिफ्ट शॉपिंग या सेकेंड हैंड क्लोथ्स यूज करना रिसोर्सेज को सेव करता है और वेस्ट को रिड्यूस करता है। साथ ही जरा सोचिए कि एक ह्यूज सेल चल रही है, ठीक है, और आप इंपल्स में आकर, आप जज्बात में आकर 5 से 6 शर्ट तो खरीद ही लेते हैं सिर्फ क्या देखकर कि डिस्काउंट है, सेल है, सेल है। घर आकर आप रियलाइज करते हैं कि भाई इसमें से तो 2 सेम आपके पास ऐसे ही पड़ी हुई है, तकरीबन सेम है, और एक शर्ट शायद कभी आप ऐसी ले लेते हैं जज्बात में आकर जो आपने कभी पहनी नहीं हो, पहनी नहीं जानी। अब इको स्विच माइंडसेट कहता है कि भाई डू आई नीड इट और डू आई जस्ट वॉन्ट इट बिकॉज इट्स चीप। देखें ये सिंपल क्वेश्चन आपको अननेसेसरी वेस्ट और ओवर कंजम्पशन से बचाता है। इसी से रिलेटेड ना मैं आपको कुछ टिप्स दे देती हूँ। अब कुछ इजी इको टिप्स पे बात कर लेते हैं, फैशन टिप्स। देखें पहला तो ये कि बाय लेस चूज वेल, रूल फॉलो करें ये वाला, और क्वालिटी को क्वांटिटी के ऊपर तरजीह दें। दूसरी चीज ये कि कपड़ों को रिपेयर करें इंस्टेड ऑफ इमीडिएटली रिप्लेसिंग देम। तीसरी चीज ये थ्रिफ्ट स्टोर्स या सेकंड हैंड मार्केट्स एक्सप्लोर करें, वहां पे भी कभी कभी अच्छा माल मिल जाता है भाई। चौथी चीज ये है कि जो हमारे कपड़े हैं उनको रिसाइकल या डोनेट करें इंस्टेड ऑफ जस्ट थ्रोइंग देम अवे। और पांचवा, सिंथेटिक फैब्रिक्स के बजाय कॉटन, लिनन या नेचुरल फाइबर्स चूज करें जो एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। साथियों सस्टेनेबल फैशन का सबसे बड़ा माइंड शिफ्ट ये है कि कपड़े सिर्फ ट्रेंड के लिए नहीं होते बल्कि लॉन्ग टर्म यूज के लिए भी होते हैं। जब हम एक आइटम को ज्यादा दफा यूज कर लेते हैं ना तो उसका एनवायरमेंटल कॉस्ट पर वेयर ड्रामेटिकली

कम हो जाता है। एक स्टडी के मुताबिक अगर हम अपने क्लोथ्स को, अपने कपड़ों को डबल दफा ज्यादा पहनते ना, मतलब ज्यादा पहन लें, तो भाई फैशन रिलेटेड कार्बन फुटप्रिंट को 40% तक रिड्यूस किया जा सकता है।

0: तो भाई याद रखिए, फैशन का असली स्टाइल वही है जो एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। इसी के साथ मैं हूं सफा, आपके साथ इको स्विच पर। इंशाल्लाह मुलाकात होती है इको स्विच के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सुनते रहें FM 107, जहां हर आउटफिट सिर्फ फैशन नहीं बल्कि एक स्टेटमेंट होता है।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान। आज हम बात करेंगे ईमानदारी से काम करने की अहमियत के बारे में। ईमानदारी एक ऐसी खूबी है जो इंसान की शख्सियत को मजबूत बनाती है और सोसाइटी में उसकी पहचान बन जाती है। जब कोई शख्स अपने काम में सच्चाई और ईमानदारी इख्तियार करता है तो लोग उस पर भरोसा करते हैं और उसकी इज्जत करते हैं। इस्लाम हमें सिखाता है कि हर जिम्मेदारी को पूरी सच्चाई के साथ अदा किया जाए, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो या घर की जिम्मेदारियाँ। ईमानदारी हर जगह जरूरी है। अक्सर आसान रास्ता लेने के लिए लोग ईमानदारी छोड़ देते हैं, लेकिन असल कामयाबी वही होती है जो हलाल और सच्चाई के रास्ते से मिले। आज का अमल ये है कि अपने काम का जायजा लें और कोशिश करें कि हर जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से अदा करें। ये था आज का मैसेज। आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूँ आरजे मावश। फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ।
2: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: Maximum music, maximum fun.
1: On FM 107, Dil Se Desi.

0: आप सुन रहे हैं FM 107।
1: दिल से देसी। One step to 2030. Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया।
2: One Step to 2030.
1: और दोस्तों आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ उसे सुनते ही आपके होश उड़ जाएंगे। हाँ, ये काफी फ्यूचरिस्टिक टॉपिक है और आज बात होगी लाइफ विदाउट फोन्स की। आप सोच रहे होंगे ये फ्यूचरिस्टिक है या काफी और ज्यादा हमको पास्ट में लेके जाने वाली बात है। देखिए, आने वाले दिनों में जिस तरह से इनविजिबल टेक्नोलॉजी जो है ना वो बढ़ेगी, तेजी से इवॉल्व हो रही है और ग्रो करेगी, ऐसे में एक और तरीके का डिवाइस आपकी जिंदगी के साथ जुड़ जाएगा। देखिए, आज के जमाने में स्मार्टफोन्स हमारी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। सुबह उठते ही सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे हाथ में होता है फोन, उठाते हैं अपना मोबाइल, चेक करते हैं। लेकिन सोचिए अगर 2030 तक फोन्स जो है वो खत्म हो जाए तो क्या उठाएंगे हाथ में चेक करने के लिए। देखिए, फ्यूचर टेक्नोलॉजी का ट्रेंड ये कह रहा है कि मोबाइल फोन्स धीरे धीरे रिप्लेस हो जाएंगे, उनकी जगह आएंगे स्मार्ट ग्लासेस, वेयरेबल डिवाइसेस और इनविजिबल टेक्नोलॉजीज जो हमारे आसपास होंगी लेकिन शायद नजर नहीं आएंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन करें कि आप एक चश्मा पहनते हैं जिसमें स्क्रीन नजर आती है, आप व्हाट्सएप मैसेजेस देख रहे हैं उसे पहनकर, कॉल्स आप रिसीव कर रहे हैं और शायद नेविगेशन भी बिना फोन निकाले यूज कर रहे हैं। ये सब ऑगमेंटेड रियलिटी के लिए या उसके जरिए होगा। AR ये भी आ रहा है तेजी से। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आप हैंड फ्री लाइफ जिएंगे, मतलब हाथ आपके यूं खाली घूम रहे हैं, हाथ में कुछ नहीं है। जी हाँ, ड्राइविंग के दौरान या फिर जब आप वॉक कर रहे हैं उस वक्त आपको फोन यूज करने की जरूरत ही नहीं होगी। सेफ्टी और ज्यादा इम्प्रूव होगी जैसे कि कहा जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है इसके साथ अपने आप में बहुत सारे चैलेंजेस भी आएंगे। प्राइवेसी, जी हाँ, प्राइवेसी एक बड़ा मसला बन सकती है। अगर हर वक्त डिवाइसेस आपका डेटा कलेक्ट करे तो सिक्योरिटी का क्या होगा, ये सोच के तो मैं घबरा ही गई। अच्छा, ये टॉपिक जो है वो मुझे लगता है हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है जानना कि आने वाला दौर जो है वो फोन का दौर नहीं है, AR का दौर है। एक दिन भी हम आज अगर सोचें कि एक दिन बिना फोन के स्मार्ट ग्लासेस के साथ हमें रहना है तो हमें लगेगा कि नहीं, स्मार्ट ग्लासेस क्या, स्मार्ट ग्लासेस बहुत ही ज्यादा आने वाले टाइम में ना बहुत ही मैं कहूंगी कि बहुत ज्यादा जरूरी भी होंगे और बड़े इंपॉर्टेंट भी हो जाएंगे। देखिए, फ्यूचर जो है वो सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है, वो लाइफस्टाइल चेंज का भी है। अब जरूरत ये है कि हम खुद को किस तरह से जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या इन सारे चेंजेस को हम अडॉप्ट करने के लिए तैयार हैं।

0: Midnight Melodies, only on FM 107, Dil Se Desi.
1: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं तिलावत तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर

दोस्तों, हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ई गेट सर्विस सफर करने वालों के लिए एक मॉडर्न और फास्ट फैसिलिटी फराहम करती है। इस सिस्टम के जरिए आपको लंबी लाइंस में वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप अपने पासपोर्ट, आईडी कार्ड या कतर डिजिटल आईडी एप्लीकेशन से यूज करके ट्रैवल प्रोसीजर्स कुछ ही सेकंड्स में कंप्लीट कर सकते हैं। ये फैसिलिटी सिर्फ सिटीजन्स और रेसिडेंट्स ही नहीं, बल्कि उन बच्चों के लिए भी अवेलेबल है जिनकी हाइट 130 सेंटीमीटर से ज्यादा है। साथ ही व्हीलचेयर्स यूजर्स, सीनियर सिटीजन्स और पर्सन विद डिसेबिलिटीज भी इस सर्विस का आसानी से फायदा उठा सकते हैं। इस सर्विस का मकसद सफर करने वालों के लिए प्रोसेस को ज्यादा कन्वीनियंट, क्विक और यूजर फ्रेंडली बनाना है। वजारत दाखिला का कहना है कि ई गेट सर्विस की वजह से एयरपोर्ट पर भीड़ कम होती है, क्यूज छोटी होती हैं और हर एक मुसाफिर का एक्सपीरियंस स्मूथ और स्ट्रेस फ्री बन जाता है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।

और हमने उनके और उन बस्तियों के दरमियान जिनको हमने बरकत अता की थी नुमाया बस्तियां बसा दी थीं और उनमें सफर की मसाफतें एक अंदाजे पर रख दी थीं। चलो फिरो इन रास्तों में रात दिन पूरे अमन के साथ। मगर इन्होंने कहा, ऐ हमारे रब, हमारे सफर की मसाफतें लंबी कर दे। उन्होंने अपने

अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो आसमानों और जमीन का बनाने वाला और फरिश्तों को पैगाम रसा मुकर्रर करने वाला है। ऐसे फरिश्ते जिनके दो दो और तीन तीन और चार चार बाजू हैं, वो अपनी मखलूक की साख में जैसा चाहता है इजाफा करता है। यकीनन अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अल्लाह जिस रहमत का दरवाजा भी लोगों के लिए खोल दे उसे कोई रोकने वाला नहीं, और जिसे वो बंद कर दे उसे अल्लाह के बाद फिर कोई दूसरा खोलने वाला नहीं। वो जबरदस्त और हकीम है। लोगो, तुम पर अल्लाह के जो एहसानात हैं उन्हें याद रखो। क्या अल्लाह के सिवा कोई और खालिक भी है जो तुम्हें आसमान और जमीन से रिस्क देता हो? कोई माबूद उसके सिवा नहीं। आखिर तुम कहां से धोखा खा रहे हो? अब अगर ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लोग तुम्हें झुठलाते हैं तो ये कोई नई बात नहीं। तुमसे पहले भी बहुत से रसूल झुठलाए जा चुके हैं और सारे मामलात आखिरकार अल्लाह ही की तरफ रजू होने वाले हैं। लोगों, अल्लाह का वादा यकीनन बरहक है, लिहाजा दुनिया की जिंदगी तुम्हें धोखे में न डाले और न वो बड़ा धोखेबाज तुम्हें अल्लाह के बारे में धोखा देने पाए। दर हकीकत शैतान तुम्हारा दुश्मन है, इसलिए तुम भी उसे अपना दुश्मन ही समझो। वो तो अपने पैरवों को अपनी राह पर इसलिए बुला रहा है कि वो दोजखियों में शामिल हो जाएं। जो लोग कुफ्र करेंगे उनके लिए सख्त अजाब है, और जो ईमान लाएंगे और नेक अमल करेंगे उनके लिए मगफिरत और बड़ा अजर है।